0: और भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए। आखिरकार मुनकरीन ने अपने रसूलों से कह दिया कि या तो तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। तब उनके रब ने उन पर वही भेजी कि हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुम्हें जमीन में आबाद करेंगे। ये इनाम है उसका जो मेरे हुजूर जवाबदही का खौफ रखता हो और मेरी वाइद से डरता हो। उन्होंने फैसला चाहा था तो यूं उनका फैसला हुआ और हर जब्बार दुश्मन हक ने मुंह की खाई। फिर उसके बाद आगे उसके लिए जहन्नम है, वहां उसे कच लहू का सा पानी पीने को दिया जाएगा जिसे वो जबरदस्ती हलक से उतारने की कोशिश करेगा और मुश्किल ही से उतार सकेगा। मौत हर तरफ से उस पर छाई रहेगी मगर वो मरने न पाएगा और आगे एक सख्त अजाब उसकी जान का लागू रहेगा। जिन लोगों ने अपने रब से कुफ्र किया है उनके आमाल की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो और वो अपने किए का कुछ भी फल न पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गुमगुश्तगी है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने आसमान और जमीन की तखलीक को हक पर कायम किया है? वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और एक नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना उस पर कुछ भी दुश्वार नहीं है। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره فنسألك

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

0: الآفات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: और तमाम सुनने वालों को भी मेरी तरफ से सलाम व आदाब। दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहते हैं मैं और तलहा साहब। और समय कराम, आज की कहानी सुनते हुए शायद हमें बार बार अपनी ज़िंदगी की तरफ देखना पड़े, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि उन लोगों के पास कितना माल था, असल सवाल ये है कि माल मिलने के बाद उनके दिल का मिजाज क्या बन गया।
1: बिल्कुल सर भाई, और यही इस प्रोग्राम की रूह भी है। हम वाक़ सुनेंगे, कुरान की आयात के पस मंजर को समझेंगे, फिर गुफ्तगू के आखिर में ये भी देखेंगे कि वाक़ आज हमारी जो सूरत हाल है और हमारी तनख्वाह के हवाले से बात कर लें, कारोबार, घर, ख़ानदान, दौलत, जिम्मेदारी और दूसरों के हकूक से ये वाक़ कैसे जुड़ता है, हम इसका ज़रूर जायज़ा लेंगे। तो सामने कराम, आपको बता दें कि आज हम सूरह कलम में बयान होने वाले अस्हाबुल जन्ना यानी बाग वालों के वाक़े पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, यानी हमने उन्हें आजमाइश में डाला जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाइश में डाला था। मुफस्सिरीन किराम एक नहायत मानखेज़ मुनासिबत की तरफ इशारा करते हैं। आयत की तफसीर के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के ज़माने में मक्का और कुरैश के लोगों को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता कर रखी थीं। एक ऐसी सरजमीन जहां बड़े ज़रई वसाइल न होने के बावजूद रिज़्क के दरवाजे खुले थे, दूर दूर से मुख्तलिफ फल और सामान उन तक पहुँचता था, खाना काबा की नस्बत से अमन भी हासिल था और पानी के लिए जमजम जैसी अजीम नेमत भी मौजूद थी। कुरान ने एक दूसरे मकाम पर कुरैश को यही हकीकत याद दिलाई, अतअमहुम मिन जुअ व आमनहुम मिन खौफ। इस आयत का शुरू इस तरह है, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअ व आमनहुम मिन खौफ, यानी जिस रब ने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ से अमन अता किया। लेकिन जब नेमत हो और नेमत देने वाले की पहचान न हो, रिज़्क हो मगर शुक्र न हो, अमन हो मगर बंदगी न हो, तो यही नेमत इंसान के लिए इम्तिहान बन जाती है।
0: क्या खूब बात कही आपने तला। और यहाँ पर पहली बात हमारी जिंदगी के लिए समझने की ये है कि हम अक्सर समझते हैं कि इम्तिहान सिर्फ मुश्किल का नाम है या मुश्किलों का नाम है। मसलन बीमारी आ गई, पैसा कम हो गया, नौकरी चली गई वगैरह वगैरह, हम कहते हैं कि इम्तिहान आ गया है और अब इससे कैसे निपटे। लेकिन कभी कभी सेहत भी इम्तिहान होती है, अच्छी सैलरी भी इम्तिहान होती है, यहाँ तक के बिजनेस की तरक्की भी इम्तिहान होती है और घर में आने वाली फरावानी भी इम्तिहान होती है। सवाल ये है कि अल्लाह सुभान व तआला ने जो दिया तो हमने उसके साथ क्या किया।
1: जी सर, और ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है और इसी को समझने के लिए हम अस्हाबुल जन्ना का ये वाकया बड़ी तफसील से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। किस्से की बाज़ तफसीलात कुरान में इजमाल के साथ बयान हुई हैं, जबकि मुफस्सिरीन ने कदीम रिवायात की रोशनी में इसका पस मंज़र भी नकल किया है। बाज़ रिवायात में कहा गया है कि ये बाग यमन के इलाके में सनआ के करीब वाक़े था, जबकि कुछ दूसरी रिवायात में मुख्तलिफ मकामात का जिक्र मिलता है। असल कुरानी सबक मकाम के तायुन पर मौकूफ़ नहीं और इसी वजह से इसको मुजमल रखा गया, असल तवज्जो उन लोगों के रवैये और उसके अंजाम पर है। रिवायात के मुताबिक वहाँ एक नेक शख्स रहता था, उसके पास एक नहायत जरखेज और वसी बाग था। बाग में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त, फल और फसलें पैदा होती थी। लेकिन उस शख्स की अजमत उसका सिर्फ ये नहीं कि उसका एक बड़ा बाग था, बल्कि उसकी असल खूबी तो ये थी कि उसका दिल भी बड़ा था। जब फसल तैयार होती तो वो सारी पैदावार अपनी तिजोरी में बंद नहीं कर लेता था, एक हिस्सा अपनी और अपने घर वालों की जरूरियात के लिए रखता, एक हिस्सा दोबारा ज़मीन में लगाने और आइंदा फसल की तैयारी के लिए रखता और एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन के लिए निकाल देता। तो वो अपने माल में एक बहुत ही मुनसिफाना तकसीम करता था। उसके निगाह में खेत सिर्फ इनकम सोर्स नहीं था बल्कि अमानत भी था।
0: और तला ये बात आज के दौर में बहुत सीधी तरह हमारी ज़िंदगी से जुड़ती है। हम अपनी मंथली इनकम देखें, सैलरी आते ही सबसे पहले बिल्स, शॉपिंग, सेविंग्स, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह सब याद आ जाता है। लेकिन कभी हम ये भी सोचते हैं कि किसी ज़रूरतमंद का हिस्सा कहाँ है। हर मदद ज़कात के हुक्म तक महदूद नहीं होती। किसी का इलाज, किसी के बच्चे की फीस, किसी घर का राशन, किसी कर्जदार की मदद, ये सब हमारे माल को सिर्फ कम नहीं करते बल्कि उसमें इंसानियत और बरकत का मानी पैदा करते हैं
1: बिल्कुल सरवर और जिस मुल्क में हम यहां रह रहे हैं चाहे एज ए मुकीम हो या फिर एज ए रिहाइश तो यहां भी आप देखेंगे कि मुनसिफाना तकसीम है और हर कोई जो यहां रहता है उसको एक सुकून के साथ यहाँ जी रहा होता है चाहे वो माली तो मादी तौर पर हो या यानी आप एज ए रिहायशी यहाँ अमन अमान की बात कर लें तो यहाँ इस वाक़े में रिवायत में आता है इस वाक़े से मुतालिक कि अल्लाह ताला ने इस शख्स के बाग में खैर और बरकत बढ़ा दी क्योंकि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले के बारे में कुरान का उसूल ये है कि बंदा जो कुछ खैर में खर्च करता है अल्लाह उसका बदल अता फरमाता है और यहाँ से दास्तान का रुख बदलता है उस शख्स के बेटे थे रिवायत में उनकी तादाद 5 बयान हुई है बाप का मामूल वो बचपन से देखते आए थे फसल काटना अपनी ज़रूरत रखना और गरीबों को भी हिस्सा देना मगर हर बेटे ने अपने बाप के अमल को एक ही नज़र से नहीं देखा उनमें से अक्सर को बाप की सखावत पसंद नहीं थी उनके जहन में शायद ये सवाल था ये हमारा माल है फिर दूसरे क्यों लें ये हमारी मेहनत की पैदावार है फिर गरीबों का इसमें क्या हक लेकिन इनमें एक शख्स ऐसा था कुरान उसे बाद में औसतून कहता है यानी उनमें निस्बतन ज्यादा मुतवाजन ज्यादा समझदार और बेहतर सोच रखने वाला शख्स जो अपने बाप के तरीके को दुरुस्त समझता था उसकी सोच ये थी कि हम खुद भी खाएं अल्लाह की नेमत से फायदा भी उठाएं लेकिन साथ साथ अल्लाह का शुक्र इस तरह भी अदा करें कि उसके मखलूक को महरूम न करें
0: भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक ही घर एक ही बाप और एक ही तरह की तरबियत लेकिन सोच सबकी अलग अलग
1: बिल्कुल
0: इसका मतलब ये है कि अच्छी तरबियत बहुत जरूरी है लेकिन आखिर में हर शख्स को अपना फैसला खुद करना होता है बाप नेक हो तो बेटा ऑटोमेटिकली ही नेक नहीं बन जाता हमें अपने अंदर भी वो वैल्यूज दोबारा पैदा करनी पड़ती हैं और खास तौर पर जब हमें विरासत में प्रॉपर्टी या फैमिली बिजनेस वगैरह मिलता है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे बाप ने कितना छोड़ा बल्कि ये भी देखना चाहिए कि मेरे बाप ने किस उसूल पर जिंदगी गुजारी
1: तो वाकये को आगे बढ़ाते हैं एक दिन बाप का इंतकाल हो गया वो बाग जिसे एक नेक शख्स ने बरसों संभाला था उसके बेटों के हाथ आ गया दरख्त वही थे जमीन वही थी पानी वही था फसल भी वही थी लेकिन मालिकों के दिल बदल चुके थे और यही नुक्ता गौर तलब है कि कभी नेमत वही रहती है मगर उसके इस्तेमाल का अखलाक बदल जाता है उस साल बाग में गैर मामूली पैदावार हुई फसल बहुत उम्दा थी दरख्त फलों से लदे हुए थे रिवायत के मुताबिक उस इलाके के बेहतरीन बागात में उसका शुमार होने लगा बेटे इकट्ठे हुए लेकिन बजाय इसके कि कहें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद के बाद भी अल्लाह ने यह नेमत बाकी रखी और उनकी नेकी की रिवायत को जारी रखें उन्होंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ गुफ्तगू शुरू कर दी बाज़ बयानात के मुताबिक उन्होंने अपने वालिद के तर्ज अमल ही को नादानी समझना शुरू कर दिया उनका कहना था हमारे वालिद जरूरत से ज्यादा माल गरीबों को दे दिया करते थे ये दौलत हमारी है ये पैदावार हमारी है फिर हम उसे दूसरों में क्यों तकसीम करें एक ने बात कही दूसरे ने तायीद की तीसरे ने हिमायत की फिर अक्सरियत उसी फैसले पर जमा हो गई
0: और ये जगह बहुत डेंजरस होती है जब गलत बात को एक आदमी नहीं पूरा ग्रुप सपोर्ट करने लगे भाई कभी ऑफिस में होता है कभी बिजनेस पार्टनरशिप में ऐसा होता है कभी फैमिली डिसीजंस में हर आदमी अंदर से जानता होता है कि शायद ये ठीक नहीं है लेकिन जब चार लोग हाँ कर देते हैं तो पांचवा भी कह देता है कि ठीक है जो सब कर रहे हैं वही कर लेते हैं मगर कुरानी कहानी हमें ये सिखाती है कि मेजॉरिटी हमेशा मोरालिटी का स्केल नहीं होती
1: और यही बात हमें देखने को मिलती है जो औसतुहुम के हवाले से जो ताबीर आती है कुरान में कि वो समझदार भाई सामने आता है उसने अपने भाइयों से इख्तलाफ किया उसने कहा कि तुम गलत कर रहे हो हमारा बाप नादान नहीं था वो जानता था कि अल्लाह की नेमत का शुक्र कैसे अदा किया जाता है वो गरीबों और मोहताजों को देता था और उसी में हमारे बाप की बरकत थी उसने अपने भाइयों को अल्लाह की याद दिलाया कुरान आगे उसी शख्स का कौल नकल करता है अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अल्लाह की पाकी क्यों बयान नहीं करते उसे याद क्यों नहीं करते यानी मसला सिर्फ ये नहीं था कि तुमने चंद गरीबों को कुछ फल नहीं दिए असल बीमारी दिल में थी और वो क्या अल्लाह को भुला देना जब इंसान नेमत को देखता रहे और मुनीम को भूल जाए تو پھر اسے اپنی دولت میں کسی اور کا حق نظر نہیں آتا
0: اور ہم اپنی زندگی میں بھی یہ چیک کر سکتے ہیں جب ہم کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں خاص طور پر پیسوں کا کہ کیا ہم صرف پروفٹ دیکھتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا بھی کبھی کبھی ایک ڈیل ٹیکنیکلی فائدہ مند ہوتی ہے لیکن اس میں کسی کمزور کا حق دب رہا ہوتا ہے کبھی ہم گھر کا بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور کسی ضرورت مند رشتہ دار کو پوری طریقے سے اگنور کر دیتے ہیں کبھی بزنس میں ہم امپلائی کی ضرورت دیکھتے ہوئے بھی کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا یہیں پر اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا میرا مال میری آنکھیں کھول رہا ہے یا بند کر رہا ہے
1: اب واقعے میں جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائیوں نے اس کی نصیحت کو قبول نہیں کیا روایات میں ان کے درمیان سخت اختلاف کا ذکر آتا ہے وہ نیک بھائی اکثریت کے سامنے کمزور پڑ گیا اس نے نصیحت کی سمجھایا اللہ کا خوف دلایا غریبوں اور مسکینوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی لیکن باقی بھائی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے بالآخر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور قرآن اسی لمحے کو بڑی قوت کے ساتھ بیان کرتا ہے اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين یعنی جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی باغ کی فصل ضرور کاٹ لیں گے ان کا منصوبہ یہ تھا کہ فجر کے وقت بہت سویرے اس وقت باغ کی طرف نکلے جب غریب اور محتاج لوگ ابھی وہاں نہ پہنچے ہوں جلدی جلدی پوری فصل کاٹ لی جائے پھر پیداوار اٹھا کر بیچ دی جائے اور کسی فقیر کو کچھ نہ ملے دیکھیے کبھی انسان نیکی کے لیے منصوبہ بناتا ہے اور کبھی انسان کسی کو محروم کرنے کے لیے بھی باقاعدہ پلاننگ کرتا ہے تو وہ رات کو یعنی صرف سوئے نہیں تھے وہ ایک منصوبے پر مطمئن ہو کر سوئے تھے قرآن ساتھ ہی فرماتا ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ اس کی تفسیر میں اہل علم نے مختلف پہلو بیان کیے ایک معروف تشریح یہ ہے کہ انہوں نے اپنے منصوبے کو اللہ کی مشیت کے ساتھ وابستہ کرتے ہوئے انشاءاللہ بھی نہ کہا اور بعض مفسرین نے اسے اس معنی سے بھی جوڑا ہے کہ انہوں نے کسی مسکین کے لیے کوئی حصہ مستثنا رکھنے کا ارادہ نہیں کیا تھا دونوں صورتوں میں ایک ہی ذہنیت سامنے آتی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے فصل ہماری ہے منصوبہ ہمارا ہے اور اب کوئی اسے بدل نہیں سکتا لیکن انسان منصوبہ تو بناتا ہے اور کائنات کا فیصلہ اس کے منصوبے سے بڑا ہوتا ہے
0: یہ لائن مجھے بہت گہری لگتی ہے طلب بھائی پلان کرو لیکن اپنے پلان کو خود مت بناؤ ہم کل کے لیے پلان ضرور کریں کریئر پلان انویسٹمنٹ پلان فیملی پلان وغیرہ وغیرہ سب کریں لیکن دل میں یہ یقین بھی رہے کہ نتیجہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے ایک اور بات اگر ہماری پلاننگ کا مقصد ہی کسی کو حق سے محروم کرنا ہو تو پھر ہمیں رک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنی انٹیلیجنس کو غلط کام کے لیے تو یوز نہیں کر رہے ہیں بھائی اسمارٹ ہونا اور ریچیس ہونا ایک ہی بات نہیں ہوتی
1: بالکل سر بھائی اگر ہم واقعے کی طرف دیکھیں تو یہ سب بھائی رات کو اپنے منصوبے پر بڑے مطمئن ہو کر خوش تھے سوئے تھے انہیں یقین تھا کہ صبح آئے گی ہم باغ پہنچیں گے ساری پیداوار ہمارے قبضے میں ہوگی غریبوں کو خبر بھی نہیں ہوگی لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ صبح آنے سے پہلے فیصلہ آ چکا ہے اللہ فرماتا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ جب وہ سو رہے تھے تو تمہارے رب کی طرف سے گردش کرنے والی آفت اس باغ پر آ گئی وہ اپنے گھروں میں تھے باغ سے دور اپنے منصوبوں میں مطمئن آنے والے منافع کے تصور میں خوش لیکن رات کی خاموشی میں باغ کا نقشہ بدل گیا قرآن پھر کہتا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ اور صبح ہوتے ہوتے وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی اجڑی ہوئی سیاہ پڑی زمین وہ پھل جنہیں انہوں نے غریبوں سے بچانا چاہا تھا خود ان کے ہاتھ بھی نہ آئے
0: اور یہاں کہانی سیدھا ہمیں ہمارے دل کو ہٹ کرتی ہے کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں دوسرے کا حصہ روک لوں گا تو میرے پاس زیادہ بچ جائے گا لیکن برکت صرف کیلکولیٹر سے نہیں ہوتی بھائی کبھی پیسہ ہوتا ہے مگر سکون چلا جاتا ہے کبھی بزنس ہوتا ہے مگر ٹرسٹ چلا جاتا ہے کبھی پراپرٹی ہوتی ہے مگر فیملی ٹوٹ جاتی ہے کبھی انکم بڑھتی ہے مگر خرچ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے سوال صرف یہ نہیں کہ میرے پاس کتنا ہے سوال یہ بھی ہے کہ جو میرے پاس ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے برکت رکھی ہے یا نہیں اور شاید اس کہانی کا پہلا پریکٹیکل لیسن یہی ہے کہ نعمت کو اپنی ملکیت سمجھ کر مت جیو اسے اللہ سبحانہ وتعالی کی امانت سمجھ کر جیو
2: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
1: जी सामने कराम, फजर हुई, सुबह का वक्त आया, एक भाई ने दूसरे को जगाया। कुरान कहता है फतना दव मुस्बहीन, वो सुबह सवेरे एक दूसरे को पुकारने लगे, फिर उन्होंने कहा अनिगदु अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, अगर फसल काटनी है तो सुबह सवेरे अपने खेत की तरफ निकलो। तो लफ्ज उगदु में सुबह के इब्तदाई वक्त की तरफ इशारा है, यानी जल्दी निकलो, देर ना होने पाए। वजह क्या थी? वो जानते थे कि हर साल गरीब और मिस्कीन भी फसल के मौके पर वहां आते हैं, क्योंकि उनके वालिद ने उन्हें उस खैर का आदि बनाया था। अब बेटों का मकसद था उनसे पहले पहुंच जाओ, फसल काट लो, सारा माल उठा लो और किसी को खबर न होने दो। उन्होंने फसल काटने के आलात तैयार किए, टोकरियां ली, औजार उठाए और खुशी खुशी निकल पड़े।
0: यहाँ एक और प्रैक्टिकल पॉइंट है तला भाई, कभी हम किसी गलत काम को करते हुए भी एक्साइटेड होते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हर सक्सेसफुल प्लान मोरली सक्सेसफुल नहीं होता। अगर मेरी प्लानिंग से किसी कमजोर का हक मर रहा हो या मारा जा रहा हो तो मेरा प्लान का एफिशिएंट होना कोई कामयाबी नहीं है। बिजनेस में हो, फैमिली इनहेरिटेंस में हो, ऑफिस पॉलिटिक्स में हो, हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि प्लान काम करेगा या नहीं, ये भी देखना है कि प्लान ठीक है या नहीं।
1: सर भाई, ये वाकई में यहाँ एक बड़ा दर्दनाक तजाद है। अब देखिए, एक तरफ बाप जो नेक इंसान था, उसी बाग से खुद भी खाना खाता था, बच्चों को भी खिलाता था और गुरबा और मजाकिन का हक भी निकालता था। यानी एक ही घर में एक नस्ल ने माल को बरकत समझा और दूसरी ने उसे सिर्फ मिल्कियत समझ लिया। बाज़ औक़ात जिंदा दिल इंसान से भी ऐसे वारिस पैदा हो सकते हैं जिनके दिल अखलाक के एतबार से मुर्दा हो। एक साले बाप की नेकी औलाद को रास्ता दिखा सकती है, मगर चलना फिर भी औलाद को खुद पड़ता है।
0: और इसीलिए पेरेंट्स के लिए भी एक रिमाइंडर है, सिर्फ प्रॉपर्टी छोड़कर मत जाइए, वैल्यूज भी उनके साथ छोड़िए। और बच्चों के लिए, अगर आपको वालिदैन से माल मिला है तो सिर्फ उनके बैंक बैलेंस इनहेरिट मत कीजिए, उनका अच्छा करेक्टर भी इनहेरिट कीजिए। वरना हो सकता है कि जनरेशन ने बरकत बनाई हो और अगली जनरेशन सिर्फ एसेट बेचकर खत्म कर दे।
1: फिर कुरान उनके चलने का अंदाज भी बयान करता है, यानी जब वो बाग की तरफ जा रहे थे, فانطلقوا وهم يتخافتون, वो चल पड़े और आपस में दबी दबी आवाज में बातें कर रहे थे, यानी कोई सुन न ले, गरीबों को खबर न हो जाए। रास्ते में वो एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे और वो सरगोशी क्या थी? कुरान कहता है अल्लाह يدخلنها اليوم عليكم مسكين, आज तुम्हारे पास बाग में कोई मिस्कीन दाखिल ना होने पाए। हाँ जी, ख्याल रखना। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आज हम कम देंगे, बात इतनी इतनी पर भी हम कह लेते कि भाई उन्होंने नीयत तो की थी देने की, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि कोई मिस्कीन अंदर ना आ जाए, यानी दरवाजा ही बंद।
0: और यहाँ मुझे लगता है कि हमें अपने दिल का दरवाजा चेक करना चाहिए। कभी किसी जरूरतमंद का फोन देखकर हम कॉल को फौरन रिजेक्ट कर देते हैं, कभी किसी रिश्तेदार को देखकर कहते हैं कि भाई फिर पैसे मांगने लगेगा शायद, कभी किसी वर्कर का हक देना मुश्किल लगता है, लेकिन अपनी लग्जरी का खर्च आसान हमें हमेशा लगता है। तो जरूरी नहीं कि हर डिमांड जेन्युइन हो, लेकिन अगर हमारे दिल का डिफॉल्ट मोड ही ये हो गया कि किसी को कुछ नहीं देना, तो फिर प्रॉब्लम सिर्फ वॉलेट में नहीं, प्रॉब्लम हमारे दिल में है।
1: कुरान आगे कहता है वक़द वाला हर दिन कादरीन, वो सुबह सवेरे पूरे अज़्म और कुदरत के एहसास के साथ निकले, उनके कदम मजबूत थे, उनके हाथों में औजार थे, उन्हें यकीन था कि अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता। गोया ज़हन में ये था कि ज़मीन हमारी, फसल हमारी, औजार हमारे और आज का दिन भी हमारा, मगर इस पूरी मुसावात में उन्होंने एक हकीकत भुला दी थी और वो हकीकत रब की हकीकत है।
0: और कभी कभी हम भी यही कर रहे होते हैं, बल्कि ज्यादातर अब आजकल हमारी जिंदगी में ऐसे ही मकाम आते हैं कि डिग्री मेरी, एक्सपीरियंस मेरा, कनेक्शंस मेरे, पैसा मेरा, प्लान मेरा, फिर हमें लगता है कि रिजल्ट भी मेरा होगा। लेकिन एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड इवेंट पूरा इक्वेशन बदल देता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कॉन्फिडेंस रखें लेकिन एरोगेंस नहीं, प्रिपरेशन रखें लेकिन तवक्कुल के साथ।
1: अब वाकई में हम ये देखते हैं कि वो पांचों भाई आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ वो दरमियानी नस्बतन बेहतर सोच रखने वाला भाई वो भी था जिसने उन्हें पहले नसीहत की थी। शायद उसके दिल में अब भी उम्मीद हो कि आखिरी लम्हे ये लोग रुक जाएं। कभी नसीहत करने वाले का काम सिर्फ एक बात कह देना नहीं, बल्कि वो आखिरी लम्हे तक खैर चाहता है और वो उनके साथ रुके रहता है। और ये भी एक खूबसूरत अखलाकी सबक है कि जब तक दरवाजा खुला है इसलाह की उम्मीद न छोड़ो। वो बाग के करीब पहुंचे, कल तक वो जगह दूर से ही पहचानी जाती होगी, सब्ज दरख्त, पके हुए फल, रंग और एक पूरी जिंदा दुनिया। लेकिन आज वो पहुंचे तो सामने सियाह जली हुई जमीन थी। एक लम्हे के लिए किसी को यकीन ही ना आया। कुरान कहता है فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ, जब उन्होंने बाग को देखा तो कहने लगे हम रास्ता भूल गए हैं, ये हमारा बाग नहीं हो सकता।
0: इमेजिन कीजिए तला भाई, आदमी इतना बड़ा शौक देख के सबसे पहले रियलिटी ही को रिजेक्ट कर दे। सुभान अल्लाह। कभी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि भाई कोई खराब खबर आती है तो पहला रिएक्शन होता है नहीं, ये हो ही नहीं सकता, शायद कोई मिस्टेक हो गई हो, रिपोर्ट गलत हो, अकाउंट चेक करो। इंसान का दिमाग पहले लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर भाई, वो शायद वापस पलटे हो, रास्ते को देखा होगा, करीब की पहाड़ियों को देखा होगा, आसपास के बागात पहचाने होंगे, एक दूसरे से पूछा होगा हम कहाँ गए, क्या हमने गलत मोड़ लिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत ने उनके सामने खुद को वाजे कर दिया, रास्ता गलत नहीं था, मकाम वही था, जमीन वही थी, बाग भी वही था, बदली हुई चीज उनकी किस्मत थी। और फिर कुरान उनके दूसरे जुमले को महफूज करता है, बल नहनु महरूमून, अरे हम तो जाये नहीं, हम रास्ता नहीं भूले, हमें तो महरूम कर दिया गया है या हम महरूम कर दिए गए हैं। लफ्ज है महरूमून, तो फसल गई, फल गए, दौलत गई, आने वाला मुनाफा गया, वो बाग जिसे वो यमन के बेहतरीन बागों में समझते थे उनकी आंखों के सामने उजड़ी हुई जमीन बन चुका था।
0: और महरूम सिर्फ पैसा खोने का ही नाम नहीं, कभी आदमी के पास पैसा होता है लेकिन मोहब्बत से महरूम होता है, कभी पोजीशन होती है लेकिन इज्जत से महरूम होता है, कभी घर बड़ा होता है लेकिन सुकून से महरूम, और कभी इनकम बहुत होती है लेकिन बरकत से महरूम। इसलिए हमें दुआ सिर्फ ये नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह सुभान व तआला मुझे ज्यादा दे, दुआ ये भी होनी चाहिए कि या अल्लाह जो दे उसमें बरकत दे और मुझे उस नेमत का हक अदा करने वाला बना।
1: और जी सामने कराम, जो समझदार भाई की बात हम बार बार कह रहे थे, तो वो भाई अब उसी लम्हे बोलने लगता है जो शुरू से उन्हें समझा रहा था। अब कुरान ने उन्हें औसतुहुम कहा है, अल्लाह फरमाता है قال اوسطهم انما قل لكم لولا تسبحون, उनमें जो निस्बतन बेहतर और मुतवाजन सोच रखने वाला था उसने कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं करते, यानी क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था, क्या मैंने नहीं कहा था कि अल्लाह को याद करो, उसका खौफ दिल में रखो, अपनी ख्वाहिश को आखिरी फैसला में समझो और अपने माल में जरूरतमंदों के हुकूक पामाल न करो।
0: बिल्कुल तला भाई, मुझे यहाँ एक और सबक नजर आता है, कभी कभी सही एडवाइस हमें वक्त पर मिल जाती है लेकिन हम उसकी वैल्यू बाद में समझते हैं। जब वालदैन समझाते हैं किसी सिंसियर दोस्त की बात बुरी लगती है या कोई कलीग हमें वॉर्न करता है तो हम फौरन डिफेंसिव हो जाते हैं, फिर जब नुकसान हो जाता है तो याद आता है उसने तो पहले ही कहा था भाई। इसलिए जिंदगी में सिर्फ वो दोस्त मत ढूंढिए जो हर बात पर हाँ करें, वो शख्स भी कीमती है जो जरूरत पर आपसे कहे ये गलत है।
1: जी बिल्कुल सर भाई, और वाकई में अब पहली मर्तबा उन भाइयों की जबान बदलती है, जो जबान रात को मंसूबा बना रही थी वही जबान इतराफ कर रही है। उन्होंने कहा सुभान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, पाक है हमारा रब, बेशक हम ही जालिम थे। तो ये बहुत अहम मकाम है सर भाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि किस्मत ने हमारे साथ बुरा किया, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मालूम नहीं ये हादसा क्यों हुआ, उन्होंने इल्जाम किसी तीसरे पर नहीं डाला, एक लम्हा एक ऐसा आया कि उन्हें उसका शऊर हुआ इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, अरे हम ही तो गलत थे। तो यहीं से इस्लाह का दरवाजा खुलता है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलती का नाम ही न ले इस्लाह कहां से शुरू होगी।
0: बिल्कुल, और ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर कहते हैं सिचुएशन ही ऐसी थी, सब लोग कर रहे थे, मुझे मजबूर किया गया या उसने पहले गलत किया था वगैरह वगैरह, लेकिन हीलिंग और रिफॉर्म तब शुरू होती है जब आदमी कह सके कि हाँ यहाँ मेरी गलती थी। भाई अपोलॉजी में लेकिन को कम कर दीजिए, और अकाउंटेबिलिटी में एक्सक्यूज को कम कर दीजिए। कभी एक सच्चा जुमला कि मैं गलत था रिश्ता भी बचा लेता है और इंसान का जमीर भी।
1: जी सामने कराम, शायद असाबुल जन्ना की पूरी दास्तान को अगर हम एक मंजर में समेटने की कोशिश करें तो यूं कहा जा सकता है कि एक रात थी वो अमीर थे और गरीबों को महरूम करने का मनसूबा बना रहे थे। एक सुबह थी वो खुद कह रहे थे बल नहनु महरूमून, फिर एक लम्हा आया जब उनके दिल ने इतराफ किया सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, और फिर वो एक दूसरे पर मलामत भी डालने लगे कि भाई तुम्हारी वजह से हुई, तुम्हारी वजह से हुई, फ़क़बल बादुहुम अला बादिन यतलावमून, और फिर उम्मीद ने उन्हें अपने रब की तरफ मोड़ा हसा रब्बुना युब्दिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून। नेमत से गुरूर तक, गुरूर से महरूमी तक, महरूमी से इतराफ तक, और इतराफ से रुजू अल्लाह तक, ये है असहाबुल जन्ना की मुकम्मल दास्तान।
0: और तमाम सामान के लिए बस इतना ही कि आज हम अपनी जिंदगी की किसी एक नेमत को याद करें, पैसा, सेहत, फैमिली, जॉब, नॉलेज, वक्त वगैरह वगैरह, और खुद से ये पूछें कि मैं इस नेमत का शुक्र सिर्फ जबान से कर रहा हूँ या अपने अमल से भी। अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो शायद आज की कहानी ने अपना काम कर दिया।
1: बिल्कुल सर भाई, इसी सोच के साथ हम इसे हल्के के अख्तिताम पर पहुंच चुके हैं और आज की नशिस्त को अगर हम समेटें तो आखिरी बात यही रहेगी कि हम इन वाकयात को हमारी ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश करें। ये नहीं कि भाई ये माजी की दास्तान है और बस ख़त्म, नहीं, बल्कि कुरान आज के लिए भी हमारे लिए मुकम्मल दस्तूर हयात है। तो एक एक वाक़े को हम अपनी ज़िंदगी के जाविये से देखें। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों को पहचानने, उनका शुक्र अदा करने, अपने माल में मोहताजों का हक समझने, खैर की नसीहत कबूल करने, और गलती हो जाए तो सच्चे दिल के साथ उसकी तरफ पलटने की तौफीक अता फरमाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरवर भाई, सामिन इकराम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ रहे।
0: बिल्कुल सही तलब है, और आपका भी बहुत शुक्रिया, और तमाम लिसनर्स का, सुनने वालों का भी दिल से शुक्रिया कि वो इस सफ़र में हमारे साथ रहे। अल्लाह सुभान व तआला हमें कुरान की कहानियों को सिर्फ सुनने की ही नहीं, उससे अपनी ज़िंदगी बदलने की भी तौफीक अता फरमाए।
1: आमीन या रब्बल आलमीन। तो सामिन इकराम, दोबारा मुलाकात होगी कसर कुरान के एक नए हल्के के साथ। तब तक के लिए सरवर और तलहा को दीजिए इजाज़त। मां सलामा।

0: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
2: कुछ मिलेगा यहाँ।
1: और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट,
2: एमओआई वीकली अपडेट,
1: आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर,
2: विद आरजे सरवर।
0: दोहा में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ने सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट कोर्स का इख्तिताम कर दिया है, जिसमें वजारत दाखला के कई अहलकारों के साथ साथ ब्रदर मुल्क सीरिया की वजारत दाखला के अफसरान ने भी शिरकत की। कोर्स में सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट के तसव्वुर और सिक्योरिटी खतरों की पहचान, जाँच और तजजिये करने के तरीकों पर तफसीली ट्रेनिंग दी गयी। इसका मकसद शिरकत करने वालों की सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाना, उनकी तैयारी को मजबूत करना और सिक्योरिटी परफॉर्मेंस की कारकर्दगी में इजाफा करना था। कोर्स के अख्तिताम पर ब्रिगेडियर राशिद मोहम्मद अल हाजरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ने शिरकत करने वालों को सनदें पेश की और उनकी कोशिशों को सराहा। समीन, मैत्राज ऐप के जरिए एम्प्लॉयर पर्सनल स्पॉन्सरशिप तब्दील करने की दरख्वास्त आसान और सहूलत भरे तरीके से जमा करवाई जा सकती है। अगर आप पर्सनल एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयर तब्दील करने की दरख्वास्त देना चाहते हैं तो पहले पिछले स्पॉन्सर की मंजूरी हासिल करें, इसके बाद मैत्राज ऐप के जरिए आसानी से प्रोसेस मुकम्मल किया जा सकता है। होम पेज से रेसिडेंसी को सिलेक्ट करें, फिर चेंज एम्प्लॉय

बच्चों को हिदायत दें कि स्कूल बस में अपनी मुकर्रर सीट पर बैठें। यकीनी बनाएं कि वो सफर के दौरान सीट बेल्ट बांधा करें। बच्चों को समझाएं कि बस के मुकम्मल तौर पर रुकने से पहले ना सवार हों और ना ही उससे उतरें। सड़क पार करते वक्त गाड़ियों पर पूरी तवज्जो देने की तालीम दें। बस का इंतजार करते वक्त सड़क के किनारे से महफूज फासले पर खड़े रहने की भी तरकीब देनी चाहिए। वजारत दाखिला का कहना है कि आपका तआवुन हमारे बच्चों के लिए महफूज और पुरअमन सफर को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। नए तालीमी साल के आगाज के साथ जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने स्कूलों के गिर्द अपनी फील्ड कोशिशों में इजाफा कर दिया है ताकि तलबा की सलामती और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जा सके। नए एकेडमिक ईयर के शुरू होते ही सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफा हो जाता है और हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत और ट्रैफिक की बेहतर रवानी को यकीनी बनाएं। रोड सेफ्टी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की पहली सीढ़ी है, इसलिए स्कूल की वापसी के मौके पर जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने एक मुकम्मल प्लान तैयार किया है ताकि तैयारी और रेडीनेस के मेयार को मजीद बेहतर बनाया जा सके। इस प्लान के तहत अहम सड़कों और स्कूलों के करीब ट्रैफिक की मौजूदगी को मजबूत बनाया गया है जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, रश कम होगा और तलबा महफूज तरीके से स्कूल पहुंचकर घर वापस लौट सकेंगे। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने वालदैन और तमाम ड्राइवर से भी तआवुन की दरखास्त की है और कहा है कि बराहे करम ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें, स्कूलों के करीब रफ्तार कम रखें, तलबा और पैदल चलने वालों पर खास तवज्जो दें और गैर कानूनी पार्किंग या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। वजारत दाखिला का कहना है कि आइए हम सब मिलकर बच्चों के लिए स्कूलों की वापसी को एक महफूज और कामयाब तालीमी साल का आगाज बनाएं। हमारे बच्चों की सलामती हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वजारत दाखिला के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने वजारत सेहत आम्मा के मुतालिका इदारों के तआवुन से एक यूरोपियन कौमियत से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जो मुल्क की मुतालिका अथॉरिटीज से दरकार लाइसेंस हासिल किए बगैर मेडिकल और कॉस्मेटिक सरगर्मियों में मसरूफ थे। ये गिरफ्तारी उन इत्तलात की बुनियाद पर अमल में आई जिनमें बताया गया था कि एक गैर लाइसेंस्ड मरकज में मेडिकल और कॉस्मेटिक खिदमात फराहम की जा रही हैं। तहकीकात और मालूमात की तस्दीक और पब्लिक प्रोसिक्यूशन से दरकार इजाजत हासिल करने के बाद मुलजमीन को इन सरगर्मियों के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात का एतराफ भी कर लिया है। तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई डिवाइसेस, औजार और मेडिकल सप्लाईज भी बरामद की गई जो इन सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रही थी। अब मुलजमीन और जब्त शुदा अशिया को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मुतालिका पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। वजारत दाखिला और वजारत सेहत आमा ने आवाम से अपील की है कि किसी भी मेडिकल या कॉस्मेटिक सर्विस से फायदा उठाते वक्त पहले प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज और क्लिनिक्स के लाइसेंस की तस्दीक कर लें और यकीन कर लें कि वहां काम करने वाले हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के पास मुतालिका अथॉरिटीज से जारीशुदा लाइसेंस मौजूद हैं या नहीं ताकि अवामी सलामती को बरकरार रखा जा सके और ऐसे अफराद या इदारों के मामलात से बचा जा सके। वजारत दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्थानी ने अपने फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रेंच रिपब्लिक के वजीर अदल गिराल्ड डर्मेनिन से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दो तरफा तआवुन और उसे मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई। खासतौर पर कानून और सिक्योरिटी के शोबों में तआवुन को बढ़ाने पर जोर दिया गया और दोनों ही जानिब से बाहमी दिलचस्पी के कई दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने अपनी बैक टू स्कूल अवेयरनेस कैंपेन के तहत अल अंदलुस एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में वाकई अल अंदलुस प्रिपेरेटरी स्कूल फॉर बॉयज का फील्ड दौरा मुनज्जम किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक ब्रिगेडियर जबर अली अल कुबैसी और डायरेक्टोरेट के कई अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान स्कूल का फील्ड टूर कराया गया और असातज़ा, इंतजामी अमले और तलबा से मुलाकात की गई। इसके साथ एक इंटरैक्टिव अवेयरनेस लेक्चर भी पेश किया गया जिसमें ट्रैफिक सेफ्टी के कवायद, स्कूल बस के इस्तेमाल के उसूल, साइकिल इस्तेमाल करने वालों के लिए हिफाजती हिदायत, फुटपाथ पर चलने और महफूज तौर पर सड़क पार करने के तरीके

0: लोगों पर रोशनी डाली गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक ब्रिगेडियर जाबर अली अल कुबैसी ने कहा कि इस दौरे का मकसद तलबा में ट्रैफिक सेफ्टी का शऊर बढ़ाना और महफूज रवैयों को फरोग देना है। उन्होंने तलबा को स्कूल के अंदर और बाहर हिफाजती कवायद की पाबंदी की तरगीब दी ताकि एक महफूज तालीमी माहौल को यकीनी बनाया जा सके। सिविल डिफेंस के मैदान में मुश्तरका तआवुन और हम आहंगी को मजबूत बनाने के सिलसिले में रियासत कतर और ब्रदर मुल्क मुमलकत सऊदी अरबिया की हुकूमतों के दरमियान सिविल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को फ़ाल बनाने के लिए कायम कमेटी का पहला इजलास रियाद में मुनक़द हुआ। कतरी वफ्द की क़यादत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस मेजर जनरल हमद उस्मान अल ज़ुहैमी ने की, जबकि सऊदी वफ्द की क़यादत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस मेजर जनरल डॉक्टर हमूद बिन सुलेमान अल फरज ने की। इजलास में एजेंडे में शामिल मौजूदात पर बहस की गई और उनके हवाले से मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गईं। इन सिफारिशात का मकसद तैयारी और रेडीनेस की सतह को बुलंद करना, फील्ड ऑपरेशंस की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, तजुर्बात के तबादले को फरोग देना और हंगामी सूरत हाल से निमटने के मैकेनिज्म को मजीद तरक्की देना था। पुलिस एकेडमी के जेर इंतजाम रासल अफान कॉलेज फॉर इमरजेंसी एंड सेफ्टी ने जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स क्लब में कॉलेज के एकेडमिक और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हवाले से एक तारुफी नशिस्त का एहतमाम किया। नशिस्त में प्रेसिडेंट पुलिस एकेडमी मेजर जनरल अब्दुलरहमान माजिद अल सुलैथी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस कर्नल मोहम्मद अहमद अल मारिफी और मुतालिका इदारों के अफसरान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस नशिस्त का मकसद कॉलेज की जानिब से यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकशायर के तआवुन से पेश किए जाने वाले एकेडमिक और ट्रेनिंग प्रोग्राम का तारुफ करवाना और इमरजेंसीज, क्राइसिस और फायर सेफ्टी के शोबों में महारत याफ्ता कौमी अफराद की तैयारी और तरबियत में कॉलेज के किरदार को उजागर करना था। ये प्रोग्राम जदीद तरीन बैनुल अक्वामी मेयारों और बेहतरीन अमल के मुताबिक तैयार किए गए हैं। ये प्रोग्राम्स तलबा की एकेडमिक और पेशावराना सलाहियतों को फरोग देने, रिस्क मैनेजमेंट और वाकयात और हंगामी सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटने की सलाहियतों को बेहतर बनाने और प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन और सेफ्टी की सतह को बुलंद करने में मदद देते हैं। इन प्रोग्राम्स का मकसद मुतालिका इदारों की मैदानी जरूरियात को पूरा करना, सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम की हिमायत करना और मुख्तलिफ हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कौमी सलाहियतों को मजबूत बनाना है। रियासत कतर ने रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरीट के मरकज पर मुनक्किद गल्फ सिक्योरिटी स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग 2026-2030 के नाफिज की पैरवी करने वाली कमेटी के दूसरे इजलास में शिरकत की। वजारत दाखिला के वफ्द की क्यादत स्टाफ कर्नल मोहम्मद बिन मुबारक अल्फानी, असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने की। इजलास में स्ट्रेटजी के अहदाफ पर अमल दरामद के प्लान का जायजा लिया गया, खासतौर पर कानून और सिक्योरिटी पॉलिसीज, मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशंस, तआवुन और हम आहंगी और ट्रेनिंग और सलाहियतों को बढ़ाने के शोबों पर बहस की गई। इजलास का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए GCC ममालिक के दरमियान मुश्तरका कोशिशों को मजबूत बनाना और सिक्योरिटी तआवुन को फरोग देना था। वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखला शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी ने जमहूरिया इस्लामिया पाकिस्तान के वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तआवुन के शोबों और उन्हें मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दोनों जानिब से मुश्तरका तआवुन को बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से कई उमूर पर भी बातचीत की गई। रियासत कतर ने रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरीट के मरकज पर मुनक्किद कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जनरल ऑफ सिविल डिफेंस ऑफ द GCC स्टेट्स के 35वें इजलास में शिरकत की। वजारत दाखिला के वफ्द की क्यादत मेजर जनरल हमद उस्मान अल ज़ुहैमी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस ने की। इजलास में एजेंडा में शामिल कई अहम मौजूदात पर बहस की गई और उनके हवाले से मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गई। ये सिफारिशात GCC ममालिक के दरमियान सिविल डिफेंस के शोबे में तआवुन और हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई हैं। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी ने जमहूरिया सूडान के वजीर दाखला लेफ्टिनेंट जनरल बेबिकर सामरा मुस्तफा अली से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई। खासतौर पर सिक्योरिटी के शोबों में मुश्तरका तआवुन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों जानिब से बाहमी दिलचस्पी के कई अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, एक खूबसूरत सुन्नत के बारे में आप सब जानते हैं और वो है मिसवाक करना। इस्लाम इबादत के साथ साथ पाकीजगी और खूबसूरती का भी दीन है। अल्लाह ताला पाक है और पाकीजगी को पसंद फरमाता है, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म, लिबास, माहौल और खास तौर पर मुंह की सफाई पर बहुत जोर दिया है। जरा सोचिए, अगर कोई शख्स हमारे करीब बैठे और उसके मुंह से बदबू आए तो हमें कैसा महसूस होगा? यकीनन इंसान को इससे तकलीफ होती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम न सिर्फ खुद को पाक रखें बल्कि दूसरों के लिए भी राहत का सबब बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कई मर्तबा मिसवाक फरमाया करते थे, नमाज से पहले, नींद से पहले, नींद से उठने के बाद, खाना खाने के बाद। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह की सफाई का खास एहतमाम फरमाया करते थे। तो ये सिर्फ जिस्मानी सफाई ही नहीं बल्कि रूहानी पाकीजगी भी थी, क्योंकि जिस जबान से कुरान पढ़ा जाए, जिस मुंह से अल्लाह का जिक्र हो, उसका पाक और खुशबूदार होना भी ईमान की खूबसूरती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्कत का खौफ ना होता तो मैं हर नमाज के वक्त उन पर मिसवाक लाजिम कर देता। सामिन किराम, जरा गौर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहमियत के साथ मिसवाक का जिक्र फरमाया। आज हम महंगे टूथपेस्ट, ब्रश और माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी बात है। इस्लाम सफाई से मना नहीं करता बल्कि सफाई को पसंद करता है, लेकिन मिसवाक की अपनी अलग बरकत है और इस सुन्नत के कुछ अलग मेडिकल फवायद हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि मिसवाक ये सुन्नत है। जब कोई शख्स मिसवाक हाथ में लेता है तो वो गोया अपने दिल में एहसास पैदा करता है कि मैं अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी में जगह दे रहा हूँ। चाहिए सामीन, आज हम एक आसान सा अहद करते हैं। अगर हम दिन भर में कई बार मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या सिर्फ एक बार मिसवाक इस्तेमाल नहीं कर सकते? शायद यही अमल अल्लाह के हाँ हमारी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत बन जाए। अपने घर में मिसवाक रखिए, अपने बच्चों को उसकी आदत सिखाइए और कम अज कम दिन में एक मरतबा इस खूबसूरत सुन्नत को जिंदा कीजिए। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हम बहुत ही एक अहम मौजू अपनाने जा रहे हैं, यानी मौसम है सर्दी का, तो सर्दियों में हम किस तरह की गिज़ा इस्तेमाल करें कि हम अपने आप को सेहतमंद रख सकें, क्योंकि सेहत हमारे लिए बहुत अहम है। हेल्थ फॉर ऑल लिसनर्स, जब कोई सर्दियों का जिक्र करता है तो आपका क्या ख्याल है कि हम ये समझते हैं कि

दिल्ली के लिए ये एक ईंधन का काम करती हैं, इसलिए बहुत सारे घराने जो हैं वो गंदम का आटा, मूंग की दाल और इस तरह से दलिया, बादाम वगैरह जो हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ रेसिपीज से इस तरह के खाने बनाते हैं। पालक और लड्डू, ताज़ा अनाज और इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि वो सर्दियों में ज़्यादा खाए जाते हैं, सर्दियों की लज्जत समझी जाती हैं। इसी तरह से मकई और बाजरे की रोटियां गर्मी देने वाली हैं और वो एक ख़ास जो खूबी भी रखती हैं। जब हम फलों की बात करते हैं तो उसमें पपीता है या पाइनएप्पल है, वो गर्मी फराहम करने के बारे में बहुत अहम है। इसी तरह आंवला जो है वो विटामिन सी से भरपूर है और फिर हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है, उससे हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि सर्दियों में आंवले का रस और आंवले का मुरब्बा वो बहुत ही अच्छी मिकदार में दस्तियाब भी होता है और खाया भी जाता है। और ये एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है तवानाई का, उसमें B3 और सी, जो विटामिन सी है वो भी मौजूद होता है। और खजूरें नेचुरली गर्म हैं और सर्दी के महीनों में उन्हें ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। ना सिर्फ ये वाई फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन्स का अच्छा ज़रिया हैं, बल्कि इन्हें बर्फ़ी या उनका जो मिल्क शेक है या आप स्मूदी में भी शामिल करके खा सकते हैं। जब हम मसालों की बात करते हैं तो सर्दी के मौसम में आप उन्हें अच्छी तरह से ले सकते हैं। उसमें सरसों हैं, हींग है, ब्लैक पेपर्स हैं, मेथी है, अजवाइन है या डल है, और इस तरह इस्तेमाल किए जाने वाले जो मसाले हैं वो गर्म होते हैं। सरसों, अजवाइन और सोया के बीज सर्दियों की खांसी और फ्लू के लिए एक कीमती मेडिसन है। भूख और हाजमे को तेज़ भी करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, और इसी तरह से मेथी हमारी बोन्स और जोड़ों के मसाले में बहुत फ़ायदेमंद है जो सर्दियों में ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं। हल्दी ख़ास तौर पर ताज़ा, हल्की और सुनहरी पीली किस्म की होती है, अदरक से मुशाहबत रखती है, एक ताकतवर एंटी माइक्रोबियल है जो कि कुव्वत मुदाफ़त को ज़्यादा करती है। तुलसी एक जड़ी बूटी है जो नज़ला, ज़ुकाम और बुखार से हमें बचाती है और इस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखती है। ख़ास तौर पर जो सर्दियों की एक मसला जो है वो है फ्लू, और उससे भी दूर रखती है। अदरक जो है वो भी गर्म है और उसे अपने खानों में इस्तेमाल करना भी आम है, जबकि अदरक को यानी जिंजर को चाय, दाल और सब्जियों में शामिल किया जा सकता है। ड्राई जिंजर यानी खुश अदरक का जो पाउडर है, गुड़ और घी के साथ छोटे छोटे लड्डू बनाकर सर्दियों के मौसम में बेहतरीन हो सकते हैं, और ये कि सर्दी के जो मसाइल हैं उनसे हम निपट भी सकते हैं। इसी तरह से जैसे तेल का जिक्र किया कि जब आप सैलड बनाते हैं या ब्रेड बना लेते हैं या पास्ता है या पिज़्ज़े पर उसे छिड़कते हैं तो तिल या तिल का जो गर्म जोशी वाले मयार को भी देख सकते हैं कि वो सर्दियों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सर्दी का मौसम हमारी वर्जिश के जो मामूलात हैं उसमें कुछ खलल डाल सकता है, यहाँ तक कि आपका मूड भी कुछ हो सकता है कि वो लो हो, और जो कि स्ट्रेस फिर बोरियत की वजह से ज़्यादा खाने का बायस भी बन सकता है। तो अपनी खुराक में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल कीजिए, ये सेरोटोनिन को मतवाजन रखने में मदद करेगा। यानी अल्लाह ताला ने एक ऐसा केमिकल है बनाया है जो दिमाग को पुरसकून करने वाला है, और कम खून में शुगर की वजह से भूख भी आपको जो है वो ज़्यादा लग सकती है। एक बैलेंस्ड डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। बेहतरीन तवाज़न 1/3 प्रोटीन और 2/3 सब्जियाँ और सैलड है। अपनी तर्ज ज़िंदगी पर तवज्जो दीजिए। देर तक जागना, रात को काम करना, बेकायदा जो है वो वक्त पर खाना खाना, यानी वक्त पर खाना जो है वो हम देखते हैं कि आप रेंडमली खाना खा रहे हैं, किसी भी वक्त तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस्म को तनाव और थकावट से दोचार करना, दिन के वक्त ज़्यादा सोना, ये सब कुछ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे जो जिस्म की ताकत है उसको मुतासिर कर सकता है। इस तरह से हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए आप इस तरह से समझौता कर

0: best of shows on Urdu Radio FM 107. Dil Se Desi.
1: आइए भाई साहब, ये दुकान खुल चुकी है। एक व्हाट्सएप जो जिंदगी बदल दे, एक व्हाट्सएप जो जिंदगी बदल दे। एफएम 107 पर दोहा वाला कबीर। एक व्हाट्सएप। भाई साहब उधारी नहीं चलेगी, सॉरी बोरिंग का टाइम है। अभी सुबह शटर खुला है दुकान का, अभी नहीं। आइए भाई साहब, एक व्हाट्सएप। गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप 666-22107 पर, 666-22107 पर आइए।

0: हायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप लेकिन आप गाना बहुत जरूरी है हमारे व्हाट्सएप पे भाई साहब गाड़ दो मैसेज 666-2107 नंबर है मैसेज मैसेज सुबह सुबह आते तो अच्छा लगता है एनर्जाइज लगता है मैं पता है रास्ते में मैं एक वीडियो देखता आ रहा था उसमें एक बंदा पता किसी का बर्गर बना रहा था आपको पता है लेट मी टेल यू उसने कहा बढ़िया ब्रेकफास्ट है जैक फ्रूट बर्गर भाई साहब ऊपर से आखिर में बोल रहा उसने पता क्या बोल रहा कह रहा है चिकन जैसा लगेगा अब भाई मैं चिकन खा लूंगा ना जैक फ्रूट का बर्गर कौन खाता है तो ऐसा हो रहा है दुनिया में पर कोई बात नहीं आप चाय के साथ तैयार है मैं अपने चाय के थर्मस के साथ तैयार हूँ भाई बहुत ही क्यूट सा छोटा सा थर्मस है मेरे पास बढ़िया उसमें 5 कप निकलते हैं चाय मजा आ जाते हैं भाई साहब ओके आप तैयार है सो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दूंगा मैं इस कहानी का मकसद किसी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं कहानी किसी के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हूं ना ही कभी देगा लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इसलिए बहुत बहुत हैरत अंगेज कहानी है ये और मैं चाहता हूं कि आप इत्मीनान से सुने अगर आप गाड़ी रोक के सुन रहे तो आपको डबल ट्रिपल में जा जाएंगे वरना ड्राइव करते हुए प्लीज ड्राइव स्लोली एंड सेफली ठीक है ऑल राइट तो आज का जो किस्सा है ये कुछ अलग किस्म का किस्सा है ध्यान दीजिएगा हर एक डिटेल पे शुरू करता हूं मैं 1920 एम्स्टर्डम से

साल 1920 एम्स्टर्डम। एक बंदा था जिसका नाम था हैंस वैन मेगोरन। ये पेशे से पेंटर था, पेंटिंग वगैरह बनाया करता था और जो भी बनाता था अपना दिल निकाल कर रख देता था कैनवस पे। और इसी एरा में पूरी दुनिया दीवानी हो रही थी यूरोप में स्पेशली मॉडर्न आर्ट की। पिकासो के फ्रैक्चर्स, कैंडिंस्की के जो पेंट, उनका जो आर्ट वर्क था, ये उस वक्त के जीनियसेस थे। लोग दीवाने हो रहे थे इनके पीछे। और हैंस जो था, हैंस वैन मेगोरन, वो पेंट कर रहा था, एक ऐसे आर्टिस्ट को फॉलो कर रहा था जो कई जमाने पहले हुआ करता था, जिनका नाम था वर्मेयर, वर्मेयर रिम्बार्ट। और उनकी वो आर्ट की कॉपी बनाया करता था नए जमाने के हिसाब से। फ्लॉलेस स्किल, कोई देखेगा तो ये बोलेगा यार क्या कॉपी किया है भाई। और प्रॉब्लम यही थी कि लोग बोल रहे हैं क्या कॉपी किया है भाई। तो जो क्रिटिक्स थे उसकी पेंटिंग्स को देखते थे, हैन वैन की, और उसकी पेंटिंग को देख के ये कहते थे कि यार बंदे में बात तो है, क्या पेंट करता है। इस वजह से उससे गैलरीज मिलने लगी, उसको आर्ट दिखाने का मौका मिलने लगा। और फिर आया एक मोड़, एक ऐसा क्रिटिक जिसने बहुत ही दर्द भरी बात कही थी। उसने हैंस को बोला कि हाँ पेंटिंग वेंटिंग बढ़िया है तुम्हारी, ओरिजिनलिटी नहीं है यार इसमें, बात नहीं है। अब ये जो लव्स थे ये तलवार की तरह उसके दिल पे लगे, छुरी भी नहीं, तलवार की तरह। मतलब इसका ये हुआ कि सामने वाले को बोला कि भाई तुम क्रिएटिव नहीं हो बिल्कुल भी। किसने बोला तुम पेंटिंग वेंटिंग अच्छी करते हो? टेक्निकली ठीक हो मगर क्रिएटिवली जीरो हो। और 1920 में अगर ऐसा बोल दिया जाए किसी पेंट करने वाले को तो समझ लीजिए उसका करियर खत्म। आपको लोग कॉपी कह देंगे, आपको लोग बोलेंगे कि आप क्राफ्ट्समैन तो ठीक है, आर्टिस्ट नहीं है यार, बात नहीं है तुम में। और हैंस को भी बहुत बुरा लगा, वो ये क्रिटिसिज्म झेल ही नहीं पा रहा था। हर आर्टिस्ट के अंदर, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, एक किस्म का ईगो होता है, ठीक है। आर्टिस्ट थोड़ा सा ईगोस्टिक और थोड़ा सा सनकी होता है। और राइट अमाउंट ऑफ ईगो एक आर्टिस्ट के अंदर होना भी जरूरी है, ये भी जान लीजिए। हाँ, हैंस भी इसी जमात का था। तो हुआ ये कि वो क्रिटिसिज्म ले नहीं पाया, उसके ईगो को हर्ट कर दिया इस क्रिटिक ने। फिर हैंस ने पेंटिंग विंटिंग छोड़ी और सनक में आके एक कॉलम एक अखबार में लिखवाया। उसने लिखा तमाम दुनिया के लिए और उस क्रिटिक के लिए कि इनको इज्जत नहीं है आर्टिस्ट की, मुंह उठा के बस किसी भी पेंटिंग के बारे में कुछ भी बोल दिया। अपने घरों की दीवारों पर टांगी हुई है पेंटिंग्स, उनकी असल अहमियत कुछ है ही नहीं, बस पैसों से तोलते हैं आर्ट को। और ये सब उसने लिखा, पर सुनेगा कौन, आर्टिस्ट की कौन सुनता है, और वो आर्टिस्ट जिसका कोई नाम ना हो, कौन सुन रहा है उसे। तो लोगों ने सुनने के बाद बिल्कुल उसे बेदखल सा कर दिया आर्ट की दुनिया से। बस अपना सामान लपेटा, ब्रश उठाए और अपनी टूटी हुई इज्जत, रेप्यूटेशन, बची कुची लेकर ये वहां से निकल गया। सामान बांध के एम्स्टर्डम की आर्ट की दुनिया से बेदखल होकर बची हुई सेविंग्स के साथ हैंस पहुंचा एक सी साइड विला में इन सदर्न फ्रांस। अब कुछ तो करना पड़ेगा रोजी रोटी के लिए। अब एक आर्टिस्ट को एक ही काम तो आता है, आर्ट, वो क्या करे। अब हैंस ने कहा मैं यहां आ ही गया हूं, क्यों ना यहां पे आने वाले टूरिस्ट के मैं चेहरे बनाऊं। तो उसने पोर्ट्रे बनाना शुरू किए, वही पोर्ट्रे जिसमें सामने एक बंदे को या बंदी को बिठाया जाता है और उनसे कहा जाता है सर ऐसी रहेगा, सर बिल्कुल स्टिल होके बैठिए, और फिर वो पोर्ट्रे बना के उनको देता था। कमाई हो रही थी पर दिल में कहीं एक आग जल रही थी। फ्रांस के अकेलेपन में इस आर्टिस्ट के अंदर कुछ पक रहा था। उसने डिसाइड किया कि मैं इन क्रिटिक से कभी कुछ नहीं मांगूंगा, मगर इनको मैं गलत साबित करके रहूंगा। भाभी सोच रहे होंगे एक मामूली सा आर्टिस्ट जो पोर्ट्रे बना रहा है वो क्या गलत साबित करेगा। आइडिया सुनिए, हैंस का आइडिया था कि वो पुरानी पेंटिंग्स की, ध्यान से सुनिएगा, पुरानी पेंटिंग्स की ऐसी कॉपी बनाएगा कि ओरिजिनल समझ के लोग तारीफें करेंगे। हाँ, वो उसके नीचे अपना साइन नहीं करेगा, ऑब्वियसली पकड़ा जाएगा, तो अपना साइन नहीं।

करेगा, मगर इतनी बढ़िया कॉपी बनाएगा कि लोग उसकी पेंटिंग को देख के मुरीद हो जाएंगे। और उसने डिसाइड कर लिया था कि अपना नाम तो नहीं लिखूंगा, लेकिन जितना मुझे बेइज्जत किया है उसका बदला पूरा लूंगा। जब ये लोग बाहर की दुनिया उसकी पेंटिंग की तारीफ करेगी, वाह वाह ओरिजिनल पेंटिंग की बात ही कुछ और होती है, तो वो निकल के सामने आएगा और बोलेगा, बेटे मैंने बनाई है, कॉपी है ये। तो इन लोगों की इज्जत उसके सामने सातवें आसमान से सीधा फर्श पे आ जाएगी। यही उसकी टेक्निक थी और यही वो सोच रहा था। अब ये इतना आसान नहीं होता, मैं आपसे बोलूंगा कि किसी पेंटिंग की कॉपी बनवा दीजिए, ठीक है, मगर लैब टेस्ट में सामने आ जाएगा साफ कि ये कॉपी है, तो इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा। सदरन फ्रांस में अर्ली 1930s में एक शान से विला के अंदर, जहां से समुद्र दिखता है, खूबसूरत नजारे, वहां पे हैंस अपने कमरे में था और वो ओरिजिनल की कॉपी बनाने की तैयारी कर रहा था। यहां पर वो एक आर्टिस्ट को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था, द लेजेंडरी होएनस वर्मीयर। वर्मीयर जो थे वो साहब 17th सेंचुरी के डच मास्टर थे। और उन्हीं को क्यों चूज किया आप सोच रहे होंगे, पिकासो वगैरह चूज कर लेता इनके नाम वाम है। तो उसने इसलिए चूज किया वर्मीयर को क्योंकि उनकी सिर्फ 40 नोन पेंटिंग है दुनिया में जो वो पीछे छोड़ के गए हैं, और सारी की सारी पेंटिंग्स दुनिया के हाथ अभी भी नहीं लगी, जो बहुत रेयर है, वो बहुत बहुत कीमती है। आर्ट के हिस्टोरियंस तो इन पेंटिंग्स को खजाना मानते हैं, बहुत से पेंटिंग्स की तलाश में अभी भी लगे हुए हैं कि इटालियन पीरियड वाली जो पेंटिंग्स होती है, आपको तो पता ही है पेंटिंग्स की लोग कैसे बात करते हैं, माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ये वही लोग थे। आर्ट की दुनिया को ये पेंटिंग्स चाहिए थी, वर्मेयर की पेंटिंग, और हैंस उन्हें वही देना चाहता था। उसने सबसे पहले वर्मेयर की पेंटिंग्स के स्टाइल को पढ़ा, एकदम किसी हाई प्रोफाइल सर्जन की तरह अपना दिमाग लगाया। उसने देखा कि इसमें स्ट्रोक्स कैसे यूज किए गए हैं, कैसे उनकी पेंटिंग्स में एक अलग किस्म की चमक आती है, कैसे शेडोज को यूज किया गया है, कैसे इनविजिबल ब्रश का काम है। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पूरे पूरे दिन बैठा रहता था वो। चलो स्टाइल तो कॉपी कर लेगा, लेकिन एक चीज कॉपी करनी बहुत मुश्किल है, वक्त। मैं समझाता हूं क्या कहने का मतलब। यह है कि आप किसी चीज को अगर बताना चाहते हैं कि ये 17th सेंचुरी की है, तो उसका पुराना दिखना भी तो जरूरी है। अब नई पेंटिंग पुरानी कैसे लगेगी, फ्रेश पेंट तो पता लग जाएगा, और ऑयल पेंट नरम हो जाता है, सालों तक ऐसे ही रहता है। तो कोई भी आम एक छोटा सा लैब टेस्ट करके साबित कर देगा कि यह नकली है। अब इसको पुराना कैसे बनाया जाए, 300 साल पुराना कैसे बनाया जाए। तो हैंस वेन ने एक तरकीब निकाली, उसके अंदर के साइंटिस्ट को उसने जगाया। वो सबसे पहले गया कबाड़ी वाले के पास, उसने कहा, भाई तुम्हारे पास कोई पुरानी पेंटिंग्स पड़ी हैं? तो उसने बोला, हाँ पड़ी हैं, देख लो। और वो जो पेंटिंग्स थी वो 17th सेंचुरी की पेंटिंग्स के जो फ्रेम होते ना, वो उसे चाहिए थे। उन पेंटिंग्स को इकट्ठा किया, घर पे ले गया, बीच में से पेंटिंग्स को फाड़ा और 17th सेंचुरी का फ्रेम उसको मिल गया। उसके बाद आते हैं रंग, क्योंकि पेंटिंग कैसे बनेगी, रंगों को अगर वो नए वाले रंग से मिलाता और बनाता तो शायद मजा नहीं आता, असली नहीं लगता। तो उसने हाथों से ग्राइंड करके पिगमेंट्स बनाए, उस दौर के मटेरियल्स को यूज किया, जैसे कि लेड वाइट को यूज किया उसने, और उसने लैपिस लजुली, एक किस्म का पत्थर होता है, उसे ना ग्राइंड करके पेंट में मिला दिया उसने, ताकि बिल्कुल पुराना वाला फील आए। और फिर उसने आयरन ऑक्साइड, येलो ओकर कहते हैं उस मटेरियल को यूज किया, एक क्ले होता है जो चिकनी मिट्टी होती है, उसका इस्तेमाल किया। और उसके बाद एक स्पेशल इंग्रेडिएंट होते हैं ना हर किसी की रेसिपी, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट, तो ये था बैकलाइट। बैकलाइट 1907 में, 1907 में एक किस्म का प्लास्टिक हुआ करता था जो उसने पेंट में मिलाया। क्यों?
क्योंकि इसे अगर कम धीमी आंच पर पकाया जाए, बेक किया जाए

तो ये जल्दी से सख्त हो जाता है, और पेंटिंग जब ठंडी होती है तो क्या होता है, पेंटिंग पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। आप समझ रहे कितना दिमाग लगाया इसने कि जब पेंटिंग पे क्रैक पड़ेगा तो बनी बनाई पेंटिंग क्रैक्स में बिल्कुल पूरा नहीं लगेगी, कोई पकड़ ही नहीं सकता। और फिर जब क्रैक्स पड़ जाएंगे तो उस पे वो इंडिया इंक रगड़ देगा पूरा उस पे क्लीन करने के लिए, जिससे वो एकदम पुरानी 300 साल पुरानी पेंटिंग लगेगी। अब ये एक पेंटिंग बनाने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत करी और 1968 तक तैयार करी। वो जानता था वक्त लगेगा तो लगे, लेकिन ये एक पेंटिंग खजाने की चाबी है। सालों की मेहनत से ये पेंटिंग तैयार हुई और अब बारी थी इस पेंटिंग को दुनिया में लाने की। अब या तो वो बाहर एक बहुत ही बड़ा जीनियस कहलाएगा या वो इतिहास का सबसे बेवकूफ इंसान कहलाएगा। खैर, एक आर्ट डीलर के पास वो गया, एक अनजान इटालियन कलेक्टर बनके, बाकायदा पूरी आइडेंटिटी लेकर, और बोला कि मुझे ये बिकवानी है, ओरिजिनल पेंटिंग है। सामने वाले ने देखा कि यार लग तो रही है ओरिजिनल। उसने कहा ठीक है सर। उसने बताया कि ये एक बहुत पुरानी वर्मेयर की पेंटिंग है, मैं कलेक्टर हूँ इसलिए मुझे शौक है इन सब चीज़ों का और मैं बेचना चाहता हूँ। उसे कहा गया कि आप वेट कीजिए। अब एक्साइटमेंट बहुत बहुत ज़्यादा खास है ना, क्योंकि अब उसने जो बनाया है इतने सालों से, अगर ये बिक गया तो वो पूरी दुनिया पे हंसेगा, क्योंकि उस दौर में एक वर्मेयर की पेंटिंग किसी कॉमेट के गिरने से भी ज्यादा रेयर थी। कलेक्टर्स, क्यूरेटर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स सब बेचैन हो गए जब उन्हें पता लगा कि मार्केट में एक वर्मेयर की पेंटिंग है। सब भाग रहे हैं इसके पीछे कि चलो चलो देखने चलते हैं। इस बीच में एक शख्स आया, इसका नाम था डॉक्टर इब्राहिम ब्रेडस। डॉक्टर इब्राहिम साहब जो थे वो 73 साल के थे, डच अथॉरिटी में थे, और ये वो शख्स थे जो वर्मेयर की पेंटिंग के एक्सपर्ट थे। अगर इन्होंने कह दिया कि पेंटिंग असली है तो काम वहीं खत्म। इनकी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज या तो पेंटिंग को अमर कर देगा या बनाने वाले के करियर को खत्म कर देगा। जब उन्हें पेंटिंग दिखाई गई तो वो प्राइवेट कमरे में गए उस पेंटिंग को लेकर, और अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको जांचते रहे। एक एक स्ट्रोक को डॉक्टर इब्राहिम ने देखा, अच्छे से देखा। उसके बाद वो पीछे हटे और फिर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बाहर बैठा हुआ था हैंस, जिसने वो पेंटिंग बनाई है, मगर किसी को पता नहीं है कि उसने बनाई है। वो इंतजार कर रहा था कि अंदर से क्या होगी, क्या आवाज आएगी। एक नॉर्मल बंदा बन के बाहर बैठा हुआ था। डॉक्टर इब्राहिम ने एक एक चीज को मैग्नीफाइंग किया और बाहर आके तो वो खुशी से पागल हो गए। वही ब्रश वर्क, वही पिगमेंट्स, वही क्रैक्स, क्या कॉम्पोजिशन है। वो हटे पीछे और मुस्कुराते रहे, बार बार देखते रहे। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। उन्होंने अपना पूरा फैसला प्रेस्टीजियस बर्लिंगटन मैगजीन में छापा, लिखा कि क्या मोमेंट है इतिहास में, भाई वाह। आर्ट लवर्स के लिए इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती। द मास्टरपीस ऑफ होएनिस वर्मेयर ऑफ द डेल्थ, क्या क्या ऑथेंटिक चीज दुनिया को मिली है। और वो तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। वो क्रिटिक्स एक्चुअली में जो हैंस को बेवकूफ कह रहे थे, वही उसकी की हुई इस पेंटिंग की तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेख लिख रहे थे उस पे। हैंस को मतलब नहीं था, हैंस से अपना नाम भी नहीं आने दिया बीच में। हैंस ने सोचा लेट्स वेट। और रोटरडैम्स बॉयमेंस म्यूजियम में जब ये पेंटिंग लगाई गई तो इसे खरीदा गया 5,20,000 गिल्डर्स में, मतलब आज के $4 मिलियन में। हैंस ने अपना मुंह बंद रखा, उसने सोचा अमाउंट बहुत मोटा है तो अपना नाम नहीं बताता। और हैंस ने ये अमाउंट लेकर वहां से जाने का फैसला किया। बिटवीन 1937 एंड 1943 हर साल एक वर्मेयर की पेंटिंग तैयार करने लगा, और हर साल वर्मेयर की एक पेंटिंग पुरानी 300 साल पहले खोई हुई पेंटिंग खुद अपने हाथों से फ्रेश बनाकर हैंस मार्केट में उतारता रहा। आती गई, बिकती गई। आर्ट वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा था।

कल्चरल मिरेकल और मोटा मोटा पैसा गिर रहा था हंस की गोद में। वो खुद शैडो डीलर बनकर एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, उनसे

इन पार्टीज में उन्हीं को बुलाया जो कह रहे थे कि ये तो फालतू का आर्टिस्ट है। और दीवार पे उसने अपनी ही बनाई हुई नकली पेंटिंग्स को टांगा और दुनिया को दिखाया, देखो ये फला आर्टिस्ट की है, ये फला आर्टिस्ट की है। एक शख्स जो लोगों की पोर्ट्रेट्स बनाया करता था जिंदगी चलाने के लिए, वो उन लोगों को पार्टी दे रहा था जिनकी अगर इनकम को कुल मिलाए भी जाए तो भी उससे कम पड़ेंगी। वही लोग जो उसकी बेइज्जती कर रहे थे। वो समझ गया था कि दुनिया को पेंटिंग से मतलब नहीं है, पेंटिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है। वर्मेर अगर नाम लिखा हुआ है तो चल जाएगा, बस मुझे पेंटिंग बढ़िया तरीके से बनानी है। और हैंस को अब इस चीज की लत लग गई थी, एक किस्म की एडिक्शन, एक सीक्रेट पावर उसे मिल गई थी। मजा आने लगा था लोगों को ऐसे बेवकूफ बनता देखते हुए। ही वाज रियली रियली हैप्पी। मगर इसके साथ साथ इस आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो अलग अलग किस्म की दवाइयां लेने लगा था सोने के लिए, गेटिंग ऑन हिज हेड। मगर वो बहुत कोशिश कर रहा था, ये डबल लाइफ जीना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मगर नोट आ रहे, जिंदगी चल रही है, टेंशन क्या है, देख लेंगे। मगर फिर आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, छिड़ गई जंग और पिक्चर में आया हिटलर। पूरे यूरोप में हाहाकार मच गया। अब हैंस जो था उसे इसमें भी एक फायदा दिखा, एक अपॉर्चुनिटी दिखी। जर्मन्स जो थे वो चाहते थे कि कल्चर के हर एक चीज पर कब्जा कर लिया जाए, तो उनको ये पेंटिंग्स बेचना और भी आसान था, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं ना कि यूरोपियन आर्टिस्ट की सारी चीजें उनके पास हों, वो हर चीज पर कब्जा कर लें, तो ठीक है जर्मन्स को बेच देते हैं। हांस ने सोच लिया था, मोरालिटी और पॉलिटिक्स मेरे को मतलब नहीं है, मुझे चाहिए पैसा। 1942 में उसने एक और पेंटिंग, नकली पेंटिंग बनाई और उसे आर्ट मार्केट में उतरवा दिया। फिर एक आर्ट एग्जीबिशन में वो पहुंचा, वहां पे एक बंदा था, बंदे का नाम था एलॉय मीडल। एलॉय मीडल बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। एलॉय मीडल एक जर्मन डच कोलैबोरेटर था जिसके डायरेक्ट कनेक्शन थे हाई कमांड से, यानी हिटलर से। जब मीडल ने देखी वो पेंटिंग वर्मेयर की तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, भाई साहब ये पेंटिंग तो मैं पहुंचाऊंगा ऊपर तक। और उसने इस पेंटिंग के बारे में हरमन गोरिंग को बताया, जो कि सेकंड हैंड था हिटलर का, सेकंड इन कमांड, और वो आर्ट कलेक्शन के नाम पे ऑब्सेसिव था, दीवाना था आर्ट का। लेट 1943 में हिटलर की तरफ से लोगों ने एम्स्टरडेम पे कब्जा कर लिया। हरमन गोरिंग जो कि उसका राइट हैंड था, सेकेंड इन कमांड था, उसने जितने भी आर्ट्स थे सबको लूटा, सारी पेंटिंग्स को जो चाहिए था उठाता गया। और उसकी नजर उस वर्मेयर पेंटिंग पे पड़ी जो कि बनाई थी वैंस ने। उसने बोला, ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो बोला, सर बनाई नहीं है, वर्मेयर की है। वर्मेयर की पेंटिंग है ये? किसके पास है? मुझे खरीदनी है, मुझे चाहिए पेंटिंग है। तो कहा गया, ठीक है सर, आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अब ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डील कोई ऐसी डील नहीं है कि पेंटिंग बेची और बदले में रकम मिल गई, नहीं, ये डील कुछ अलग थी। वर्मेयर की नकली पेंटिंग जो हैंस ने बनाई थी, जिसको वो बता रहा था कि 300 साल पुरानी है, उस पेंटिंग को असली बता के बेच रहा था वो हिटलर के राइट हैंड को, जो बदले में उसे नोट नहीं देगा मगर 137 पेंटिंग्स अपने कलेक्शन से देगा, जो कि ओरिजिनल हैं, जो कि मास्टरपीसेस हैं, जो कि अलग अलग जगहों से यूरोप की चुराई हुई असली पेंटिंग्स हैं।

है एक नकली पेंटिंग के बदले। ये डील हुई 1943 और गोरिंग ने इस पेंटिंग को ले लिया और अपने ऑफिस में एक क्राउन जूल की तरह टांग दिया। और हैंस के पास थी अब 137 पेंटिंग ओरिजिनल यूरोप की। एक्सीडेंटली उसने अपने देश का बदला ले लिया था जो उसको भी अंदाजा नहीं था और वो यहां पे जंग जीत गया। फिर आई मई की तारीख 3, 1945। हिटलर जा चुका था दुनिया से और एलाइड फोर्सेस यूरोप वापस कब्जा कर रहा था और अब यूरोप को रिकवर करना था अपना वो आर्ट जो उनसे चुरा लिया गया था। एंड वो जा पहुंचे गोरिंग के ऑफिस। गोरिंग ने क्या किया था, गोरिंग ने पेंटिंग जो ली थी हैंस से वो अपने ऑफिस में टांगी हुई थी, उस पे नजर गई इन यूरोप की फोर्सेस की। उन्होंने कहा भाई ये तो वेरमेयर की पेंटिंग है, पर इसको किसने बेची, कौन है वो गद्दार जिसने इन लोगों को हमारी पेंटिंग्स बेची। वो जानना चाहते थे कि ये पेंटिंग मिली कैसे और पता लगा ट्रैक करके एक नाम जिसने इन्हें पेंटिंग बेची, हैंस वैन मेग्रोइन। और वो सीधा इस तक पहुंच गए। मई की 29 तारीख 1945 डच पुलिस ने दरवाजे तोड़कर हैंस को पकड़ा और घसीटते हुए बाहर लेके आए। वो शख्स जो लग्जरी में जी रहा था उसका बुरा हाल कर दिया, चेन्स में लेकर उसको ले गए वहां से और उस पर ठप्पा लगा दिया कि ये देश का गद्दार है। हर न्यूज़पेपर में उसके बारे में खबर छप रही थी, लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे, नेशनल विलन बन चुका था और उस पर अब उसे डेथ सेंटेंस दी जाने वाली थी। हैंस एक ठंडे से प्रिजन में पड़ा हुआ था, गार्ड उसको चलते फिरते मार रहे थे, दुनिया नफरत करती थी, ऑफिशियल तो उसे देखने नहीं चाहते थे। एक ब्रिलियंट कॉन आर्टिस्ट जो कामयाब भी था वो अब दुश्मन बन चुका था। मगर रात में उसने कुछ सोचा और इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, उसने सोचा कि मुझे अगर इस डेथ सेंटेंस से बचना है तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि जो पेंटिंग मैंने बनाई है वो नकली है। जस्ट इमेजिन, वो शख्स जो इतना टाइम लगा के एक नकली पेंटिंग बना के ये कन्विंस कर रहा था कि 300 साल पुरानी है, अब उसे ठीक उल्टा करना है, उसे ये बताना है कि साहब मैं तो नकली पेंटिंग बनाता हूं, इनको असली लग गई, तभी उसकी सजा जो है वो कम हो सकती है या खत्म हो सकती है। मगर वो ये कैसे करेगा, जाके अगर वो कोई बोले किसी से भी कि साहब वो जो पेंटिंग है वो असली नहीं है तो लोग क्या बोलेंगे, हाँ जी मैं अमिताभ बच्चन हूं, हाँ जी मैं इंग्लैंड का राजा हूं जी, बैठा हुआ चुपचाप, यही होगा ना, इतना आसान तो नहीं है। और उसने कोशिश भी करी, उसने जाकर ऑफिसर से बात करी, सर वो जो पेंटिंग है वो असली नहीं है। हाँ ठीक है असली नहीं है, बैठ वहां पर चुपचाप जाके, और लोग उसको ऐसे ही साइड में करके बिठा दे रहे थे। क्या करें, वो कोई सुनने को राजी नहीं है। मगर फिर उसने कहा कि मुझे तो इस बात पे अड़े रहना है। जुलाई 1945 एम्स्टर्डम कोर्ट हाउस, और उसने जज को बोला, जज साहब ये पेंटिंग नकली है साहब, 300 साल पुरानी नहीं है। जज साहब ने बोला मैं बता रहा हूं, एक और बार तूने ये बोला छोड़ूंगा नहीं। उसने बोला सर मुझे मौका दीजिए, मैं ये पेंटिंग शुरुआत से बना के आपको दिखाता हूं और आप टेस्ट करा लीजिएगा चाहे तो। जज 2 मिनट के लिए रुक गया, उन्होंने कहा ठीक है, पर अगर प्रूव नहीं कर पाया ना तो ऐसी खतरनाक सजा मिलेगी सोचनी होगी। उसने कहा ठीक है। उसने कोर्ट से टाइम मांगा, ये टाइम जो था वो हफ्तों का टाइम था। उसने सारे साजो सामान मंगाए और पेंट करना शुरू किया अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि एक एक स्ट्रोक सही होना चाहिए और पेंटिंग पुरानी लगनी चाहिए। अगर पेंटिंग पुरानी नहीं लगी तो उसे बहुत खतरनाक सजा सुनाई जाएगी। और वो कोर्ट के सामने डेली आता, डेली पेंटिंग बनाता। लोग वहां पे आके बैठे हुए थे, एक मेकशिफ्ट स्टूडियो बना दिया गया था, 17th century कैनवस उसे दिया गया, पिगमेंट्स ब्रशेस सब चीजें उसे दी गई। एक एक स्ट्रोक जिंदगी और मौत के बीच में था वो, उसे डेडलाइन दी गई थी और धीरे धीरे वो इमेज बनाता गया, एक सेंचुरी ओल्ड पेंटिंग। 6 हफ्ते लगे उसे, वो अपने 50s में था, थक गया था, लेकिन हैंस को बनानी ही थी एक पेंटिंग, एक फ्रेश पेंटिंग जो 300 साल पुरानी लगे।
उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन हर मिनट बहुत जरूरी था।

0: फाइनली पेंडिंग तैयार हुई, वो पीछे हटा और पूरा का पूरा कोर्ट रूम चश्मे लगाए हुए लोग एकदम साइलेंटली उस पेंटिंग की तरफ देख रहे थे। एक्सपर्ट्स आगे आए, देखने लगे पेरेंट्स को, और फिर इस पेंटिंग को सीधा भेजा गया केमिस्ट्री के जानकारों के पास। अब लास्ट टेस्ट था, अगस्त 1945 एम्स्टर्डम। साइंटिस्ट, केमिकल एनालिस्ट सब चेक कर रहे थे और पेंटिंग का रिजल्ट आया अमेजिंग। कोर्ट रूम में लोग दीवाने हो गए। एक्सपर्ट जो वहां पे खड़े हुए थे, वही एक्सपर्ट जिन्होंने सालों पहले इतना सुनाया था उसको, वो बिल्कुल किसी बिल्कुल कैसे गधे जैसे खड़े होते हैं वैसे वो खड़े हुए थे। एंड बाय हिज जीनियस वो जीत गया। सबके मुंह तर चुके थे। हांस ने उल्टा सामने वाली पार्टी को धोखा दे के 137 पेंटिंग्स रिकवर भी कर ली थी। वो एक्सीडेंटल हीरो बन गया था। ओवरनाइट लोग नारे लगा रहे थे, लोग दीवाने हो चुके थे, और उसकी सजा को, जो कि डेथ सेंटेंस थी बाय द वे, उसे एक साल की सजा बना दिया गया। नेशनल पोल में बाय द वे सबसे टॉप के मंत्री से नीचे था वो, फेमस होने के लिहाज से। ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल इन हिस्ट्री ऑफ नीदरलैंड्स। हैंस खुश था, बोला महंगी महंगा। उससे पूछा गया कि आपने पेंटिंग्स को इतना महंगा क्यों बेचा, 4-4 million मिले आपको, थोड़ा सस्ता बेच लेते। तो उसने एक बात बोली जो आज भी लागू होती है। उसने बोला महंगा बेचा क्योंकि सस्ता बेचता ना तो लोग नकली समझते। ये लोगों की आदत है, जब चीज सस्ती होती है तो नकली लगती है, तो क्यों ना इसको 4 गुना बढ़ा के बेचा जाए तो असली लगेगी। दिसंबर 1947 में और दुनिया से चल बसे बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। आप क्या पता डबल लाइफ जीजी के उस राज ने उनकी जान ले ली। मगर ही बिकेम अ लिटरल हीरो एंड बिकेम समथिंग एल्स। और उसने ये साबित कर दिया कि एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स होंगे अपनी जगह पे, लेकिन कोई भी इतना अकलमंद नहीं है। हर शेर का सवा शेर मार्केट में बैठा हुआ है। दिस वॉज द स्टोरी। अब आपके हवाले 666-22107 नंबर है, 666-22107 आपके मैसेजेस के इंतजार में। मैं दोहा वाला कबीर, स्टे ट्यून्ड।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज हाइलाइट्स, हाइलाइट्स ऑन FM 107, दिल से देसी,
5: दिल से देसी।
0: ओके, तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं। कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड वेरी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। और इसमें मेरी मदद करी है एक डॉक्टर साहब ने, तो ऑफकोर्स मैं उन्हें क्रेडिट देना चाहता हूँ, पर उन्होंने कहा कि नहीं मेरे नाम मत लीजिएगा प्लीज, तो उनका नाम ले रहा हूँ। मगर आई एम गोना नरेट द स्टोरी एंड होपफुली कि हो सकता है यू नेवर नो किसी के काम आ जाए। ओके, शुरू करें। चलो भाई वॉल्यूम बढ़ा दी जाए। तो जो आज का किस्सा है ये टिपिकल मेडिकल मिस्ट्री से थोड़ा सा अलग है। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ये ग्राउंड ब्रेकिंग कहानी है। तो आपको आज का किस्सा सुनाने के लिए मैं ले चलता हूं साल 2013 में, मार्च का महीना। एंड इस वक्त एक लड़की, इसका नाम था एमिली रियस। एमिली जो थी वो पढ़ाई कर रही थी, कहाँ पे? अपने डोम रूम में इन फीनिक्स एरिजोना। और पढ़ाई जो थी वो फाइनल एग्जाम की थी, क्योंकि शी वॉज स्टडिंग फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्री मेड एंड उसका जो तीसरा सेमेस्टर था वो चल रहा था। तो बहुत प्रेशराइजिंग सिचुएशन है, मतलब होता ना बच्चे बिल्कुल आखिरी सेमेस्टर की तरफ बढ़ते हुए कितनी सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, और फिर ऊपर से सारी पढ़ाई भी पूरी करनी है, और मेडिकल की पढ़ाई हलवा नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। तो सब दुआएं कर रहे थे एमिली के लिए आसपास, जितने भी लोग थे, उसके दोस्त, उसके घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग कि भाई एमिली बस कर जाए। एमिली जो थी उसका प्लान बड़ा क्लियर था। एक तो वो पढ़ाई में अच्छी थी, तो इवेंचुअली लोगों को उम्मीद उससे बहुत ज़्यादा थी। और एमिली जो थी वो मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद ऑनकोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहती थी, विच मीन्स कि वो कैंसर पेशेंट्स की मदद, उनकी खिदमत करना चाहती थी, एंड उसका सपना था कि वो कैंसर को क्योर कर सके। अब देखिए, कोई ऐसे बोलेगा तो आप यही बोल सकते हैं कि हाँ कर लोगे बेटा, शाबाश। एमिली का कुछ भी कहने का तरीका इतना कन्विंसिंग होता था ना कि डॉक्टर्स भी उसे ये कहते थे कि एमिली जब पेशेंट्स को इंशाल्लाह आगे जाके ट्रीट करेगी तो उसके पेशेंट्स को यकीन होगा कि वो कुछ कह रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी से जाके बोले कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, दो दिन में आप देखिए कैसे ठीक हो जाएंगे, तो उसके जो बोलने का तरीका है, उसमें जो यकीन, जो कन्विक्शन है उसकी आवाज में, दैट इज अनपैरेलल। बहुत पॉजिटिव आउटलुक कुल मिला के एमिली का। तो जब एग्जाम्स करीब आ रहे थे और महज 3-4 दिन बचे थे, तो ट्यूसडे का दिन आया एंड कुछ अलग हुआ। एमिली जो थी वो लाइब्रेरी में थी और पढ़ाई कर रही थी, उसके हाथों में हाइलाइटर था और लाइब्रेरी में ज़्यादा बच्चे उस वक्त नहीं थे। एमिली लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी और एकदम से मार्किंग्स करते हुए उसके सर में दर्द शुरू हुआ। और एक होता है दर्द, आपको पता होता है कि साइड वाइड में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा सेंटर में दर्द हो रहा है, पीछे दर्द हो रहा है, एंड यू काइंड ऑफ नो। कुछ लोगों को होता है, अल्लाह ना करे ये किसी को भी ज़्यादा बीमारी हो, लेकिन माइग्रेन इज़ वेरी डिफरेंट, हर किसी के साथ अलग अलग होता है। तो एमिली के साथ माइग्रेन का कोई सीन नहीं था, तो शी वॉज नॉट रियली टॉकिंग अबाउट इट कि किसी को बोले या खुद से बोले कि लगता है माइग्रेन है। मगर ये दर्द थोड़ा वियर्ड था। उसने एडविल खा के दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी, मगर ये दर्द ऐसा था कि जैसे दिमाग के अंदर से बाहर की तरफ कोई चीज पुश की जा रही हो, यानी रुक नहीं रहा था। तो उसने अपनी किताब बंद करी, मारकर फेंका, एंड शी जस्ट रैन ऑफ। वो भाग के अपने डोम रूम की तरफ बढ़ चली कि मैं अभी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, और सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसकी जो रूममेट थी वो कुछ देर बाद जब कमरे में आई तो एक अलग सिचुएशन में उसने एमिली को देखा। एमिली जो थी, एक किचन का एरिया था इनका, कनेक्टेड था, और वो वहां पे खड़ी हुई थी किचन एरिया में, मगर वो कुछ कर नहीं रही थी, ना वो कोई डिश को धो रही थी, ना पानी पी रही थी, ना कुछ खाना बना रही थी, वो सिर्फ दीवार को घूरे जा रही थी। और उसकी जो दोस्त थी, जो रूममेट थी सोफी, वो पीछे से आई और उसने बोला, एम आर यू ओके, सब ठीक तो है? एंड हल्के से एमिली मुड़ी उसकी तरफ, बहुत ही वियर्ड तरीके से मुड़ी, और उसने बोला, सोफी मेरे नोट्स को तूने छुआ, सच सच बताना। एंड वो घूरी जा रही थी सोफी को। सोफी ने बोला, वो क्योंकि वो एम कहती थी एमिली को, तो उसने बोला, एम मैंने मैंने कुछ कुछ नहीं किया, कौन से नोट्स? और वो रिएक्शन ऐसे दे रही थी जैसे अभी वो सोफी से लड़ लेगी, यू नो, ऐसे जंप करेगी और शायद आधा बाई तक हो जाए, वो उतना सीरियस थी। एंड एमिली ने बोला, सच बोल सोफी, सच बोलो। सोफी ने बोला, एमिली आर यू क्रेजी, मैं क्यों क्यों नोट्स को छूंगी तेरे, क्या हो गया? एंड उसके बाद दोनों के बीच में बात नहीं हुई, मगर एमिली फॉलोड बाय दिस डे, इसके आने वाले 3-4 दिनों में, पहली बात तो उसका एग्जाम नहीं हो पाया, उसने बहुत कोशिश करी लेकिन वो दे नहीं पाई, और वो डोम रूम में रही है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मगर एक और चीज़ होने लगी, एमिली जो थी वो कुर्सियाँ कहीं ना कहीं से ला ला के और अपने बेड के चारों तरफ रखने लगी, और जो जो चेयर थी वो फेस कर रही थी दूसरी तरफ, मतलब नॉट फेसिंग द बेड, दूसरी तरफ फेस करते हुए पूरे बेड के इर्द गिर्द लगाती और फिर सोने के लिए जाने लगी। तो ये अजीब और गरीब चीजें कर रही थी, सडन पर्सनैलिटी चेंज, और ये ऐसा पर्सनैलिटी चेंज था कि ये एकदम से था। जो सोफी उसकी रूममेट थी, उसने जाके पहले तो कंप्लेन करी कि मैम मैं नहीं रह सकती इसके साथ, वो अजीब अजीब चीज़ें कर रही है, मगर फिर सोफी को लगा कि यू नो व्हाट, मेरी वजह से कहीं उसको नुकसान ना हो जाए, तो सोफी ने कहा मैम इट्स ओके, आई टेक केयर ऑफ हर, एंड उसने दोस्ती निभाने का फैसला किया। मगर पर्सनैलिटी वॉज चेंजिंग। एक फ्राइडे की आफ्टरनून में शी इवन कोलैप्स्ड, मतलब वो एकदम से बेहोश होकर गिर गई, और जब गिरी भी तो उसे सीजर्स आने लगे, वो जैसे फिट्स आते हैं तो वो बुरी तरह से कांपने लगी, वो शेकिंग बुरी तरह से। पैरामेडिक्स को तुरंत बुलाया गया, पैरामेडिक्स वहाँ पर पहुँचे, और उस वक्त वो जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एमिली फर्श पर है और बुरी तरह से कांप रही है। उन्होंने बहुत कोशिश करी उसे लिटरली होल्ड करने की, लेकिन एक अजीब से ताकत नहीं आ जाती है, वैसा सीन था एमिली के साथ। एंड इतनी ज़ोरों से वो सीजर में थी कि उसके जो ऊपर वाला होंठ था, लिटरली उससे उसने अपने होंठ को काट दिया था, नीचे वाले होंठ को, दांत से, अपने ऊपर वाले दांतों से ब्लीडिंग तक चालू हो गई थी। एंड दिस वाज वेयर्ड पैरामेडिक्स के लिए भी। उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाया गया इन बैनर यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, सीटी स्कैन किया गया, नॉर्मल आया, टॉक्सिकोलॉजी एकदम क्लीन, किसी किस्म की उसने कोई बाहर से कोई ड्रग्स नहीं लिए थे, कोई दवाई नहीं ली थी, कोई उसे फीवर नहीं था, नथिंग एट ऑल। तो डॉक्टर ने पर्चा निकाला, उस पर लिखा पैनिक अटैक, 7 मिनट उससे बातचीत करी, एक दवा लिखी और एक पैम्पलेट उसके हाथ में पकड़ा दी। जो पैम्पलेट उसके हाथ में दिया, इस पर लिखा हुआ था स्ट्रेस मैनेजमेंट, और बोला बेटा आराम से घर जाओ, आराम करो। यहां से एक और सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स जो कर रहे थे वो ऐसा था कि जैसे आग जो है वो घर में लगी है, लेकिन पानी जो है वो गार्डन की तरफ डाला जा रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा था सब कुछ, मगर अभी तक ये समझ पाना मुश्किल था। खैर 2 दिन बाद मिसेस कार्मिन, जो एमिली की माँ थी और उसके बेसिकली फादर गए हुए थे बाहर एक ट्रिप पे, तो घर पे सिर्फ माँ थी, मिसेस कार्मिन को कॉल आई। ये कॉल जो थी ये एमिली की रूममेट सोफी ने की थी। उसने कॉल लगाई और फिर जो बातें करी वो एमिली की माँ सुन के डरने लगी। उसने सीधा कॉल करी, हेलो हेलो, कुछ नहीं बोली, मिसेस कार्मिन आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपको प्लीज़ यहाँ आना पड़ेगा, बहुत बहुत अजीब बातें कर रही है आपकी बेटी, प्लीज़ आप प्लीज़ यहाँ पर आइए, मैं अभी सब कुछ नहीं बता पाऊँगी, प्लीज़। एंड मिसेस कार्मिन जो एमिली की माँ थी वो फ़ोन पे बैकग्राउंड में काफ़ी साउंड सुन पा रही थी, चेयर की मूवमेंट्स एंड काफ़ी कुछ सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने सब कुछ तुरंत पैक किया, ज़्यादा सवाल नहीं किए, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और 4 घंटे की ड्राइव फ्रॉम टक्सन एमिली तक उन्होंने करी। एंड शी वॉज ड्राइविंग रियली रियली फास्ट, बस उन्हें पहुँचना था। वो जैसी वहाँ पर पहुँची और जैसी उस रूम में पहुँची जहाँ पर सोफी और एमिली रहती हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो जानती ही नहीं है अपनी बेटी को, एमिली जैसी लग ही नहीं रही थी। जब वो पहुंची तो उन्होंने देखा, एंड इस वक्त अराउंड 4:30-5 बज रहे थे शाम के सारे कागज फटे हुए उसके इर्द गिर्द पड़े हुए थे, और वो फ्लोर पे बैठी हुई थी। जितने उसके इंपॉर्टेंट नोट्स थे, जो उसकी पढ़ाई के नोट्स थे, उनको वो फाड़ रही थी बैठे हुए, एंड शी वॉज जस्ट टॉकिंग, वो बस बातें कर रही थी। जो सेंटेंस फॉर्मेशन था उसका बड़ा अजीब था, कई मरतबा फुल सेंटेंस बोल रही थी जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, कई मरतबा बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रही थी जिनका सेंस तो बन रहा है लेकिन उसके आगे भी सेंटेंस है, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग था, जैसे खुद से ही सवाल पूछना, खुद को ही जवाब देना, और ये काफ़ी अजीब था। और मिसेस कार्मिन ऑफ कोर्स माँ होने के नाते उनका डर जो था वो 10x था, बहुत ज्यादा था। एंड उन्होंने अप्रोच किया अपनी बेटी को, क्योंकि वो डर भी रही थी। उन्होंने बोला एमिली बेबी यू ओके, मगर फिर एमिली उठी, उसने चेयर जो उसके साइड में पड़ी थी उसे और साइड में किया और सीधा जंप करके अपनी माँ को उसने बुरी तरह से पकड़ लिया, इतनी बुरी तरह कि सोफी जो रूम में मौजूद थी वो डर के भागी। उसने सिक्योरिटी वालों को बुलाया एंड सिक्योरिटी वाले आए और फिर वहाँ पे जो नर्सिस थी उन्होंने सेडेटिव्स दिए उसे सुन करने के लिए। एंड इस बार जो साइकेट्रिस्ट थी यहाँ पर मौजूद, उन्होंने कहा कि दिस इज एक्यूट साइकियाट्रिक ब्रेक, ये ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया है, और बड़े बड़े बीमारियों के नाम लिखे, उन्होंने उसे एंटीसाइकोटिक देना शुरू कर दिया। कोई भी नहीं समझ रहा था

एमिली की चीज को, कोई भी नहीं। और वही वह जो पहले हुआ था, मेडिकेशन ने काम नहीं किया। इनफैक्ट एमिली ने बात करना ही बिल्कुल बंद कर दी। अब वो जो बोल रही थी वो एक ब्रोकन लैंग्वेज थी, वो अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रही थी, ज्यादातर अपनी जुबान बाहर रखती थी, हाथ इधर उधर घुमाती रहती थी, दीवार में मारती रहती थी, एंड कमर जो है अपनी वियर्ड तरीके से मोड़ के लेटी रहती थी, कई मरतबा तो नींद भी नहीं आती थी उसे, और ये चलता रहा। आंखें उसके पीछे रोल होती थी और इतनी ज्यादा रोल कर लेती थी वो आंखों को कि वाइट पोर्शन दिखता था, वो ब्लैक पूरा प्यूपल गायब हो जाता था, कैटाटोनिक स्टेट। तो उसको जबरदस्ती फीड करने के लिए, खाना खिलाने के लिए नोज से ट्यूब डाली जाती थी कि वो कम से कम किसी तरीके से खाना उसके जिस्म तक पहुंचे, और अकड़ जाती थी वो कई मरतबा। कार्मेन जो उसकी माँ थी, जो ऑब्वियसली रिलीजियस लेडी थी, तो उनको लगा कि ये सब तो मैंने हॉरर में देखा है। मतलब ऐसा था कि शी वॉज काइंड ऑफ कन्विंस्ड, होता ना कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आपका माइंड आपसे कह रहा है कि नहीं यार, यहाँ लॉजिक काम नहीं आ रहा है। क्योंकि एक आम आदमी जिसको मेडिसिन या मेडिकल फील्ड का ना पता हो तो ये सोचेगा कि यार डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे तो फिर कुछ तो होगा, बहुत ही हो सकता है, और तो क्या हो सकता है। एंड उन्होंने इसी डर के मारे, उन्हें लगा कि उनकी बेटी के ऊपर कुछ साया है या कुछ आ गया है, तो उन्होंने फादर थॉमस को बुलाया। फादर थॉमस 52 ईयर्स के थे और वो पहुंचे, एंड इस सब पढ़ते हुए, दुआएं पढ़ते हुए, प्रेयर्स पढ़ते हुए वो एमिली उस कमरे में आया जहाँ पे एमिली थी, एंड एवरीबडी वॉज देयर। जो आसपास के लोग भी थे उन्हें लग रहा था कि अरे पक्का इस पे कोई भूत वूत आ गया है, सबके सब पीछे डर के खड़े हुए थे। एंड फादर थॉमस वहाँ पर पहुंचे, एंड उन्होंने देखा कि सामने एमिली है। एमिली फादर थॉमस को देख के स्माइल कर रही थी, विच वॉज अगेन वेरी हॉन्टिंग। अमूमन जब कोई स्माइल करता है तो खुशी बोलती है, लेकिन ये स्माइल ऐसी थी कि किसी को भी डर लग जाए। और उसने फिर 5 मिनट तक बोलना शुरू किया एमिली ने, मतलब नॉन स्टॉप बोली वो, लेकिन क्या बोली किसी को नहीं पता। हॉलवे में जितने लोग खड़े थे वो थर थर कांप रहे थे, बिकॉज उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो सिर्फ जो टोन थी एमिली की वो इतनी कोल्ड टोन थी कि कोई भी डर जाए, क्योंकि वो जिबरिश भाषा थी। जिबरिश माने के ऐसी भाषा जो कुछ है ही नहीं, शी वॉज जस्ट सेइंग रेंडम चीजें। मगर यहां पे फादर थॉमस की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधा ये कहा एमिली की मां से कि मैं इसमें मदद नहीं कर सकता, आपको एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा अपनी बेटी को। एंड फादर थॉमस यहां पर एकदम सही थे, एकदम सही थे। एमिली का जो इम्यून सिस्टम था, अब ये समझने वाली बात है क्योंकि यहीं पर आपको पता लगेगा कि कहानी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम सब में हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है। एमिली का जो इम्यून सिस्टम था बॉडी के अंदर, उसकी जंग चल रही थी, एक किस्म की लड़ाई। तो बॉडी में अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती हैं जब कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाती है, ये सुबहान अल्लाह ताला ने ऐसा फंक्शन बनाया है। तो इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी और उन्होंने अटैक करना चालू किया, लेकिन एक ऐसी चीज को जो बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं NMDA रिसेप्टर्स। मैं आसान करके बताता हूं ये क्या होता है। NMDA रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में होते हैं, हमारे भेजे के अंदर होते हैं, ये फैले हुए होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स, मिलियन स्विचेस, यू समझ लीजिए बहुत सारे बटन है, मिलियन स्विचेस। इनकी वजह से हमारे थॉट्स, हमारे जो ख्याल हैं बेसिकली, हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त और हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मतलब आप किस तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं, आपको सामने क्या दिख रहा है, किस शेप एंड फॉर्म में दिख रहा है, उसे करेक्ट रिसीव करके आपको बताना इज द फंक्शन। ये रिसेप्टर्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं और ये बेहद बेहद ज़रूरी है। समझ लीजिए ये बिल्कुल वैसा है कि एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर उसमें एक जगह पर शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर मामला कितना खराब हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। और ये रिसेप्टर्स, NMDA रिसेप्टर्स लगातार अटैक हो रहे थे बॉडी के अंदर एमिली के, इस वजह से उसकी स्पीच जा रही थी। और ऐसा जब होता है तो सबसे पहले स्पीच जाती है, मतलब बोलने की ताकत खत्म होती है, फिर कैटाटोनियन स्टेट हो जाती है और फिर कोमा और फिर दुनिया से रुख सकती। इस बीमारी का इनफैक्ट एक नाम भी है, इसे कहते हैं

एंटी NMDA रिसेप्टर एंसेफेलाइटिस, ये इसका पूरा नाम है, एंटी NMDA रिसेप्टर एंसेफेलाइटिस। एंड आपको भी जान के हैरानी होगी, इसकी डिस्कवरी 2007 में हुई है। समझ रहे हैं आप, कितने साल हो गए, 19 साल हो गए, 2007 में इसकी डिस्कवरी हुई है। अब आप सोचिए 2007 से पहले जिन लोगों को भी ये हुआ होगा, लोगों ने तो भूत मान लिया होगा कि भाई इस पे भूत आ गया। आप समझ रहे हैं, तो डिटेक्ट ही नहीं हुई पहले, ना जाने कितने केसेस रहे होंगे जहां पे ये पता ही नहीं होगा कैसा कुछ हो रहा है। तो डॉक्टर्स को, क्योंकि ये केस एक ही मर्तबा मिला था 2007 में, तभी डिस्कवर हुआ था, तो पता ही नहीं है। वो तो MRI कर रहे थे और उसके बाद कह देते थे कि वायरल एंसेफेलाइटिस है, किसी किस्म का बुखार है, और दवाइयां दे देते थे, उससे कुछ हो नहीं रहा था, स्टेट बिगड़ रही थी और लग रहा था कि जैसे पता नहीं कौन सा भूत आ गया इस पे। कोशिशें जारी रही, दिन 16 वेंटिलेटर पे कनेक्टेड थी, क्योंकि वेंटिलेटर सांस ले रहा था, क्योंकि एमिली का दिमाग सांस लेना, उसकी मदद करना भूल चुका था, तो काम मशीन को करना पड़ रहा था। उसकी जो हार्ट रेट थी वो 40 से 180 के बीच में घूम रही थी लगातार। जो फिजिशियन मौजूद थे हॉलवे में, वो लिटरली ये कहने लगे थे मिसेस कार्मन से कि मैम हमने सब करके देख लिया है, आप तैयारी शुरू कर लीजिए। उनका कहने का मतलब यही था कि एमिली ज़्यादा दिन नहीं बचेगी, है ना, आप हार मान लीजिए। दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू से। लेकिन फिर एक कुदरत का करिश्मा हुआ, एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जिस ICU में मौजूद थी एमिली, वहां पर डॉक्टर्स के आना जाना लगा था अलग अलग पेशेंट्स के लिए। सो एक डॉक्टर साहब थे जो इसी ICU में आए, इनका नाम था डॉक्टर मिगेल रेमिरेज। डॉक्टर मिगेल जो थे वो सेकेंड ईयर न्यूरोलॉजी रेसिडेंट थे। अब यहां समझने की जरूरत है आपको, डॉक्टर मिगेल रेमिरेज का कोई लेना देना नहीं था एमिली के केस से। वो ना एमिली को जानते, ना उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता था, ना उनका कोई ऑर्डर देने का हक बनता है कि ये टेस्ट करा लो और फलां टेस्ट करा लो, नथिंग एट ऑल, उन्हें कुछ मतलब नहीं। डॉक्टर रेमिरेज हाउएवर, वो अपने मेडिकल स्कूल की पढ़ाई को याद कर रहे थे उस टाइम पे, जब उन्होंने देखा कि एमिली किस स्टेट में है। उसकी आंखें खुली हुई थी, वो छत की तरफ देख रही थी और उसके पास से गुजरे, उन्होंने ऐसे ही कैजुअली उन्होंने पूछा इस लड़की को क्या हुआ है। तो जो नर्सेस थी उन्होंने बताने की कोशिश करी और उन्हें लगा कि हम डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर आगे चले जाएंगे क्योंकि क्या ही बता पाएंगे ये। पर उस वक्त डॉक्टर मिगेल रेमिरेस को कुछ याद आया, उन्हें याद आई अपनी पढ़ाई, उन्हें याद आया एक केस, एक लड़की का जिसका नाम था पेन, उन्हें याद आया एक यंग बच्ची का केस जो 2007 का केस था। उन्होंने उसको ऐसे बात करते करते चलते फिरते उस केस को निकाला और फिर उन्होंने कहा कि इस पेशेंट का मुझे चार्ट मिलेगा क्या। उन्होंने एमिली का जो पूरा मेडिकल रिपोर्ट थी, पूरा चार्ट था वो लिया, उन्होंने उसको पढ़ा और पुराने केस से मैच किया। उन्होंने देखा एमिली के केस फाइल पर लिखा हुआ था, एमिली 21 फीमेल साइकियाट्रिक ऑनसेट मूवमेंट डिसऑर्डर कैटाटोनिक, सब कुछ मैच कर रहा था। अब उनका इंटरेस्ट जागा, उनका अभी तक कोई लेना देना नहीं था एमिली से, पर उन्होंने बुलाया माँ बाप को और इनफैक्ट एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने कहा कि दो टेस्ट आपको करने पड़ेंगे इस बच्ची के, एक तो है एंटीबॉडी ओपेनल जहां पे स्पाइनल फ्लूइड जो रीढ़ की हड्डी थी स्पाइनल फ्लूइड, और एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अब जब एक डॉक्टर जिसका कोई लेना देना नहीं है उसने ऐसा बोला, तो ऑब्वियसली बहुत सारे सीनियर्स और काफ़ी सारे कलीग्स चिढ़ गए। वो बोले कि आपका कोई लेना देना नहीं है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में यार, मतलब हम जो हैं अपने रिसोर्सेज वेस्ट करें एक साइकेट्रिक पेशेंट पे जिसपे अभी कुछ बचा भी नहीं है। तो वो लड़ लिए, डॉक्टर मिगेल रेमिरेज ने कहा ठीक है, अगर मैं गलत हुआ तो मुझे कोई भी सज़ा मंजूर है, पर अगर मैं सही हुआ तो उसकी जान बच जाएगी। Then everybody was silent. सबके मुंह पे ताले लग गए थे, ऐसे मुंह पे गोंद लगा दी हो कि अब कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो फिर जो टेस्ट बताए गए थे वो टेस्ट किए गए और पूरा खर्चा मिसेस कार्मन ने कहा कि मैं दे रही हूं ना खर्चा, आपको एक्स्ट्रा चाहिए आप लीजिए, मगर टेस्ट कीजिए। एंटीबॉडी टेस्ट हुए और वो टेस्ट पॉजिटिव आया, एमिली के स्पाइनल फ्लूइड में
एंटीबॉडीज थी मौजूद जो ब्रेन तक जा रही थी और अटैक कर रही थी। अल्ट्रासाउंड में यह भी पता लगा कि एक ट्यूमर था, बेसिकली ये ट्यूमर कहलाता है टेराटोमा। नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, इस ट्यूमर को टेराटोमा कहते हैं। ये अलग होता है, ये ऐसा ट्यूमर होता है जो दांत भी उगा लेता है, बाल भी उगा लेता है और बोन्स भी कई बार उगा लेता है और साथ में टिश्यूज भी उगा लेता है। तो एमिली के केस में हो ये रहा था कि नर्व सेल्स पैदा हो रहे थे, बॉडी ने उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाई और कंफ्यूजन में एनएमडीए रिसेप्टर जो ब्रेन के स्विच होते हैं उनको अटैक करना शुरू कर दिया। ये ट्रेवल कर रहे थे ब्रेन तक और फिर अपने आप को ही तबाह कर रहे थे। ट्यूमर से लड़ने के चक्कर में एमिली की बॉडी साइड में अपने आप को नुकसान पहुंचा रही थी। एमरजेंसी सर्जरी हुई तुरंत। ये टेराटोमा जो ट्यूमर था ये पूरा गोल्फ साइज बॉल का था, जो बॉल होती है गोल्फ खेलने वाली उस साइज का था। उसमें हेयर भी थे, दांत भी थे, टिश्यू भी थे। समझ लीजिए एक टाइनी ब्रेन जो था वो क्रिएट हो गया था ट्यूमर के अंदर और ट्यूमर था बॉडी के अंदर। पर प्रॉब्लम ये थी कि हालांकि इस ट्यूमर को रिमूव कर दिया था, डैमेज बहुत हो चुका था क्योंकि बहुत लेट जाके ये चीज सामने आई थी। तो मसला ये था कि उसके ब्लड को क्लीन करने की जरूरत थी एंड इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस बेसिकली एक मशीन के थ्रू एंटीबॉडीज जो ब्लड की होती हैं, खून की होती हैं, उन्हें फिल्टर किया जाता है क्लीन करके और ब्लड को वापस फिर बॉडी में। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो ये तक किया गया। बॉडी में बेसिकली एक चीज होती है जिसे इम्यूनो ग्लोबुलिन कहते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम में जाता है और पूरे सिस्टम को रीसेट करता है। जैसे हम क्या करते हैं, सिस्टम चालू नहीं होता तो ऑन ऑफ करते हैं ना, ऑन ऑफ का बटन, ये बिल्कुल ऑन ऑफ का बटन होता है। बिल्कुल वैसे ही इम्यून सिस्टम को रीसेट किया गया। 20 दिन एमिली को कोई होश नहीं आया, एमिली कोई जवाब नहीं दे पा रही थी एंड सबको लगा कि शायद हम फेल हो गए हैं। 23वें दिन नर्स ने कोशिश करी बैठने की, नोटिस करने की, लेकिन देयर वाज नथिंग। 26वें दिन आलम ये था कि एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अब हमें मशीन हटा देनी चाहिए बिकॉज कोई फायदा नहीं है। यहां पर एक बहुत कमाल की चीज हुई। 26वें दिन जब वो मशीन हटाने के लिए जा ही रहे थे, दे वर टॉकिंग, तो एमिली का जो सीधा हाथ था उसके तीन फिंगर्स ऐसे ट्विच करने लगी, हल्की सी कांपने लगी एंड वो नर्स ने नोटिस किया। और जब नोटिस किया तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से एमिली ने उसका हाथ पकड़ लिया एंड द नर्स शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगी। इसके बाद 28वें दिन धीरे से अपने होठों को खोलने की कोशिश करी एमिली ने और वर्ड बोला मॉम। और कार्मन जुमा थी वो तो ऐसे रो रही थी, इस कदर रो रही थी ऑब्वियसली खुशी के आंसू के उनकी खुद की आवाज नहीं निकल रही थी। 3 महीने बहुत मेजर थे इस रिकवरी के, क्योंकि वापस बोलना सीखना है, वापस चलना सीखना है, वापस खाना सीखना है। वो जो मेमोरीज थी जो बहुत ही इधर उधर हो चुकी थी क्योंकि ब्रेन इधर उधर हो गया था, वो सारी मेमोरीज तो लौट के आ रही थी मगर टुकड़ों में, किश्तों में, कि पता है ये हुआ था लेकिन कैसे हुआ था याद नहीं, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और एमिली जो थी वाज टू लकी, बहुत खुशनसीब थी। खुशनसीब इसलिए क्योंकि एक डॉक्टर मौजूद था जिसे अपनी पढ़ाई याद थी और वो अपने हॉस्पिटल से लड़ने को तैयार था, और एक मां तैयार थी जो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। 1 साल लगा कंप्लीट रिकवरी में, लेकिन 1 साल के बाद एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में वो वापस पहुंची भी, न्यूरो साइंस की पढ़ाई भी शुरू करी, ब्रेन की पढ़ाई करी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि क्या हुआ उसके साथ। वापस लाइब्रेरी में एमिली बैठी हुई थी और पढ़ रही थी कि चीज़ें ये वापस हो सकती हैं, वापस ये सब लौट के आ सकता है, और अपने दिल पर हाथ लगा के चेक करती थी कि कहीं वापस मुझे धड़कन तो मेरी तेज़ नहीं हो रही है, क्योंकि 12% चांस होता है कि इंसान रिलैप्स कर जाए। लेकिन आपको जान के खुशी होगी, मैंने भी रिसेंट भी चेक किया है, एमिली इज फाइन, शी इज डूइंग वंडरफुल, अपनी लाइफ में एकदम सेट है, मेडिकल फील्ड में है
एंड उसके केस ने बहुत कुछ सिखा दिया है. ये कि जो केसेस 2007 से पहले के रहे हैं जहां पे लोग समझ नहीं पा रहे थे और ये कह देते कि ओ भूत आ गया, कितने केसेस गलत ट्रीट किए गए होंगे. इस बात का गम भी है और इस बात की खुशी भी कि अब शायद सब ट्रीट सही से किए जाएंगे. दिस वॉज द स्टोरी. 666-22107 नंबर है, 666-22107. एंड आपके मैसेजेस के इंतजार में मैं दोहा वाला कबीर, बिकॉज आई लव टू नो. ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के काम तो आएगी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ बता देती है कहानी. तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे बता सकते हैं 666-22107 पे. कॉल्स अभी कुछ देर मिलेंगे हम 666-22107.

0: कोई खास फायदा हो न जरूरत, उन्हें कम करना बेहतर है, क्योंकि बेजरूरत गुफ्तगू कभी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को गीबत, तंज, झूठ या दूसरी नामुनासिब बातों तक पहुंचा देती है। सामने के नाम, अगर आज की इस सुन्ना को हम अपनी अमली आदत में तब्दील करना चाहें तो बोलने से पहले चंद लम्हों के लिए हमें तीन सवाल अपने आप से पूछ लेना चाहिए। पहला सवाल ये है कि क्या ये बात सच्ची है कि जो बात मुझे मालूम ही नहीं, मैं उसे यकीन के साथ क्यों बयान करूं? दूसरा सवाल ये है कि क्या ये बात खैर और फायदे की है? सच होना तो जरूरी है, लेकिन हर सच्ची बात हर मौके पर कहना जरूरी नहीं। किसी का ऐब वाकई मौजूद हो तब भी बिला जरूरत उसे लोगों में बयान करना मुनासिब नहीं। और तीसरा सवाल ये है कि क्या ये बात अभी अभी कहना जरूरी है? यानी कभी बात दुरुस्त होती है लेकिन वक्त गलत होता है, कभी अल्फाज दुरुस्त होते हैं लेकिन लहजा गलत होता है, कभी नसीहत तो अपनी जगह पर ठीक है लेकिन वो सबके सामने नहीं, तन्हाई में ज्यादा मुअसर होती है। सामने किराम, तो हदीस का उसूल याद रखिए, फलीकुल खैर नौली असमत। सामने किराम, आज की सुन्नत हमें यही सिखाती है कि हर अहम जुमले से पहले दिल में एक छोटा सा दरवाज़ा लगा दें। खैर है हाँ तो बोल दीजिए, खैर वाज़े नहीं तो रुक जाइए। शायद दिन के अख्तिताम पर हमें एहसास हो कि हमारी कितनी गुफ्तगू गैर ज़रूरी थी, और शायद ये भी मालूम हो कि खैर के कितने अल्फाज थे जो हमें कहने चाहिए थे लेकिन हमने नहीं कहे। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगियों में उन्हें नाफिज करने की तौफीक अता फरमाएं। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफ जमान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद।

ये तो सभी जानते हैं लिसनर्स के स्मोकिंग का इस्तेमाल खतरनाक है क्योंकि ये कैंसर, दिल की बीमारी और बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकता है। इसी तरह जो टोबैको का माहौल पर भी मनफी असर पड़ता है और इस तरह बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। और अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्मोकिंग को ख़त्म कर दें, यानी अगर स्मोकिंग आप कर रहे हैं और आप उसे ख़त्म करते हैं तो फिर एक हफ्ते के बाद जो है हमारे जो लंग्स हैं उनकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। और इसी तरह से अगर एक महीने तक आप जो है स्मोकिंग से दूर रहते हैं

0: इसी तरह से 5 साल तक अगर आप स्मोकिंग जो है वो क्विट करते हैं तो फालिज का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है और ये एक गैर सिगरेट नोशी करने वाले जैसा ही हो जाता है, जैसे कि अगर कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा तो उसके बराबर ही आ जाता है। इसी तरह से मुंह में गले गजाई नाली जो है या फिर ये कि मसाने के कैंसर का खतरा भी निस्फ हो जाता है। और 10 साल के बाद अगर आपने पहले स्मोकिंग जैसे कर रहे थे और उसके बाद स्मोकिंग को छोड़ दिया है और 10 साल हो चुके हैं तो फिर फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे कि एक नॉन स्मोकर का हो जाता है। इसी तरह से लैरिंग्स और जो पेंक्रियास है या लबलबा उसके कैंसर का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। तो फिर ये है कि दिल की बीमारी का खतरा जो है उससे भी दूर रहा जा सकता है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे दूर रहा जा सकता है अगर आप जो स्मोकिंग है उसे क्विट कर दें। हेल्थ फॉर ऑल
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: What is music station? Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। और जी आज भी बहुत बढ़िया बढ़िया वेबसाइट हैं, मजा आ जाएंगे, आपको चस आ जाएगी, इस बात का पूरा पूरा वादा है। लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ भी जरूर आइएगा। सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar सबसे पहले वेबसाइट्स और उसके बाद हम बढ़ेंगे सीधा खबरों की तरफ। ओके, सो वेबसाइट नंबर वन, इसका नाम है driveandlisten.com। एन है, एंड नहीं है, ये भी बता दूं मैं। सो लेट मी स्पेल इट आउट फॉर यू, DRIV

0: N L I S T E N driven या फिर drive and listen, जैसे मर्जी आप पढ़ना चाहें दोनों ही ठीक है. So driveandlisten.com इस पे जब आप जाएंगे तो आप जो है किसी भी शहर का नाम डालेंगे तो उस शहर के रेडियो को आप सुन सकते हैं और साथ में उसकी सड़कों पे ड्राइव वाला फील भी ले सकते हैं आपकी स्क्रीन के थ्रू. हाउ क्रिएटिव इज दैट यार, क्या कहां जा रही है दुनिया, बहुत कमाल की चीज है. आई हैव नॉट ट्राइड कतर अभी तक क्योंकि मैं तो मतलब खुद ही रेडियो हूँ, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज का अगर आप कुछ ट्राई करना चाहें ना, यू कैन ट्राई. उनकी सड़कों पे घूम सकते हैं आप किसी भी शहर का नाम डाल के और सीधा सीधा आप जो है उसके साथ साथ आप उनके रेडियोस को भी सुन सकते हैं. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन. तो जी अगला जो है वो है terrainc.app. मैं बताता हूं फिर से, टेरा terrainc.app. इस पर जब आप जाएंगे तो आपको ये फिर से पूछेगा शहर का नाम. जब आप शहर का नाम बताएंगे तो उस पे जाने के बाद आप अपने मैप को, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ट्राई किया था कि दिल्ली का नाम डाल के देखता हूं. सो मैंने दिल्ली डाला तो मैप आ गया. उस मैप को आप कैसे भी सजा सकते हैं भाई, उसको आप एंशिएंट लुक दे दीजिए, उसको आप एनिमे टाइप लुक दे दीजिए, उसको आप चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कीजिए, इट इज ब्यूटिफुल. और ये काम आता है जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं, आप कुछ फैंसी सा अपने कमरे में लगाना चाहते हैं कोई पोस्टर, आप यहां से बना के देखिए, इट इज सो सो यूनिक. और जिसने भी ये सोचा, अच्छा वो उसने इस चीज को हल्के में नहीं लिया, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो बहुत मेहनत से बनती है अगर आप वैसे फोटोशॉप में बनाने लग जाएंगे तो. दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट वेबसाइट एवर. मैं फिर से बता रहा हूँ, terrainc.app terrainc.app. जाके देखिए, अपने शहर का मैप खूबसूरती से बनाइए एंड यू कैन देन प्रिंट इट आउट, टी शर्ट पे लगा लो, गाड़ी पे दीवार पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, मजा आ जाएंगे आपको. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन. अगली वेबसाइट है buildcores.com buildcores.com. buildcores.com जिस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे जो आप जाएंगे तो आप अपना पीसी खुद डेवलप कर सकते हैं. आपको आइडिया लेना कि भाई मेरे पीसी में क्या क्या लगा सकता हूँ, कहाँ कहाँ लगाऊंगा, कैसे कैसे लगाऊंगा, क्योंकि गेमर्स को बड़ा शौक होता है अपने अपने पीसी खुद डिजाइन करने का, वीडियो एडिटर्स को शौक होता है अपने हिसाब से रैम सेलेक्ट करना और ग्राफिक कार्ड्स लगाना और सब कुछ शुरुआत से बिल्ड करना. तो बिल्ड कोर्स पे जाके आप एक पूरा का पूरा पीसी वर्चुअली बिल्ड कर सकते हैं एंड देन यू कैन चूज के यार ये बढ़िया लग रहा है, अब मैं जाके असलियत में कर लेता हूँ काम, तो वो आप कर सकते हैं. सच अ यूनिक वे ऑफ परसुइंग दिस, लव्ड इट मैन. तो इसके बाद अब हम बढ़ेंगे खबरों की तरफ. तो देखिए अभी रिसेंटली अपडेट्स के बारे में बात की जाती है. हम ये मानते हैं कि भाई देखो फोन को अपडेट कर लेते हैं तो फोन स्लो हो जाता है, ये कहीं हद तक सच भी है और कहीं हद तक सच नहीं भी है. मगर अभी स्मार्ट वॉचेस के ओनर्स जो हैं उनको कहा गया है, कंपनीज ने बोला कि भाई सुनो अपनी ऐप को अपडेट कर दो, अपनी वॉच को अपडेट करो. बहुत सारे ओल्डर एप्पल गूगल और सैमसंग की वॉचेस हैं जो अभी एंड ऑफ देयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट पीरियड तक पहुंच चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको अपडेट नहीं किया तो फोन के साथ कनेक्ट होकर चल नहीं पाएंगे. तो अगर आपके पास वॉच है और आप अपडेट नहीं मार रहे हैं उसे तो दिक्कत हो जाएगी. प्लीज अपने अपने एटलीस्ट स्मार्ट वॉचेस को अपडेटेड रखें, बिकॉज अगर सॉफ्टवेयर सपोर्ट चला गया तो फिर आपको धीरे धीरे तकलीफ होगी और वो धीरे वाली तकलीफ ना नहीं सही जाती ऑनेस्टली. या ट्रू. All the best to you. And on that note, मिलेंगे अगले tech update में. This is Kabir signing off. अपना ख्याल रखिए. दिल से देसी.
1: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है. कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है.
3: नजर यूं झुकाना मेरे लिए है बस, मेरे लिए है.
2: कभी नए सपने दिखाता है. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं द रिक्वेस्ट शो. चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक। हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर आपको नए जमाने के नए स्कैम्स के बारे में पता चलता है। इमेजिन करिए कि आपका कोई अपना बिजनेस है, और इमेजिन क्यों करना भाई, बड़े लोग सुन रहे हैं, आपका बिजनेस होगा, लेकिन ये बिजनेस आजकल बहुत ज्यादा टारगेट पे है स्कैमर्स के, फ्रॉडस्टर्स के, जिन्होंने नए तरीके निकाल के रखे हुए हैं कि लोगों को स्कैम करना है। लेकिन ये स्कैम CEO impersonation स्कैम है, यानी कि CEO बनकर धोखेबाजी करने वाला स्कैम। कई बार ऐसे स्कैम में एम्प्लॉयज फंस जाते हैं। आपके ऑफिस में काम करने वाले, आपके कंपनी में काम करने वाले, आपके बिजनेस, आपके स्टोर, आपके मॉल में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, वो फंस जाते हैं। कैसे ये स्कैम काम करता है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं, लेकिन साथ ही साथ सॉल्यूशन पर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले होता यह है कि CEO impersonation स्कैम, जिसे बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज भी कहा जाता है, कॉर्पोरेट दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक और चालाकी से भरा हुआ धोखा है। इस फ्रॉड में क्रिमिनल किसी भी कंपनी के सबसे बड़े बॉस, जैसे कि CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर या CFO का भेष जो है वो ले लेते हैं, प्रटेंड करते हैं, और फिर वो सच में बॉस नहीं होते हैं, बल्कि एक फेक ईमेल अकाउंट बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। कभी कभी हैकर्स बॉस का असली ईमेल अकाउंट भी हैक कर लेते हैं। इसके बाद हैकर कंपनी के फिनांस या अकाउंट या HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को अर्जेंट ईमेल भेजते हैं, और ये अर्जेंट ईमेल इस बेसिस पे भेजते हैं कि इनको पैसे की जरूरत है और क्लाइंट सामने है। ईमेल में ऐसी कहानी लिखी होती है जिससे एम्प्लॉय डर जाए या बिना सोचे समझे काम कर दे। जैसे हैकर लिखेगा कि मैं एक बहुत ही सीक्रेट और इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में हूँ, इसलिए मुझे कॉल मत करना, हमें एक नए क्लाइंट को तुरंत पैसे वायर ट्रांसफर करने हैं, बैंक ट्रांसफर, नहीं तो डील हाथ से निकल जाएगी। स्कैमर जानबूझकर एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है और कहता है कि कंपनी के स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और वेरिफिकेशन स्टेप्स को अभी के लिए बाईपास कर दो, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, क्लाइंट सामने है। एम्प्लॉयज अक्सर अपने सीनियर बॉस के डर से या कंपनी के नुकसान होने के डर से बिना क्रॉस चेक किए पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। आमतौर पर मैं भी यही करूंगा भाई, लेकिन ये जरूरी है कि आपकी ऐसे में ट्रेनिंग हो। हम सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। होता यह है कि जब आपके ऊपर जबरदस्ती या जल्दबाजी की जाती है तो आपके फैसले लेने में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, आप परफेक्ट फैसला नहीं ले पाते, इसलिए जल्दबाजी में जब भी आप फैसला लेते हैं आपके साथ स्कैम हो जाता है। लेकिन इस तरह के जल्दबाजी वाले ईमेल पर आप जरा भी रिएक्ट ना करें, इसके अलग अलग सॉल्यूशन है, इस तरह के स्कैम से आप बच सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है बचने का है वो है वर्बल कंफर्मेशन रूल। अगर ईमेल में ये लिखा है कि अभी मुझे कॉल मत करना, तो ये अलर्ट है आपके लिए, क्योंकि किसी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या बैंक डिटेल चेंज की रिक्वेस्ट आने पर सबसे पहला फर्ज यही है कि आप बॉस को डायरेक्ट कॉल करें। और अगर ईमेल में बाकायदा लिखा है कि अभी तुरंत मुझे फौरन चाहिए, तो आपको हमेशा बॉस को कॉल करना चाहिए, और बॉस को भी ये बात समझनी चाहिए कि एम्प्लॉय और बॉस के दरमियान बहुत बड़ा गैप ना हो, और इतना बड़ा गैप खास कर ना हो कि इस तरह के स्कैम हो जाए कि कोई पैसे मांगे और एम्प्लॉय ट्रांसफर कर दे। फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसफर कर भी देते हैं, क्योंकि आमतौर पर CEO जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट से, HR डिपार्टमेंट से थोड़ा दूर दूर से रहते हैं, वो या तो प्रोडक्शन वालों से बात करते हैं या फिर सेल वालों से, है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चाहे ईमेल कितना भी अर्जेंट हो, बिना आवाज सुने, बिना डायरेक्ट उनके नंबर पे बात किए कोई भी ट्रांसफर पैसा ना करें। उसके अलावा ड्यूअल ऑथराइजेशन प्रोसेस, दो लोगों की परमिशन

0: रूल होने चाहिए, ये एक रूल होता है हर कंपनी का। कंपनी में एक नियम बनाए जहां किसी भी बड़े फंड ट्रांसफर के लिए कम से कम 2 सीनियर एम्प्लॉइज का अप्रूवल मैंडेटरी हो। तीसरा तरीका है ईमेल स्पूफिंग फिल्टर। अपने आईटी डिपार्टमेंट को बोलकर एसपीएफ यानी कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क और ऐसे ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का सेटअप करें जिससे इस तरह के स्कैम से बचा जा सके। उसके अलावा एक तरीका है एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इसके बारे में इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने अकाउंट्स और फिनांस स्टाफ को रेगुलर इंटरवल्स पर सिक्योरिटी ट्रेनिंग आपको देनी भी चाहिए, और अगर आपने नहीं भी दी है तो आपको एक बार एटलीस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए या फिर डिजिटल पूरा प्रॉपर पीडीएफ के जरिए कुछ कुछ वक्त में हर 6 महीने हर 3 महीने में एक बार अपने अकाउंटेंट अपने एचआर को या जो सेल्स या प्रोडक्शन वाले हैं उनको बताते रहना चाहिए थ्रू पीडीएफ थ्रू ईमेल कि किसी भी इस तरह के अनजान ईमेल पर या फिर पैसे ट्रांसफर करने वाली बात पर भरोसा ना करें और सारे प्रोटोकॉल के जरिए ही पेमेंट जरूर करें। तो दोस्तों ये था सीईओ इंपर्सोनेशन स्कैम। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे हॉकी के बारे में, यानी फिर हॉकी के बारे में नहीं बल्कि हॉकी के एक लेजेंड के बारे में। और नाम आप लोगों ने सुना होगा और ये नाम आज भी गूंजता है जब भी हम हॉकी कहानी के बारे में हम बात करते हैं, हॉकी न्यूज के बारे में हम बात करते हैं। धनराज पिल्ले के नाम जरूर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, धनराज पिल्ले की कहानी सिर्फ गोल्स, मेडल्स और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं, ये एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जिन्होंने इंडियन हॉकी के एक मुश्किल दौर में अपनी अलग पहचान बनाई। धनराज पिल्ले का खेल देखने वालों के लिए उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी स्पीड और बॉल कंट्रोल थी। वो डिफेंडर्स के दरमियान से इस तरह निकल जाते थे जैसे गेंद उनके स्टिक का हिस्सा हो। एंड दैट रिमाइंड्स अस ऑफ सो मेनी लेजेंडरी हॉकी प्लेयर्स बिफोर हिम, मोहम्मद शाहिद, जफर इकबाल, हसन सरदार, कलीमुल्ला, समीउल्ला फ्रॉम पाकिस्तान। और उसके बाद हॉकी को स्किल्स और वो टैलेंट की कमी थी। और इन सब मारूफ खिलाड़ियों के बाद, आई मीन रिटायरमेंट के बाद, हॉकी वॉज लुकिंग फॉर सम क्लासिकल प्लेयर्स, आर्टिस्टिक स्किलफुल प्लेयर्स, जो कि धनराज पिल्ले ने लेकर आए। धनराज पिल्ले को देखने के बाद धनराज पिल्ले, एवरीबडी थॉट कि हाँ धनराज पिल्ले वो खिलाड़ी हैं जो उस रेंज ऑफ प्लेयर्स जो उनसे पहले खेल चुके हैं उसी लेवल के हैं। एंड एंटरटेनर तो थे ही, उनकी ड्रिबलिंग, क्विक टर्न्स एंड अटैकिंग स्टाइल ने ओपोनेंट्स को अक्सर मुश्किल में डाल दिया। इंटरनेशनल हॉकी में उनका सफर भी कामयाबी से भरा रहा। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में डेब्यू करने के बाद उन्होंने अगले 3 ओलंपिक गेम्स में भी इंडिया की नुमाइंदगी की, यानी 4 ओलंपिक गेम्स, बार्सिलोना, अटलांटा, सिडनी और एथेंस। और हर दफा दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेज पर इंडिया की जर्सी में नजर आए। लेकिन एशियन गेम्स में धनराज का नाम और भी खास तौर पर उभर कर सामने आता है। 1990 बीजिंग, 1994 हिरोशिमा, 1998 बैंकॉक और 2002 बुसन एशियन गेम्स, इन तमाम इवेंट्स में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 1998 में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में उनका किरदार बहुत अहम था, जबकि 2002 में भी इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, उनका इंटरनेशनल करियर इतना लंबा और शानदार था कि वो मुख्तलिफ जनरेशन के प्लेयर्स के साथ भी खेले। उन्होंने इंडियन हॉकी के कई बदलते दौरों को अपनी आंखों से देखा और टीम को लीड भी किया। धनराज की एक और खास बात उनकी फियरलेस पर्सनैलिटी थी। वो फील्ड पर किसी भी ओपोनेंट से घबराते नहीं थे, चाहे सामने दुनिया की कोई भी मजबूत टीम हो। धनराज पिल्ले का अटैकिंग अप्रोच हमेशा उन्हें एक खतरनाक खिलाड़ी बनाता था। इसी वजह से उनका नाम इंडियन हॉकी के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में लिया जाता है। लेकिन धनराज के लिए हॉकी सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं थी, यह उनकी जिंदगी, उनकी पहचान और उनका जज्बा। उन्होंने अपने करियर में मुश्किलात देखी, क्रिटिसिज्म का सामना किया और सिस्टम के साथ उनका जो टकराव था वो भी हमें देखने को मिला। लेकिन हॉकी के लिए उनका पैशन कभी कम नहीं हुआ। ही वॉज सो पैशनेट, ही वॉज सो फोकस्ड, ही वॉज सो मच ग्राउंडेड कि उन्हें हॉकी खेलकर इंडिया का नाम और मजीद बढ़ाना था। उन्हें सिर्फ हॉकी दिखता था, हॉकी स्टिक, हॉकी मैदान, हॉकी के एस्ट्रोटर्फ पिचेस यानी सिंथेटिक पिचेस पर। धनराज पिल्ले वॉज समथिंग जो कि डिफाइन, हम अगर आप लोगों के लिए अगर क्रिकेट के लफ्जों में अगर बात करूं तो कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या बाबर आजम या जावेद मियांदाद या कोई भी अगर आप क्रिकेटर्स उठा लें, क्योंकि आप क्रिकेट आप लोगों का, देसी लोगों का सबसे मनपसंद खेल है, तो धनराज पिल्ले को अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो धनराज पिल्ले का जो नज़रिया था हॉकी को लेकर वो इस तरह फोकस था, इस तरह पैशनेट था जैसे कि इन तमाम क्रिकेटर्स की जिंदगी में रहा है विद क्रिकेट। आज भी जब इंडियन हॉकी

की के गोल्डन मोमेंट का जिक्र होता है तो धनराज का नाम जरूर सामने आता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो स्पीड से खेलता था, जज्बे से लड़ता था और अपनी परफॉर्मेंस से फैंस के दिल जीतता था। धनराज ने सिर्फ इंडिया के लिए हॉकी नहीं खेली दोस्तों, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया कि अगर टैलेंट के साथ मेहनत, हिम्मत और जुनून हो तो दुनिया के किसी भी स्टेज पर अपना नाम बनाया जा सकता है। दैट वॉज द कन्विंसिंग फैक्टर, दैट वॉज द कन्विंसिंग धनराज पिल्ले, जो उन्होंने दिखाया एक रोड मैप, एक मार्गदर्शन, एक हदफ सेट किया था कि दिस आर द फैक्टर्स जिसके बलबूते पे आप हॉकी स्टार बन सकते हैं। और शायद इसीलिए धनराज को सिर्फ इंडिया का हॉकी लेजेंड कहना काफी नहीं, वो इंडियन हॉकी के उन चंद सितारों में से एक हैं जिनकी रोशनी आज भी नए खिलाड़ियों को रास्ता दिखाती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: दोस्तों अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैत्राश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैत्राश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
3: अस्सलामुअलैकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतरी सकाफत में बुजुर्गों को बहुत इज्जत और अहमियत दी जाती है। बुजुर्ग खानदान की वो हस्तियां होते हैं जिनके पास जिंदगी का लंबा तजुर्बा, पुरानी यादें और कीमती मालूमात होती हैं। उनकी मौजूदगी घर में रहनुमाई, सुकून और अपनायत का एहसास पैदा करती है। बुजुर्गों का एहतराम सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि रवैये से जाहिर होता है। उन्हें सलाम करना, खैरियत पूछना, उनकी बात तवज्जो से सुनना और उनका ख्याल रखना अच्छे आदाब में शामिल है। ये छोटी छोटी आदतें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और घर के माहौल को पुर मोहब्बत करती हैं। कतरी घरों में बच्चों की तरबियत में अदब को खास अहमियत दी जाती है। बच्चे सीखते हैं कि बड़े लोगों से किस तरह एहतराम के साथ बात करें, उनकी बात के दरमियान ना बोलें और जरूरत के वक्त उनकी मदद करें। जब एक बच्चा बुजुर्ग की कोई छोटी सी खिदमत करता है तो उसमें सिर्फ मदद का जज्बा नहीं बल्कि मोहब्बत और एहतराम भी शामिल होता है। बुजुर्ग अक्सर खानदान की तारीफ

और रिवायात के रखवाले होते हैं। उन्हें अपने बचपन, गांव, समंदरी सफर, पुरानी दस्तकारी, खानों और समाजी रवैयों के बारे में बहुत सी बातें याद होती हैं। उन कहानियों के जरिए नई नस्ल को अपने मुल्क और अपने विरसे को समझने का मौका मिलता है। किसी बुजुर्ग से कहानी सुनना सिर्फ एक तफरीही मशगला नहीं, इससे बच्चों को गुजरे हुए वक्त, मेहनत, सबर और शुक्रगुजारी के बारे में सीखने को भी मिलता है। कभी एक छोटी सी याद भी पुरानी जिंदगी के किसी खूबसूरत पहलू को सामने ला सकती है। बुजुर्गों की रहनुमाई घर के फैसलों में भी मददगार साबित होती है। उनका तजुर्बा हालात को बेहतर समझने और सोच समझकर कदम उठाने में मदद देता है। नई नस्ल की अपनी सोच और अपने तजुर्बात होते हैं, लेकिन बुजुर्गों की बात को इज्जत से सुनना हमेशा एक अच्छी आदत है। एहतराम का मतलब ये नहीं कि बुजुर्ग हमेशा एक जैसी सोच रखते हैं या हर बात में उनकी राय लाजमी हो, बल्कि असल बात यह है कि उनसे नरमी और अदब के साथ गुफ्तगू की जाए। मोहब्बत और एहतराम के साथ इख्तलाफ भी किया जा सकता है। बुजुर्गों का ख्याल रखना भी इस रिवायत का अहम हिस्सा है। उनकी सेहत, आराम और जरूरियात का लिहाज करना चाहिए। कभी उनके साथ वक्त गुजारना, कभी उन्हें फोन करना या कभी उनकी किसी छोटी जरूरत में मदद कर देना उनके लिए बहुत खुशी का सबब बन सकता है। आज की मसरूफ जिंदगी में घर के तमाम अफराद के लिए एक साथ वक्त निकालना जरूरी है। एक साथ खाना खाना, चाय या कहवे पर बैठना और हाल अहवाल पूछना बुजुर्गों को अपनाइयत का एहसास देता है। साथ ही बच्चों को भी खानदानी रवाबत की अहमियत समझ आती है। बुजुर्गों के लिए सबसे कीमती चीज अक्सर तवज्जो होती है। उनकी बात को बेदिली से नहीं बल्कि दिल लगाकर सुनना चाहिए। अगर वो किसी पुरानी रिवायत या तजुर्बे का जिक्र करें तो उनमें दिलचस्पी लेना उनकी इज्जत और खुशी दोनों बढ़ा देता है। कतरी मजलिस में भी बुजुर्गों की मौजूदगी और उनका एहतराम एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनके साथ अदब से बैठते हैं। इसी तरह बच्चे महफिल के आदाब देकर सीखते हैं। बुजुर्गों के साथ रवैया सिर्फ खानदान की पहचान नहीं बल्कि माशरे के हुस्न अखलाक का इजहार होता है। जब लोग अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं तो वो नई नस्ल को भी मोहब्बत, सब्र और जिम्मेदारी का दर्स देते हैं। कतर की सकाफत में वर्से की हिफाजत का एक तरीका ये भी है कि बुजुर्गों के तजुर्बात को महफूज रखा जाए। उनकी कहानियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं, उनके हुनर सीखे जा सकते हैं और उनकी यादों को खानदानी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया जा सकता है। बुजुर्ग दरख्त की मजबूत जड़ों की तरह होते हैं। जड़ें नजर नहीं आती लेकिन दरख्त को मजबूती देती हैं। इसी तरह बुजुर्गों का तजुर्बा और रहनुमाई खानदान को सहारा देती है और पुरानी रवायात को जिंदा रखती है। आज के कल्चर मोमेंट का पैगाम यह है कि बुजुर्ग हमारी जिंदगी का कीमती सरमाया है। उनका एहतराम करें, उनकी बात मोहब्बत से सुने और उनके लिए वक्त जरूर निकालें, क्योंकि जो खानदान अपने बुजुर्गों को इज्जत देता है वो अपनी रिवायात, अपनी यादों और अपनी पहचान को भी महफूज रखता है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: पहले जमाने में क्या होता था कि जब ये टीवी स्क्रीन्स नहीं थी, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स नहीं थे, तो होता यह था कि लोग घर में खाना बनाते थे, पैदल चल के मस्जिद जाते थे, पैदल चल के काम पे जाते थे, और उसके अलावा अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, दोस्तों से मिलते थे, शाम को गैदरिंग्स होती थी। तो ये उसकी पूरी रूटीन में क्या क्या कवर हो गया? एक तो ये कि खाना हेल्दी हो गया क्योंकि घर पर बनाए, दूसरा ये कि वो चल के जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइज आ जाती है, और तीसरा ये कि जब वो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से रेगुलरली मिलते हैं तो उससे उनका स्ट्रेस कम होता है और उनको लगता बेहतर फीलिंग होती है। और इसमें क्या खर्चा, कितना खर्चा हो गया? कोई खर्चा नहीं, कोई महंगाई नहीं है, लेकिन उस जमाने में अगर आपको कोई भी बीमारी लगनी है तो इसका मतलब ये कि बहुत महंगी जाके कोई गजा कोई ले रहा है जो कि अच्छी नहीं है, या कोई बहुत महंगी गाड़ी ले ली और उसके ऊपर चल के उस पर बैठ के जाता है और वो ज्यादा चलता नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे ये था कि सेहत सस्ती थी और बीमारी महंगी थी। लेकिन आजकल के दौर में क्या है कि जो जितना भी फास्ट फूड हमें अभी अवेलेबल हो गया है, जितनी शुगरी ड्रिंक्स हमें अवेलेबल हो गई हैं, टीवी एक ऐसी स्क्रीन जिसके आगे 8-8 घंटे लोग बैठे रहते हैं,
1: और अट्रैक्शन बहुत है,
0: अट्रैक्शन बहुत है इन चीजों
1: की, बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, मैं सबको कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये टीनेजर से ही शुरू हो रहा है काम, तो आप देखेंगे इसमें आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा, आपकी एफर्ट नहीं हो रही, लेकिन बीमारी आपके पास आई जा रही है जो है। और लेकिन अब इसको अगर आपको आ जाती है बीमारी और अब आपने उसको ट्रीट करना है, तो आप सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, आप उसके हैवी बिल्स देते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, मेडिसिंस लेते हैं, उसके अलावा जब डॉक्टर आपको कहते हैं आप जिम ज्वाइन करें, उसके अलहदा पैसे आप देते हैं, उसके बाद वो आपको कहता है कि आप ये फलानी जो है आप रिजीम फॉलो करें 3 महीने 6 महीने, उसके अलहदा आप पैसे देंगे, तो ये सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, जबकि आप ये सब प्रिवेंट कर सकते थे। आप चाहते तो आप को ये सारा जो खर्चा है ये भी बच जाता, आपकी बीमारियां भी बच जाती अगर आप बेसिक्स पे रहते जैसे पहले जमाने में होता था। तो ये दौर ऐसा आ गया है कि बीमारी आना बहुत सस्ता हो गया है और अपने आप को सेहतमंद रखना बहुत महंगा हो गया है।
1: जी ठीक। और ये छोटे छोटे ऐसे तरीके हैं जो अपनाए जा रहे हैं, तो इससे जैसे जो बीमारी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। ठीक। और बिल्कुल सबसे जो पहली बात आपने ये कि फास्ट फूड या आजकल जो होम डिलीवरीज का चक्कर है, वो टाइमिंग्स का,
0: जी मैं आपको बताता हूँ आजकल की क्या रूटीन आती है। तो सुबह उठ के जो सबसे पहले तो ये कि जो लोग सुबह उठते हैं उनकी रात की नींद ही नहीं पूरी हुई होती क्योंकि वो लेट नाइट सोए होते हैं और कोई ना कोई मेडिसिन लेके सोए होते हैं, तो उनकी नींद पूरी नहीं होती। उठते साथ वो कॉफ़ी पहले स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो शुगर वाली कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो वो एक ऑलरेडी एक हाई कैलरी ड्रिंक हो जाती है। उसके बाद जब वो काम से वापस आते हैं तो सबसे पहले टीवी लगाते हैं और बैठ जाते हैं, और शाम तक वो जो है ना टीवी और ये चल रहा होता है और उसमें जो है कोई मूवमेंट नहीं होती। उसके बीच में वो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, वो उसी बेड के ऊपर जहाँ टीवी देख रहे हैं वहाँ ही बैठ के खाते हैं, और रात को फिर उसी बेड पे दोबारा ऑर्डर करते हैं और वही खाते हैं, उसमें उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। उसके बाद जब रात को सोने का टाइम आता है तो वो फिर रात भर जागते हैं, उस टाइम वो कहीं कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, तो उनको होता है कि सुबह काम पर भी जाना है, अब सोने के लिए वो नींद की मेडिसिन लेते हैं। तो इससे आपको आपकी बॉडी में मल्टीपल चेंजेस आती हैं, आपका सोने का रिदम भी ख़राब हो जाता है, आपकी बॉडी में अनहेल्दी जो है वो फूड जा रहा होता है, आपकी जो डाइट है वो तो ऑलरेडी ख़राब हो गई, नींद भी ख़राब हो गई, लेकिन ओवरऑल जो है ये आपकी सेहत को इफ़ेक्ट करती है, और स्लोली स्लोली उसको जो पता चलता है कि वो कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला होता जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्यों हम कहते हैं डिजीज़ जो है बहुत चीपर है, क्योंकि इतनी चीज़ें आपने बता दी, मगर ये कि जो बीमारियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हमारे अंदर आ रही हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं?
0: जी तो सबसे पहले तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे हम नॉर्मली हर रोज़ डिस्कस करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या है कि बैठे रहना, हरकत ज़्यादा ना करना, जंक फूड खाना, और उसके इससे सबसे पहले क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है जो शुगर की जो है ना प्रोसेसिंग वो वीक हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, उससे सबसे पहले आपको डायबिटीज़ होने का चांस होता है, और आजकल तो वो छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही है। उसके बाद आस्ता आस्ता ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है क्योंकि आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, तो ब्लड प्रेशर शुगर के साथ ब्लड प्रेशर अक्सर आप देखेंगे कि लोगों को होती है। उसके बाद क्योंकि इतनी मूवमेंट नहीं है, हरकत नहीं है, ब्लड फ्लो इतना अच्छा नहीं होता, तो उनको जॉइंट की प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं, और स्क्रीन टाइम के साथ रिसर्च अब बता रही है कि जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम है उतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी के में आप मुब्तला हो सकते हैं। तो ये 3-4 बीमारियां तो आपको उस इकट्ठी आने का चांस होता है।
1: बिल्कुल।

0: सबसे पहले ये कि अब इसके जो मदर ऑफ डिजीजेस हैं वो तो ओबेसिटी है
1: जी,
0: और उस पर हम जरूर बात करेंगे। और स्पेशली जैसे कि आपके जो प्रोग्राम है, हमारे लिसनर्स जो हैं वो भी बहुत कहते हैं कि हमें उसी पर बात करनी है, क्योंकि जो मोटापा है या ओबेसिटी है उसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसे एनजाइटी की आपने बात की
1: जी,
0: और जॉइंट्स की
1: प्रॉब्लम
0: वो सारी की सारी इसमें होती हैं। तो इसकी क्या मतलब, इसमें हम थोड़ा ऐड ज़रूर करना चाहेंगे कि किस तरह से ये तमाम जो डिजीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं आहिस्ता आहिस्ता
1: जी। तो सबसे पहले तो ये कि यूजुअली जो लोग इस लाइफस्टाइल को जी रहे होते हैं उनको तब तक अवेयरनेस नहीं आती जब तक कि उनको पहला अटैक नहीं आता, ठीक है।
0: अच्छा।
1: अटैक क्या होता है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अपने करीबी दोस्तों को भी जानता हूँ, कल एक दोस्त से मिला तो उसको जो फर्स्ट अटैक होता है वो एक आता है एंग्जाइटी का अटैक। एंग्जाइटी अटैक ये होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाना, सर में एक्सट्रीम दर्द हो जाना, और उसके अलावा एक फीलिंग आती है कि आप समझते हो कि आपकी दुनिया ख़त्म हो रही है। ये क्या हुआ, बैठे बैठे जी टीवी देख रहे थे तो हमें ये क्यों हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सारे ब्लड टेस्ट करते हैं जी, सारे ब्लड टेस्ट किए, आपने देखा शुगर बहुत हाई है और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई आया है और हार्ट की जो एंजाइम्स हैं जिससे हार्ट अटैक होने का चांस है वो भी हाई है। अब वो कहते हैं ये कैसे हो गया भाई, एकदम से मुझे ये सब कैसे हो गया। तो ये प्रोसेस तो पिछले 5-6 सालों से चल रहा था ना, तो आपने नहीं नोट किया, आपको तो अब वो के अब उसका होता है कि अब मैं इसकी सारी ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ, तो अब वो जो है ना एक महंगे ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल पे जाना शुरू हो जाएगा
0: जी। ठीक
1: ठीक है जी,
0: ठीक है। जैसे डायबिटीज जो है वो आपने कहा कि उसमें शुगर एकदम से ज्यादा आई है या बाकी जो टेस्ट हैं वो भी, इसमें एज का बात हम करेंगे कि जो किस एज में क्या हो सकता है
1: जी।
0: या
1: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो वैसे ओबेसिटी और डायबिटीज है ना, इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जो 60% जो ओबेसिटी या मोटापा है ना वो जेनेटिक रीजन उसकी कही जाती है कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली मेंबर्स में को मोटापा है तो वो आपको आएगा ही आएगा, और डायबिटीज के बारे में भी यही रिसर्च कहती है
0: जी जी।
1: ठीक है, तो जिनके अभी जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, जो बच्चे देखते हैं अपने पेरेंट्स को इंसुलिन लेते हुए या मेडिसिन लेते हुए, तो उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनमें चांस है आने का। और ऐसा होता है कि आजकल हम उनको 15-16 साल की उम्र में ही डायबिटिक देख रहे हैं, उनकी शुगर बहुत हाई है और उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि ये क्या हो गया एकदम से।
0: और इसमें टाइप 2 जो है इतनी बहुत छोटी यंग एज में भी टाइप 2
1: डायबिटिक, जी टाइप 2 की ही मैं बात कर रहा हूँ जी, कि टाइप 2 उनको होती है उनके लाइफस्टाइल की वजह से।
0: यही बिल्कुल यही स्टडीज थी, और वैसे भी कि जो यंग हैं, यंग जनरेशन, उसमें टाइप 2 होने के जो चांसेस हैं बहुत कम होते हैं।
1: जी जी बिल्कुल ऐसे ही,
0: और अब मेरा ख्याल है ज्यादा तो टाइप 2 है क्योंकि एनवायरमेंटल है।
1: देखिए टाइप 2 जब कोई भी हमारे पास बच्चा आ जाता है 15-16-17 साल का जो है, तो सबसे पहले उसका मैं क्या देखता हूँ, मैं उसका वेट देखता हूँ, तो वेट ऑलरेडी उसका बहुत ज्यादा होता है। और अभी मैं आपको बताऊँ, आप यकीन नहीं करेंगी, ज्यादातर बच्चे जो है वो 100 kg प्लस है, ठीक है,
0: बच्चे
1: 100 kg प्लस हैं, लड़के लड़कियां, इधर कतर की बात कर रहा हूँ
0: जी जी।
1: और उसके बाद अब उनको क्विक फिक्स चाहिए होता है
0: जी,
1: क्विक फिक्स के हमें जल्दी से पतला कर दें, जल्दी से हमें कोई ऐसा मैजिक सोल्यूशन दें, कोई ऐसी टैबलेट दें, हमें कोई ऐसा इंजेक्शन दे दें, हमारी कोई ऐसी सर्जरी कर दें कि हम एक महीने में 50 kg कम कर दें, तो बहुत मुश्किल है
0: जी।
1: ठीक है ये सब करना, लेकिन इनको हम यही बताते हैं कि देखो वजन आने में कितना टाइम लगा, 4 साल लग गए, 5 साल लगे ना, तब एक महीने में चला नहीं जाएगा, फिर भी हमारे पास सारे ट्रीटमेंट्स हैं
0: जी।
1: बट मैं समझता हूँ कि डायबिटीज
0: इतनी यंग एज में, जैसे हम यंगस्टर्स की बात करें, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अगर आप उन्हें बताते हैं कि अच्छा ये है तो वो कहीं और जाके ट्रीटमेंट जो है वो भी शुरू कर देते हैं, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। मगर जो बेसिक इशू है उसको पहले एड्रेस करना ज़रूरी है
1: जी, जी। अब ये है कि देखें हम इन बच्चों को ट्रीटमेंट दे देते हैं, विद इन 6 months उनका सारा वेट हम लोग रिड्यूस करवा देते हैं।
0: अच्छा।
1: वो बिल्कुल बिल्कुल विद इन 5-6 months उनका सारा वेट रिड्यूस हो जाता है और वो बहुत खुश होते हैं अपने रिजल्ट्स के साथ, उनकी सारी डायबिटीज़ या जो भी इश्यूज है, स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर सब खत्म, वो कोई टैबलेट नहीं लेते। लेकिन 2 साल बाद वो हमारे पास वापस आ जाते हैं वेट, वही वेट लेके वापस, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा जो पहले था।
0: अच्छा।
1: तो इसका मतलब कि जो वजह हम जो उसकी वजह थी मोटापे की वो हमने नहीं ट्रीट की, हमने तो उसको पेशेंट को ट्रीट किया, और वजह क्या थी, उसका लाइफस्टाइल।
0: जी,
1: अगर वो वापस अब उसी लाइफस्टाइल में जा रहा है जहां वो घर पे बैठा है, बाहर से खा रहा है, ठीक है, तो उसका सारा वजन वापस आ जाता है। तो बहुत जरूरी है कि एजुकेशन भी दी जाए कि आप जब वजन कम कर लेंगे तो आपको

0: हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है आपको, थोड़ी एक्सरसाइज, अच्छा खाना खाना है, तभी ये मेंटेन रहेगा। तो जैसे मैंने बताया ना कि मैजिक पिल नहीं है
1: जी, मेहनत तो करनी है।
0: जी मेहनत आपको करनी है, हम आपकी सिर्फ इतना हेल्प कर रहे हैं कि आपका वेट रिड्यूस करवा देंगे ताकि आप इतने हो जाएं कि आप एक्टिविटी कर सकें, मेहनत कर सकें, अपने डिसीजंस ले सकें डाइट के बारे में। क्योंकि जब बंदा बहुत ज़्यादा ओबीज होता है ना, मुश्किल होता है उसके लिए एक्सरसाइज करना, वॉक करना, जॉइंट पेन्स होती हैं और सांस जल्दी फूल जाती है। तो वज़न कम करवा दिया, अब अपनी लाइफ को खुद ही सेट करना है, लेकिन वो वापस उसी लाइफस्टाइल में चले जाते हैं तो वापस आ जाते हैं हमारे पास।
1: ठीक, इसमें डॉक्टर साहब जैसे ओबेसिटी की बात करें, बाकी जो डिजीज़ हैं वो तो बिल्कुल उसे ही, उसकी वजह से ही होती हैं, मगर जैसे आपने ट्रीटमेंट की बात की तो आप किस तरह से, जैसे आपने कहा 6 months में कम कर देते हैं, उसमें सर्जरी है, टैबलेट्स हैं, या किस तरह से, और एज वाइज भी ज़रूर बताइएगा कि एज पर भी ये ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है।
0: जी बिल्कुल, देखें 14 साल से प्लस जितने भी बच्चे हैं हम उनको ट्रीट करते हैं
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाइड 11 साल प्लस पे वो लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, 11 से 12 साल का बच्चा या बच्ची है तो वो वेट लॉस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल होता है यूरोप अमेरिका में, लेकिन यहाँ पे कतर में हम लोग 14 प्लस पे स्टार्ट करते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन ऐसा है कि हर प्रॉब्लम की एक रूट कॉज होती है, जैसे जेनेटिक कॉज है ना, अब एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एक बच्चा है वो खाता है, उसका पेट फुल नहीं होता, वो खा ही जाता है वो 200 किलो 250 किलो तक हो जाता है 16-17 साल की उम्र में।
1: अच्छा।
0: तो हम उन्हें फिर जो है जेनेटिक काउंसलर के पास भेजते हैं, जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, बट ये रेयर केस है। ज़्यादातर जो है वो लाइफ स्टाइल का ही इशू है। हम उन्हें सबसे पहले ऑफर करते हैं मेडिकेशंस, ठीक है, और उसके बाद मेडिसिंस में आपको पता है वेट लॉस इंजेक्शंस आजकल बहुत मशहूर हैं, सेलिब्रिटीज़ ले रही हैं, और ज़ेम्पिक हो गई, मंजारो हो गई, उससे उनका काफ़ी हद तक वज़न कम हो जाता है, और उसके बाद वो अपनी लाइफस्टाइल के साथ उसको मेंटेन करते हैं
1: जी।
0: और जब ये फेल हो जाए तो फिर हम उन्हें, हमारे पास बैलून है, एक बैलून ऐसी चीज़ है जो आप कैप्सूल लेते हैं, आप स्टमक में चला जाता है, उससे आप फुल की फीलिंग रहती है आपको, हर वक्त आपको लगता है कि आपने हर वक्त खाना खाया हुआ है। 4 से 5 महीने वो बैलून आपके अंदर रहता है और आपका काफी 25 से 30 किलो वजन कम हो जाता है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो हम रखते हैं वो सर्जरी है। सर्जरी कभी भी हम पहला ऑप्शन नहीं देते, सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सर्जरी ही है आज तक।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो इसमें भी एज पर डिपेंड करता है कि नहीं?
0: जैसे मैंने,
1: जैसे आपने कहा 14 प्लस को भी सर्जरी
0: जी,
1: अगर जरूरत पड़े तो कर
0: बिल्कुल,
1: लेते हैं।
0: बिल्कुल 14 की हमने की है, 14-15 की हम कर रहे हैं रेगुलरली। देखें अगर बच्चा बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है ना तो उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, ठीक है, उसके हार्मोन्स अफेक्ट होंगे, उसकी बोन्स अफेक्ट होंगी, तो हम उसका वेट लॉस जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, वो 20-25 साल की उम्र में पहुंचे तो उसकी कोई, उसको कोई डिफॉर्मिटी ना हो, उसको कोई बीमारी ना रहे। अब हम उसको इग्नोर करेंगे या हम उसको कहेंगे 18 साल की उम्र में आना हमारे पास, तो 4-5 साल में तो उसका और बेड़ा गर्क हो जाएगा।
1: ठीक ठीक, क्या इस वजह से ये जो ट्रीटमेंट किया जाता है ये डॉक्टर साहब, इसमें आपने इंजेक्शंस की बात की, उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स की बहुत बात की जाती है बार बार, जैसे कि आपने नाम लिया ओज़ेम्पिक है, मंजारो, तो इसमें क्या ऐसा है आपके पास जो पेशेंट्स हैं या कुछ इस तरह के केसेस जो हैं वो आते हैं?
0: जी बिल्कुल, देखें हर चीज़ का साइड इफेक्ट, हर चीज़ का साइड इफेक्ट है, कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, इवन के पेनाडोल भी जो आप सरदर्द के लिए ले रहे हैं उसका भी साइड इफेक्ट होता है अगर ज़्यादा ले लें। तो ये इंजेक्शन बेसिकली, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपकी बॉडी में GLP रिसेप्टर्स होते हैं, GLP पेप्टाइड्स होती हैं जो ये मेडिसिन उनको इन्हेंस कर देती हैं, और इन्हेंस करने से क्या होता है कि 2 फायदे होते हैं, एक तो ये कि आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है, और दूसरा ये कि आपका जो दिमाग में एपेटाइट सेंटर है जो आपको बताता है कि आपने खाना खा लिया, अब आप फुल हो गए, अब आप छोड़ दें, ये उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है जी।
1: अच्छा।
0: तो इससे क्या होता है कि हर वक्त आपने हफ्ते में एक बार ये इंजेक्शन स्किन के नीचे ले लिया तो आपको ना भूख नहीं लगेगी, आप कुछ थोड़ा सा खाएंगे आप फुल हो जाएंगे, तो आप जो है ना आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप हमेशा फुल हैं, आपको भूख नहीं लगेगी। तो इससे जो है इवेंचुअली 1 महीने 2 महीने 3 महीने में, और इसके साथ आपको अच्छी डाइट, थोड़ी हाई प्रोटीन डाइट और थोड़ी सी वॉक करें, पानी ज़्यादा पिए, तो आपका वज़न कम हो जाता है। साइड इफेक्ट्स वहाँ आते हैं जहाँ लोग डॉक्टर्स की एडवाइस नहीं फॉलो करते, खुद ही से बाहर से इंजेक्शंस ले लेते हैं, कभी किसी से कहीं से, खुद ही से डोज बढ़ा लेते हैं। अब ये जो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर इंडिकेशन है, या जो कहेंगे कि जिस सूरत में ये इंजेक्शन हम नहीं देते, जिनमें थायराइड कैंसर का या फैमिली हिस्ट्री हो, या थायराइड का प्रॉब्लम हो, थायराइड के नोड्यूल्स हो, तो क्योंकि ये एक जो है इसकी थायराइड की ना कैंसर करने में इसका कोई थोड़ा डाटा आया था अमेरिका में, इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बाकी सब ले सकते हैं। नौजिया

0: वो एक्सरसाइज हो गई, आपने खाना छोड़ दिया और या आपने सर्जरी करा ली, आपने इंजेक्शंस ले लिए, तो ये बालों पे इफेक्ट आता है
1: जी।
0: ठीक है, इसमें ये इंजेक्शन की वजह से नहीं है, ये सर्जरी की वजह से नहीं है, ये आपकी बॉडी का रिएक्शन है। बॉडी जब वेट लूज करती है तो वो बालों की ग्रोथ को रोक देती है और बाकी बॉडी की तरफ ज्यादा तवज्जो देती है, जिसकी वजह से बाल पतले हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये रिवर्सेबल है, जैसे ही आपका वजन रुक जाएगा, आप वापस खाना खाना शुरू हो जाएंगे तो वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। ये टेम्परेरी होता है, लेकिन इसमें किसी इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है, ये आपका वेट लॉस का प्रोसेस है जिसकी वजह से ये होता है। और दूसरी जो आप बता रही थी चक्कर आते हैं, इसकी वजह है सिर्फ डिहाइड्रेशन।
1: अच्छा, डिहाइड्रेशन।
0: डिहाइड्रेशन क्योंकि जब आपको भूख नहीं लगती ना, पानी भी नहीं पीते, आपका ध्यान ही नहीं जाता कि पानी भी चाहिए, मुझे प्यास नहीं लग रही। तो इसलिए लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि एक पानी की बोतल एक या डेढ़ लीटर की अपने पास रखें, उसका सिप लेते रहें पूरा दिन, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल के, तो वो अपना अपनी नमकियात पूरी रखें।
1: ठीक है डॉक्टर, इसमें जब डोज होती है, जैसे जैसे वेट जो है वो एडजस्ट करते हैं
0: जी जी जी, तो इंजेक्शंस की एक सबसे पहले जो डोज होती है वो बहुत छोटी होती है, और वो होती है सेंसिटाइज करने के लिए आपको, मतलब आपकी बॉडी को उसका आदत, उसकी आदत लगाने के लिए। तो हम जो फर्स्ट डोज एक महीने की देते हैं ना, वो बहुत छोटी होती है ताकि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो पहले से ही पता चल जाए, और उससे फिर भी लोगों का वेट लॉस हो जाता है। हालांकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि उससे ज़्यादा वेट लॉस होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो उसी बेसिक छोटी सी डोज के ऊपर ही 3-4 महीने रहते हैं और उसी से ही उनका वेट लॉस हो जाता है। तो हम हर जो है 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ना डोज जब देखते हैं कि वो उसका वेट रुक गया है और उसको भूख लगना शुरू हो गई है, इसका मतलब वो डोज जो है वो यूज टू हो गया उस डोज के, तो हम उसकी डोज डबल कर देते हैं। मतलब अगर 2.5 थी तो 5 हो जाएगी, इसी तरह 0.5 थी तो 1 mg हो जाएगी, तो हम ना उसकी डोज अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हम बढ़ा देते हैं।
1: ठीक तो डॉक्टर, जो डायबिटीज़ के लिए भी ये जो इंजेक्शंस हैं वो दिए जाते हैं
0: जी,
1: तो उसमें क्या उसकी रिजीम होती है या किस तरह से आप
0: डायबिटीज़ के लिए जो हम ये जी देते हैं वेट लॉस इंजेक्शन जो दे रहे हैं
1: जी, जी जी।
0: अच्छा, ये बड़ा ना ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, तो मैं नहीं चाहता कि लोग सुन के इसको कोई ट्राई करने की कोशिश करें
1: जी।
0: हम देखते हैं कि डायबिटिक बंदे की
1: ये तो है कि अगर कंसल्ट कोई आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो तभी
0: जी, बिल्कुल नहीं, आपको डॉक्टर को अपनी शुगर का ट्रेंड बताना है, आपका 3 महीने के शुगर का टेस्ट का दिखाना है, आपको ये भी बताना है कि आप इंसुलिन की कितने यूनिट्स ले रहे हैं, उसके साथ टैबलेट्स कितनी ले रहे हैं, क्योंकि जो वेट लॉस इंजेक्शन है ना, ये शुगर को इंसुलिन से भी ज्यादा जल्दी कम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट्स को पहले हम ये वेट लॉस इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं और साथ में उनकी शुगर की जो इंसुलिन है वो सेम रखते हैं लेकिन टैबलेट्स छुड़वा देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम उनकी ऐसी डोजिंग करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं कि वो आस्ते आस्ते इंसुलिन और डायबिटीज की मेडिसिन खत्म हो जाती हैं, सिर्फ वेट लॉस इंजेक्शन रह जाता है। और उसके बाद कुछ अरसे बाद जब उसका वजन कम हो जाता है, उसका जो HbA1c या शुगर नॉर्मल हो जाती है, तो हम स्लोली उस वेट लॉस इंजेक्शन को भी लोअर डोज पे लेके आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन तो आपको रोज रात को लगानी है, लेकिन डायबिटीज का जो वेट लॉस का इंजेक्शन है वो हफ्ते में एक बार लगाना है। तो इस तरह जो है ना मैनेज करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है लेकिन सिर्फ एक स्पेशलिस्ट और अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट ही ये करते हैं हम लोग।
1: ठीक डॉक्टर, किस हद तक ये जो इंजेक्शन वगैरह हैं वो सक्सेसफुल हैं, जैसे आप क्या समझते हैं? बाकी हम आगे बैलूनिंग पर भी चलेंगे कि वो क्या है, मगर इसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं और यहाँ पर तो ख़ास तौर पर ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू है, पूरी दुनिया में ही है, मगर ये कि यहाँ पर भी जैसे फास्ट फूड और हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है जी।
0: देखें, इन इंजेक्शंस का जो अभी टाइम शुरू हुआ है ना, ये बहुत अर्ली है, अभी इनके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, सिर्फ वज़न नहीं, इवन कैंसर के अंदर, और उसके अलावा पॉलीसिस्टिक जो औरतों में बेचारियों में प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे नज़र आना शुरू हो गए इन इंजेक्शंस के, क्योंकि आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को ये बैक टू नॉर्मल करते हैं। ठीक है, तो आप जो है अभी हम बहुत अर्ली फेज में, अभी तो हमारे पास 2-3 options है ना, अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है वो जब लॉन्च होगी तो वो ऐसे ही है कि समझे आपने वेट लॉस सर्जरी करा ली, वो इंजेक्शन उस वेट लॉस सर्जरी के बराबर की वेट लॉस देगा आपको। तो इवेंचुअली क्या होगा, अब बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपको बताया कि वो जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद कहते हैं यार कुछ हो ही नहीं रहा, तो इस इंजेक्शन के थ्रू हम उनको वेट लॉस इनिशिएट करवाते हैं और उसके बाद वो अपने लाइफस्टाइल के साथ वो बैलेंस कर लेते हैं। और हमारे पास रश लगा हुआ है जो है ना पेशेंट्स का, जितना फायदा हो रहा है उनको
1: जी,
0: बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं।
1: तो इसमें जो है यहाँ पर जो उसमें और भी मुख्तलिफ डिजीज़ के साथ आते हैं या सिर्फ मोटापे की वजह से ही आपके पास आते हैं?
0: ऐसा है कि

0: ज्यादातर लोग जो हैं डायबिटिक्स हैं, ठीक है, और हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ मोटापे की वजह से, क्योंकि जब आप यंग जनरेशन की बात करेंगे ना तो बहुत सारे लोग उनमें इतनी बीमारी नहीं है, सिर्फ वो मोटापा है। तो अब जो है ना वेट लॉस इंजेक्शन क्यों जो है एक फैशन बन गया,
1: जी
0: मुझे चाहिए, मुझे एक महीने में 20 किलो कम करना है जी, मुझे चाहिए। फिर उनका सवाल होता है जी मेरा कितना वजन कम होगा इस महीने, तो मैंने कहा मैं आपको नहीं बता सकता, जो आइडियली 5, 10, 15 किलो कहा गया है, हर बंदा डिफरेंट है। उनका पहला सवाल यही होता है कि मुझे ये इंजेक्शन चाहिए और इसमें मेरा के एक महीने में कितना वजन कम हो जाएगा, या मैं ये सर्जरी कर दें मेरा एक महीने में कितना वजन कम हो जाएगा। तो हर तरह का पेशेंट हमारे पास है, हमारे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिनकी शादी आ रही है 2 महीने बाद 3 महीने बाद, जी जी उनको चाहिए कि 3 महीने में हमारा वेट लॉस हो जाए बस। है हमारे पास सारे ऑप्शन है और ये सब पॉसिबल है। तो लेकिन आई थिंक अभी जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ है, जब लोगों को इसकी ज्यादा अवेयरनेस आएगी, उनको पता चलेगा, आई थिंक बहुत सारे लोग जो है ना इसको अडॉप्ट करेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि फिर उसे लगाते रहना है या कब इसको खत्म भी कर सकते हैं?
0: जी आप, आपको मिनिमम 6 महीने से लेके 8 महीने तक तो आपको लगाना है, ठीक है।
1: अच्छा।
0: उसके बाद आपको टेपर करना होता है। टेपर ये है कि आप 10 दिन में एक लो डोज लगा ली, महीने में 3 बार, उसके बाद महीने में 2 बार, करते करते आप 1 साल जब हो जाएगा ना फिर आप उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। लेकिन तब जब आपका गोल वेट अचीव हो गया, अब ये नहीं कि भाई मैं 3 महीने के लिए लूंगा उसके बाद मैं खुद ही कर लूंगा, क्योंकि 3 महीने में तो मेडिसिन का जो है ना इफेक्ट टेम्पररी होता है, उसके बाद वेट का वापस आने का हाई चांस होता है।
1: अच्छा ठीक ठीक।
0: लोगों ने अपने पेरेंट्स को देनी शुरू कर दी है, जिनकी ये मदर्स जो हैं वो डायबिटिक हैं, इंसुलिन सुबह शाम लगा रही हैं, अब उन्होंने वो 60+ हैं, 65+ हैं, 70+ हैं, वो वेट लॉस इंजेक्शंस यूज कर रही हैं और उनकी इंसुलिन छूट चुकी है अब। अच्छा। और उनका वजन भी कम हो गया, वो और हेल्दी हो गई।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: रूम करे शेकअप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो, वेक अप। ए दोहा वाला मैं कबीर,
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप।
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: दोस्तों, गाड़ी की रूफटॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने

0: बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर न सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: इसमें डॉक्टर साहब यही जब बिल्कुल एक टारगेट होता है कि अच्छा इतने टाइम में हमने काम करना है तो उसकी वजह से कुछ और साइड इफेक्ट होते हैं बाकी पूरी बॉडी के जो हमारे सिस्टम्स हैं उन पर
1: जी.
0: क्योंकि इतनी जल्दी तेजी से वजन कम करना तो वैसे तो अनहेल्दी होता है तो आप क्या कहते हैं
1: इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं बहुत तेजी से वजन कम करने के सबसे पहले तो ये कि विटामिन डेफिशिएंसीज क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि हम इंजेक्शन भी लें और हम खाएं भी ना ठीक है ताकि हमारा एक हफ्ते में अगर 2 किलो कम होना है तो हमारा 5 किलो एक हफ्ते में हो जाए तो उससे क्या होता है कि आपकी जो है ना विटामिन्स की आस्ता आस्ता कमी होना शुरू हो जाती है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारा आयरन जो जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बनता है और उसकी वजह से भी डिजीनेस होती है क्योंकि ब्लड कम होना शुरू हो जाता है उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट विटामिन्स है विटामिन डी मैग्नीशियम कैल्शियम B12 ये सारे विटामिन्स हमारी बॉडी में ना एक खास रोल प्ले करते हैं कोई हमारी इम्यूनिटी में अच्छा काम करता है कोई हमारी बॉडी की हेल्थ या एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है तो ये ना लेजी हो जाते हैं फिर वो ऐसे एक सीट पर बैठते हैं और वैसे थके हारे कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि आप कुछ खा ही नहीं रहे आप ना विटामिन की दूसरा जो प्रॉब्लम आता है जितना फास्ट आप वेट लॉस करेंगे ना आपके पित्ते में पथरी बनने का चांस होता है
0: ठीक
1: है जिसके लिए बाद में आपको सर्जरी करानी पड़ जाती है क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे ना तो पित्ता जो है वो काम नहीं कर रहा होता तो उसमें जितना भी बाइल पड़ा होता है वो आस्ता आस्ता पत्थर बनना शुरू हो जाते हैं तो ये और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं यही कहूँगा कि विटामिन्स की कमी लोगों को व्हील चेयर तक ले गई है
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब जी ये है ना कि वो अनहेल्दी हम वेट जो है ना वो अपना कम कर रहे होते हैं और जैसे हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग होता है और जो है ये जो काम हम कर रहे होते हैं इसमें बिल्कुल अब हिस्ट्री भी लेते हैं तो उसमें ये भी है कि जो गॉल स्टोन्स हैं वो किस तरह से बनते हैं तो बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनकी ये वेट लॉस की हिस्ट्री होती है
1: बिल्कुल ऐसे ही
0: और डाइटिंग कर रहे हैं अन मतलब कुछ कवर नहीं है
1: जी बिल्कुल
0: कंसल्टेशन नहीं है
1: बगैर नॉलेज के जब कोई भी आप काम करेंगे ना तो ऐसे साइड इफेक्ट्स आएंगे और बाद में डॉक्टर बताएगा आपको कि इस वजह से हो गया तो हमेशा ये मोटापा भी ना इसको एक बीमारी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही कर लूंगा अगर आप किसी अच्छे प्रोफेशनल को एक दफा दिखा लेंगे ना तो काफी नॉलेज मिल जाएगा आपको और आप अच्छा हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं
0: ठीक है तो उसमें आपने देखा जैसे हम यंग एज की बात करें टीनेजर्स हैं क्योंकि उन्हें तो ये सारी चीज़ें जो फास्ट फूड है तो क्या वो आप जैसे बताते हैं आपके पास कंसल्ट करने के लिए आते हैं तो उस पर अमल भी करते हैं या नहीं
1: सच्ची बात बताऊं तो नहीं करते
0: अच्छा जी फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा ना
1: जी तो इसलिए जो है ना अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि आखिरी हल हम सर्जरी होता है फिर ज्यादातर हम सर्जरी ही करते हैं ठीक है अब सर्जरी में ना हम लोग जबरदस्ती वेट लॉस करवा देते हैं क्योंकि हम लोग आपके सिस्टम ही ऐसा बना देते हैं कि खाना खा ही नहीं सकते आप ठीक है वो आपका स्टमक छोटा कर देते हैं तो आप बर्गर मंगाएं कोई चिप्स मंगवाएं थोड़ा सा खाएं पेट फुल हो जाएगा और बाईपास में क्या होता है कि आप थोड़ा सा खा भी लें वो एब्जॉर्ब नहीं होगा ठीक है तो हमें और लेकिन ये हम उन्हीं को ऑफर करते हैं जिनके मोटापे की वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं
0: ठीक इसमें डॉक्टर साहब ये मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि क्यों आप जो वेट लॉस है दूसरे तरीकों से भी जैसे कि कर सकते हैं कोई एक्सरसाइज की और जो डाइट की या कुछ मगर ये फौरन इस तरह के जो मेजर्स हैं क्यों किए जाते हैं
1: जी.
0: जैसे आपने बात की जो यंग जनरेशन है उसमें जो ग्रोथ है कम हो जाती है ये ज़रा मैं पूछना चाहूँगी पेरेंट्स सुन रहे हैं या टीन एजर्स के सब तो क्यों ऐसा आप करते हैं
1: जी तो हम क्यों इनको ऑफर करते हैं
0: जी ऑफर करते हैं
1: क्योंकि एक तो ये कि मैं
0: वैसे भी हो जाता है या हो सकता है हो जाता है तो नहीं हो सकता है
1: जी.
0: कि हम डाइट करें हम एक्सरसाइज करें हम ये करें मगर ये जो शॉर्ट बनाए जाते हैं वेज तो वो क्यों
1: जी जब बेरियाट्रिक सर्जरी आई थी ना तो बिल्कुल ऐसे ही लोग हमें क्वेश्चन करते थे और बहुत सारे लोग इसके

0: अगेंस्ट थे, कहते थे क्यों आप लोग जब डाइट और एक्सरसाइज से हो रहा है काम। तो मैंने कहा अगर डाइट और एक्सरसाइज से काम हो रहा था तो ओबेसिटी 70% पे क्यों चली गई, तो हर दो में से एक बच्चा मोटा क्यों है। ठीक है,
1: हर साल बल्कि 10 इयर्स पे भी जो हो रहे हैं न्यू डेवलपमेंट्स ट्रीटमेंट के अलावा जो सारी चीजें हैं उसमें यही देखा जाता है कि फिर भी ओबेसिटी जो ज्यादा होती चली
0: नहीं। आप ओबेसिटी मोटापा ना एक ऐसी चीज है कि ये सारी जिंदगी ना ये ईमान की तरह आपको ना पकड़ के रखना पड़ता है। यानी आप थोड़े पतले हुए ना फिर आप मोटे हो जाएंगे, फिर आप थोड़े पतले होंगे फिर आप मोटे। अब मुझे जो 40 से 50 की उम्र में लोग मेरे पास आते हैं ना वो ये सब कर चुके हुए हैं, उन्होंने अपना वजन कम किया, वो बहुत पतले हो गए वापस मोटे हो गए, फिर कहते मैंने दोबारा भी किया मैं फिर वापस आ गया। ये ऐसी बीमारी है, इसको बीमारी की तरह ही ट्रीट करना है, मैं इसलिए आपको कह रहा था। तो हम उसे हम अब ये फील्ड बनी इसलिए कि हम उन लोगों को हेल्प कर सकें जो इसकी बीमारी के अंदर जो है ना वो बहुत गहरे फंस चुके हैं। क्योंकि जितनी देर मोटापा रहेगा ना हार्ट अटैक का चांस रहेगा, किडनी का चांस डैमेज होने का चांस रहेगा, आपकी जो है लीवर फैटी लीवर जो बहुत बड़ा मसला है जो पूरी बॉडी के हार्मोन्स कंट्रोल करता है वो उसका चांस रहेगा। तो ये सारी बीमारियां खत्म करने के लिए बहुत बेहतर है कि एक छोटी सी सर्जरी करा लो जाके और खत्म कर दो ये सब कुछ।
1: ठीक है, मगर वो सब खत्म तो नहीं हो जाता ना, उसमें भी तो आपको केयर करनी जरूरी है। जैसे आपने कहा कि कुछ सालों के बाद वापस आते हैं और ये कि ओबेसिटी के साथ ही बार दफा उससे भी ज्यादा
0: 90% हम लोग एक पेशेंट को हेल्प कर देते हैं, लेकिन नथिंग इज 100%। जैसे मैंने कहा कोई मैजिक पिल नहीं है, हर चीज में 10-15% का एक मार्जिन रह जाता है। तो जब हम कोई भी वेट लॉस सर्जरी करते हैं, अब मैं आपको तो एक मिसाल देता हूँ, बहुत सारी लड़कियां मेरी बहनें जो है ना सुन रही होंगी, तो स्पेनिश लाटे दिन की 3-3, 4-4 पीती हैं सर्जरी के बाद। ठीक है, अच्छा भला वेट लॉस हो रहा है, 10 किलो गिर गया एक महीने में, 20 किलो टोटल हो गया। अब जी फोन आता है कि वो भी मेरा वजन रुक गया, मैं डाइट पूछता हूँ तो मैं तो कुछ खाती नहीं। ठीक है, आप नहीं कुछ खाती, कुछ पीती होंगी, वो स्पेनिश लाटे पीती हैं जी। कितनी दिन की? 3 पीती हूँ क्योंकि खाना नहीं खाया जाता। तो वो स्पेनिश लाटे जो है ना उसमें 1000 कैलोरी है। ठीक है, और अब आपने 2-3 पी ली तो आपने तो समझे कि आपने दिन में 6 रोटियां खा ली, एक अच्छे भले आदमी का खाना खा लिया ना आपने, तो कहाँ से वजन कम होगा? क्योंकि सर्जरी में खाया नहीं जाता, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिया जाता है।
1: अच्छा,
0: आप पी सकते हैं,
1: ठीक है।
0: और वो स्लोली स्लोली सिप करते करते इवन एक भी आपने स्पेनिश लाटे पी ना आपका वजन अफेक्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, उसके अंदर जो दूध होता है उसके अंदर फैट होता है, कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना उसकी।
1: ठीक ठीक,
0: तो मेरे पास बहुत मिसाल है ऐसे दूसरी नेशनलिटीज की
1: भी, वो सिर्फ कैपुचिनो ले ली या कुछ इस तरह से और कुछ खाया नहीं
0: जी। वो उसमें सिरप्स होते हैं, कैरेमल सिरप्स होते हैं, ये सारे सिरप्स हाई फ्रुक्टोज हाई कैलोरी होते हैं। वो कहती हैं हम तो कुछ नहीं खाते, लेकिन असल में कैलोरीज तो ले ली ना आपने, एनर्जी ले ली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम 90% उनकी हेल्प कर देते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत अपने आइडियल वेट पे चले जाते हैं विद इन 3-4 months, 60-65 किलो पे चले जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर वो, क्योंकि साइकोलॉजिकली आदत होती है ना पहले इतना खाने की, इतने अपनी क्रेविंग्स होती हैं, आपके टेस्ट बड्स वेट कर रहे होते हैं मैंने ये नहीं खाया बड़े अरसे से, तो इवेंचुअली आपकी आदतें वापस आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप फिर भी आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी शुगर के लोग इंजेक्शन छोड़ देते हैं, इंसुलिन छोड़ देते हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियां छूट जाती हैं, आपकी जो है बहुत सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत ज्यादा लोगों की सर्जरी तो सिर्फ हम लोग बैक पेन और जॉइंट्स की वजह से करते हैं, क्योंकि आप 1 किलो वजन कम करें ना तो आपके जॉइंट से 4 किलो वजन का स्ट्रेस कम होता है।
1: सही,
0: इसका मतलब आपने 4 किलो अपने का प्रेशर हटा दिया अपने जॉइंट्स के ऊपर से।
1: ठीक,
0: तो इस तरह जब वजन कम होता है ना तो वो चलना फिरना वॉक करनी आसान हो जाती है उन लोगों के लिए।
1: ठीक है, इसमें डॉक्टर ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे आप डाइट की बात करते हैं, अभी आप यहाँ के सिर्फ पी सकते हैं खा नहीं सकते, तो उसमें आप जो स्केड्यूल बताते हैं पेशेंट्स को वो क्या किस तरह से आप करते हैं कि वो क्या लें, किस डाइट कौन सी डाइट पर जाएं, और इसके अलावा फॉलो अप कितना जरूरी है?
0: जी, तो सबसे पहले तो ये कि हम लोग जब भी एक पेशेंट को अपने सेटअप में पहली बार देखते हैं तो वहाँ से ही हमारा डाइटिशियन उनके साथ जो है ना जुड़ जाता है, इवन वो इंजेक्शन के लिए हो या सर्जरी के लिए हो या बैलून हो कोई भी चीज़ है, क्योंकि डाइटिशियन बहुत ज़रूरी है, उसको डाइट इज ऑलवेज 90%। अगर आपने डाइट को नहीं रोका और आप हर तरीके को अपना लेंगे ना फिर आप रुक जाएंगे। तो हम लोगों के जो सर्जरी और बैलून या फिर इंजेक्शन का प्रोटोकॉल ये है कि हम फर्स्ट 2 वीक्स या 2-3 वीक्स में उनको लिक्विड डाइट पर रखते हैं। लिक्विड डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप योगर्ट है, सूप्स हैं, जूसेस हैं, तो जितनी जो आपकी आती है ना ड्रिंकेबल चीज़ें हैं, लबन है तो जेली बना के खा सकते हैं आप, तो ना उसका हमारा प्रोटोकॉल है, बुक्स बनी हुई हैं। तो उसके बाद जब 2 वीक्स ख़त्म हो जाते हैं ना तो हम उनको मैश डाइट एडवाइस करते हैं।

0: हैं, जैसे कि आप जो भी खाएंगे ना आप मैश्ड खाएंगे, जैसे या कीमे की फॉर्म में खाएंगे, मैश पोटैटो हो गए, चिकन खाया तो उसको मैश कर दो, उसको बॉयल करके मैश कर दो, पका के मैश कर दो, फिश को मैश कर दो, क्योंकि वो स्वेलोइंग में आसानी होती है। उसके साथ आप सूप्स पी सकते हैं। और फिर जब एक से डेढ़ महीना या सिक्स वीक्स गुजर जाते हैं ना, फिर हम उनको कहते हैं कि आप अब नॉर्मल खाना खा सकते हैं, लेकिन हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट रखनी है आपने, और उसके लिए भी हमारी जो है डाइट प्लान्स बने हुए हैं।
1: अच्छा, बिल्कुल, वो जो डाइट प्लान है, थोड़ा सा मैं अपने लिसनर्स के लिए, अपने लिए भी क्या है, जैसे हाई प्रोटीन है तो जैसे अपनी डाइट, जैसे एशियन हमारा जो वे ऑफ ये खाने का जो तरीके हैं उसमें थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है।
0: जी जी बिल्कुल, देखिए हमारा ना सबसे, मुझे तो अपना जो वे ऑफ ईटिंग है ना उसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट ये लगता है कि हम लोग ज्यादातर ना रोटी खाने वाले लोग हैं।
1: जी
0: ठीक है, और हमारे रोटी में बहुत ज्यादा कैलोरीज है, और जो भी सालन जो तेल में बनते हैं वो भी हाई कैलोरी है। यानी एक टाइम पे रोटी सालन खा लिया ना तो पूरे दिन का एक किस्म का आपने ना ऑलरेडी एक टाइम पे खा लिया। तो इसलिए जब भी डाइटिंग करते हैं ना, आपने सुना होगा लोग कहते हैं मैंने रोटी छोड़ दी, मैंने चावल छोड़ दिए, क्योंकि बेसिकली रोटी में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। डिपेंड करता है, इंडियंस की रोटी थोड़ी छोटी होती है, हमारी जरा बड़ी होती है ना। तो डाइटिंग में या प्लान्स में यही होता है कि हम सब कुछ रखते हैं उसके अंदर, लेकिन हम क्वांटिटी कम कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि उनको कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो या फिर वो ऐसी चीज़ को मिस करके बाद में उसकी तरफ दोबारा जाएं।
1: जी।
0: तो अगर हम उनको रोटी अलाउ भी करते हैं ना तो हम कहते हैं छोटी एक ही रोटी खाएं, ठीक है।
1: अच्छा।
0: और राइस जो है वो उसके ग्राम्स बताते हैं, 100-150 इतने का आप ले लें, और जो कुकिंग स्टाइल है वो हम वेरी लो ऑयल होना चाहिए और उसमें वर्जिन ऑयल।
1: जी जी जी जी, भून के
0: आप सब खाएं, आप चिकन खाएं, मटन खाएं, आप फिश खाएं, लेकिन सिर्फ आपने ये चीजें कम करनी है कि उसके साथ आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, आपने उसकी ऑयल कम रखनी है, उसके अंदर जो है चपाती अगर आप ले रहे हैं तो वो एक लें, छोटी लें, और पानी ज्यादा पिए। तो इस तरह की चीजें ना हमारी हर बंदे के स्टाइल के लिहाज से हम लोग टेलर करते हैं उसको।
1: ठीक है।
0: फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करें, सैलड्स खाने से पहले सैलड, अरबी रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा आप जाके ऑर्डर करते हैं ना तो पहले सैलड आ जाता है, वो सैलड खाते हैं उसके बाद भूख ही नहीं होती आगे कुछ खाने की, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये
1: मेन डिश है,
0: तो मेन डिश है अभी भाई। तो घर में भी ना मैंने यही किया हुआ है, मैं पहले सैलड का बोल रखता हूँ, सैलड खाता हूँ, उसके बाद जो भी खाना है वो थोड़ा सा खा के मैं उठ जाता हूँ।
1: ये तो बिल्कुल सही बात है, इसी तरह से ही होना चाहिए, मगर ये है कि फिर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कि क्या
0: ना, मेहनत का काम है थोड़ा सा।
1: जी ठीक। ये डॉक्टर साहब, इसमें बैलूनिंग की हम बात करेंगे कि क्या उसमें क्या करते हैं।
0: जी
1: जी,
0: गैस्ट्रिक बैलून जो है ना,
1: क्योंकि ज्यादातर जो है इंजेक्शन पे बहुत ही ज्यादा जोर है, क्योंकि हर एक रीचेबल है ना, मतलब को पहुंच सकते हैं वहां तक।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए। मगर ये कि बैलूनिंग, अब जैसे स्पेशलाइज आपकी फील्ड आ गई कि सर्जन जो हैं उनका काम है, एक तो ये आपने कहा, लिसनर्स आप भी सुन रहे हैं कि इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि जितना वजन हम एक साल में या सिक्स मंथ्स में हम कम करते हैं या कर सकते हैं, मगर इस तरह के जो तरीके हैं, सर्जरी है या इंजेक्शन हैं उसमें कम, उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो हमारी हेल्थ जो इश्यूज हैं, लाइक क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसमें जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाती हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह भी बहुत कम हो जाती हैं उसमें। जी डॉक्टर साहब, बैलूनिंग का हमें बताइए कि वो क्या करते हैं।
0: डिफरेंट तरह के गैस्ट्रिक बैलून्स होते हैं, और इनको गैस्ट्रिक बैलून इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टमक में छोड़ दिए जाते हैं। दो तीन तरीके होते हैं, या तो एंडोस्कोपी करके छोड़ दिया जाता है स्टमक में, या और उसके में जो है एनेस्थीसिया देना पड़ता है, और आजकल नए बैलून्स आए हैं वो एक कैप्सूल के अंदर बंद होता है, और वो कैप्सूल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो कैप्सूल आप स्वेलो करते हैं ऑफिस में, डॉक्टर के ऑफिस में, और उसके बाद वो स्टमक में हम उसकी, इसके साथ एक छोटी सी वायर होती है या रस्सी होती है, हम उसको खींचते हैं तो वो कैप्सूल खुल जाता है। उसके बाद हम उसके अंदर कोई 500 से 600 ml जो है ना पानी या कोई लिक्विड होता है हमारे पास, हर कंपनी हमें एक सेपरेट लिक्विड देती है।
1: अच्छा।
0: वो उसके अंदर फिल करते हैं, वो बैलून भर जाता है। अब ये बैलून हम आपके अंदर छोड़ देते हैं फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 months। अब क्योंकि आपके आधे स्टमक में ये बैलून पड़ा हुआ है, तो उसका मतलब आपके बाकी स्टमक जो है वो आधा रह गया। मतलब पहले आप अगर एक पूरी प्लेट खाते थे तो अब आप आधी खाएंगे, ठीक है, पानी भी पिएंगे ना तो वो फुल ही आपको फुल की फीलिंग आएगी। और इसका ये बेनिफिट है कि आपको कोई इंजेक्शन नहीं लेना, आपको कुछ इंजेक्ट नहीं करना, कोई नोजिया वॉमिटिंग साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, मसल लॉस नहीं हो रहा, आप अपने काम पे रोज जा सकते हैं, आपको कोई फटीग नहीं हो रही, डिजीनेस नहीं हो रही, क्योंकि आप खाएंगे सब कुछ बस थोड़ा खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन वेट लॉस की जहां बात है ना, उसमें इसका वेट लॉस इतना ज्यादा

0: नहीं है एज कम्पेयर टू इंजेक्शन, क्योंकि इसमें जो है बैलून में फिर भी लोग कुछ ना कुछ स्क्वीज कर ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत वेट लॉस हुआ है और हर स्टोरी डिफरेंट है.
1: तो इसमें जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी है तो वो हमारे स्टमक में है तो पेशेंट को फीलिंग नहीं आती या कुछ क्या मतलब?
0: पहले जब ये बैलून स्टार्ट हुए थे ना तो उसमें आते थे बैलून थोड़े हैवी होते थे, वो उन पेशेंट्स को फीलिंग आती थी क्या कुछ पड़ा हुआ स्टमक में, लेकिन अब चेंज हो गया, अब नए जेल फॉर्म के बैलून्स आ गए हैं, ये बहुत लाइट होते हैं, बल्कि लोग भूल जाते हैं कि बैलून डाला हुआ, जब तक उनको खाना खा के फुल की फीलिंग नहीं आती. और इसी तरह ना 4 to 5 months में ये जेल डिसॉल्व हो जाती है, वो पानी अंदर ही स्टमक के अंदर खुल जाता है और वो जो है ना जिस्म से निकल जाता है. ठीक है, तो इसमें इवेंचुअली जो है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हमने आज तक देखी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई थी भी तो बहुत बहुत रेयर कोई माइनर होगी. और दूसरा ये कि पहले जो है वो एंडोस्कोपी करके निकालना पड़ता था, अब हम उसे वो खुद ही निकल जाता है.
1: अच्छा जी, वो कैसे?
0: वो डिसॉल्व हो जाता है ना,
1: डिसॉल्व
0: हो जाता है और स्टूल के जरिए निकल जाता है.
1: कि कितने टाइम में? कितना?
0: 4 to 5 months में.
1: 4 to 5 months
0: और इतनी देर में लोगों का 30-35 kg कम हो जाता है.
1: तो आप किन लोगों को ये रिकमेंड करते हैं?
0: हम लोग देखें ओबेसिटी में आपको पता है कि क्लास ऑफ ओबेसिटी होती है, ओवरवेट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बीएमआई के मुताबिक.
1: जी
0: ठीक है जी, 29 प्लस हैं तो आपकी क्लास 1 ओबीज हो गए, बीएमआई 29 प्लस है तो इसमें हम लोग इन्हीं लोगों को ऑफर करते हैं जो थोड़े लो बीएमआई है लेकिन ओबीज हैं. ठीक है, मतलब मोर्बिड ओबेसिटी वो है जिसमें आप बहुत ज्यादा यानी बीएमआई 35-36 प्लस है, यानी आपका वेट 140-150 है, तो उसमें ना हमें पता है वेट लॉस तो होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसको कम से कम 60-70 किलो कम करना है ना, तो उसके लिए हम बैलून नहीं डालते. जिसने 10-20-25 किलो कम करना है हम उसको बैलून डाल देते हैं. दूसरा ये जो लोग कहते हैं कि उनको थायराइड का इशू है, एक तो वो इंजेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है, और वो कहते हैं हमने सर्जरी नहीं करानी, हमें डर लगता है, या हमें नहीं चाहिए हमें सर्जरी नहीं करानी, हमें नॉन सर्जिकल ऑप्शन चाहिए, तो उन लोगों के लिए नॉन सर्जिकल ऑप्शन आ जाती है.
1: ठीक ठीक. और वैसे तो सुनने में जैसे आप बता भी रहे हैं तो लग भी ऐसे रहा है कि शायद कुछ कम कॉम्प्लिकेशंस हैं.
0: जी जी,
1: सर्जरी की बात करें हम तो सर्जरी तो एक खुद जो है वो कट होगा, ये हो गई इस तरह से है.
0: सच्ची बात बताऊं तो सर्जरी में भी कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है वैसे जो है, हम लोग एक महीने में कम से कम 80-90 सर्जरीज करते हैं. ठीक है, 80-90 सर्जरीज करते हैं यहाँ पे. ठीक है, और मैं हमारे पास एक या दो पेशेंट ही वापस आता होगा पर मंथ, उसके अलावा हम अब इसका मतलब ये है कि 1% 200 में से एक आदमी को कोई कॉम्प्लिकेशन होगी.
1: ठीक ठीक, इस तरह से. और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं?
0: देखें कॉम्प्लिकेशन जो में आती हैं माइनर और मेजर. माइनर यही है कि वो नौजिया वोमिटिंग थोड़ी ज्यादा देर चल जाती है उनको, तो वो वाइटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर हम उनको जो है वाइटामिंस एडमिट करके देते हैं. कभी कभी उसमें चांस होता है कि आपको जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कि वो स्टमक टाइट हो जाता है, ब्लॉकेज हो सकती है, वो बहुत रेयर है, लेकिन अगर हो जाए तो उसमें हम फिर उसकी सेपरेट ट्रीटमेंट करते हैं. रिफ्लक्स की प्रॉब्लम कभी कभी होती है, कुछ लोगों का एसिडिटी बढ़ जाती है उसके बाद, क्योंकि स्टमक छोटा हो गया लेकिन एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था उनके अंदर, तो उसकी भी सेपरेट ट्रीटमेंट होती है. और क्यों बहुत सारे लोग डिहाइड्रेशन जब उनको होती है तो वेन्स क्लॉटिंग का चांस होता है उसमें ना, उसमें डीवीटीज और वेन्स क्लॉटिंग का चांस होता है, तो वो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप पानी ज्यादा पिए. इस तरह की माइनर कॉम्प्लिकेशन है, मेजर कॉम्प्लिकेशन एक ही है वो है लीक, और वो होता है फर्स्ट 1 month ऑफ सर्जरी में, और वो भी लेस देन 1% लोगों में होता है इसका जो स्टेटिस्टिक्स है.
1: ठीक है,
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

ये लिसनर्स, आज हम बात कर रहे हैं कि जो किस तरह से जो ओबेसिटी है उसके साथ साथ जो हम ज़्यादातर जो डिजीज़ की बात कर रहे हैं या फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसमें कौन सी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो डॉक्टर साहब हमें डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल की वजह से ये तमाम मुश्किलात अपने आसपास जो हैं वो ले आते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने सर्जरी की बात की तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि कितनी टाइप्स की होती हैं सर्जरी। बाज़ुकात आम लेमैन की ज़बान में कहते हैं अच्छा ये जो स्टमक है उसे छोटा कर दिया, उसे टाई कर दिया है या उसे कट कर दिया या कुछ, आम पब्लिक को ये पता है, तो आप हमें बताइए कि किस कितनी

0: टाइप्स की होती है, क्या क्या आप सर्जरी में करते हैं और सबसे बेहतर कौन सी हो सकती है?
1: जी देखें, सबसे बेहतर सर्जरी वही है जिसके साइड इफेक्ट कम है, ठीक है जी, और वेट लॉस सबसे ज्यादा
0: जी, ठीक है।
1: तो सर्जरी में ना हमारे पास स्टार्ट यहाँ से होता है कि आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी हो रही हैं। एंडोस्कोपिक क्या होता है कि वो आपके मुंह से कैमरा डालते हैं, ठीक है, और अंदर जाके ना स्टमक को स्टिच करना शुरू कर देते हैं। वो अंदर से जब स्टिचिंग शुरू करते हैं तो स्टमक का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी, यानी एक एंडोस्कोपी के जरिए आप कोई पेट में सर्जरी नहीं की, कोई कट नहीं लगा, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने ये ना अपना स्टमक छोटा करवाया हुआ है, सिर्फ आपको पता होगा या आपके डॉक्टर को पता होगा,
0: ठीक है।
1: तो ये ऐसे ही काम करता है जैसे कि आपने स्टमक को छोटा कर दिया सर्जरी के जरिए, लेकिन इसमें ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चलती, लेकिन इनिशियली आपका पहले एक साल डेढ़ साल में आपका वजन सारा कम हो जाता है, और इसको आराम से आप ये स्टिचिंग निकाल सकते हैं एंडोस्कोपी करके, वापस रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लीस्ट कॉम्प्लिकेशन वाली सर्जरी है, लेकिन इसका थोड़ा सा फेलियर रेट है, क्योंकि कभी कभी स्टिचेस लूज हो जाते हैं तो स्टमक वापस खुल जाएगा, तो वो वापस बंदा खाना शुरू हो जाता है, तो वो कोई पता नहीं एक महीने बाद हो जाए या वो साल बाद हो। तो ये थोड़ा सा इस पर ना अभी काम हो रहा है, इस पर रिसर्च हो रही है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज में ये कर रहे हैं लोग।
0: अच्छा,
1: बाकी आ जाती है सर्जिकल चीजें, तो सर्जिकल में हमारे पास स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या अरबी में यहाँ पे तकमीम गस्मेदा के नाम से जानी जाती है, और उर्दू में हम स्लीव ही कहते हैं, गैस्ट्रिक स्लीव ही कहते हैं इसको। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को जनरल एनेस्थीजिया दे के सुला देते हैं
0: जी।
1: पहले हमने उसकी सारी प्रिपरेशन की होती है, यानी उसकी चेकअप, ब्लड टेस्ट, ये सब हमें पता होता है। तो एंडोस्को तो हम उसके अंदर ना स्टमक में एक ट्यूब डालते हैं, और वो ट्यूब के अंदर एक बैलून होता है, ठीक है, वो 50 ml to 100 ml उसकी कैपेसिटी होती है। उस ट्यूब के साथ साथ जो है ना, हम जो स्टमक का बड़ा सारा पेट वाला पार्ट है ना, जो ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं इसको, वो हम निकाल देते हैं। वो रफली 75 to 80% होता है स्टमक का, ठीक है। ये वो पार्ट होता है जहाँ से हंगर हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि हमें भूख लगाते हैं गैस्ट्रिन के नाम से, और इसमें ये वो भी पार्ट होता है जिसमें ज्यादातर खाना जाके पड़ा होता है। तो जब ये पार्ट निकाल देते हैं, सर्जरी 15-20 मिनट में खत्म हो जाती है, ठीक है,
0: ठीक है।
1: उसके बाद पेशेंट जो है वो ज्यादा खा नहीं सकता, ठीक है, स्टमक का साइज बहुत छोटा हो जाता है, यानी उसने एक नवाला लिया, दो नवाले लिए, तो बस इतना ही है, उसको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, जब ये नीचे जाएगा फिर वो अगला खाना खाएगा। तो एक तो ये होगी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, इसका वेट लॉस सबसे ज्यादा और कॉम्प्लिकेशन सबसे कम है, और ये मोस्ट कॉमनली पूरी दुनिया में किया गया प्रोसीजर है। हमारे अपने अगर 100 केस करते हैं तो उसमें से 60-70 स्लीव्स ही होती हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: बाद में आते हैं हमारे पास बाईपासेस। बाईपासेस डिफरेंट टाइप के हैं, हमारे पास मिनी बाईपास है, रू-एन-वाई बाईपास है, सबके लिए डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं। और एक नया बाईपास है जो सैडी कहते हैं इसको, जो कि थोड़ा सा नीचे के साइड हम छोटी आंत को थोड़ा सा एंड में कनेक्ट कर देते हैं। मिनी बाईपास ये होता है कि आप 2 मीटर, 1.5 से 2 मीटर की आंत को बाईपास करके स्टमक के साथ अटैच कर देते हैं। तो जब आप खाना खाएंगे ना, तो खाना वो पहले 1.5 से 2 मीटर में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट 3 मीटर में जाएगा, और उसकी वजह से वहाँ कम होती है एब्जॉर्प्शन। तो जो फर्स्ट 2 मीटर में एब्जॉर्प्शन होती है ना, वो स्किप हो जाती है। तो उस पर ये बेनिफिट होता है लोगों को कि ये लॉन्ग टर्म चलता है, सारी जिंदगी के लिए चलता है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है,
0: ठीक है।
1: और शुगर के लिए ये बेस्ट है, डायबिटीज के लिए नंबर 1 प्रोसीजर है।
0: इसमें डॉक्टर, जैसे एब्जॉर्प्शन है उसमें विटामिंस और मिनरल्स वो भी तो इफेक्ट होते होंगे ना
1: जी,
0: कि एब्जॉर्प्शन जो है वहां पर होती।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे विटामिंस हैं जो स्टमक में से ही एब्जॉर्प्शन उनकी शुरू हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो हम उनको लोगों को जो डेफिशिएंसी आती है ना, वो विटामिन B12 और आयरन की है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि ये जो है स्टमक से इनके हार्मोन्स बनते हैं जो इनको एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम लोग हर 3 से 6 महीने बाद इनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और अगर लो है तो हम उनको सप्लीमेंट कर देते हैं IV, लेकिन वैसे इनको सारी जिंदगी ओरल सप्लीमेंट लेना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: ओरल सप्लीमेंट, एक टैबलेट जिसमें आयरन भी हो, उसमें मैग्नीशियम, ये सारे कैल्शियम वगैरह सब वो उनको सारी जिंदगी लेने पड़ेंगे, ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो बेशक नॉर्मल है विटामिन्स, नहीं नॉर्मल, बॉडी अडॉप्ट कर जाती है।
0: तो सब इसमें जिसके है कि खाना नहीं खा सकते, तो क्या कोई एतराज होता है उन्हें पेशेंट्स को या कुछ, कि क्यों हमारी लाइफस्टाइल या लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गई है?
1: कुछ पेशेंट्स होते हैं वो रिग्रेट करते हैं
0: जी,
1: वो कहते हैं कि खाया नहीं जा रहा, दिल करता है ये फलानी चीज खाने का, नहीं खा सकते, तो रिग्रेट करते हैं, लेकिन ये रिग्रेट 1 महीना चलता है।
0: अच्छा।
1: जब आप 25 किलो वजन कम हो जाता है ना जब, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया।
0: सही।
1: और अभी तक मैंने कोई ऐसा बंदा

0: नहीं देखा जिसने मुझे आके कहा हो कि 3-4 महीने बाद कि ये मैंने गलत करवा लिया, मुझे नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि उनका कम से कम इतना वेट कम हो जाता है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, तो वो बहुत खुश होते हैं अपनी अपने आप से और उनकी फैमिली। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी शादियां होने वाली होती हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम इफ़ेक्ट हो रहा होता है जॉइंट पेन्स की वजह से, उनका काम बेहतर हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं वो हर तरह के फ़ायदे से जो है ना वो नहीं कहते कि हमारी, हाँ वो नहीं खा सकते लेकिन टेस्ट कर सकते। हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी स्लीव की थी आज से 5 साल पहले, आज तक वो कहते हैं कि मैं पूरा बर्गर नहीं खा सकता, मैं 2-3 बाइट्स लेता हूँ या हाफ तक मैं पहुंच गया हूँ, मैं पूरा नहीं खा सकता। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि, अब वो इतना स्लिम है, उसने कभी नहीं कहा कि मैंने क्यों करा ली, क्योंकि जरूरी नहीं है आप इतना ज्यादा खाएं, आप टेस्ट करें।
1: और बिल्कुल बात है कि आप आईज आंखों से तो देख के शायद आपको लगे कि, मगर ये कि जैसे प्रैक्टिकली खाते हैं तो खा नहीं सकते ना
0: जी, बिल्कुल।
1: तो ये कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं उतने खाने पर ही,
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: और यही जो ट्रीटमेंट है उसका जो बिल्कुल अहम पॉइंट है वो यही है डॉक्टर साहब। इसमें जैसे हमने बात की कि डिजीज इज चीपर एंड द हेल्थ इज एक्सपेंसिव, अब हमें समझ आई
0: कि ये है क्या,
1: जैसे कि आपने हमें बताया कि बिल्कुल ये जो इतनी सारी चीज़ें डिजीजेस हैं हम बनाते अपने अंदर डालते चले जाते हैं, मगर जब हेल्थ की तरफ आते हैं तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को हेल्दी रखा जा सके।
0: जी डेफिनेटली, क्योंकि ये सर्जरीज, बैलून्स, इंजेक्शंस, ये सब भी एक कॉस्ट पे आ रही है ना
1: जी,
0: तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, इनकी काफी प्राइस देनी पड़ जाती है इनको, इनका जो बेनिफिट लेने के लिए।
1: ठीक। और लिसनर्स आपने भी सुना कि मैं भी जब प्रोग्राम शुरू कर रही थी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी बात के कैसे कि डिजीज इज चीपर एंड द हेल्थ इज एक्सपेंसिव, क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि बीमारियां हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़र्चा भी होगा, ये भी होगा, मगर ये कि अब पूरा सिनेरियो जो है अब समझ में आया जी। डॉक्टर कोई मैसेज देना चाहेंगे?
0: जी मेरा यही मैसेज है कि जब भी आपको कोई जहन में शक आए या कोई आपको लगे कि आपको कोई फलाना मसला शुरू हो रहा है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से रजू करें, उसके ऊपर बैठे नहीं, उसको इंतज़ार मत करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा है कि वो सालों साल अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहते हैं जब तक कि वो लेट हो जाता है। आप के आप अपनी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर थोड़ा खर्चा करें और डॉक्टर्स को दिखाएं, सप्लीमेंट्स लें, मेडिसिंस लें, और जितना जल्दी डॉक्टर से आप रजू करेंगे उतना कम आपको जो है उसके ऊपर इलाज की ज़रूरत पड़ेगी।
1: ठीक। और जो लाइफस्टाइल है वो कैसा रखें ये भी आप बताएं।
0: लाइफस्टाइल सब समझदार हैं माशाल्लाह से, सबको पता है कि क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम क्यों इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे हैं। मैं यही एडवाइस करूंगा कि 10,000 स्टेप्स का गोल रखें, आप बैठे टीवी देख रहे हैं, आप उठें, आप हरकत करें और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले 10,000 स्टेप्स आपने किए हों। इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, इसमें एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी, इसमें आप किसी से मिलेंगे, आपकी सोशल लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी, आप बाहर निकलेंगे, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, तो सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें
1: इंशाल्लाह। और सामिन मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर फखर शाहिद जो कि बेरेटिक सर्जन है और फौजिया शफी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये कि किस तरह से हमने एक्टिव रहना है। अल्लाह हाफिज।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 9 a.m. News at 9 a.m. from Urdu Radio FM 107.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107۔ محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ریاست قطر نے چین میں منعقد ہونے والے عالمی فورم برائے عوامی سلامتی تعاون 2026 میں شرکت کی ہے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت سے آسٹریا کے وفاقی مشیر کے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی ہے۔ وزیر محنت سے قطر میں ترکیہ کے سفیر نے ملاقات کی، یہ ملاقات قطر میں سفیر کی مدت سفارت مکمل ہونے کے موقع پر کی گئی۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی انتظامیہ نے سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے منعقد کیے گئے ایویشن سیکیورٹی انسپیکشن سے متعلق سرگرمیوں اور تربیتی پروگرام کا اختتام کیا ہے۔ مصر نے شام میں اسرائیلی فوج کی طرف سے بار بار کی جانے والی دراندازیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمالی علاقے میں ایک مکان پر بمباری کی جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: FM 107,
2: दिल से देसी।
6: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने कराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफ़क़त से पाला है। हमने कराम, इस दुआ के दो पहलू हैं। एक तो हमें अपने माँ बाप और वालिदैन के लिए भी इस तरह की दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी वो ख्याल रखना है कि ये बड़े होकर मुझे यही दुआ करेंगे मेरे लिए, तो मुझे भी रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ, सब्र के साथ इनकी तरबियत करनी है, इनके साथ रहम करम का मामला करना है। वैसे अमूमी तौर पर, फितरी तौर पर माँ बाप हर कोई अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और नरमी का ही मामला करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम भी कुछ ज़्यादती कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दुआ को याद रखें कि भाई हम जैसे ही मामला कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए यही दुआ करेंगे। रब्बी, ए रब, ए मेरे रब, यानी वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, पाला और नेमतें अता फरमाई, इरहमहुमा, वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। तो सामिन कराम, वालिदैन के एहसानात का बदला देना तो मुमकिन नहीं, तो उनके लिए हर वक्त हमारी तरफ से सबसे बड़ी खिदमत यही हो सकती है कि उनके लिए हम रहमत और मग़फ़रत की दुआ करते रहें, सेहत व आफ़ियत की दुआ करें और मग़फ़रत के हवाले से वालिदैन के लिए काफ़ी सारे ऐसी दुआएं आई हैं क़ुरान में, जहां मुख्तलिफ़ क़िस्सों में मुख्तलिफ़ तरीक़े से वालिदैन के लिए बिलख़ुसूस दुआ का ज़िक्र है। तो सामने कराम, इस दुआ का जो तरबियती पहलू है, इस पर मैंने पहले भी कहा कि यहाँ कुरान ने इंसान को उसकी तफूलियत याद दिलाई कि जब वो बिल्कुल बेबस था, वालदेन ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की, तो यहाँ हर एक के लिए बचपन की याद दहानी है ताकि हम अपने बड़ों के साथ सही मामला करें। जब वालदेन ज़ईफ़ हो जाए, उनकी तबीयत में कमज़ोरी या चिड़चिड़ापन आ जाए, तो भी उनके साथ शफ़क़त, एहतराम और सब्र का मामला करना ज़रूरी है, ख़ुसूसन उनके बुढ़ापे के ज़माने में इसकी अहमियत तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना, हुस्न सलूक करना, तो ये दुआ हमें कई कीमती सबक देते हैं। इसमें वालिदैन की खिदमत की बात आई है, कुरान ने बराह रास्त दुआ के ज़रिए उनकी अजमत को उजागर किया। इसी तरह औलाद के फ़र्ज़ के हवाले से भी यहाँ बताया गया कि वालिदैन ने जैसे बचपन में कुर्बानियाँ दी, ऐसे ही बुढ़ापे में औलाद को उनकी खिदमत और दिलजोई करनी चाहिए। اسی طرح رحمت کی دعا یہ سب سے بڑی خدمت ہے والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اور یہ ان کا حق ہے لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں اور رحمت کی دعا یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارہ ملے گا اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین انہی پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی
5: دوستوں اب قطر میں گاڑی کی ملکیت ٹرانسفر کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان اور ڈیجیٹل ہو گیا ہے میتراش 2 ایپ کے ذریعے آپ اپنی رجسٹرڈ وہیکل کی اونرشپ گھر بیٹھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور وہ بھی بنا کسی فزیکل وزٹ کے اس ڈیجیٹل سروس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی کا

0: रजिस्ट्रेशन वैलिड हो यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मेत्राज ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है मेत्राज 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

Sika Seoul, 1992 Barcelona or 1996 Atlanta. Char Olympics, char gold medals, ek hi event. Aur ye achievement athletics ki tareekh ke sabse mushkil records mein se ek samjhi jati hai, according to the experts. Aur agar aap Carl Lewis ko sirf ek sprinter samajhte hain, to zara ruk jaiye. Unka long jump career bhi utna hi zabardast tha. 1991 mein Tokyo World Championship ke dauran unhone 8.91 meter ka jump record kiya tha. Lekin hawa ke raftaar permissible limit se zyada hone ki wajah ye jump official world record nahi ban saka. Aur isi competition mein Mike Powell ne 8.95 meter ka jump lagakar Bob Beamon ka 23 saal purana world record tod diya. Lewis ne bhi semi final mein 8.87 meter jump kiya tha. Aur yahan ek aur dilchasp baat samne aati hai. Lewis ne us din 8.80 meter se zyada ke 4 jumps kiye. यानी एक ही कंपटीशन में उनकी कंसिस्टेंसी भी लाजवाब थी और उनका लेवल भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी. कार्ल लुईस की पर्सनालिटी का एक और पहलू था उनका यकीन. वो अपनी एबिलिटी पर भरोसा करते थे और बड़े मोमेंट्स में प्रेशर को अपने फेवर में इस्तेमाल करते थे. इसीलिए जब एथलेटिक्स की दुनिया में स्पीड, पावर और एलिगेंस की बात होती है, कार्ल लुईस का नाम लाजमी तौर पर सामने आता है. उन्होंने एक पूरी जनरेशन को यह सिखाया कि चैंपियन होना सिर्फ जीतने का नाम नहीं, चैंपियन वो होता है जो सालों तक अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखे, हार के बाद वापस आए और जब दुनिया उसे देख रही हो तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का हौसला रखे. कार्ल लुईस ने ट्रैक पर मेडल जीते, रिकॉर्ड्स बनाए और हिस्ट्री लिखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एथलेटिक्स को एक नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया. इसीलिए कार्ल लुईस सिर्फ एक ओलंपिक चैंपियन नहीं बल्कि एथलेटिक्स की तारीख का एक ऐसा नाम है जो जनरेशंस तक याद रखा जाएगा. उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आएगा. अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए भाई, टेक की दुनिया ऐसी है कि मुझे भी इसके साथ साइड में दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन इसका अपना मजा है क्योंकि मैं आपको जो प्रोडक्टिविटी के टूल्स या फिर कोई काम की चीज या कोई ऐसी टाइम पास करने की कोई चीज बताता हूं तो मुझे खुद को भी बहुत फायदा होता है और अच्छा लगता है। सो आज भी टेक अपडेट में तीन बहुत जरूरी वेबसाइट्स और उसके बाद जरा खबरों की तरफ बढ़ेंगे। सो नंबर वन ऑन द लिस्ट, सबसे पहले आपको टाइप करना है आप वेबसाइट जहां टाइप करते हैं एड्रेस बार में studio.polotno.com। मैं आपको स्पेल आउट करके देता हूं, स्टूडियो studio.polotno.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट जो खुलेगी वो बिल्कुल कैनवा की तरह काम करती है। बेसिकली आप सब कुछ जो मर्जी आप जाएं आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, राइट फ्रॉम योर पोस्टर्स टू लोगोस टू प्रेजेंटेशन, कोई पोस्टर कुछ भी जो भी आप कैनवा पे करते हैं वो आप यहाँ पे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल वेबसाइट। और क्या कि इसका नाम ऐसा ना तो आसानी से मिलती भी नहीं है, जिनको मिल गई है उन्हें पता है और जिन्हें नहीं मिली है फैला दो इसको मार्केट में, लेकिन आपके बहुत काम आएगी फॉर लुकिंग फॉर समथिंग फ्री एंड जो कि सिमिलर हो कैनवा की तरह। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगली है जी, इसका नाम है start.me।

0: ई, बहुत ही सिंपल नाम है इसका। पर इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कई सारे टूल्स आ जाएंगे और ये सारे के सारे टूल्स जो हैं कैटेगराइज्ड हैं, मतलब आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आपको टूल्स मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको यूजर नेम जनरेटर चाहिए, आपको रैंडम फेस जनरेटर चाहिए, आपको इमेज जनरेटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, यहाँ पे हजारों टूल्स आपके सामने होंगे एंड कैटेगरी वाइज जस्ट हैव टू चूज योर कैटेगरी एंड देन उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं एंड यू विल गेट एवरीथिंग। मैं बता रहा हूँ ये इतनी काम की वेबसाइट है कि एक बार ही आपने देख ली छुट्टी भाई सारी चीजों की, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। इसका नाम है थर्ड वेबसाइट का verses.com, verses.com, verses.com। जब आप इसे खोलेंगे तो जैसा नाम है verses.com, इसमें आप दुनिया में ऑलमोस्ट हर दो चीजों को, प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। दो दोस्तों कंपेयर मत कीजिएगा, लेकिन आप चीजों को कंपेयर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। आप प्रोडक्ट्स को कैसे भी कंपेयर कर सकते हैं, कंट्री वाइज, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज। इट इज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। अगर आप कुछ लेने का सोच रहे हैं कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट टू डू इट एंड इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ईजी। आप फोन से लेकर एक माइक्रोवेव तक यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं एंड आई absolutely love it. I know कि हर किसी की पूरी तरह से काम की वेबसाइट शायद ना हो ये, लेकिन जिनके काम की है वो जानते हैं कि ये कितने काम आ सकती है। So please यहाँ पर जरूर जरूर जाएं। All right, now tech की खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अपडेट मैं गेमर्स को देना चाहता हूँ। दरअसल क्या है, दो बहुत ही बड़े गेम्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, ओनिमुशा और डॉन वॉकर। अभी भी आप सोच रहे हैं कि ये जो इतने पहले रिलीज हुए हैं इनको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं एक बात कहूँगा, ओनिमुशा इज परफेक्ट। कैपकॉम ने फिर से करके दिखा दिया है और उसमें कोई भी डाउट नहीं है। हालांकि डॉन वॉकर आपके टेस्ट का शायद हो सकता है, शायद ना हो, पर डॉन वॉकर इज अ गेम जहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले के इसके गेम्स खेले होने चाहिए। मतलब डॉन वॉकर को बनाने वाले जो हैं उन्होंने विच वाले गेम्स बहुत बनाए हैं, विच हंट और काफ़ी सारे गेम्स हैं। अगर आपने वो खेले हुए हैं तो ठीक है, हो सकता है कि आपको ज़्यादा समझ में ना आए, बट इफ़ यू आर इनटू कंप्लीट कॉम्बैट तो आपको ओनिमुशा लेना चाहिए। दैट इज माई फीडबैक, बाकी आपके ऊपर है। मैं भी एक गेमर हूँ आपकी तरह एंड फॉर मी ओनिमुशा विंस द कॉम्पिटिशन क्लियरली। हालांकि इस महीने सबसे ज्यादा बेहतरीन गेम्स ड्रॉप होने वाले हैं इंक्लूडिंग वुल्वरीन, तो जब वो होगा ड्रॉप तो भी उसका छोटा सा रिव्यू जल्दी वाला आपको मिल जाएगा। मैं दुहा वाला के भी FM 107 पे जाना, आप रहे नहीं बेस्ट जगह पर है आप। दिस वॉज टेक अपडेट, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और हर रोज नए जमाने के नए स्कैम में से एक ऐसे स्कैम के बारे में हम बात करते हैं जिससे आप अलर्ट रह सके, जिससे आपकी कंपनी बच सके। अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हैं, किसी स्टोर के ओनर हैं, किसी रेस्टोरेंट को चलाते हैं या फिर आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है, तो लाजमी है कि आपके पास एम्प्लॉय भी होंगे। कई बार आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से ट्रेंड नहीं हुए होते हैं और उनके साथ धोखा हो जाता है। लेकिन उनके साथ जो धोखा होता है वो आपके स्टोर को, वो आपके बिजनेस को, वो आपके काम को हैम्पर करता है, वो आपके फिनांस को हैम्पर करता है। और इसीलिए स्कैमर्स ने एक नया तरीका निकाला है स्कैम करने का, विच इज कॉरपोरेट आइडेंटिटी थेफ्ट। ये स्कैम काम कैसे करता है जरा इस पर नजर डालते हैं। कॉरपोरेट आइडेंटिटी थेफ्ट तब होता है जब क्रिमिनल्स किसी चलती फिरती रेप्यूटेड कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस और क्रेडिट हिस्ट्री चुरा लेते हैं ताकि वो मार्केट में बड़ा फ्रॉड कर सके। स्कैमर्स इंटरनेट पर या गवर्नमेंट पोर्टल्स पर जाकर किसी रियल कंपनी की सारी डिटेल्स निकालते हैं और ऑब्वियसली बात ये बड़ी लाजमी है कि आप सारी डिटेल्स इंटरनेट पर डालना चाहते भी हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हो तो उसे कैसे पता चल जाएगा अगर वो सर्च इंजन पे सर्च कर रहा है तो आप इंटरनेट पे ये सारी डिटेल्स डालते हैं और यहां से बहुत आसान हो जाता है मैक्सिमम डिटेल लेना आपके कंपनी की किसी भी फ्रॉडस्टर्स के द्वारा। स्कैमर्स इंटरनेट पर या गवर्नमेंट पोर्टल्स से आसानी से ये सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं। इन डिटेल्स का इस्तेमाल करके वो किसी दूसरे बैंक में उस कंपनी के नाम पर एक फेक बिजनेस अकाउंट या फेक क्रेडिट कार्ड खोल देते हैं, क्योंकि असली कंपनी का मार्केट में अच्छा नाम है और उनका क्रेडिट स्कोर बढ़िया होता है। बैंक्स और सप्लायर्स उन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इसके बाद ये स्कैमर्स बड़े सप्लायर्स के पास जाते हैं और असली कंपनी का नाम यूज करके हजारों लाखों डॉलर्स या कतरी रियाल या रुपीस का स्कैम कर देते हैं या क्रेडिट में सामान ले लेते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। वो बिलिंग एड्रेस तो असली कंपनी का डालते हैं, लेकिन शिपिंग एड्रेस जहां सामान डिलीवर होना है वो किसी खुफिया वेयर हाउस का दे देते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। सप्लायर्स को लगता है कि उन्होंने एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड को सामान बेचा है। जब सामान डिलीवर हो जाता है, स्कैमर्स उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर गायब हो जाता है। हफ्तों बाद जब सप्लायर्स का पेमेंट का टाइम आता है तो वो असली कंपनी से कॉन्टेक्ट करेगा ऑब्वियसली। तब दोनों पार्टी हैरान हो जाती है, तब पता चलता है, क्योंकि ये स्कैम ऐसा स्कैम है थोड़ी लेट पता चलता है, इसलिए तब तक स्कैम आपके साथ हो चुका होता है। असली कंपनी का नाम खराब होता है और इससे ऊपर लीगल केस भी चलता है फिर। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का एक तरीका है, एक नहीं कई तरीके हैं, उन तरीके पर जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका है रेगुलर क्रेडिट मॉनिटरिंग। अपनी कंपनी की क्रेडिट प्रोफाइल को हर महीने चेक करें, रिपोर्ट्स को मॉनिटर करते रहें, ताकि अगर कोई आपके नाम पर नया लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी करे तो आपको फौरन पता चल जाए। कई बार हम इतने ज्यादा काम में बिजी हो जाते हैं कि इन डिटेल्स पर फोकस ही नहीं करते। सिबिल स्कोर को चेक करना, रिपोर्ट्स को मॉनिटर करना, अपने बैंक अकाउंट में जाकर पता करना, अब तो आपके पास डिजिटल दुनिया है। जब स्कैमर्स इस डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरी है कॉर्पोरेट भी इस डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करे और रेगुलर इंटरवल पर चेक भी करते रहे। किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर किसी ने अप्लाई किया है तो आपको पता चलता रहेगा। उसके अलावा अलर्ट और ऑनलाइन ऑडिटिंग भी, गूगल अलर्ट और ऑनलाइन ऑडिटिंग हमेशा ऑन रखें। अपनी कंपनी के नाम पे गूगल अलर्ट सेट करें। अगर इंटरनेट पर आपके बिजनेस नेम से जुड़ी कोई भी नई एक्टिविटी या नया एड्रेस रजिस्टर्ड होता है तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेंडर और सप्लायर का वेरिफिकेशन। अगर आप एक सप्लायर हैं तो किसी भी नए कॉर्पोरेट ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले उनके रजिस्टर ऑफिस के ऑफलाइन लैंडलाइन नंबर पर कॉल करें। सिर्फ ईमेल पर आए ऑर्डर पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें। उसके अलावा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सीक्रेसी। अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, जीएसटी है, टैक्स है, दुनिया के अलग अलग टैक्स होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर ना करें। उसके अलावा एक आखिरी तरीका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सीक्रेसी। जो चौथा तरीका है वो अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है, जो डिटेल्स है टैक्स की, बोर्ड रेजोल्यूशन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर ना करें। इन्हें सिर्फ वेरीफाइड पोर्टल्स और वेरीफाइड पार्टनर्स के साथ ही शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका फुटप्रिंट, आपकी कंपनी का फुटप्रिंट बढ़ता है इंटरनेट में, आपकी कंपनी बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है टारगेट करने के लिए और आपकी कंपनी से या आपकी कंपनी के साथ उनके एम्प्लॉयज के साथ स्कैम हो सकता है। तो दोस्तों, ये था कॉर्पोरेट थेफ्ट का एक नए जमाने का नया स्कैम। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
3: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्म की जो बहुत ज्यादा यूज होती है। आपने शायद सुन रखी हो, लाइफस्टाइल क्रीप। हाँ जी, सो लाइफस्टाइल क्रीप का मतलब है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे महंगा हो जाता है। पहले जो चीजें लग्जरी लगती थी, बाद में वो नेसेसिटी बन जाती है। और शायद इसी सोच को, इसी पैटर्न को कहा जाता है लाइफस्टाइल क्रीप। चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि ये है क्या और ये किस तरह से हमारी और आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे एक तरह का एडिशनल बर्डन है। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर किसी की सैलरी 5,000 कतरी रियाल थी और फिर 8,000 कतरी रियाल हो गई, तो आइडियली उसे एक्स्ट्रा पैसे सेव करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, अक्सर नई सैलरी के साथ नया मोबाइल आ जाता है, ब्रांडेड कपड़े आ जाते हैं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स के चक्कर लगते हैं और कई बार लग्जरी वेकेशंस प्लान करना

अब नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इनकम बढ़ने के बावजूद भी हम सेविंग्स नहीं कर पाते। ये है लाइफस्टाइल क्रीप का मसला। देखिए, लाइफस्टाइल क्रीप बहुत ज्यादा डेंजरस है और मैं कहूंगी ये इसलिए है क्योंकि ये चुपके से धीरे धीरे हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को अफेक्ट करता है। हमें लगता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन असल में हम अपने फ्यूचर गोल्स को सेक्रिफाइस कर रहे होते हैं। देखिए, आज का जो दौर है वहाँ पर दिखावा चलता है और शायद इसी दिखावे के चलते फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ता है। एक और सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक शख्स जिसका नाम अहमद है, वो जॉब स्टार्ट करता है। उस बंदे के पास एक नॉर्मल फोन था, का सारा काम चलता था और घर का खाना खाता था, पैसे भी बच जाते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद उसकी सैलरी बढ़ी, या यूं कहें कि डबल हो गई। अब वो हर साल लेटेस्ट आईफोन खरीदता है, रोज फूड जो है वो ऐप से ऑर्डर करता है। फिर वो क्या करता है? फिर वो लोन्स लेता है या फिर क्रेडिट कार्ड्स का सहारा लेता है और इस तरह से उस पर और एडिशनल बर्डन बढ़ जाता है। इस मसले का सलूशन ये है कि जब भी इनकम बढ़े, स्पेंडिंग उसी रेशो में ना बढ़ाएं। आई रिपीट, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी स्पेंडिंग जो है वो उसी रेशो में ना बढ़े। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सैलरी इंक्रीज का एक हिस्सा सेविंग्स और एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स में जरूर जाना चाहिए। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आगे भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जैसे अभी चलिए छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी सैलरी 1000 इंक्रीज हुई, तो कम अज कम आप जो है वो 500 कतरी रियाल या तो इन्वेस्ट करें या फिर सेव करें। बजट बनाना भी कितना जरूरी है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। हर महीने अपने एक्सपेंसेस लिखना और चेक करना कि कौन सा खर्चा जरूरी था और कौन सा गैर जरूरी। अपने फाइनेंशियल गोल्स, जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई है, आपने अगर घर खरीदना है, या आपने अगर रिटायरमेंट प्लान करना है, या फिर इमरजेंसी फंड बचाना है, इन सारी चीजों को प्रायोरिटी दीजिए। आखिर में जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करना बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी स्पेंडिंग इनकम के साथ इतनी बढ़ जाए कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ भी ना बचे। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस और डिसिप्लिन स्पेंडिंग के जरिए हम लाइफस्टाइल क्रीप से बच सकते हैं और अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अपने फाइनेंशियल स्टेटस और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ मच यू कीप। वेल, इसी प्यारी सी बात के साथ अब मैं आपसे इजाजत लूंगी। कल आपकी मुलाकात और मेरी जब मुलाकात इस सेगमेंट में होगी तो एक और नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस।

0: और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो यानी दूरंदेश है बंदा, सब कुछ समझ लेता है कहाँ सही तौर पर अपने पैसे खर्च करने हैं, कहाँ क्या करने हैं, वो अपना जो है ना खैर समझ लेता है। तो वो एक हद है ख़ास जो बलूगियत के बाद भी बाज़ औक़ात लोगों के पास नहीं होता, वो नहीं समझ पाते हैं कि हाँ मैं ये जो इकदामात करूँगा ये मेरे लिए खैर होगा या मेरे लिए यानी शर के बायस बनेंगे। तो वो एक रुश्त का एक मामला है। रुश्त के हवाले से हमें जो है ना जब शुरू से अपनी तरबियत में हम इसको फोकस करेंगे तो फिर आगे जाके हम अपने बच्चों को वो रशीद जो बनाना होता है ना, रुश्त सेंटर जो तरबियत होती है उसको हम अपने बच्चों में सही तौर पर बो सकेंगे। तो इसको बोने के लिए पहले से ही आपको बीज बोना पड़ेगा, उसके अंदर वो अखलाकी वो पहलुओं बार बार उनको इस बात की हिदायत देनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और तो फिर आजकल जो हम टीनेजर्स को जैसे कि हम देखते हैं कि भाई बच्चा बालिग हो गया है, 14 साल का है, 15 साल का है, लेकिन जैसे मनमानी वैसे कर रहे हैं। अब हम भी कह रहे हैं कि भाई ये तो बच्चे हैं, जैसे करने दो ना, वैसे जो चाह रहे हैं जीने दो जैसे चाह रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी की जो बात आ जाती है, हम जो देख रहे हैं इस नस्ल में तो वो जिम्मेदारी लेने की जो ताकत, जो हौसला था हमारे बड़ों में, आज की नस्ल में वो कम दिख रही है। क्योंकि वो हम उनको एक हद तक यानी 25-30 साल तक उनको बच्चा बनाए रखे हमने, ठीक है। तो इस वजह से शरीयत ने जो मियार दिया है उसको फॉलो करने ही में खैर है। तो सामने कराम, जैसा कि हम कह रहे थे कि फितरत में किसी चीज़ का होना उसे इंसान के लिए अखलाकन दुरुस्त नहीं बना देता। जंगल में कमज़ोर जानवर शिकार हो जाता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने माशरे के बीमार, बूढ़े, माजूर और कमज़ोर इंसानों को भी ख़त्म कर दें? हरगिज़ नहीं। तो यही है और होना चाहिए का फ़र्क है, ठीक है। एक है कि हाँ ताकत के एतबार से, जिस्मानी ताकत के एतबार से आप मर्द को क्या कहें कि हाँ ये ज़्यादा है इनके पास, ख़वातीन जिस्मानी ताकत इनका नस्बतन ऐसे उमूमी तौर पर ये कम है। तो लेकिन क्या इसका मतलब ये कि ओवरऑल उनके साथ मामला भी वैसा ही होना चाहिए, ताकत के बलबूते पर और जुल्म व ज़्यादती कोई हद न रहे? माज़ अल्लाह। तो कुदरती इंतखाब ये बयान कर सकता है कि फितरत में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन इससे खुद ब खुद ये हुक्म नहीं निकलता कि इंसान को क्या करना चाहिए। मैंने तारीख़ के काफ़ी दलाइल आपके सामने पेश किए। तारीख़ में बाज़ ऐसे इस्तेमार पसंद नज़रियात ने अपने आप को महज़ब और दूसरी अकवाम को पसमंदाना या कमतर करार दिया और नाम नहाद साइंसी नस्ल परस्ती को भी यानी उन्होंने अपनाया और कहा कि हाँ ये नज़रिया हमें इस तरफ रहनुमाई कर रहा है। तो बाज़ औक़ात एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की दलील यानी दी जाती है, कभी नस्ल के नाम पर, कभी कौम के नाम पर, कभी तबके के नाम पर। तो इसके गलत गलत इस्तेमाल करके लोगों पर जुल्म किया जाता है। तो असल सवाल ये है कि मेरे सामने जो इंसान मुझसे कमज़ोर है तो उसकी कदर की बुनियाद क्या है? अगर सोचें आपके साथ, आपके सामने कोई कमज़ोर इंसान है और आपके पूरे इख्तियार के मातहत है, वो आप कुछ भी चाहे कर सकते हैं, गुजर जाएंगे, तो अगले कमज़ोर बंदे की कदर आप क्यों करेंगे? मुझे ज़रा ये बताइए। 443-443-77 स्टूडियो के नंबर, और तकरीबन प्रोग्राम के निसफ मरहला हम तय कर चुके हैं और आधा मरहला बाकी रह गया है। तो बिस्मिल्लाह आप लोगों की कॉल्स आएंगी और हमारी गुफ्तगू भी, हम इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब जो है ना एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, मुलाकात होती है ब्रेक के उस पार।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
3: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
4: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें। ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से ना सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम। तर्तीबो पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुज़्ज़मान, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शन के आज के इस हलके में। दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, जैसा कि हम अगर आज के मौजू को जुमे से के साथ रिलेट करें, तो भाई जुमे के दिन हमें ये सोचना चाहिए कि भाई अगर यानी हम पूरे हफ्ते एक तरह का अमल करके आ रहे हैं, तो जुमे के दिन ये एक अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुहासिबे के लिए हमें एक दिन रखा है, ताकि हम इसका जायज़ा लें भाई हमारे साथ क्या हमसे क्या गलती हो गई है और क्या सही हुआ। और इस तरह जब अपना मुहासबा लेते रहेंगे और अपने आप को वही इलाही से जोड़ते रहेंगे, तभी जाके आप सही माने में इंसान बनेंगे। हाँ जी, और साइंसी नज़रियात पर तवज्जो देंगे तो वो आपको जंगल के कानून की तरफ शायद ले जा सकते हैं। तो चलें, अब इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको जुम्मे की खैर और मुबारक साथें नसीब हों।
3: आमीन आमीन। क्या हाल है?
4: माशाल्लाह, आपने कंटिन्यू किया जी हमारा नेक्स्ट, ये जो आपका
3: अल्हम्दुलिल्लाह इस स्केड्यूल में भी ये मेरी खुश सआदत है कि भाई दोबारा आप लोगों के साथ इसी प्रोग्राम में, इसी प्लेटफॉर्म से हम दोबारा जुड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जुम्मे के दिन लोग मस्जिदों में जाते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो शायद खुतबा वगैरह नहीं समझते हों, तो हमारी कोशिश रहती है कि थोड़ी बहुत चंद मोटी जो बातें हैं हम जिस तरह जुमले लोगों के साथ शेयर करते रहे, वो मस्जिद में जाते वक्त एक दो जुमला किसी के कान में पड़ जाए काफ़ी है ना दुल्कनन भाई।
4: बिल्कुल, जुम्मे के दिन की मुनासबत से और बंदे का वैसे ही मेंटली उसकी ना प्रिपरेशन होती है कि हम लोग यानी इस दिन की एक रहमत है कि हमारी एक्सेप्टेंस अच्छी हो जाती है, इन चीज़ों को हमें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, हम पे असर होता है और हम लोग जैसे प्रिपेयर हो रहे होते हैं ना इन चीज़ों के लिए, तो वो असर करती हैं। और अभी आपने जैसे बात कर रहे थे कमज़ोर और ताकत, ये तो अल्लाह ताला ने हमें बताया ना कि जंगल का कानून और इंसान, इसमें हमने फ़र्क रखा है। और कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ वहाँ की रियासत देती है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना बनाई और उसमें कमज़ोरों को, और उसके बाद उन लोगों ने फॉलो अप किया कि कोई कमज़ोर

0: को कोई इस तरह कमजोर ना समझे, रियासत उसके पीछे खड़ी होती है।
1: और सही।
0: बाकी जो आपने बच्चों वाली और वो जो बात की वो बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं वाकई 14, 15, 16 साल में बाप को क्रॉस कर चुके होते हैं, माँ से बड़े हो चुके होते हैं माशाल्लाह ताकत में, तो वो बचपन में मन में उनमें मेच्योरिटी नहीं आती, बल्कि कई लोग वो उनको वो जो मुख्तलिफ
1: अलकाब देकर
0: अलकाब जी यहाँ ये तो मज़े के दिन है, ये तो शौक के दिन है, वो ओल्ड माँ बाप के नाक में दम करने के दिन है। ऐसी चीजें
1: तो ये मिसगाइड कर रहे होते हैं ना,
0: मिसगाइड कर रहे होते हैं कि ये इनकी जिंदगी की एक बुनियादी वक्त होता है जो बेस बन रही होती है जिसके ऊपर उन्होंने बाकी जिंदगी के ढांचे को तामीर करना है, जो उनकी पर्सनैलिटी है। देखें इसी वक्त की पढ़ाई, इसी वक्त की तरबियत पूरी उम्र उनको ना फायदा देती है। जो इस एज को मिस कर लेता है वो फिर भटकता रहता है।
1: बिल्कुल, तो
0: इसलिए एहसास जिम्मेदारी और उसको एक पोर्शन के हिसाब से, और ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो करने दिया जाए, फिर से सही गलत की तमीज़ ही गलत हो जाती है, बल्कि सही गलत का बताया जाए ताकि आगे जाके वो इस चीज़ को ठीक कर सकें, गलत चीज़ों में मुबतला ना हो और सोचे मैं करने से पहले सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो फिर तो वो जो गलत की तरफ जाए तो उसकी कोई हदूद नहीं है। सॉरी बीच में आप कुछ कहने लगे थे लेकिन बस
1: नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें सारी की सारी हमारे मौजू से रिलेट करती हैं। ये जो हमारा जो मौजू था, जो सवाल था ख़ास, कि जैसा कि अगर कोई हमारे मातहत काम करने वाला कमज़ोर है, चाहे वो काम करने वाले यानी हमारे मातहत, अब मातहत तो बीवी है, हमारे मातहत औलाद हैं, हमारे मातहत कोई वर्कर है, तो वो अगला जो वो तबका होता है तो ये तो कमज़ोर होते हैं वो, यानी आप उनके सरबराह, इसका मतलब यही है कि वो कुछ ना कुछ उनमें आपकी बनिस्बत कमज़ोरी, ये ज़रूरी नहीं कि जिस्मानी तौर पर, किसी भी जाविये से कुछ कमज़ोरी होगी, इसी वजह से आपको उन पर मुसल्लत किया गया है। ये कुदरती एक निज़ाम है, कुदरती इंतखाब है, नेचुरल सिलेक्शन है। और इस तरह जो है ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में बताया कि हमने एक दूसरे को तुम में से मुसख़र किया है एक दूसरे के लिए, ताकि ये दुनियावी जो निज़ाम ये चले। लेकिन इस निज़ाम या फिर इसके बिना पर क्या हम ये कह सकते, हमारा कमज़ोर के साथ मामले का तरीक़ा क्या होना चाहिए, कमज़ोर की कदर कहाँ है, या कमज़ोर को हम किस नज़र में देखें, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि आज की दुनिया में जो हम देख रहे हैं ना, लोग ख्वाहिश के बलबूते पर एक दूसरे के साथ मामला करें, जैसा मन वैसा करना, तो इंसानियत की अज़मत क्या ताकतवर बनने में है, या ताकत के बावजूद जो है ना अदालत, रहम और खुदा तरस रहने में, इसको आप कैसे समझते हैं? यानी हमारे जो बिहेव है आजकल, जो अमूमी रवैया है हमारे मातहतों के साथ, जिस तरह के जुल्म और ज़्यादती हैं, अब यानी इस दुनिया के किसी भी वो सकोने की तरफ चले जाएं गोशे में, तो वहाँ भी आपको इस यही पहलू नज़र आएगा कि जो इंसानियत की बात करते हैं उनमें भी कितनी शदीद नस्ल परस्ती है।
0: या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना मुसल्लत के मुसल्लत से तो फिर इंसान जान छुड़ाता है। ये तो अल्लाह ताला ने रिश्तों, अगर रिश्तों में जाएं तो फिर जिम्मेदारी की गई है, तो जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाई जाती है। फिर जिम्मेदारियाँ दो तरफा होती हैं कि अगर मैं फाइनेंशियल और उनको दुनिया की, मिसाल के तौर पे बच्चे हैं, जैसे औरत भी कमज़ोर है, उनकी हिफाजत की कोशिश की जा रही है, उनकी फाइनेंशियल नीड का ख्याल किया जा रहा है, उसके जवाब में वो मुझे अतात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नहीं मेरी जाती उस चीज़ से कतई नज़र जिसमें वो समझते हैं हाँ इंसान से गलती हो सकती है, कई दफ़ा कई चीज़ें अकल कुल नहीं होता, गलती कर जाता है, ये इंसान की औकात है, जो सीधी सी बात है, तो उसमें तो स्पेस रख के और उसके बाद इज्जत और एहतराम, वरना सारी उम्र का साथ कट नहीं सकता। ये तो ना मजबूरियाँ जो होती हैं वहाँ पर इंसान उस वक्त की तलाश में रहता है कि मजबूरी ख़त्म हो और इससे जान छुड़ाऊं, ठीक है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक कि बच्चों में भी इस तरह की तसव्वुरात होते हैं कि भाई कब हमें एक ऐसा मौका मिले जहाँ माँ बाप ना हो और हम यानी अब अपनी तरह अपनी लाइफ लीड करें, तो ये भी रहता है जब हम उनके साथ वैसा मामला कर रहे होते हैं। और बाज़ ऐसे भी होते हैं माँ बाप के अलावा वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कैसे ज़िंदगी जिए, ऐसे भी हैं। बिल्कुल
0: ऐसे हैं भी, लेकिन इसको बैलेंस करना चाहिए। मैं थोड़ा सा मीडियम रेंज में हूँ। मेरे अब्बू जान कहते थे, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, वो कहते
1: आमीन।
0: थे बेटा मशवरा आपको समझ ना आए ना तो दीवार से भी कर लो, बेशक अपनी मर्जी करो, लेकिन आप जब किसी से डायलॉग करते हो ना तो आपको उस चीज़ का ज़्यादा पता चलता है कि सही गलत क्या है। आप दिली दिल में सोच रहे हैं ना तो आपको अंदाज़ा नहीं होता। फॉर एग्जांपल कई चीज़ें मेरी उनसे मुतालिक नहीं है, बात करते हुए कोई खदशात, कोई चीज़ें जो अक्ल और इल्म के मुताबिक शेयर करते थे तो बंदा कहता है यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बाकी वो कहते इसको बेहतर एस्पेक्ट में तुम ज़्यादा समझते हो, ये चीज़ें देख लो। तो आपको देखें हर वक्त बंदे को एक ट्रस्टेड दोस्त चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम थे, अबी बकर थे, इस तरह थे। इंसान को मॉरल जो सपोर्ट है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: आपका एतमाद है, आप यानी करते हुए बड़े कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तो ये तो अल्लाह की रहमत है। तो ये जो बच्चों की आपने कहा ना वो है, ये बात सही है, उनको एक फेज में होता है, शायद हम लोग भी, लेकिन उसके बाद एक फेज होता है उनको पता चलता है कि हर
1: हम गलत
0: बंदा
1: हैं।
0: आपको जो मशवरा देता है ना वो अपने फायदे के हिसाब से देता है। माँ बाप जो मशवरा देते हैं ना वो उसके फायदे के हिसाब से देते हैं।
1: तो ओवरऑल कमज़ोर की जो हुर्मत है, उसकी जो अज़मत है, उसकी बुनियाद, जैसे कि इस्लाम के तसव्वुर में ये दरअसल ये बात आई है कि वो प्रोडक्टिविटी से नहीं आती, बल्कि हमें ये देखना है कि ये अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की मखलूक है, जब हम इसको इस तरह रिलेट करते हैं ना, तो वहीं जो है ना उसकी जान और इज़्ज़त का जो एहतराम वो वैसा ही आ जाता है कि भाई सब अल्लाह के मखलूक हैं। ये मैं मेरा बनाया हुआ कोई कमज़ोर जो भी है आज मेरे साथ काम कर रहा है, किसी भी तरीके से वो मेरे साथ आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर जुल्म और ज़्यादती करूँ। तो जब ये शऊर रहे दिल में इस्लामी तसव्वुर के मुताबिक कि भाई अल्लाह के मखलूक हैं, तो इंसान नज़रिए से बड़ा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बुनियादी बात है, अगरचे हम इसको आसानी से कह देते हैं ज़ुल्कनैन भाई कि हम अल्लाह के मखलूक हैं सब, लेकिन दरअसल यानी इंसान की कदर, आपके साथ रहने वाले की कदर की बुनियाद इस्लामी तसव्वुर में ये है कि हम अल्लाह के मखलूक हैं। इसको उस तबके में जाके हमें समझना चाहिए। तो बस यही चंद छोटी मोटी बातें थी। माशाल्लाह आपकी बातों से भी, गुफ्तगू से हम
0: एक
1: काफ़ी मुस्तफीद हुए।
0: अल्लाह ताला को ना पसंद नहीं है कि इंसान कमज़ोर रहे और कमज़ोर इंसान गुलाम बन जाता है। देखिए पता है मक्का के वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआहिदा किया तो वो कमज़ोर या उस वक्त होके बैठ नहीं गए, उन्होंने उस वक्त के मुनासिबत से अपने आप को मजबूत किया,
1: बिल्कुल
0: मजबूत
1: बिल्कुल
0: किया ताकि उनसे मुकाबला कर सके।
1: हदीस में भी इस बात सिलसिले में काफ़ी तरगीब आई कि भाई यानी कम ताकतवर मोमिन बेहतर है कमज़ोर मोमिन से, इस तरह की जो है ना बार बार तरगीब, हौसला अफजाई की गई है।
0: तो आप उस चीज़ को, अपनी कमजोरी को दूर करें इल्म से, चौर से,
1: बिल्कुल
0: और जैसे अल्लाह ताला ने उसके एक तरीके बताए हैं, मकसद है कि जिद्दोजहद करनी है ना,
1: बिल्कुल
0: आराम से बैठ नहीं जाना, मेरे तो नसीब में यही था, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा नहीं मायूस नहीं होना, क्यों नहीं हो सकता, तुम करो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: चले
1: बहुत ही
0: जी
1: अहम नुकता है।
0: इंशाल्लाह
1: माशाल्लाह काफ़ी आज बड़ी बड़ी डीप डीप डाइव है, आज मौजू बहुत गहरा है, यानी ये बहुत आसान मौजू नहीं है।
0: बात करके माशाल्लाह बात खत्म करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मस्जिद में पहुंचना भी
1: जरूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कबूल फरमाए हमारे नेक अमाल को। बारक अल्लाह फीकुम, तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। तो सामने कराम, काफ़ी मैं कह रहा था काफ़ी एक अहम मौजू है और बहुत ही भारी भरकम, यानी इसको आसानी से समझना, यानी आसान सादा अंदाज में हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अख़लाक़ी रवैया हमारा कैसा होना चाहिए, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट के लिए हमारे अंदर हमारे जहनों में क्या तसव्वुर रहना चाहिए ताकि हम दूसरों के साथ सही माने में वो बर्ताव कर सकें। कभी ऐसा होता है ना कि आपकी ज़हनियत में वो बात नहीं होती, आप जब दूसरों के साथ बिहेव कर रहे होते हैं वो चीज़ मुस्तहज़र नहीं रहती आपके जहन में। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे जवाने में कुछ ऐसे पहलू हैं जो वो आपके जहन में रखना है। तो अगर कोई बीमार है तो यानी क्या हम ये कहेंगे कि ये सर्वाइवल की दौड़ में पीछे रह गया, हम उसका इलाज इस वजह से हम उसका इलाज करेंगे। कोई माजूर है क्या हम उसे बोझ करार देकर सहारा देंगे हम? इसी तरह अगर कोई बूढ़ा है, आज हम जवान हैं तो कल हम भी बूढ़े हो जाएंगे, जिस्मानी कुव्वत कम हो गई, तो लेकिन हम क्या इसको इंसानी हुर्मत के हवाले से भी हम ये कहेंगे कि उनकी इंसानी हुर्मत भी कम हो गई? इसी तरह अगर कोई भूखा, यानी कमज़ोरी के जितने अनवा, जितने فروق ہو سکتے ہیں. تو یہ جو کوئی بھوکا ہے جیسے مثال کے طور پر, تو یہ

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: दोस्तों घर में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना एक अहम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना भी बेहद जरूरी है याद रखिए आपकी आगाही आपकी सेफ्टी को बढ़ाती है फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझना जरूरी है हर फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स की आग के लिए डिजाइन होते हैं जैसे कि ड्राई केमिकल फोम वाटर बेस्ड या CO2 एक्सटिंग्विशर आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर आपके पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त एक सिंपल एक्रोनिम पास का ध्यान रखें PASS जिसका मतलब होता है पी फॉर पुल यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें दूसरा है ए यानी एम नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें ना कि आग के ऊपर नंबर तीन है एस जो के है स्क्वीज हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो और चौथा है दोबारा से एस यानी स्वीप नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर स्प्रे करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें और किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आप सभी को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दें FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है

FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामिन किराम, आज हम आपके साथ जो दुआ शेयर करने वाले हैं, इस दुआ को हम तीन बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो दुआ का पहला हिस्सा जिसमें अल्लाह की अजमत का तारुफ है, दूसरा हिस्सा अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन, और दुआ के तीसरे हिस्से में काफ़ी एक अहम तलब है, एक दरख्वास्त है, और इस दरख्वास्त के लिए जो मुकदमा है अल्लाह की अजमत का तारुफ, अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन, और इस दुआ को जिस तरह शुरू किया गया है तो ये इससे पता लगता है कि जो हाजत या ख़ास एक तलब के लिए ये दुआ पढ़ी जाती है, उस हाजत के लिए ये दुआ काफ़ी अहम है। तो ज़रूर अगर इस तरह के हाजात आपके भी हैं तो आप ये दुआ ज़रूर पढ़िए। और ये कौन सी हाजत है, कौन सी हाजत की ख़ास एक दुआ है, ये आपको पता चलेगा। आप ज़रा सुनिए हमारे साथ दुआ के आखिरी जुमले तक, इंशाल्लाह सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी बिइज़्निल्लाहि तआला। तो चलें दुआ शुरू करते हैं। इब्तिदाही में इस दुआ के, जैसे कि हमने पहले बताया, पहले हिस्से में अल्लाह की अज़मत का तारुफ और अल्लाह की रुबियत का ऐलान हो रहा है। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबई व रब्बल अर्ज़ व रब्बल अर्शिल अज़ीम। ऐ अल्लाह, तू सातों आसमानों का रब है, ज़मीन का रब है और अज़ीम तरीन मखलूक अर्श का रब है। यानी गोया के ज़बान हाल ये है कि अल्लाह, मैं उस ज़ात से, मैं तुझसे उस ज़ात से मांग रहा हूँ जिसके हाथ में पूरी कायनात है, यानी जिससे मांगा जा रहा है वो सबसे बड़ा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जहाँ पर अल्लाह की कुदरत की निशानियों की तरफ इशारा है। फ़ालिक़ल हब्बि वन्नवा, जो दाने और गुठली को चीरने वाला है, यानी जो सख्त मुर्दा और बंद चीज से जिंदगी निकाल दे, अरे वो तो क्या कुछ नहीं कर सकता, वो मेरी बंद किस्मत भी खोल दे सकता है। अगर अल्लाह बीज को फाड़ सकता है और इससे पौधे उगा सकता है तो मेरी हाजात के गिरा भी जरूर खोल सकता है। और वो कौन सी खास हाजत है, तलब है, जिस पर इस दुआ में इसका जिक्र किया गया, ये आपको पता चलेगा दुआ के आखिरी हिस्से में। मज़ीद आगे दुआ का अगला हिस्सा है, मुंजिलत तौराती वल इंजीली वल फुरकान। तो आसमानी किताबें तौरात, इंजील, फुरकान, यानी फुरकान यानी क्या, कुरान नाजिल करने वाला है। अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्ली शय्इन अंताख़िज़ु मिन नासियतिही, मैं हर उस चीज़ के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ जिसकी पेशानी या किस्मत तेरे हाथ में है, या तू ने उसे पकड़ा हुआ है, तेरे कब्ज़े में है। यानी कोई ताकत, कोई इंसान, कोई हालात अल्लाह की ज़ात के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता, और अल्लाह के इल्म के बग़ैर किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अब तौहीद का ऐलान आगे किया जा रहा है। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैस क़ब्लक शै, व अंतल आखिर फलैस बादक शै, व अंतल ज़ाहिर फलैस फ़ौक़क शै, व अंतल बातिन फलैस दूनक शै। सामिन किराम, ये है तौहीद का ऐलान कि या अल्लाह, या तू ही अव्वल है, तुझसे पहले कोई नहीं, तू ही आखिर है, तेरे बाद कोई नहीं, तू ही जाहिर है, तुझसे ऊपर कुछ नहीं, तू ही बातिन है, तेरे मावरा कोई नहीं। सामिन किराम, ये दुआ दरअसल यहाँ कामिल अकीदा तौहीद है, यानी हर सिमत, हर वक्त, हर हाल में बस अल्लाह ही है। और इस तरह आगे आखिरी और जो असल मकसद अमली हाजत की जो दुआ है वो है, उसके लाइन इस तरह है, इक़्दि अन्नद्दैन اللہ ہمارا قرض ادا کر دے واغننا من الفقر اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے. یعنی قرض ادا کرنا یہاں پر پیسے کے قرض تو ضرور ہے, اسی طرح لوگوں کے حقوق, ذمہ داریاں, وعدیں, جو سب کچھ یہاں شامل ہیں جو دراصل ہمارے ذمہ قرض ہوتے ہیں, تو انہیں پورا کرنا, ادا کرنا یہ لازمی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی توفیق مانگی جا رہی ہے. اور واغننا من الفقر اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے, یعنی لوگوں کا محتاج نہ بنا, اپنے سوا کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہ کر. سامعین کرام, یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ کو پہچانو, اس پر ایمان لاؤ, اس سے پناہ مانگو اور اپنی حاجت رکھو. اسی ترتیب کو کہتے ہیں ادب دعا. گویا اس دعا میں اصل چیز یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے, اسی سے مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے قرض کی ذلت سے نکال دے اور فقر کی محتاجی سے بچا لے. اس طرح یہ دعا قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی سب سے طاقتور ہتھیار کہہ سکتے ہیں یا دعا ہے, اور دل کے سکون کی سب سے مکمل دوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. انہی پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकामे खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, जिंदगी में बाज़ नेमतें ऐसी हैं जिन्हें हम हासिल करने के लिए बहुत मेहनत और तकद्दो करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिज़्क में वसअत हो, घर में बरकत हो, जिंदगी बामकसद और बाबरकत हो, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि नेमतों का ताल्लुक हमारे रिश्तों से भी हो सकता है? माँ बाप, भाई बहन, चचा फूफी, मामू, खाला और दूसरे करीबी रिश्ते, ये वो ताल्लुकात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हमारे वजूद के साथ जोड़ा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रिश्तों को निभाने के बारे में एक ऐसी खुशखबरी सुनाई है जिसे सुनकर इंसान का दिल चाहता है कि आज ही किसी भूले हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ ले। अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه, जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क में वसअत दी जाए और इसकी उम्र में दराजी और बरकत अता की जाए, उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। सबने कराम, सिला रहमी का मतलब है रिश्ते को जिंदा रखना, हाल पूछना, जरूरत में साथ देना, बीमार हो तो इयादत करना, परेशान हो तो तसल्ली देना। यानी सिला रहमी सिर्फ ये नहीं कि आप ईद के दिन एक रस्मी पैगाम भेज दिए या साल में एक मरतबा किसी तकरीब में मुलाकात हो गई और बस। रिश्ते हमेशा किसी बहुत बड़े वाक़े पर नहीं टूटते, छोटी सी छोटी बातों पर। उसने राबता क्यों नहीं किया या फिर उसने पहले राबता क्यों नहीं किया, मैं क्यों करूँ, और यही जुमला दोनों तरफ होता है। वो कहता है वो क्यों नहीं आया, ये कहता है वो क्यों नहीं आया, दोनों इंतज़ार करते रहते हैं और दरमियान में एक खूबसूरत रिश्ता खामोशी से कमज़ोर होता रहता है। तो मैं ही क्यों पहल करूं? सिला रहमी का असल इम्तिहान शायद यही है। जो रिश्तेदार आपके साथ बहुत अच्छा है, उसके साथ अच्छा होना निस्बतन आसान है। वो फ़ोन करे तो आप फ़ोन करें, वो तोहफा दे तो आप तोहफा दें। असल सवाल तब पैदा होता है जब दूसरा शख्स पीछे हट जाए, तब हम कहते हैं मैं ही हर बार क्यों राबता करूँ। यहाँ हमें नबवी तालीम का एक और मफहूम याद रखना चाहिए कि कामिल सिला सिर्फ बदले में अच्छा बर्ताव करने का नाम नहीं। हकीकी सिला यह है कि अगर दूसरी तरफ से रिश्ता कमज़ोर पड़ रहा हो तो इंसान अपनी तरफ से उसे जोड़ने की कोशिश जारी रखे। अब सिला रहमी का मतलब ये भी नहीं कि इंसान खुद को मुसलसल जुल्म, बदसलूकी या हकीकी नुकसान के सामने बेहिफाजत छोड़ दे, यानी जुल्म बर्दाश्त करते रहे, ये भी सही नहीं। हत्तल इम्कान दिल में यह इरादा रहे कि मैं दुश्मनी नहीं पालूंगा, हक तलफी नहीं करूंगा और जहाँ महफूज और मुनासिब तरीके से खैर का ताल्लुक कायम रखा जा सकता है उसे बिल्कुल ख़त्म नहीं करूँगा। आज तो भाई एक और मसला है कि हम कहते हैं वक्त नहीं मिलता, ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, लेकिन ज़रा सोचिए कि शायद एक मिनट लगेंगे आपको किसी से बात करने में। एक मिनट का पैगाम कभी ये किसी उम्र रसीद खाला, किसी मामू, किसी बहन भाई या किसी दूर बैठे रिश्तेदार के लिए पूरे दिन की खुशी बन सकता है। रिश्ता जिंदा रखने के लिए हमेशा लंबी मुलाकात की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी एक सलाम, कभी एक फ़ोन, मुश्किल वक्त में सिर्फ ये कहना कि मैं आपके साथ हूँ, यही काफ़ी होता है। अगर आप अपने बच्चों को सिला रहमी सिखाना चाहते हैं तो उन्हें दिखाइए, खुद आप उनके रोल मॉडल हैं। तो आप अपने वालदेन के साथ हर हमेशा रابطہ रखें, बच्चों को सुनने दीजिए, अपनी खाला फूफी चचा मामू और दूसरे रिश्तेदारों का एहतराम उनके सामने कीजिए। बच्चे जब देखेंगे कि उनके वालदेन ख़ानदान के बुज़ुर्गों का हाल पूछते हैं, इख्तिलाफ़ के बावजूद अदब कायम रखते हैं, तो अगली नस्ल रिश्तों की कदर सीखेगी। वरना अगर बच्चे हर वक्त बड़ों से ये सुने कि फलाने हमारे साथ ये किया था, हम उनसे बात नहीं करते, उनके घर मत जाना, तो हम अनजाने में अगली नस्ल को रिश्ता नहीं दुश्मनी विरासत में दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
3: FM 107 presents Your Health Matter. Your Health Matter with RJ Shruti.
4: कभी किसी फोटो में खुद को देखकर ये लगा मैं इतना झुका हुआ क्यों लग रहा हूँ, या फिर थोड़ी देर बैठने के बाद बैक ने क्वाइटली कंप्लेन किया हो कि भाई अब उठ जाओ, अपना पोस्चर ठीक कर लो। एग्जैक्टली आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पोस्चर और स्पाइन हेल्थ की। पोस्चर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम तब सोचते हैं जब दर्द ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले हमारा इग्नोरेंस मोड ऑन रहता है। पर स्पाइन हमारी बॉडी का मेन सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे बिल्डिंग क्लिप पिलर्स होते हैं वैसे ही बॉडी के लिए स्पाइन होती है। और जब पोस्चर गलत होता है तो प्रेशर स्पाइन के गलत पार्ट्स पर पड़ता है। फोन देखते वक्त नेक झुकी होती है, लैपटॉप पे काम करते वक्त शोल्डर्स राउंडेड होते हैं, और खड़े होते वक्त वेट एक ही पैर पर पड़ता है। ये सब स्मॉल हैबिट्स जो है इनका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। गलत पोस्चर सिर्फ बैक पेन नहीं देता, इससे नेक पेन, हेडेक, शोल्डर स्टिफनेस और कभी कभी फटीग भी हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, पोस्चर सिर्फ बॉडी को ही नहीं कॉन्फिडेंस को भी इफेक्ट करता है। जब हम सीधा खड़े होते हैं ना तो हम सांस बेटर ले पाते हैं, चेस्ट ओपन होती है और बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक फील करती है। गुड पोस्चर का मतलब मिलिट्री स्टाइल स्टिफनेस नहीं होता, गुड पोस्चर का मतलब होता है बॉडी को नेचुरल अलाइनमेंट में रखना, ईयर शोल्डर के ऊपर, शोल्डर हिप्स के ऊपर, और इतना याद रखना काफी होता है। और पोस्चर सुधारना एक दिन का काम नहीं है, ये डेली अवेयरनेस है। हर दिन थोड़ी देर में खुद से पूछो मैं कैसे बैठा हूँ, क्या मैं स्ट्रेट बैठा हूँ। अगर आपको लगता है आप राउंडेड होके बैठे तो सीधे अपनी कमर कर लीजिए। स्मॉल रिमाइंडर्स बहुत हेल्प करते हैं। फोन में अलार्म सेट कर दीजिए कि हर 15 मिनट में वो आपको रिमाइंडर दे कि कैसे बैठे हो। स्टिकी नोट लगा लीजिए हर जगह, ये आप देखते रहेंगे और ये चीज आपकी बॉडी को सिग्नल देती रहेगी। वेल, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पोस्चर के बेस्ट फ्रेंड्स है, स्पेशली कोर और बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं, तो स्पाइन को नेचुरली सपोर्ट मिलता है। और हाँ, पोस्चर का कनेक्शन स्लीप से भी होता है। गलत स्लीपिंग पोस्चर दिन भर के पेन को थोड़ा और बढ़ा सकता है। स्पाइन को रिस्पेक्ट देना फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, तो आज थोड़ा केयर, कल कम पेन। और ये एक सिंपल सा रिमाइंडर याद रखिए कि थोड़ा सीधा हो जाइए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, नेक को फ्री कीजिए, क्योंकि जब स्पाइन हेल्दी होती है तो बॉडी ज्यादा स्मूथली मूव करती है, एनर्जी बेटर रहती है और दिन थोड़ा ज्यादा लाइट लगता है। इसलिए याद रखिए, पोस्चर सिर्फ अपीयरेंस नहीं, हेल्थ का फाउंडेशन है। एंड योर हेल्थ मैटर।
3: FM 107 प्रेजेंट्स योर हेल्थ मैटर विद आरजे श्रुति।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें, ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से ना सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए भाई, टेक की दुनिया ऐसी है कि मुझे भी इसके साथ साइड में दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन इसका अपना मजा है क्योंकि मैं आपको जो प्रोडक्टिविटी के टूल्स या फिर कोई काम की चीज या कोई ऐसी टाइम पास करने की कोई चीज बताता हूँ तो मुझे खुद को भी बहुत फायदा होता है और अच्छा लगता है। सो आज भी टेक अपडेट में तीन बहुत जरूरी वेबसाइट्स और उसके बाद जरा खबरों की तरफ बढ़ेंगे। सो नंबर वन ऑन द लिस्ट, सबसे पहले आपको टाइप करना है, आप वेबसाइट जहां टाइप करते हैं एड्रेस बार में studio.polotno.com। मैं आपको स्पेल आउट करके देता हूं, स्टूडियो studio.polotno.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट जो खुलेगी वो बिल्कुल कैनवा की तरह काम करती है। बेसिकली आप सब कुछ जो मर्जी आप जाएं आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, राइट फॉर फ्रॉम योर पोस्टर्स टू लोगोस टू प्रेजेंटेशन, कोई पोस्टर कुछ भी जो भी आप कैनवा पे करते हैं वो आप यहाँ पे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल वेबसाइट। और क्या कि इसका नाम ऐसा है ना, तो आसानी से मिलती भी नहीं है। जिनको मिल गई है उन्हें पता है, और जिन्हें नहीं मिली है फैला दो इसको मार्केट में, लेकिन आपके बहुत काम आएगी। फिर लुकिंग फॉर समथिंग फ्री एंड जो कि सिमिलर हो कैनवा की तरह। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन, अपडेट। अगली है जी, इसका नाम है start.me, start.me। बहुत ही सिंपल नाम है इसका, पर इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कई सारे टूल्स आ जाएंगे और ये सारे के सारे टूल्स जो हैं कैटेगराइज्ड हैं, मतलब आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आपको टूल्स मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको यूजर नेम जनरेटर चाहिए, आपको रैंडम फेस जनरेटर चाहिए, आपको इमेज जनरेटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, यहाँ पे हजारों टूल्स आपके सामने होंगे एंड कैटेगरी वाइज जस्ट हैव टू चूज योर कैटेगरी एंड देन

0: उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं एंड यू विल गेट एवरीथिंग. मैं बता रहा हूँ ये इतनी काम की वेबसाइट है कि एक बार ही आपने देख ली छुट्टी भाई सारी चीजों की, कोई टेंशन नहीं है. इसके बाद आ जाते हैं अगली वेबसाइट की तरफ. इसका नाम है थर्ड वेबसाइट का verses.com verses.com verses.com. जब आप इसे खोलेंगे तो जैसा नाम है verses.com, इसमें आप दुनिया में ऑलमोस्ट हर दो चीजों को, प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं. दो दोस्तों कंपेयर मत कीजिएगा, लेकिन आप चीजों को कंपेयर कर सकते हैं बहुत ही आराम से. आप प्रोडक्ट्स को कैसे भी कंपेयर कर सकते हैं, कंट्री वाइज, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज. इट इज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट. अगर आप कुछ लेने का सोच रहे हैं कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट टू डू इट. एंड इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ईजी. आप फोन से लेकर एक माइक्रोवेव तक यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. आई नो कि हर किसी की पूरी तरह से काम की वेबसाइट शायद ना हो ये, लेकिन जिनके काम की है वो जानते हैं कि ये कितने काम आ सकती है. सो प्लीज यहाँ पर जरूर जरूर जाएं. ऑलराइट, नाउ टेक की खबर की तरफ बढ़ते हैं. सो देखिए, अपडेट में गेमर्स को देना चाहता हूँ. दरअसल क्या है, दो बहुत ही बड़े गेम्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, ओनिमुशा और डॉन वॉकर. अभी भी आप सोच रहे हैं कि ये जो इतने पहले रिलीज हुए हैं इनको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं एक बात कहूँगा, ओनिमुशा इज परफेक्ट. कैपकॉम ने फिर से करके दिखा दिया है और उसमें कोई भी डाउट नहीं है. हालांकि डॉन वॉकर आपके टेस्ट का शायद हो सकता है, शायद ना हो, पर डॉन वॉकर इज अ गेम जहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले के इसके गेम्स खेले होने चाहिए. मतलब डॉन वॉकर को बनाने वाले जो हैं उन्होंने विच वाले गेम्स बहुत बनाए हैं, विच हंट और काफ़ी सारे गेम्स हैं. अगर आपने वो खेले हुए हैं तो ठीक है, हो सकता है कि आपको ज़्यादा समझ में ना आए, बट इफ़ यू आर इनटू कंप्लीट कॉम्बैट तो आपको ओनिमुशा लेना चाहिए. दैट्स इज माई फीडबैक. बाकी आपके ऊपर है, मैं भी एक गेमर हूँ आपकी तरह, एंड फॉर मी ओनिमुशा विंस द कॉम्पिटिशन क्लियरली. हालांकि इस महीने सबसे ज्यादा बेहतरीन गेम्स ड्रॉप होने वाले हैं, इंक्लूडिंग वुल्वरीन. तो जब वो होगा ड्रॉप तो भी उसका छोटा सा रिव्यू जल्दी वाला आपको मिल जाएगा. मैं दुहा वाला कबीर एफ 107 पे. जाना आप रहे नहीं, बेस्ट जगह पर है आप. दिस वॉज टेक अपडेट. स्टे ट्यून्ड.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: स्कैम अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और हर रोज नए जमाने के नए स्कैम में से एक ऐसे स्कैम के बारे में हम बात करते हैं जिससे आप अलर्ट रह सके, जिससे आपकी कंपनी बच सके. अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हैं, किसी स्टोर के ओनर हैं, किसी रेस्टोरेंट को चलाते हैं या फिर आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है तो लाजमी है कि आपके पास एम्प्लॉय भी होंगे. कई बार आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से ट्रेंड नहीं हुए होते हैं और उनके साथ धोखा हो जाता है. लेकिन उनके साथ जो धोखा होता है वो आपके स्टोर को, वो आपके बिजनेस को, वो आपके काम को हैम्पर करता है, वो आपके फिनांस को हैम्पर करता है. और इसीलिए स्कैमर्स ने एक नया तरीका निकाला है स्कैम करने का, विच इज कॉरपोरेट आइडेंटिटी थेफ्ट. ये स्कैम काम कैसे करता है, जरा इस पर नजर डालते हैं. कॉरपोरेट आइडेंटिटी थेफ्ट तब होता है जब क्रिमिनल्स किसी चलती फिरती रेप्यूटेड कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस और क्रेडिट हिस्ट्री चुरा लेते हैं ताकि वो मार्केट में बड़ा फ्रॉड कर सके. स्कैमर्स इंटरनेट पर या गवर्नमेंट पोर्टल्स पर जाकर किसी रियल कंपनी की सारी डिटेल्स निकालते हैं और ऑब्वियसली बात ये बड़ी लाजमी है कि आप सारी डिटेल्स इंटरनेट पर डालना चाहते भी हैं. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हो तो उसे कैसे पता चल जाएगा अगर वो सर्च इंजन पे सर्च कर रहा है तो आप इंटरनेट पे ये सारी डिटेल्स डालते हैं और यहाँ से बहुत आसान हो जाता है मैक्सिमम डिटेल लेना आपके कंपनी की किसी भी फ्रॉडस्टर्स के द्वारा. स्कैमर्स इंटरनेट पर या गवर्नमेंट पोर्टल्स से आसानी से ये सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं. इन डिटेल्स का इस्तेमाल करके वो किसी दूसरे बैंक में उस कंपनी के नाम पर एक फेक बिजनेस अकाउंट या फेक क्रेडिट कार्ड खोल देते हैं, क्योंकि असली कंपनी का मार्केट में अच्छा नाम है और उनका क्रेडिट स्कोर बढ़िया होता है, बैंक्स और सप्लायर्स उन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इसके बाद ये स्कैमर्स बड़े सप्लायर्स के पास जाते हैं और असली कंपनी का नाम यूज करके हजारों लाखों डॉलर्स या कतरी रियाल या रुपीज का स्कैम कर देते हैं या क्रेडिट में सामान ले लेते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। वो बिलिंग एड्रेस तो असली कंपनी का डालते हैं, लेकिन शिपिंग एड्रेस जहां सामान डिलीवर होना है वो किसी खुफिया वेयर हाउस का दे देते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। सप्लायर्स को लगता है कि उन्होंने एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड को सामान बेचा है। जब सामान डिलीवर हो जाता है, स्कैमर्स उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर गायब हो जाता है। हफ्तों बाद जब सप्लायर्स का पेमेंट का टाइम आता है तो वो असली कंपनी से कॉन्टेक्ट करेगा ऑब्वियसली। तब दोनों पार्टी हैरान हो जाती है, तब पता चलता है, क्योंकि ये स्कैम ऐसा स्कैम है थोड़ी लेट पता चलता है, इसलिए तब तक स्कैम आपके साथ हो चुका होता है, असली कंपनी का नाम खराब होता है और इससे उन पर लीगल केस भी चलता है फिर। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का एक तरीका है, एक नहीं कई तरीके हैं, उन तरीके पर जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका है रेगुलर क्रेडिट मॉनिटरिंग। अपनी कंपनी की क्रेडिट प्रोफाइल को हर महीने चेक करें, रिपोर्ट्स को मॉनिटर करते रहें, ताकि अगर कोई आपके नाम पर नया लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी करे तो आपको फौरन पता चल जाए। कई बार हम इतने ज्यादा काम में बिजी हो जाते हैं कि इन डिटेल्स पर फोकस ही नहीं करते। सिविल स्कोर को चेक करना, रिपोर्ट्स को मॉनिटर करना, अपने बैंक अकाउंट में जाकर पता करना, अब तो आपके पास डिजिटल दुनिया है। जब स्कैमर्स इस डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरी है कॉरपोरेट भी इस डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करे और रेगुलर इंटरवल पर चेक भी करते रहे। किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर किसी ने अप्लाई किया है तो आपको पता चलता रहेगा। उसके अलावा अलर्ट और ऑनलाइन ऑडिटिंग भी, गूगल अलर्ट और ऑनलाइन ऑडिटिंग हमेशा ऑन रखे। अपनी कंपनी के नाम पे गूगल अलर्ट सेट करें। अगर इंटरनेट पर आपके बिजनेस नेम से जुड़ी कोई भी नई एक्टिविटी या नया एड्रेस रजिस्टर्ड होता है तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेंडर और सप्लायर का वेरिफिकेशन। अगर आप एक सप्लायर हैं तो किसी भी नए कॉरपोरेट ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले उनके रजिस्टर्ड ऑफिस के ऑफलाइन लैंडलाइन नंबर पर कॉल करें। सिर्फ ईमेल पर आए ऑर्डर पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें। उसके अलावा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सीक्रेसी। अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, जीएसटी है, टैक्स है, यू नो दुनिया के अलग अलग टैक्स होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर ना करें। उसके अलावा एक आखिरी तरीका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सीक्रेसी। जो चौथा तरीका है वो अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है, जो डिटेल्स है टैक्स की, बोर्ड रेजोल्यूशन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर ना करें। इन्हें सिर्फ वेरीफाइड पोर्टल्स और वेरीफाइड पार्टनर्स के साथ ही शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका फुटप्रिंट, आपकी कंपनी का फुटप्रिंट बढ़ता है इंटरनेट में, आपकी कंपनी बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है टारगेट करने के लिए और आपकी कंपनी से या आपकी कंपनी के साथ उनके एम्प्लॉयज के साथ स्कैम हो सकता है। तो दोस्तों, ये था कॉरपोरेट थेफ्ट का एक नए जमाने का नया स्कैम। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107,
1: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। आप सुन रहे हैं FM 107 और आज के इस स्पोर्ट्स सेगमेंट स्पोर्ट्स हाइलाइट में एक ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम उनके बारे में मैं बात करूंगा। उनका नाम 1980s में काफ़ी लोगों ने उनको फॉलो किया, सुना है, देखा है एंड ट्रैक एंड फील्ड का वो सुनहरा सितारा जिन्होंने 80 और 90 की दिहाई में स्टेडियम को जश्न का मैदान बना देता था, कार्ल लुईस। मैं आपको बताता हूं कि व्हाई कार्ल लुईस वाज सच अ मार्वेलस एथलीट। ही वाज अ लेजेंड। ही वाज अ पायनियर इन अमेरिकन एथलेटिक्स में। दुनिया के एथलेटिक्स के बारे में बात करूं, ओलंपिक रेसेस की, वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में बात करूं, तो कार्ल लुईस वाज जेन्युइनली वाज अ जेंटलमैन लेजेंड। लेकिन दोस्तों, कार्ल लुईस की कहानी सिर्फ उन मेडल्स तक महदूद नहीं जो उन्होंने ओलंपिक पोडियम पर हासिल किए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द मेडल्स दैट एथलीट्स हैव वन, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ, मैं ये जैसे कि आप मेडल्स जीतते हैं तो लोग जानते हैं, लेकिन मेडल्स के पीछे कहानी क्या है, मेडल्स के पीछे मेहनत, हाउ मच वॉज दैट हार्ड वर्क, ये हम बताते हैं, आई मीन बहुत कम लोगों को बता पाते हैं, कम लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, क्या क्या मेडल्स, क्या सेंचुरीज, क्या विकेट्स, लेकिन वो जो मेहनत है उसके पीछे जो स्ट्रगल रहा, वो स्ट्रगलिंग स्टोरी नोबडी वांट्स टू लिसन, लेकिन ये सुनना भी जरूरी है, बिकॉज दैट गिव्स अस द मोटिवेशन, दैट गिव्स अस द एनकरेजमेंट फॉर द न्यू जनरेशन। और छोटे बच्चों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, उन पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के स्पोर्ट्स स्टार्स को अगर आप लोग जो पढ़ते हैं और उनको देखते हैं, उनके परफॉर्मेंस पे अगर नजर डालते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, हाउ मच स्ट्रगल, हार्डवर्क उनके पेरेंट्स ने किया। उनकी असल खासियत ये थी कि वो प्रेशर के वक्त भी अपने आप को कंट्रोल में रखना जानते थे। दैट वॉज कार्ल लुईस। 1984 से 1996 तक का ओलंपिक सफर देखें तो कार्ल लुईस ने हर ओलंपिक गेम्स में कम अज कम एक गोल्ड मेडल जीता। ये कंसिस्टेंसी की बात है और ये कंसिस्टेंसी अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों। अटलांटा 1996 ओलंपिक्स में जब वो 35 साल के थे, तब भी उन्होंने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। थोड़ा सोचिए, एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट में जहां मिलीसेकंड्स और सेंटीमीटर्स फैसला करते हैं, वहां एक एथलीट का इतने अरसे तक दुनिया के टॉप लेवल पर रहना कितना मुश्किल होता होगा, जरा तसव्वुर करें आप इस चीज को, समझ में आ जाएगा। कार्ल लुईस 1996 यानी 1996 में जब कार्ल लुईस ने लॉन्ग जंप का फाइनल जीता, तो वो ओलंपिक हिस्ट्री में सिर्फ एक और मेडल ऐड नहीं कर रहे थे, वो अपने करियर के एक ऐसे चैप्टर को मुकम्मल कर रहे थे जहां उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में इसी इवेंट का गोल्ड मेडल जीता, इसी इवेंट का। 1984 का लॉस एंजलिस, 1988 का सोल, 1992 बार्सिलोना और 1996 अटलांटा। 4 ओलंपिक्स, 4 गोल्ड मेडल्स, एक ही इवेंट। और ये अचीवमेंट एथलेटिक्स की तारीख के सबसे मुश्किल रिकॉर्ड्स में से एक समझी जाती है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। और अगर आप कार्ल लुईस को सिर्फ एक स्प्रिंटर समझते हैं, तो जरा रुक जाइए, उनका लॉन्ग जंप करियर भी उतना ही जबरदस्त था। 1991 में टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान उन्होंने 8.91 मीटर का जंप रिकॉर्ड किया था, लेकिन हवा के रफ्तार परमिसेबल लिमिट से ज्यादा होने की वजह ये जंप ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन सका। और इसी कॉम्पिटिशन में माइक पावल ने 8.95 का जंप लगाकर बॉब बीमन का 23 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। लुईस ने भी सी फाइनल में 8.87 जंप किया था। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, लुईस ने उस दिन 8.80 से ज्यादा के 4 जंप्स किए, यानी एक ही कंपटीशन में उनकी कंसिस्टेंसी भी लाजवाब थी और उनका लेवल भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कार्ल लुईस की पर्सनैलिटी का एक और पहलू था उनका यकीन, वो अपनी एबिलिटी पर भरोसा करते थे और बड़े मोमेंट्स में प्रेशर को अपने फेवर में इस्तेमाल करते थे।
इसीलिए जब एथलेटिक्स की दुनिया में स्पीड पावर और एलिगेंस की बात होती है कार्ल लुईस का नाम लाजमी तौर पर सामने आता है उन्होंने एक पूरी जनरेशन को यह सिखाया कि चैंपियन होना सिर्फ जीतने का नाम नहीं चैंपियन वो होता है जो सालों तक अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखे हार के बाद वापस आए और जब दुनिया उसे देख रही हो तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का हौसला रखे कार्ल लुईस ने ट्रैक पर मेडल जीते रिकॉर्ड्स बनाए और हिस्ट्री लिखी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एथलेटिक्स को एक नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया इसीलिए कार्ल लुईस सिर्फ एक ओलंपिक चैंपियन नहीं बल्कि एथलेटिक्स की तारीख का एक ऐसा नाम है जो जनरेशंस तक याद रखा जाएगा उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आएगा अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी मर्दों का रिवायती लिबास सकाफत, वकार और सादगी का खूबसूरत इजहार है। ये लिबास सिर्फ पहनने का

0: ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے سامنے حق آیا لیکن انہوں نے ضد غرور اور انکار کا راستہ اختیار کیا۔ مسلمان کرام، روایتی توضیحات میں قریش کے بعض معروف مخالفین مثلا ابو جہل، ابو لہب، ابی بن خلف اور صفان بن امیہ، تو ان کی مثال دی جاتی ہے، گویا پیغام یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو تاریخ سے باہر نہ سمجھو، حق کو رد کرنے کی نفسیات تم سے پہلے بھی موجود رہی ہے۔
1: اور یہاں ہمارے لیے پہلا سبق یہ نکلتا ہے کہ انسان کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری سچویشن بالکل یونیک ہے، مجھ سے پہلے کسی نے ایسا فیس نہیں کیا۔ ہسٹری پیٹرنز ریپیٹ کرتی ہیں، ایگو کا پیٹرن وہی، ٹروتھ کو ریجیکٹ کرنے کا پیٹرن وہی، اور ایکسکیوز بھی اکثر وہی۔ اس لیے قرآن پرانی قوموں کی کہانی سناتا ہے، ہمیں ان پر صرف کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی اس آئینے میں دیکھنا چاہیے۔
0: جی سرور بھائی، اور ہمارے لوگ تو کافی یہ سوالات کرتے پھرتے ہیں کہ بھائی یہ کسی کوئی بھی واقعہ آ جائے کہ یہ بستی کہاں تھی، یہ کون تھا، اس کی عمر کتنی تھی، اس طرح کی کیوریوسٹی سب میں رہتی ہے۔
1: صحیح۔
0: تو دراصل اس بستی کے حوالے سے بھی قرآن مجید نے اس کا نام متعین نہیں کیا۔ بعض تفسیر روایات میں اسے انطاکیہ کہا گیا ہے، جبکہ دوسری آرا میں دوسرے مقامات کا ذکر ملتا ہے۔ اس لیے اصل بات یہی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بستی کہاں تھی، اور شاید قرآن کا اس مقام کو نام سے متعین نہ کرنا بھی ہمارے لیے ایک معنی رکھتا ہے۔
1: صحیح۔
0: کیونکہ اصل سوال یہاں جغرافیہ کا نہیں، اصل سوال انسانی رویے کا ہے۔ بستی کا نام کچھ بھی ہو، قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس بیان کے مطابق ان کے پاس ایک کے بعد ایک پیغام پہنچانے والے آتے رہے اور لوگ انہیں جھٹلاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں ان کی طرف دو بھیجے۔ قرآن کہتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ یعنی ایک دعوت آئی رد کر دی، دوسری آواز آئی اسے بھی رد کر دیا، لیکن اللہ کی طرف سے اتمام حجت اور دعوت کا دروازہ پھر بھی بند نہ ہوا۔ قرآن آگے فرماتا ہے فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے ان دونوں کی تائید کی۔ اب تصور کیجئے ایک بستی اور اس کے سامنے تین پیغام رساں ایک ہی حقیقت کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان سب کی آواز ایک ہے فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔
1: طلب بھائی، یہاں مجھے ایک بہت پریکٹیکل چیز نظر آتی ہے۔ کبھی لائف میں ایک وارننگ ایک سورس سے آتی ہے، پھر دوسری جگہ سے بھی وہی بات سنائی دیتی ہے، پھر تیسرا سنسیئر انسان بھی وہی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اگنور کرتے رہتے ہیں۔ بھائی ڈاکٹر کہہ رہا ہے لائف سٹائل بدلو، فیملی کہہ رہی ہے سٹریس کم کرو، اپنی باڈی جو ہے وہ سگنلز دے رہی ہے۔ یہاں بزنس میں تین لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیسیجن رسکی ہے، لیکن ایگو کہتی ہے سب کو کیا پتا۔ کبھی ریپیٹڈ ایڈوائس کو صرف اریٹیشن مت سمجھیے، ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے ریسکیو ہو۔
0: بہت خوب سر بھائی، اور سابقہ امتوں میں ایک ہی زمانے یا علاقے میں متعدد انبیاء اور رسولوں کا موجود ہونا یہ کوئی نامانوس بات نہیں تھی۔ بنی اسرائیل میں بھی بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے، تو ایک بستی میں جیسے کہ ہم نے سورہ یاسین میں بھی دیکھا کہ یہاں دو بھیجے گئے، پھر تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی گئی۔ تو اب سوچئے کہ ایک پیغام رسا بھی حق پہنچانے کے لیے کافی ہو سکتا تھا صرف ایک بندہ ہو، لیکن یہاں دعوت کو مزید واضح کر دیا گیا تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ ہم تک بات واضح نہیں پہنچی، ہم نے سمجھایا نہیں گیا، ہمیں موقع نہیں ملا۔ تو جب دل فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہو کہ ماننا نہیں ہے تو پھر دلیلیں بڑھتی جاتی ہیں اور بہانے بھی بدلتے جاتے ہیں۔
1: صحیح۔
0: اور یہی ہوا بستی والوں کے ساتھ کہ بستی والوں نے جواب دیا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ یعنی کیا عجیب اعتراض ہے نا، گویا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آئے تو اسے لانے والے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی مخلوق ہو جو انسان نہ ہو۔ مگر قرآن کا اصول بالکل واضح ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے بھی ہم نے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، یعنی وحی بھیجتے تھے۔ تو رسول کا انسان ہونا اعتراض نہیں، انسانوں کے لیے انسانی رسول کا آنا یہ دراصل اپنے آپ میں حکمت کا حصہ ہے۔ وہ تمہارے درمیان ہی رہتا ہے، تمہاری زبان سمجھتا ہے، تمہاری زندگی کے حالات جانتا ہے، تمہاری طرح کھاتا پیتا معاشرے میں چلتا پھرتا ہے، اور اسی انسانی زندگی کے اندر اللہ کی بندگی کا نمونہ بن کر سامنے آتا ہے۔
1: سبحان اللہ۔ اور یہاں بھی ہماری لائف کے لیے ایک سبٹل لیسن ہے، کبھی ہم صحیح بات کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں ये कह कौन रहा है बोलकर? भाई जूनियर ने कहा, इग्नोर, अपने घर का आदमी है, इसको क्या पता। यंग पर्सन है, एक्सपीरियंस नहीं होगा। कोई आम आदमी है, इसकी स्टेटस क्या है? लेकिन सही सवाल ये है कि बात क्या है। भाई मैसेज को इवैल्यूएट कीजिए सिर्फ मैसेंजर की सोशल स्टेटस को नहीं। कभी बहुत कीमती एडवाइस बहुत ऑर्डिनरी शख्स के जरिए भी मिलती है।
0: जी बिल्कुल, वाकये की तरफ लौटते हैं। और बस्ती वालों ने, जैसे कि आपने इस सूरा में सूरा यासीन के बस्ती वालों का जो वाकया है, इसी को हम इस हलके में बयान कर रहे हैं कि बस्ती वालों ने जब रद्द किया तो उन्होंने क्या कहा, मानतुमिल्ला बशरुम मिसलुना। तो उन्होंने अब आगे जाके इनकार को एक कदम और आगे बढ़ाया, कहने लगे वमा अंजल रहमानु मिन शय, रहमान ने कुछ नाजिल ही नहीं किया। यानी अब सिर्फ रसूलों का इनकार नहीं, असल वही का इनकार कर दिया। और फिर कहा इन अंतुम इल्ला तकदिबून, तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। जरा इस रवैये को देखिए, सामने वाले ने बात अभी पूरी भी नहीं की और फैसला पहले ही सुना दिया कि तुम झूठे हो। तो यहाँ दलील से ज्यादा इनाद पर वो लोग फोकस कर रहे थे, यानी इल्म सुनने के बजाय, इल्म हासिल करने के बजाय तकब्बुर की बोल बोल रहे थे। और शायद यही हर दौर में हक के रास्ते की एक बड़ी रुकावट रही है कि बाज़ औक़ात इंसान किसी बात को इसलिए रद्द नहीं करता कि उसके पास बेहतर दलील है, बल्कि इसलिए रद्द करता है कि उसे कबूल करना ही नहीं चाहता।
1: बिल्कुल, और अपनी लाइफ में हमें ये डिफरेंस जो है इसको समझना चाहिए। मुझे बात समझ नहीं आई और मैं बात समझना ही नहीं चाहता, ये दोनों अलग चीजें हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना। हेल्दी बात अगर देखें तो वो ठीक है, सवाल कीजिए, एविडेंस मांगिए, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन पहले ही डिसाइड कर लेना जो मेरी एग्जिस्टिंग ओपिनियन के अगेंस्ट है वो गलत ही होगा, भाई ये लर्निंग का दरवाजा बंद कर देता है।
0: बिल्कुल, किस्से की तरफ लौटते हैं और अब जवाब में रसूलों का अंदाज क्या है वो देखेंगे। लोग उन्हें झूठा कह रहे थे, उनकी दावत को रद्द कर रहे हैं, लेकिन जवाब में न चीखो पुकार, न जाती इंतकाम, न इस तरह के लोगों ने हमें माना क्यों नहीं, जैसे कि आजकल तो काफी चीखो पुकार की आवाज हम सुनते हैं। उन्होंने क्या कहा, रसूलों ने कहा قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون, हमारा रब जानता है कि हम वाकई तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। तो क्या इत्मीनान है इस जुमले में, ربنا يعلم, हमारा रब जानता है। तुम मानो या ना मानो, तुम तारीफ करो या इल्जाम लगाओ, तुम हमें सच्चा कहो या झूठा, हमारी हकीकत अल्लाह जानता है। और जिस इंसान को यकीन हासिल हो जाए कि अल्लाह मेरे इरादे, मेरी नीयत और मेरी दियानत को जानता है, उसे हर इंसान से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं रहती।
1: भाई दला भाई, ये बात स्पेशली आज की सोशल मीडिया के एज में बहुत वैल्यूएबल है। हम कभी हर शख्स को कन्विंस करना चाहते हैं, हर एक को समझ लीजिए, हर कमेंट का जवाब भी देना चाहते हैं, हर क्रिटिसिज्म का डिफेंस, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना, लेकिन हर इंसान को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिंसियर हैं, अपना काम रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं, अपनी नीयत चेक कर रहे हैं, तो कभी कभी ये कहकर आगे बढ़ना पड़ता है कि अल्लाह सुभान व तआला जानता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी से भागना नहीं है, इसका मतलब अननेसेसरी अप्रूवल एडिक्शन से बचना है।
0: बहुत खूब सर भाई, अब एक ऐसे उसूल की तरफ आते हैं जो दावत, इस्लाह और खैर की हर कोशिश करने वाले के लिए एक बुनियादी उसूल है। और ये उसूल हमें उन रसूलों के जवाब के अंदाज से समझ में आता है। उन्होंने क्या कहा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाज़ह तौर पर पैगाम पहुंचा देना है। यानी हमारा काम क्या है, बलाग, वो भी ऐसा बलाग जो वाज़ह हो, अल बलागुल मुबीन। हम समझाएंगे, दलील देंगे, हक वाज़ह करेंगे, खैर की तरफ बुलाएंगे, मगर किसी के दिल में हिदायत दाखिल कर देना हमारे इख्तियार में नहीं, हिदायत तो भाई अल्लाह के हाथ में है। अब यहाँ रसूलों के अदब को देखिए, वो अपने काम की हद जानते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमारे हाल में तुम्हें मानने पर मजबूर कर देंगे, वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है, दिल बदलना अल्लाह का काम है।
1: सुभान अल्लाह। और ये पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स सब के लिए बहुत रिलीविंग लेसन है। भाई अपने बच्चों को समझा सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। आप दोस्तों को सिंसियर एडवाइस दे सकते हैं, उसका डिसीजन नहीं ले सकते। आप कलीग को वार्निंग दे सकते हैं, उसके दिल को फोर्स नहीं कर सकते। हमारा रोल है क्लियरिटी, सिंसेरिटी और गुड इंटेंशन, हर रिजल्ट को अपने कंधों पर उठा लेना भी हेल्दी नहीं होता। कभी हमें ये कहना पड़ता है, मैंने मोहब्बत से समझा दिया, अब चॉइस उसकी है।
0: और सामने किराम, अब बात या कहानी वाकया एक ज्यादा सख्त रुख इख्तियार करने वाला है। पहले उन्होंने तकजीब की, फिर तमस्खुर तहकीक का अंदाज इख्तियार किया, यानी मुखालिफिन की बात कह रहा हूँ, और अब बात पहुंची तहदीद तक, यानी जब दलील का जवाब न मिला तो जबान ने सख्ती इख्तियार की, यानी जब उनके पास कोई जवाब ही नहीं है तो अब सख्ती का रवैया उन्होंने इख्तियार किया, और जब सख्ती से भी बात न बनी तो ताकत के धमकी सामने आ गई। उन मुखालिफिन ने रसूलों से कहा, इन्ना ततय्यरना बिकुम, हम तुम्हें अपने लिए नहुसत का सबब समझते हैं, माज़ल्लाह। सर भाई जरा ये नफ्सियात देखिए, जो लोग उनके पास खैर लेकर आए वही उनकी नजर में बदशगुनी की अलामत बन गए।
1: बिल्कुल तला भाई, और ये सिर्फ पुरानी कौमों की साइकोलॉजी नहीं है, आज भी कभी इंसान किसी अनकंफर्टेबल ट्रुथ को सुनकर असल मसले को एड्रेस नहीं करता बल्कि मैसेंजर को ब्लेम कर देता है। कोई डॉक्टर लाइफस्टाइल चेंज का कहे तो हम कहते हैं हर वक्त नेगेटिव बात करता रहता है। कोई सिंसियर फ्रेंड अगर हमारी गलती पॉइंट आउट करे तो कहते हैं इसके आने के बाद से मूड खराब ही रहता है। यानी प्रॉब्लम अंदर होती है लेकिन हम उस शख्स को प्रॉब्लम बना देते हैं जो हमें प्रॉब्लम दिखा रहा होता है।
0: जबरदस्त मिसाल थी सर भाई आपने, और बस्ती वाले वहाँ गोया कह रहे थे कि तुम आए और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ गई, जैसे कि आपने मिसाल से समझाया, तुम्हारी बातों ने हमारी पुरानी रविश पर सवाल उठा दिया। तो उन्होंने कहा, इन्ना ततय्यरना बिकुम, हम तुमसे बदशगुनी लेते हैं। फिर उन्होंने अगला कदम उठाया, लैलम तंतहु लनर्जुमन्नकुम, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और हमारी तरफ से तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। यानी अब इंतखाब ये था कि दावत ही छोड़ दो, खामोश हो जाओ, या फिर पत्थरों और अजाब का सामना करो।
1: और यहाँ एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन ये है कि जब कोई शख्स आर्गुमेंट से जवाब नहीं दे पाता, कभी कभी वो प्रेशर क्रिएट करता है, वर्क प्लेस में भी होता है, फैमिली में भी, पब्लिक लाइफ में भी, और पहले कहते हैं कि तुम गलत हो, फिर तुम प्रॉब्लम हो, फिर अगर तुम चुप नहीं हुए तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हर लाउड रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं होता, कभी वॉल्यूम बढ़ जाती है क्योंकि लॉजिक कमजोर होता है।
0: बहुत खूब कहा आपने।
2: आप सुन रहे हैं कससुल कुरान
3: आरजी तलहा और आरजी सरवर के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर।
0: अब देखिए रसूलों का जवाब, न खौफ, न घबराहट, न जज्बाती इंतकाम, फिर दोबारा वही रवैया उन्होंने दिखाया जो पहले जो जवाब हमने सुना है उसमें भी यही रवैया हमारे सामने आया। अब वो क्या कहते हैं, तायरुकुम माकुम, तुम्हारी नहुसत तुम्हारे अपने साथ है, यानी अगर तुम पर कोई बुरा अंजाम आता है तो उसका सबब हम नहीं, तुम्हारे अपने आमाल हैं, मसला तुम्हारे रद्द अमल में है, मसला रसूलों के आने में नहीं, मसला तुम्हारे तकब्बुर, इनकार और हद से तजावुज में है। और फिर फरमाया, اِنَّكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ, क्या इसलिए कि तुम्हें नसीहत की गई, यानी तुम इसलिए हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो, बल्कि तुम तो हद से तजावुज करने वाले लोग हो, यानी तुम नसीहत को भी जुर्म समझ रहे हो। तुम्हें कोई अल्लाह याद दिलाए तो तुम उसे मनहूस कहो, तुम्हें कोई जवाबदेही याद दिलाए तो उसे दुश्मन समझो, यही तो असल बीमारी है।
1: तला भाई, मुझे यहाँ एक सिंपल सेल्फ चेक लगता है, जब कोई मुझे करेक्ट करता है मेरा पहला रिएक्शन क्या होता है?
0: सही।
1: क्या मैं कंटेंट सुनता हूँ या फौरन डिफेंड करने लगता हूँ? क्या मैं कहता हूँ शायद इसमें कुछ बात हो, ये कहता हूँ इसने मुझे टारगेट क्यों किया? ग्रोथ का दरवाजा तब खुलता है जब हम करेक्शन को इंसल्ट समझना बंद कर देते हैं।
0: बिल्कुल सर भाई, और अब हम इस किस्से में एक नहायत खूबसूरत किरदार की तरफ आ रहे हैं। बस्ती के दूर किनारे से एक शख्स खबर सुनता है कि तीन पैगाम रसा अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और बस्ती के लोग उनकी तकजीब कर रहे हैं, उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं। तो रिवायती बयानात में शख्स को हबीब नज्जार कहा गया है। बाज रिवायत में यह भी आता है कि वो जिस्मानी बीमारी हत्ता के जुजाम जैसी तकलीफ में मुब्तला था, यानी खुद अपनी जिंदगी में आजमाइश से गुजर रहा था। कमजोर जिस्म, बीमारी, शहर के किनारे घर, कोई जाहिरी ताकत नहीं लेकिन दिल में ईमान और हक के लिए गैर मामूली हरकत। खबर सुनते ही वो दौड़ कर आता है। कुरान कहता है वजा मिन अक्सल मदीनति रजुल यसअ, शहर के दूर किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। तो ये लफ्ज यसअ खुद बहुत कुछ कहता है, यानी वो तमाशाई बनकर नहीं आया, वो ये कहकर नहीं बैठा कि देखते हैं क्या होता है। उसने हक को तन्हा देखा तो खुद उसके साथ खड़ा हो गया, दौड़ कर आया।
1: भाई यहाँ पर तला भाई मुझे पॉइंट बहुत इंस्पायर करता है। अक्सर हम क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मेरी हेल्थ परफेक्ट नहीं, मेरा इन्फ्लुएंस कम है वगैरह वगैरह, मैं अकेला क्या कर लूंगा। लेकिन कभी कभी एक सिंसियर इंसान चाहे वीक पोजीशन में हो पूरी मॉरल डायरेक्शन बदल देता है। आप हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन जहां सच क्लियर हो वहां अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वो बंदा आया और आते ही अपने कौम से कहा या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, ए मेरी कौम उन भेजे हुए लोगों की पैरवी करो। फिर एक नहायत कवी दलील देता है इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और खुद हिदायत याफ्ता हैं। यानी जरा उनकी नीयत देखो, ये तुमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, मनसब नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए कोई दुनियावी फायदा नहीं चाहते। उनकी दावत का मरकज तुम्हारी हिदायत है, उनका जाती मफाद नहीं, और ये दावत देने वाले की सदाकत का एक अहम अखलाकी पहलू है
1: भाई। और ये आज के जमाने में भी यूजफुल फिल्टर है, इसको ऐसे समझिए।
0: बिल्कुल।
1: जब कोई आपको एडवाइस देता है देखिए उसका एजेंडा क्या है। क्या वो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, क्या वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है या सिंसियरली आपकी भलाई चाहता है। हर फ्री एडवाइस सही नहीं होती, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन सिंसियर एडवाइस की पहचान में सेल्फ इंटरेस्ट का लेवल बहुत कुछ बताता है।
0: बिल्कुल सर भाई। फिर वो शख्स यानी वाकई क्या जो किरदार हम बता रहे हैं हबीब नज्जार के हवाले से, अब ये शख्स सिर्फ यानी नसीहत नहीं करता, ये अपनी जात को मिसाल बनाता है। कहता है वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैही तुरजऊन, आखिर मैं उस हस्ती की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सबको भी उसी की तरफ लौटना है। क्या खूबसूरत इस्तदलाल है। देखिए न फलसफियाना पेचीदगी न यानी लफ्जी तौर पर कोई इस तरह की पेचीदगी। मैं पैदा हुआ, मुझे किसने पैदा किया, मैं लौट कर भी उसी के पास जाऊंगा, तो इबादत का हक भी उसी का है। फिर वो अपनी कौम के माबूदों पर सवाल उठाता है अत्तखिदु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा और माबूद बना लूं। फिर कहता है इन युरिदन रहमान बिदर ला तुगनि अन्नी शफाअतुहुम शैआ वला युनकिदुन, अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम नहीं आएगी और न वो मुझे बचा सकेंगे। यानी जिन बुतों को तुम सहारा समझ रहे हो वो खुद बेबस हैं, न नफा के हकीकी मालिक, न जरर के, न कयामत के दिन नजात देने वाले।
1: भाई और जिंदगियों में देखा जाए तो आइडल्स ही सिर्फ पत्थर के नहीं होते, कभी पैसे को अल्टीमेट सिक्योरिटी समझ लेते हैं, कभी स्टेटस को, कभी पावरफुल कॉन्टेक्ट को, और कभी अपनी इंटेलिजेंस को ही। ये सब टूल्स हैं भाई, खुदा नहीं। इन पर रिलाय करें, यूज करें, लेकिन दिल की फाइनल डिपेंडेंसी अल्लाह सुबहाना तआला पर होनी चाहिए। क्योंकि एक पॉइंट आता है जहां पैसा भी लिमिट पर होता है, कनेक्शन भी और टेक्नोलॉजी भी।
0: बहुत बहुत खूब कहा। ये जो आपके सवालात होते हैं ना सर भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और इन सवालात के रूह से हमें दरअसल इनायत को समझना चाहिए। सवालात करते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर हम कुछ सीख पाएंगे। तो अब दोबारा वाकये की तरफ लौटते हैं, और जैसे कि उस शख्स

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे सोने से पहले शुक्र अदा करने के बारे में। दिन के आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करना एक बहुत खूबसूरत आदत है। चाहे दिन कैसा भी गुजरा हो, हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए हम शुक्र अदा कर सकते हैं। शुक्र करने से दिल हल्का होता है और इंसान पॉजिटिव फील करता है। यह आदत हमें नेगेटिव सोच से दूर रखती है और जिंदगी के अच्छे

0: पहलुओं को हाईलाइट करती है। सोने से पहले शुक्र करने से नींद भी पुरसकून होती है, अगला दिन भी बेहतर फील होता है। ये सिर्फ एक मिनट का अमल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। आज का अमल ये है कि सोने से पहले दिन की तीन अच्छी बातों को याद करें और दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महवश के साथ।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, आजकल हम अक्सर एक लफ्ज सुनते आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। न्यूज में, सोशल मीडिया पर, स्कूल्स में, हर जगह क्लाइमेट चेंज का जिक्र होता ही होता है। लेकिन भाई, सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज असल में है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ना है या इसके पीछे कोई और वजह भी है? अच्छा, सिंपल अल्फाज में समझें तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है दुनिया के मौसम के पैटर्न्स जो होते हैं उनमें लंबी मुद्दत तक आने वाली तब्दीली। टेम्परेचर चेंज यानी टेम्परेचर, बारिश, हवा और सीजन्स के नॉर्मल पैटर्न में चेंजेस आना। तो भाई, आज के इको स्विच में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज सिंपल एक्सप्लेनेशन के बारे में, यानी क्लाइमेट चेंज को आसान अल्फाज में समझाना। साथियों, प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। हमारी जमीन का क्लाइमेट हमेशा से थोड़ा चेंज होता रहा है, लेकिन आज जो चेंजेस देखे जा रहे हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह है, क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा होना। अच्छा, जब हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि आप कह लें हाँ, ऑयल, गैस और कोल को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या आप कह लें कि ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होती है, या आप कह लें फॉरेस्ट को काटते हैं, कम करते हैं, या ज्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या होता है भाई? उससे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस की मिकदार बढ़ जाती है। फिर क्या होता है? ये गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं, जिससे दुनिया का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अच्छा, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, मैं आपको कुछ सिंपल सॉल्यूशंस देती हूँ जो हम फॉलो कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। पहली चीज तो ये कि एनर्जी स्मार्टली यूज करें। जब जरूरत ना हो तो लाइट्स और अप्लायंसेस बंद करें। एनर्जी बचाना ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने में मदद कर सकता है। वेस्ट कम करें, चीजों को रीयूज करें, रिसाइकलिंग करें या अननेसेसरी शॉपिंग से बचने की कोशिश करें। कम वेस्ट का मतलब है रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल। प्लांट और ग्रीन स्पेसेस को सपोर्ट करें। देखिए, प्लांट्स जो होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। घर में पौधे लगाना या आप कह लें कि ग्रीनरी को सपोर्ट करना एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। चौथी चीज ये कि स्मार्ट ट्रेवल चॉइसेस करें। जहां मुमकिन हो वॉकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयर ट्रांसपोर्ट जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि हर छोटा एफर्ट एनवायरमेंट के लिए बेहतर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवेयरनेस फैलाएं। क्लाइमेट चेंज के बारे में सीखना और दूसरों को बताना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब लोग समझते हैं तभी लोग बेहतर डिसीजन भी लेते हैं। इसकी अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल ली जाना सिंपल सी, तो क्लाइमेट चेंज को एक सिंपल एग्जांपल में समझने की कोशिश करें, तो अगर एक कमरा पूरा बंद हो और उसमें हीट फंस जाए, ठीक है, पूरी तरह से कमरा बंद है, उसके अंदर हीट फंस जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता कमरा गर्म महसूस होना शुरू हो जाता है ना। हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में भी कुछ गैसेस ट्रैप हो जाती हैं ऐसी। जब इन गैसेस की मिकदार बढ़ जाती है तो टेम्परेचर और वेदर पैटर्न पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स और टेम्परेचर चेंजेस देखे जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर इंसान अपनी छोटी छोटी आदतों से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है भाई। तो भाई लिसनर्स, हमारा आज का इको स्विच चैलेंज ये है कि आज अपने दिन की एक ऐसी एक्टिविटी सोचिए जहां आप एनवायरनमेंट के लिए बेहतर चॉइसेस कर सकते हैं, चाहे वो एनर्जी सेव करना हो, वेस्ट कम करना हो या नेचर के करीब रहना हो। और हमें जरूर बताएं

आपके ख्याल में क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए सबसे पहला और छोटा स्टेप क्या होना चाहिए? मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, जमीन हमारा घर है और हर छोटी जिम्मेदारी इस घर को बेहतर बना सकती है। तो भाई, छोटी सी आदत डालें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107। दिल से देश।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर RJ सफा के साथ, छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। साथियों खुश आमदीद है आप सभी को हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सस्टेन द फ्यूचर। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम बात करेंगे हमारे प्लैनेट, हमारे एनवायरनमेंट और हमारे मुस्तकबिल की। हमारी जिंदगी का हर पहलू कुदरत से जुड़ा है साथियों। साफ हवा, साफ पानी, हरियाली, समंदर, जंगल, जानवर और वो तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। लेकिन आज हमारी दुनिया को क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट, बायोडायवर्सिटी के नुकसान और कुदरती वसाइल के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल जैसे कई चैलेंजेस का सामना है। साथियों सस्टेन द फ्यूचर का मकसद सिर्फ इन मसाइल के बारे में बात करना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि हम में से हर शख्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या छोटी छोटी आदतें, क्या छोटी छोटी तब्दीलियां ला सकता है जिनसे एक बेहतर और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम में हम ग्लोबल एनवायरनमेंट चैलेंजेस के साथ साथ लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज पर भी बात करेंगे। हम जानेंगे कि सस्टेनेबिलिटी असल में है क्या, क्लाइमेट चेंज हमारी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करता है, पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना क्यों हमारी भी जिम्मेदारी है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ साइंटिस्ट्स, गवर्नमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। क्योंकि जो दुनिया हम आज अपने लिए देख रहे हैं, वही दुनिया हम कल अपनी अगली जनरेशंस के लिए छोड़ कर जाएंगे। तो आइए एनवायरनमेंट को सिर्फ एक इशू नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ आने वाला वक्त नहीं, फ्यूचर वो है जो हम आज क्रिएट कर रहे हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर ओनली ऑन FM 107।
0: टॉपिक ऑफ द डे।
2: साथियों आज का हमारा टॉपिक है बैटलिंग फूड वेस्ट एट होम, यानी अपने घर में खाने के वेस्ट को कम करना, रिसोर्सेज को बचाना, पैसा सेव करना और एनवायरनमेंट पर अपने इम्पैक्ट को रिड्यूस करना। जरा अपने किचन का सीन इमेजिन कीजिए ना, फ्रिज खोलते हैं और एक शेल्फ पर आधा पैकेट सब्जियों का पड़ा होता है, दूसरी तरफ दही का कंटेनर है जिसकी डेट करीबन करीबन आ चुकी है, फ्रीजर में कुछ लेफ्ट ओवर्स हैं जिन्हें हम याद भी नहीं रखते और वो कब के पड़े होते हैं, और फ्रूट बास्केट में, अरे भाई फ्रूट बास्केट में 2-3 बनानास इतने ज्यादा राइप हो गए हैं, इतने ज्यादा पक चुके हैं कि कोई उन्हें खाना भी नहीं चाहता। अब फिर वीकेंड पर फ्रिज क्लीन होता है और जो चीजें यूज नहीं हो सकती वो सीधा कहाँ जाती हैं? जी हाँ, हमारी पसंदीदा जगह पर, जहाँ पे जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो ये हमारी पसंदीदा जगह बन जाती है, मतलब ये कि सीधा गार्बेज बैग में चली जाती हैं। हम अक्सर कहते हैं बस थोड़ा सा ही तो खाना है, क्या था, नहीं खाया किसी ने तो क्या करें। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर हर घर में रोज थोड़ा थोड़ा खाना वेस्ट होता रहे तो पूरी कम्युनिटी में, तो फिर भाई पूरी दुनिया में थोड़ा थोड़ा करके आपको क्या लगता है बड़ा हिस्सा बन जाता है ना। देखिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुताबिक हाउसहोल्ड्स ग्लोबल फूड वेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा जनरेट करते हैं और फूड वेस्ट को रिड्यूस करना क्लाइमेट एक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। साथियों फूड वेस्ट का मतलब सिर्फ वो खाना नहीं है जो हम प्लेट में छोड़ देते हैं, इसमें वो भी शामिल है जो हम जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं, सही तरीके से स्टोर नहीं करते, टाइम पर यूज नहीं करते, लेफ्ट ओवर्स को भी भूल जाते हैं या सिर्फ इस वजह से फेंक देते हैं कि उनकी अपीयरेंस हमें दिखने में वो परफेक्ट नहीं लग रहे। कभी एक एप्पल पर हल्का सा ब्राउन स्पॉट लग जाता है ना, तो हम फौरन ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ना ना ना, ये तो खराब हो गया, ये किसी काम का नहीं रहा। कभी कभी ब्रेड का एक स्लाइस थोड़ा सा ओवर ड्राई हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मुझे पसंद नहीं आ रहा, फेंक दो, गार्बेज में डाल दिया। कभी बनानास जो है वो यूजली ज्यादा राइप हो जाते हैं, ज्यादा पक जाते हैं, और क्या हम कहते हैं उसको देखकर, भाई अब इसको कौन ही खाएगा, नहीं अच्छा लग रहा मुझे दिखने में। लेकिन बहुत सी सिचुएशंस में खाने को फेंकने के बजाय क्रिएटिव यूज किया जा सकता है। अब जैसे ओवरराइप बनाना को ही ले लें, भाई ओवरराइप बनाना से स्मूदीज या बनाना ब्रेड में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। बची हुई वेजिटेबल्स को आप सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ता सॉस या ऑमलेट का हिस्सा बना सकते हैं। ये जो आपकी हार्ड हुई हुई या एक्स्ट्रा ड्राई हुई हुई ब्रेड होती है उसको आप टोस्ट कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी किचन में जो चीजें हमें वेस्ट नजर आ रही होती है ना, कभी कभी वो एक्चुअली नेक्स्ट मील का इंग्रेडिएंट बन सकती हैं। बस थोड़ा सा क्रिएटिव होना जरूरी है साथियों। अच्छा, अब सवाल ये है कि फूड वेस्ट को सस्टेनेबिलिटी से क्यों कनेक्ट किया जाता है, आखिर क्या बात है? देखिए, इसका जवाब डस्टबिन तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन बहुत लॉजिकल सी बात है। जब हम एक प्लेट फूड वेस्ट कर देते हैं ना, कचरे में डाल देते हैं, तो हम सिर्फ उस खाने को वेस्ट नहीं कर रहे होते, उस खाने को जो उगाने में मेहनत लगी है, जो लैंड यूज हुआ है, जो वाटर कंजम्पशन हुआ है, जो फर्टिलाइजर और एनर्जी यूज हुई है, जो खेतीबाड़ी हुई है, जो फार्मर्स ने मेहनत की है, जो ट्रांसपोर्टेशन हुई है, जो रेफ्रिजरेशन हुई है, जो स्टोरेज सोर्स यूज हुई है, ये सब कुछ इनडायरेक्टली वेस्ट हो जाता है। अच्छा, FAO के मुताबिक वेस्टेड फूड के साथ मनी, एनर्जी, लैंड, वाटर, लेबर और टाइम जैसे रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं। जरा सोचिए ना, एक सिंपल सा आप कह लें कौन सी सब्जी ले लें, टमाटर, हाँ टमाटर ले लेते हैं, तो भाई एक सिंपल से टमाटर के पीछे कितना सारा प्रोसेस होता है। फार्मर्स सीड्स प्लांट करते हैं, सॉइल प्रिपेयर करते हैं, उसको पानी दिया जाता है, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, हार्वेस्टिंग होती है, पैकिंग होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है सुपरमार्केट तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, और फिर हम उसे घर लाते हैं। मतलब मुझे बोलने में ही इतना टाइम लग गया, तो इस प्रोसेस को असल में होने में कितना टाइम लगता होगा। अगर वही टमाटर फ्रिज में पड़ा पड़ा खराब हो जाए और फिर डस्टबिन में चला जाए, तो भाई हमने सिर्फ टमाटर नहीं फेंका, मुझे तो नहीं लगता भाई, हमने उस टमाटर के पीछे लगा हुआ पानी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, पैसा, सब कुछ वेस्ट कर दिया। अब भाई फूड वेस्ट और क्लाइमेट चेंज का कनेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ये कनेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब ऑर्गेनिक फूड वेस्ट लैंडफिल में जाता है ना, तो वहाँ डीकम्पोजिशन

एडॉप्शन अक्सर ऑक्सीजन की कमी वाली कंडीशंस में होती है। इस प्रोसेस को एनारोबिक डीकम्पोजिशन कहा जाता है। अच्छा, इस एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं और मीथेन जनरेट हो सकती है। US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक लैंडफिल्स में खाना और ये जो दूसरे तीसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ऑक्सीजन के बगैर डीकम्पोज होने पर मीथेन जनरेट करते हैं, जो एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। यानी जो बचा हुआ चावल हो गया या जो भी चीज हमने अपनी प्लेट में छोड़ी थी, जो वेजिटेबल्स हो गए जो हमारे फ्रिज से निकाल कर हम फेंक देते हैं, और जो फ्रूट्स हम यूज ही नहीं करते, यूज करने से पहले ही फेंक देते हैं, वो सब लैंडफिल में जाकर एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इशू क्रिएट करता है, एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इशू का हिस्सा बन जाता है। देखिए, मीथेन को समझने के लिए ना एक अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कॉमनली डिस्कस्ड ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन मीथेन भी क्लाइमेट सिस्टम पर पावरफुल वार्निंग इफेक्ट रखती है। इसीलिए मीथेन एमिशंस को रिड्यूस करना क्लाइमेट एक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए भाई, फूड वेस्ट को लैंडफिल से डाइवर्ट करना मीथेन रिड्यूस के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में से एक है। अच्छा, EPA के मुताबिक फूड वेस्ट लैंडफिल मीथेन इमिशंस को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है, और फूड वेस्ट को लैंडफिल से डाइवर्ट करना इमिशंस को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। इसीलिए जब हम ये कहते हैं ना कि जो फूड वेस्ट है इसको कम करें, तो इसका मतलब सिर्फ क्लीन किचन नहीं होता, इसका मतलब है कि हम अपने वेस्ट स्ट्रीम से एक क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक घर में रोज एक छोटा सा बोल जो कि फूड स्क्रैप का वेस्ट होता है।

उसका लेफ्ट ओवर उसके अंदर आपने डाल दिया। अच्छा, अगर अकेले देखें तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन अब इसी एग्जाम्पल को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में, अगर आप अपार्टमेंट रहते हैं तो आपको अंदाजा होगा कितने सारे 100-200 लोग तो रहते होंगे एक अपार्टमेंट में। अब आप सोचें कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ओके, जस्ट इमेजिन उनका वेस्ट एक साथ मिलकर कितना हो जाएगा। फिर एक नेबरहुड सोच लें, फिर एक सिटी सोच लें। अब इसीलिए तो हाउस होल्ड एक्शन इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक फैमिली का एक्शन दुनिया को ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकता, मैं ये बात मानती हूँ, बट जस्ट इमेजिन मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड की एक आपके लिए छोटा सा चेंज कलेक्टिवली बहुत मीनिंगफुल हो सकता है। सस्टेनेबिलिटी का असल कॉन्सेप्ट भी तो यही है कि इंडिविजुअल हैबिट्स को लार्जर सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करके देखा जाए। अच्छा, फूड वेस्ट का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है साथियों, पता है क्या, जो हम सबका पसंदीदा है, पैसा, मनी। देखिए, आज के टाइम में ग्रोसरीज चीप नहीं होती। जब हम सुपरमार्केट जाते हैं और अननेसेसरी खाना खरीदते हैं ना, और खासतौर पे उस वक्त जब हमें भूख लगी होती है तब हम शॉपिंग पे चले जाएं, तो अरे भाई हम क्या तो अल्लम गल्लम चीजें उठा कर ले आते हैं, फिर उसे यूज करने से पहले हम फेंक देते हैं, क्योंकि जब हमारा पेट भर जाता है तो वो चीज लेफ्ट ओवर में चली जाती है, हमें उसका ख्याल भूल जाता है, बच जाता है वो खाना। तो हम असल में अपना पैसा डस्टबिन में डाल रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए, सुपरमार्केट में कोई ऑफर चल रही है, बाय टू गेट वन फ्री, आपको लगता है कि भाई ये बार्गेन बड़ा ही अच्छा है, इसलिए आप क्या करते हैं, फटाफट लबालब 3-4 पैकेट उठा लेते हैं। घर में 2 पैकेट ऑलरेडी यूज हो जाते हैं, लेकिन तीसरा जो होता है वो फ्रिज के किसी कॉर्नर में चला जाता है, अंदर अंदर सामान आता जाता है, वो पीछे चला जाता है कुछ दिन बाद या कुछ हफ्तों बाद। अक्सर औकात तो कुछ लोगों के, मैंने फ्रिज से देखा है, कुछ महीने बाद वो चीज एक्सपायर हुई भी बाहर आती है। टेक्निकली यहाँ पर आपने सेविंग्स नहीं की, आपने अननेसेसरी परचेज की है। FAO भी फूड वेस्ट को इकोनॉमिक लॉस और हाउस होल्ड कॉस्ट के साथ कनेक्ट करता है। इसीलिए ये जो खाने के वेस्ट की हम बात करते हैं ना, इसको हमेशा रिड्यूस करना एक एनवायरमेंटल हैबिट के साथ एक फाइनेंशियल हैबिट भी माना जाता है। साथियों, फूड वेस्ट को रिड्यूस करने का पहला स्टेप सुपरमार्केट से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। शॉपिंग करने से पहले क्या करना होता है, अरे भाई अपने किचन में चेक करें ना, फ्रिज में देखें, फ्रीजर को टटोलें, झांकें फ्रीजर के अंदर। फ्रीजर के अंदर कभी कभी ये होता है कि चीजें पीछे पीछे चली जाती हैं। देखें आपके पास फ्रीजर और फ्रिज में क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, कुछ कैबिनेट्स को भी चेक कर लिया करें, जहां पर आपने चीजें रखी होती हैं, कैन फूड या ड्राई फ्रूट रखा होता है। फिर एक शॉपिंग लिस्ट बनाएं। अगर घर में ऑलरेडी सब्जियां हैं, जैसे कि आलू, टमाटर, ये सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आपको लालच हो रहा है, दिख रहा है कि भाई ये डिस्काउंट पे मिल रहा है, 3-4 केजी और ले लेता हूँ, तो भाई ना लें। पहले जो 2 केजी ऑलरेडी फ्रिज में छोड़कर आए हैं उसको तो नजर डालें, वो खराब हो जाएगा। अगर आपको पता है कि वीकेंड पर फैमिली बाहर डिनर करेगी, तो भाई वीकेंड के लिए अननेसेसरी ग्रोसरीज नहीं खरीदे ना, ये इमोशनल शॉपिंग नहीं करें। शॉपिंग लिस्ट सिंपल लगती है साथियों, लेकिन ये इम्पल्सिव बाइंग को कंट्रोल करने का पावरफुल टूल होता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग हैबिट ये है कि खाली पेट शॉपिंग ना करें, हंग्री शॉपिंग। अरे भाई इससे बचें, ये बड़ी खतरनाक चीज है, और मैंने ये ट्राई करके देखा है, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। जब हम भूखे जाते हैं ना सुपरमार्केट में, तो हमें हर चीज अट्रैक्टिव लगती है भाई, खास तौर पे वो जो बेकरी सेक्शन होता है ना, ओ माय गॉड, मतलब आपको इंस्टेंट फूड वहां मिल जाता है, स्नैक्स, डेजर्ट्स, और सबसे कंटेजियस चीज होती है वो स्पेशल ऑफर, जो हम भर भर के ट्रॉली में डाल लेते हैं। घर पहुंचकर रियलाइज होता है कि भाई इतना सारा खाना, रियलिस्टिकली इसको खाना तो बहुत मुश्किल है, एक बंदा, चलो घर में कितने ही लोग होंगे, बांट भी दें तब भी इतना नहीं खत्म होगा जितना हमने ले लिया है। देखिए, मील प्लानिंग भी फूड वेस्ट को कंट्रोल करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर मील को एक टास्क बना लें, रॉकेट साइंस बना लें, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्केड्यूल मत बनाएं उसका। लेकिन बेसिक प्लानिंग भी काफी होती है। आप सोच सकते हैं कि भाई इस वीक घर में कितने लोग खाना खाएंगे, कौन से दिन बाहर खाना होगा, कितनी कुकिंग रियलिस्टिकली होगी, और कौन से इंग्रेडिएंट्स मल्टीपल मील्स में यूज किए जा सकते हैं। अगर आप एक ही इंग्रेडिएंट को डिफरेंट मील्स में यूज करते हैं, तो लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट्स को, ये जो वेस्ट होता है ना लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट्स का, उसका वेस्ट होने का चांस कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक दिन ग्रिल्ड वेजिटेबल बना लिए, ठीक है, तो भाई नेक्स्ट डे उन्हें रैप या पास्ता में यूज किया जा सकता है। वैसे किसी को बताइएगा नहीं, ये काम मैं करती हूँ, तभी मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह एक इंग्रेडिएंट की लाइफ
एक मील के बाद खत्म नहीं होती। साथ

0: लेफ्ट ओवर को भी वेस्ट की बजाय अपॉर्चुनिटी समझा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, कभी घर में बचा हुआ चिकन होता है और हम उसे कल का खाना कहकर फ्रिज में रख देते हैं, फिर कल आता है और हम फ्रेश मील्स बना लेते हैं, उसे भूल जाते हैं, उसके बाद लेफ्ट ओवर और पीछे चला जाता है, फिर 3 या 4 दिन बाद या हफ्ते बाद वो फॉरगॉटन फूड बन जाता है। इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सलूशन है भाई, लेफ्ट ओवर डे। हफ्ते में एक मील ऐसा रखें जहां फ्रिज में मौजूद सेफ लेफ्ट ओवर्स को प्रायोरिटी दी जाए। बचे हुए चिकन सैंडविचेस, रैप्स या सैलड्स में तब्दील किए जा सकते हैं। बचा हुआ जो चावल होता है उसको फ्राइड राइस या कुछ ऐसा कुछ मजे का आप जो है ना उसके राइस बोल बना सकते हैं। बची हुई वेजिटेबल्स का आप सूप बना सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, पास्ता बना सकते हैं, उन्हें इन चीजों में यूज किया जा सकता है। लेफ्ट ओवर का मतलब बोरिंग फूड नहीं होता, लेफ्ट ओवर का मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इंग्रेडिएंट्स भी हो सकता है।
1: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: देखिए मेरे साथियों, फूड स्टोरेज भी ना वेस्ट रिडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये कभी कभी ना खाना इसलिए खराब नहीं होता कि वो नेचुरली जल्दी खराब होने वाला था, नो, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसे सही तरीके से स्टोर नहीं किया जाता। देखिए, रेफ्रिजरेटर को ना उसके ऊपर रहम किया करें, उसको इतना ओवरफिल ना करें कि उसके अंदर रखी हुई चीजें आपको नजर ही ना आए, क्योंकि जो खाना नजर नहीं आता ना वो अक्सर याद ही नहीं रहता। जो सब्जियां जो फल नजर नहीं आते वो याद ही नहीं रहते। आप अपने फ्रिज में एक सिंपल ईट मी फर्स्ट सेक्शन बना सकते हैं। इस जगह पर वो खाने रखें जो पहले यूज होने चाहिए, जैसे ओपन कंटेनर्स वाले खाने जो होते हैं, पुरानी सब्जियां हो गई, कट फ्रूट या सेफ लेफ्ट ओवर्स हो गए। भाई इससे जो है ना वो हर बार फ्रिज खोलने पर आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा कि पहले क्या फिनिश करना है। अच्छा, अगर फ्रीजर की बात करें तो फ्रीजर भी फूड वेस्ट रिड्यूस करने का यूजफुल टूल हो सकता है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि सूटेबल होते हैं कि उनको अगर फ्रीज कर दिया जाए ना तो उनकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। साथियों, ब्रेड, सर्टन कुक फूड्स, फ्रूट्स और मील पोर्शंस जैसे आइटम्स के लिए फ्रीजर यूजफुल हो सकता है, लेकिन हर खाना फ्रीजर की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए भाई, इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि फ्रीजिंग को लास्ट मिनट रेस्क्यू प्लान ना बनाएं। जब खाना ऑलरेडी खराब होने के करीब हो तब फ्रीजर में डालने के बजाय पहले ही प्लान कर लें जो चीज आप रियलिस्टिकली यूज नहीं करेंगे उसे अप्रोप्रिएट टाइम पर फ्रीज कर दिया जाए। सिंपल रूल याद रखिए ना, फ्रीज बिफोर इट बिकम्स वेस्ट। देखिए, खाने के ऊपर ना लेबल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। फूड लेबल्स भी हाउसहोल्ड फूड वेस्ट में रोल प्ले कर सकते हैं। कंज्यूमर्स पता है क्या करते हैं? कंज्यूमर्स ना कभी कभी बेस्ट बिफोर, यूज बाय, सेल बाय और ऐसे दूसरे तीसरे लेबल्स को सेम समझ लेते हैं, जबकि इन टर्म्स का मीनिंग प्रोडक्ट और ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। इसीलिए लेबल्स को समझना और स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है। साथियों, सेफ्टी सेंसिटिव फूड्स के केस में लेबल और फूड सेफ्टी गाइडेंस को सीरियसली फॉलो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से हर आइटम को ऑटोमेटिकली ट्रैश में डाल देना अननेसेसरी वेस्ट क्रिएट करता है। सबसे बेहतर अप्रोच ये होती है कि पैकेजिंग पर दी गई इंस्ट्रक्शंस को रीड करें, खाना जो है उसको करेक्टली स्टोर करें और सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। देखिए, फूड वेस्ट प्लेट पर भी होता है। कभी हम घर में जरूरत से ज्यादा खाना सर्व कर देते हैं, कभी रेस्टोरेंट में ह्यूज पोर्शंस ऑर्डर कर देते हैं, फिर आधा खाना प्लेट में रह जाता है। पोर्शन कंट्रोल इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकता है। साथियों, पहले छोटा सा पोर्शन आप सर्विंग का निकालें ना, अगर भूख हो तो फिर दोबारा और ले लें, कोई मसला नहीं है, कहीं नहीं जा रहा खाना। भाई इससे प्लेट वेस्ट कम हो सकता है और खाने का अननेसेसरी डिस्कार्ड भी बचाया जा सकता है। रेस्टोरेंट्स में अगर पोर्शन लार्ज हो और फूड सेफली पैक किया जा सकता है तो लेफ्ट ओवर को आप अगले मील के लिए भी सेव कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है ये आपके लिए। अच्छा, ये जो अपने बच्चे हैं ना भाई, इनको फूड वेस्ट के बारे में एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बच्चों को सिर्फ ये कहना कि भाई खाना वेस्ट मत करो, ये कहना सिर्फ एनफ नहीं होता, उन्हें खाने की जर्नी समझाई जानी जरूरी होती है। उन्हें ये बताएं कि भाई एक कैरेट जो आप लेकर आ रहे हो वो सिर्फ सुपरमार्केट के शेल्फ से नहीं आ रही, उसके पीछे फार्मर्स की मेहनत होती है, उसके पीछे सॉइल, वाटर, सनलाइट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, ये सब कुछ होता है। आप बच्चों के साथ एक सिंपल किचन गेम भी अरेंज कर सकते हैं। फ्रिज खोलकर ये पूछें कि भाई आज सबसे पहले क्या फिनिश करना चाहिए, या फिर बची हुई इंग्रेडिएंट्स को देखकर ये पूछें कि इन चीजों से हम क्या बना सकते हैं। देखिए भाई, जब बच्चे खाने को रिसोर्स के तौर पर देखना सीखते हैं ना तो उनकी हैबिट्स नेचुरली चेंज हो सकती हैं। आपको उनको फिर कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको खुद ब खुद खाने की कदर आएगी। अच्छा, अब बात करते हैं फूड स्क्रैप्स के बारे में। देखिए, हम जितनी भी प्लानिंग कर लें फिर भी कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट

अवॉइडेबल हो सकता है, जैसे कि फ्रूट पील्स हो गई, वेजिटेबल ट्रिमिंग और दूसरे ऑर्गेनिक स्क्रैप्स कभी कभी बच ही जाते हैं। यहाँ कंपोस्टिंग एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन बन सकता है। देखिए भाई, कंपोस्टिंग ना नेचर की रिसाइकलिंग सिस्टम की तरह होता है। कंट्रोल कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट रिच कंपोजिट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, EPA के मुताबिक कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल को लैंडफिल से डाइवर्ट कर सकती है, मीथेन इमिशन से रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिटर्न कर सकती है। अच्छा, कंपोस्टिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो चीज हम गार्बेज समझ रहे होते

0: कंट्रोल्ड कंपोस्टिंग सिस्टम में ब्रेक डाउन होते हैं और रिजल्ट करते हैं कंपोस्ट सॉइल क्वालिटी और प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन साथियों, कंपोस्टिंग का मेथड इम्पोर्टेंट है। हर कंपोस्टिंग सिस्टम में सेम मटेरियल्स एक्सेप्ट नहीं होते। बैकयार्ड कंपोस्टिंग, कम्युनिटी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोग्राम के रूल डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए लोकल सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। EPA भी यही कहता है कि एक्सेप्टेड फीड स्टॉक्स कंपोस्टिंग फैसिलिटीज और मेथड के मुताबिक वेरी करते हैं। अच्छा, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और गार्डन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सस्टेनेबिलिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देखिए भाई, अगर सिटी में ऑर्गेनिक वेस्ट कलेक्शन प्रोग्राम अवेलेबल है तो उसका यूज किया जा सकता है। कम्युनिटी कंपोस्टिंग भी ऑप्शन हो सकता है। कुछ जगहों पर फूड स्क्रैप ड्रॉप ऑफ सिस्टम्स भी होते हैं और अगर आपके एरिया में कोई कंपोस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, तब भी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रिमेन्स फूड वेस्ट प्रिवेंशन। याद रखिए, कंपोस्टिंग यूजफुल है लेकिन सबसे सस्टेनेबल फूड वेस्ट वो है जो पहली जगह पर क्रिएट ही ना हो भाई। अच्छा साथियों, फूड वेस्ट का कनेक्शन ना वाटर कंजर्वेशन से भी है। हर क्रॉप को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। अगर वो क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद कंज्यूम होने के बजाय वेस्ट हो जाए तो उस क्रॉप की प्रोडक्शन में यूज हुआ वो पानी इफेक्टिवली वेस्टेड रिसोर्स बन जाता है। इसी तरह लैंड और एनर्जी भी इन्वॉल्व होते हैं। FAO फूड लॉस एंड वेस्ट को वाटर, एनर्जी, लैंड, लेबर और टाइम के इनएफिशिएंट यूज से कनेक्ट करता है। इसीलिए जब हम एक मील को वेस्ट होने से बचाते हैं, हम इनडायरेक्टली मल्टीपल रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाने में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं।
1: वीकली चैलेंज,
0: आप एक 7 days फूड वेस्ट चैलेंज भी ट्राई कर सकते हैं। पहले दिन सिर्फ ऑब्जर्व करें, दूसरे दिन फ्रिज ऑर्गेनाइज करें,

0: फूड वेस्ट को आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई कर सकते हैं। सोचिए ना, एक किचन में एक स्मार्ट सिस्टम इंस्टॉल्ड हो जो ऑब्जर्व करता रहे कि आ सकता है कि वेजिटेबल्स का वेस्ट हाई है, ब्रेड का वेस्ट हाई है या प्रिपेयर्ड मील्स का वेस्ट ज्यादा है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से परचेजिंग और प्रिपेयरिंग डिसीजंस इंप्रूव किए जा सकते हैं। अच्छा, इस इनोवेशन का सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया ये भी है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ वेस्ट को डिटेक्ट नहीं करती, वो बिहेवियर चेंज को भी सपोर्ट कर सकती है। जब आपको पता होता है कि आप रोज कितना खाना फेंक रहे हैं, तो आप अपनी हैबिट्स को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं, बिल्कुल फिटनेस ट्रैकर की तरह। जो स्टेप्स काउंट करता है, स्मार्ट फूड वेस्ट सिस्टम फूड डिस्पोजल को मेजर कर सकता है। अगर आपको पता चले कि आप हर वीकेंड सिग्निफिकेंटली क्वांटिटी फूड डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो आप शॉपिंग, स्टोरेज और मील प्लानिंग में चेंजेस ला सकते हैं। तो भाई साथियों, आज की डिस्कशन का फाइनल मैसेज क्या है? देखिए, फूड वेस्ट सिर्फ किचन का गार्बेज इशू नहीं है, ये पैसा, पानी, लैंड, एनर्जी, लेबर, क्लाइमेट और फूड सिस्टम एफिशिएंसी का इशू है। जब हम फूड वेस्ट करते हैं ना, तो उस फूड के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाले रिसोर्सेज भी इनडायरेक्टली वेस्ट ही हो रहे होते हैं। और जब ऑर्गेनिक वेस्ट लैंडफिल्स में एनएरोबिक कंडीशंस में डीकम्पोज होता है, तो मीथेन जनरेट हो सकती है जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करती है। तो भाई, अगली बार जब आप फ्रिज खोलें और एक लेफ्ट ओवर कंटेनर आपको सामने मुस्कुराता हुआ नजर आए ना, तो फौरन ये मत सोचिए इसे फेंक देता हूँ, छोड़ो अब कौन खाएगा। एक सेकंड रुक जाइए भाई, इसे कैसे रीयूज किया जा सकता है ये सोचे ना। और अगली बार सुपरमार्केट में कोई ह्यूज डिस्काउंट नजर आए ना, तो खुद से ये जरूर पूछिएगा लेने से पहले कि क्या मुझे वाकई में इसकी जरूरत है। अगली बार प्लेट जब सर्व करें, तो पहले छोटा पोर्शन लेना और जरूरत हो तो दोबारा फिर आप दूसरा खाना ले लें। ये डिसीजन छोटे होते हैं साथियों, लेकिन सस्टेनेबिलिटी अक्सर इसी तरह के स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे डिसीजन कलेक्टिव डिसीजन से आती है। इसलिए भाई, फूड वेस्ट को सिर्फ खाना फेंकना मत समझिए, फूड के हर बाइट के पीछे नेचर के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स और एनर्जी की स्टोरी होती है। जब हम खाने को वैल्यूएबल समझते हैं ना, तो हम सिर्फ पैसा नहीं बचाते, हम पानी, लैंड, एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू भी समझ रहे होते हैं। और जब हम ऑर्गेनिक वेस्ट को लैंडफिल से डाइवर्ट करते हैं, तो हम मीथेन इमिशंस को रिड्यूस करने की वाइडर क्लाइमेट एफर्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो भाई, अगली बार जब आप किचन में खड़े हों और डस्टबिन में खाना डालने वाले हों, एक सिंपल सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये वाकई में वेस्ट है या इसे किसी और तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है उस एक सवाल से आपका लेफ्ट ओवर खाना डस्टबिन में जाने से बच जाए, आपका पैसा बच जाए, आपकी रिसोर्स बच जाए और लैंडफिल में जाने वाला ऑर्गेनिक वेस्ट भी कम हो जाए। खाना बचाइए साथियों, पैसा बचाइए, रिसोर्सेज बचाइए और मीथेन इमिशंस को रिड्यूस करने की कोशिश में भी हिस्सा लीजिए, क्योंकि सस्टेनेबल फ्यूचर किसी दूर की लेबोरेटरी में नहीं बन रहा, वो हमारी डेली चॉइसेस, हमारी शॉपिंग बास्केट्स और हमारे किचन्स में बन रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। आज के इस एपिसोड से सफा को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी चॉइसेस का ख्याल रखिए। आप सुन रहे थे सफा के साथ सस्टेन द फ्यूचर ऑन FM 107। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: सस्टेन द फ्यूचर, आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, जिंदगी में बाज़ नेमतें ऐसी हैं जिन्हें हम हासिल करने के लिए बहुत मेहनत और तकद्दो करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिज़्क में वसअत हो, घर में बरकत हो, जिंदगी बामकसद और बाबर

0: हकीकत हो। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि नेमतों का ताल्लुक हमारे रिश्तों से भी हो सकता है? माँ बाप, भाई बहन, चचा फूफी, मामू, खाला और दूसरे करीबी रिश्ते, ये वो ताल्लुकात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हमारे वजूद के साथ जोड़ा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रिश्तों को निभाने के बारे में एक ऐसी खुशखबरी सुनाई है जिसे सुनकर इंसान का दिल चाहता है कि आज ही किसी भूले हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ ले। अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा युबसत लहु फी रिज़्क़िही व युनसअ लहु फी अथरिही फलयसिल रहमा, जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क में वसअत दी जाए और उसकी उम्र में दराजी और बरकत अता की जाए, उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। सबने कराम, सिला रहमी का मतलब है रिश्ते को जिंदा रखना, हाल पूछना, जरूरत में साथ देना, बीमार हो तो यादत करना, परेशान हो तो तसल्ली देना। यानी सिला रहमी सिर्फ ये नहीं कि आप ईद के दिन एक रस्मी पैगाम भेज दिए या साल में एक मरतबा किसी तकरीब में मुलाकात हो गई और बस। रिश्ते हमेशा किसी बहुत बड़े वाक़े पर नहीं टूटते, छोटी सी छोटी बातों पर। उसने रब्ता क्यों नहीं किया या फिर उसने पहले रब्ता क्यों नहीं किया, मैं क्यों करूँ, और यही जुमला दोनों तरफ होता है। वो कहता है वो क्यों नहीं आया, ये कहता है वो क्यों नहीं आया, दोनों इंतजार करते रहते हैं और दरमियान में एक खूबसूरत रिश्ता खामोशी से कमजोर होता रहता है। तो मैं ही क्यों पहल करूं? सिला रहमी का असल इम्तिहान शायद यही है। जो रिश्तेदार आपके साथ बहुत अच्छा है, उसके साथ अच्छा होना निस्बतन आसान है। वो फोन करे तो आप फोन करें, वो तोहफा दे तो आप तोहफा दें। असल सवाल तब पैदा होता है जब दूसरा शख्स पीछे हट जाए, तब हम कहते हैं मैं ही हर बार क्यों रब्ता करूँ। यहाँ हमें नबवी तालीम का एक और मफहूम याद रखना चाहिए कि कामिल सिला सिर्फ बदले में अच्छा बर्ताव करने का नाम नहीं। हकीकी सिला ये है कि अगर दूसरी तरफ से रिश्ता कमज़ोर पड़ रहा हो तो इंसान अपनी तरफ से उसे जोड़ने की कोशिश जारी रखे। अब सिला रहमी का मतलब ये भी नहीं कि इंसान खुद को मुसलसल जुल्म, बदसलूकी या हकीकी नुकसान के सामने बेहिफाजत छोड़ दे। यानी जुल्म बर्दाश्त करते रहे ये भी सही नहीं। हत्तल इम्कान दिल में ये इरादा रहे कि मैं दुश्मनी नहीं पालूंगा, हक तलफी नहीं करूंगा, और जहां महफूज और मुनासिब तरीके से खैर का ताल्लुक कायम रखा जा सकता है उसे बिल्कुल ख़त्म नहीं करूंगा। आज तो भाई एक और मसला है कि हम कहते हैं वक्त नहीं मिलता, ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, लेकिन ज़रा सोचिए कि शायद एक मिनट लगेंगे आपको किसी से बात करने में। एक मिनट का पैगाम कभी ये किसी उम्र रसीद खाला, किसी मामू, किसी बहन भाई या किसी दूर बैठे रिश्तेदार के लिए पूरे दिन की खुशी बन सकता है। रिश्ता जिंदा रखने के लिए हमेशा लंबी मुलाकात की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी एक सलाम, कभी एक फ़ोन, मुश्किल वक्त में सिर्फ ये कहना कि मैं आपके साथ हूँ, यही काफ़ी होता है। अगर आप अपने बच्चों को सिला रहमी सिखाना चाहते हैं तो उन्हें दिखाइए, खुद आप उनके रोल मॉडल हैं। तो आप अपने वालदेन के साथ हर हमेशा रابطہ रखें, बच्चों को सुनने दीजिए, अपनी खाला फूफी चचा मामू और दूसरे रिश्तेदारों का एहतराम उनके सामने कीजिए। बच्चे जब देखेंगे कि उनके वालदेन ख़ानदान के बुज़ुर्गों का हाल पूछते हैं, इख्तलाफ के बावजूद अदब कायम रखते हैं, तो अगली नस्ल रिश्तों की कदर सीखेगी। वरना अगर बच्चे हर वक्त बड़ों से ये सुने कि फ़लाँ ने हमारे साथ ये किया था, हम उनसे बात नहीं करते, उनके घर मत जाना, तो हम अनजाने में अगली नस्ल को रिश्ता नहीं दुश्मनी विरासत में दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगियों में उन्हें नाफिज करने की तौफीक अता फरमाएं। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के हलके से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा शफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम ورحمة الله وبركاته।
1: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

1984 से 1996 तक का ओलंपिक सफर देखें तो कार्ल लुईस ने हर ओलंपिक गेम्स में कम से कम एक गोल्ड मेडल जीता। ये कंसिस्टेंसी की बात है और ये कंसिस्टेंसी अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों। अटलांटा 1996 ओलंपिक्स में जब वो 35 साल के थे तब भी उन्होंने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। थोड़ा सोचिए, एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट में जहां मिलीसेकंड्स और सेंटीमीटर्स फैसला करते हैं, वहां एक एथलीट का इतने अरसे तक दुनिया के टॉप लेवल पर रहना कितना मुश्किल होता होगा। जरा तसव्वुर करें आप इस चीज को, समझ में आ जाएगा। कार्ल लुईस 1996 यानी 1996 में जब कार्ल लुईस ने लॉन्ग जंप का फाइनल जीता तो वो ओलंपिक हिस्ट्री में सिर्फ एक और मेडल ऐड नहीं कर रहे थे, वो अपने करियर के एक ऐसे चैप्टर को मुकम्मल कर रहे थे जहां उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में इसी इवेंट का गोल्ड मेडल जीता। इसी इवेंट का 1984 का लॉस एंजलिस, 1988 का सोल, 1992 बार्सिलोना और 1996 अटलांटा। 4 ओलंपिक्स, 4 गोल्ड मेडल्स, एक ही इवेंट। और ये अचीवमेंट एथलेटिक्स की तारीख के सबसे मुश्किल रिकॉर्ड में से एक समझी जाती है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। और अगर आप कार्ल लुईस को सिर्फ एक स्प्रिंटर समझते हैं तो जरा रुक जाइए, उनका लॉन्ग जंप करियर भी उतना ही जबरदस्त था। 1991 में टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान उन्होंने 8.91 मीटर का जंप रिकॉर्ड किया था, लेकिन हवा के रफ्तार परमिसेबल लिमिट से ज्यादा होने की वजह ये जंप ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन सका। और इसी कॉम्पिटिशन में माइक पावल ने 8.95 मीटर का जंप लगाकर बॉब बीमन का 23 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। लुईस ने भी सी फाइनल में 8.87 मीटर जंप किया था। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, लुईस ने उस दिन 8.80 मीटर से ज्यादा के 4 जंप्स किए, यानी एक ही कंपटीशन में उनकी कंसिस्टेंसी भी लाजवाब थी और उनका लेवल भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कार्ल लुईस की पर्सनालिटी का एक और पहलू था उनका यकीन, वो अपनी एबिलिटी पर भरोसा करते थे और बड़े मोमेंट्स में प्रेशर को अपने फेवर में इस्तेमाल करते थे। इसीलिए जब एथलेटिक्स की दुनिया में स्पीड, पावर और एलिगेंस की बात होती है, कार्ल लुईस का नाम लाजमी तौर पर सामने आता है। उन्होंने एक पूरी जनरेशन को यह सिखाया कि चैंपियन होना सिर्फ जीतने का नाम नहीं, चैंपियन वो होता है जो सालों तक अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखे, हार के बाद वापस आए और जब दुनिया उसे देख रही हो तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का हौसला रखे। कार्ल लुईस ने ट्रैक पर मेडल जीते, रिकॉर्ड बनाए और हिस्ट्री लिखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एथलेटिक्स को एक नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। इसीलिए कार्ल लुईस सिर्फ एक ओलंपिक चैंपियन नहीं बल्कि एथलेटिक्स की तारीख का एक ऐसा नाम है जो जनरेशंस तक याद रखा जाएगा। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आएगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए भाई, टेक की दुनिया ऐसी है कि मुझे भी इसके साथ साइड में दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन इसका अपना मजा है क्योंकि मैं आपको जो प्रोडक्टिविटी के टूल्स या फिर कोई काम की चीज या कोई ऐसी टाइम

0: बस करने की कोई चीज बताता हूँ तो मुझे खुद को भी बहुत फायदा होता है और अच्छा लगता है। सो आज भी टेक अपडेट में तीन बहुत जरूरी वेबसाइट्स और उसके बाद जरा खबरों की तरफ बढ़ेंगे। सो नंबर वन ऑन द लिस्ट, सबसे पहले आपको टाइप करना है आप वेबसाइट जहां टाइप करते हैं एड्रेस बार में studio.polotno.com। मैं आपको स्पेल आउट करके देता हूं, स्टूडियो studio.polotno.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट जो खुलेगी वो बिल्कुल कैनवा की तरह काम करती है। बेसिकली आप सब कुछ जो मर्जी आप जाएं आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, राइट फ्रॉम योर पोस्टर्स टू लोगोस टू प्रेजेंटेशन, कोई पोस्टर कुछ भी जो भी आप कैनवा पे करते हैं वो आप यहाँ पे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल वेबसाइट। और क्या कि इसका नाम ऐसा है ना तो आसानी से मिलती भी नहीं है, जिनको मिल गई है उन्हें पता है और जिन्हें नहीं मिली है फैला दो इसको मार्केट में, लेकिन आपके बहुत काम आएगी फॉर लुकिंग फॉर समथिंग फ्री एंड जो कि सिमिलर हो कैनवा की तरह। ओके मूविंग ऑन टू अनदर वन, अगली है जी, इसका नाम है start.me। बहुत ही सिंपल नाम है इसका, पर इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कई सारे टूल्स आ जाएंगे और ये सारे के सारे टूल्स जो हैं कैटेगराइज्ड हैं, मतलब आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आपको टूल्स मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको यूजर नेम जनरेटर चाहिए, आपको रैंडम फेस जनरेटर चाहिए, आपको इमेज जनरेटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, यहाँ पे हजारों टूल्स आपके सामने होंगे एंड कैटेगरी वाइज जस्ट हैव टू चूज योर कैटेगरी एंड देन उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं एंड यू विल गेट एवरीथिंग। मैं बता रहा हूँ ये इतनी काम की वेबसाइट है कि एक बार ही आपने देख ली छुट्टी भाई सारी चीजों की, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं अगली वेबसाइट की तरफ, इसका नाम है थर्ड वेबसाइट का verses.com, verses.com, verses.com। जब आप इसे खोलेंगे तो जैसा नाम है verses.com, इसमें आप दुनिया में ऑलमोस्ट हर दो चीजों को प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, दो दोस्तों कंपेयर मत कीजिएगा लेकिन आप चीजों को कंपेयर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। आप प्रोडक्ट्स को कैसे भी कंपेयर कर सकते हैं, कंट्री वाइज, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज। इट इज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट अगर आप कुछ लेने का सोच रहे हैं कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट टू डू इट एंड इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ईजी। आप फोन से लेकर एक माइक्रोवेव तक यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। आई नो कि हर किसी की पूरी तरह से काम की वेबसाइट शायद ना हो ये, लेकिन जिनके काम की है वो जानते हैं कि ये कितने काम आ सकती है। सो प्लीज यहाँ पर जरूर जरूर जाएं। ऑलराइट नाउ टेक की खबर की तरफ बढ़ते हैं। सो देखिए अपडेट में गेमर्स को देना चाहता हूँ, दरअसल क्या है दो बहुत ही बड़े गेम्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, ओनिमुशा और डॉन वॉकर। अभी भी आप सोच रहे हैं कि ये जो इतने पहले रिलीज हुए हैं इनको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं एक बात कहूँगा, ओनिमुशा इज परफेक्ट, कैपकॉम ने फिर से करके दिखा दिया है और उसमें कोई भी डाउट नहीं है। हालांकि डॉन वॉकर आपके टेस्ट का शायद हो सकता है शायद ना हो, पर डॉन वॉकर इज अ गेम जहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले के इसके गेम्स खेले होने चाहिए, मतलब डॉन वॉकर को बनाने वाले जो हैं उन्होंने विच वाले गेम्स बहुत बनाए हैं, विच हंट और काफ़ी सारे गेम्स हैं, अगर आपने वो खेले हुए हैं तो ठीक है, हो सकता है कि आपको ज़्यादा समझ में ना आए, बट इफ़ यू आर इनटू कंप्लीट कॉम्बैट तो आपको ओनिमुशा लेना चाहिए। दिस इज माई फीडबैक, बाकी आपके ऊपर है, मैं भी एक गेमर हूँ आपकी तरह एंड फॉर मी ओनिमुशा विंस द कॉम्पिटिशन क्लियरली। हालांकि इस महीने सबसे ज्यादा बेहतरीन गेम्स ड्रॉप होने वाले हैं इंक्लूडिंग वुल्वरीन, तो जब वो होगा ड्रॉप तो भी उसका छोटा सा रिव्यू जल्दी वाला आपको मिल जाएगा। मैं दुहा वाला कभी एफ 107 पे जाना, आप रहे नहीं बेस्ट जगह पर है आप। दिस वॉज टेक अपडेट, स्टे ट्यून्ड।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, मेरा नाम है फजील और हर रोज नए जमाने के नए स्कैम में से एक ऐसे स्कैम के बारे में हम बात करते हैं जिससे आप अलर्ट रह सके, जिससे आपकी कंपनी बच सके। अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हैं, किसी स्टोर के ओनर हैं, किसी रेस्टोरेंट को चलाते हैं या फिर आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है, तो लाजमी है कि आपके पास एम्प्लॉय भी होंगे, कई

0: बार आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से ट्रेंड नहीं हुए होते हैं और उनके साथ धोखा हो जाता है, लेकिन उनके साथ जो धोखा होता है वो आपके स्टोर को, वो आपके बिजनेस को, वो आपके काम को हैम्पर करता है, वो आपके फिनांस को हैम्पर करता है। और इसीलिए स्कैमर्स ने एक नया तरीका निकाला है स्कैम करने का, विच इज कॉरपोरेट आइडेंटिटी थेफ्ट। ये स्कैम काम कैसे करता है जरा इस पर नजर डालते हैं। कॉरपोरेट आइडेंटिटी थेफ्ट तब होता है जब क्रिमिनल्स किसी चलती फिरती रेप्यूटेड कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस और क्रेडिट हिस्ट्री चुरा लेते हैं ताकि वो मार्केट में बड़ा फ्रॉड कर सके। स्कैमर्स इंटरनेट पर या गवर्नमेंट पोर्टल्स पर जाकर किसी रियल कंपनी की सारी डिटेल्स निकालते हैं, और ऑब्वियसली बात ये बड़ी लाजमी है कि आप सारी डिटेल्स इंटरनेट पर डालना चाहते भी हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हो तो उसे कैसे पता चल जाएगा अगर वो सर्च इंजन पे सर्च कर रहा है तो आप इंटरनेट पे ये सारी डिटेल्स डालते हैं और यहां से बहुत आसान हो जाता है मैक्सिमम डिटेल लेना आपके कंपनी की किसी भी फ्रॉडस्टर्स के द्वारा। स्कैमर्स इंटरनेट पर या गवर्नमेंट पोर्टल्स से आसानी से ये सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं। इन डिटेल्स का इस्तेमाल करके वो किसी दूसरे बैंक में उस कंपनी के नाम पर एक फेक बिजनेस अकाउंट या फेक क्रेडिट कार्ड खोल देते हैं, क्योंकि असली कंपनी का मार्केट में अच्छा नाम है और उनका क्रेडिट स्कोर बढ़िया होता है, बैंक्स और सप्लायर्स उन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इसके बाद ये स्कैमर्स बड़े सप्लायर्स के पास जाते हैं और असली कंपनी का नाम यूज करके हजारों लाखों डॉलर्स या कतरी रियाल या रुपीस का स्कैम कर देते हैं या क्रेडिट में सामान ले लेते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। वो बिलिंग एड्रेस तो असली कंपनी का डालते हैं लेकिन शिपिंग एड्रेस जहां सामान डिलीवर होना है वो किसी खुफिया वेयर हाउस का दे देते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। सप्लायर्स को लगता है कि उन्होंने एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड को सामान बेचा है। जब सामान डिलीवर हो जाता है स्कैमर्स उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर गायब हो जाता है। हफ्तों बाद जब सप्लायर्स का पेमेंट का टाइम आता है तो वो असली कंपनी से कॉन्टेक्ट करेगा ऑब्वियसली, तब दोनों पार्टी हैरान हो जाती है। तब पता चलता है, क्योंकि ये स्कैम ऐसा स्कैम है थोड़ी लेट पता चलता है, इसलिए तब तक स्कैम आपके साथ हो चुका होता है। असली कंपनी का नाम खराब होता है और इससे उन पर लीगल केस भी चलता है फिर। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का एक तरीका है, एक नहीं कई तरीके हैं, उन तरीके पर जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका है रेगुलर क्रेडिट मॉनिटरिंग। अपनी कंपनी की क्रेडिट प्रोफाइल को हर महीने चेक करें, रिपोर्ट्स को मॉनिटर करते रहें ताकि अगर कोई आपके नाम पर नया लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी करे तो आपको फौरन पता चल जाए। कई बार हम इतने ज्यादा काम में बिजी हो जाते हैं कि इन डिटेल्स पर फोकस ही नहीं करते। सिबिल स्कोर को चेक करना, रिपोर्ट्स को मॉनिटर करना, अपने बैंक अकाउंट में जाकर पता करना, अब तो आपके पास डिजिटल दुनिया है। जब स्कैमर्स इस डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरी है कॉरपोरेट भी इस डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करें और रेगुलर इंटरवल पर चेक भी करते रहे। किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर किसी ने अप्लाई किया है तो आपको पता चलता रहेगा। उसके अलावा अलर्ट और ऑनलाइन ऑडिटिंग भी, गूगल अलर्ट और ऑनलाइन ऑडिटिंग हमेशा ऑन रखें। अपनी कंपनी के नाम पे गूगल अलर्ट सेट करें। अगर इंटरनेट पर आपके बिजनेस नेम से जुड़ी कोई भी नई एक्टिविटी या नया एड्रेस रजिस्टर्ड होता है तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेंडर और सप्लायर का वेरिफिकेशन। अगर आप एक सप्लायर हैं तो किसी भी नए कॉरपोरेट ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले उनके रजिस्टर्ड ऑफिस के ऑफलाइन लैंडलाइन नंबर पर कॉल करें। सिर्फ ईमेल पर आए ऑर्डर पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। उसके अलावा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सीक्रेसी। अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, जीएसटी है, टैक्स है, दुनिया के अलग अलग टैक्स होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर ना करें। उसके अलावा एक आखिरी तरीका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सीक्रेसी। जो चौथा तरीका है वो अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है, जो डिटेल्स है टैक्स की, बोर्ड रेजोल्यूशन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर ना करें। इन्हें सिर्फ वेरीफाइड पोर्टल्स और वेरीफाइड पार्टनर्स के साथ ही शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका फुटप्रिंट, आपकी कंपनी का फुटप्रिंट बढ़ता है इंटरनेट में, आपकी कंपनी बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है टारगेट करने के लिए और आपकी कंपनी से या आपकी कंपनी के साथ उनके एम्प्लॉयज के साथ स्कैम हो सकता है। तो दोस्तों, ये था कॉरपोरेट थेफ्ट का एक नए जमाने का नया स्कैम। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हैं। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्म की जो बहुत ज्यादा यूज होती है. आपने शायद सुन रखी हो लाइफस्टाइल क्रीप. हाँ जी. सो लाइफस्टाइल क्रीप का मतलब है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे महंगा हो जाता है. पहले जो चीजें लग्जरी लगती थीं, बाद में वो नेसेसिटी बन जाती हैं. और शायद इसी सोच को इसी पैटर्न को कहा जाता है लाइफस्टाइल क्रीप. चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि ये है क्या और ये किस तरह से हमारी और आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे एक तरह का एडिशनल बर्डन है. देखिए मिसाल के तौर पे अगर किसी की सैलरी 5000 कतरी रियाल थी और फिर 8000 कतरी रियाल हो गई तो आइडियली उसे एक्स्ट्रा पैसे सेव करने चाहिए. लेकिन दोस्तों अक्सर नई सैलरी के साथ नया मोबाइल आ जाता है, ब्रांडेड कपड़े आ जाते हैं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स के चक्कर लगते हैं और कई बार लक्जरी वेकेशंस प्लान करना हम शुरू कर देते हैं. अब नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इनकम बढ़ने के बावजूद भी हम सेविंग्स नहीं कर पाते. ये है लाइफस्टाइल क्रीप का मसला. देखिए लाइफस्टाइल क्रीप बहुत ज्यादा डेंजरस है और मैं कहूंगी ये इसलिए है क्योंकि ये चुपके से धीरे धीरे हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को अफेक्ट करता है. हमें लगता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन असल में हम अपने फ्यूचर गोल्स को सेक्रिफाइस कर रहे होते हैं. देखिए आज का जो दौर है वहां पर दिखावा चलता है और शायद इसी दिखावे के चलते फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ता है. एक और सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. एक शख्स जिसका नाम अहमद है वो जॉब स्टार्ट करता है. उस बंदे के पास एक नॉर्मल फोन था, का सारा काम चलता था और घर का खाना खाता था, पैसे भी बच जाते थे. लेकिन कुछ सालों के बाद उसकी सैलरी बढ़ी या यूं कहें कि डबल हो गई. अब वो हर साल लेटेस्ट आईफोन खरीदता है, रोज फूड जो है वो ऐप से ऑर्डर करता है. फिर वो क्या करता है? फिर वो लोन्स लेता है या फिर क्रेडिट कार्ड्स का सहारा लेता है और इस तरह से उस पर और एडिशनल बर्डन बढ़ जाता है. इस मसले का सलूशन ये है कि जब भी इनकम बढ़े स्पेंडिंग उसी रेशो में ना बढ़ाएं. आई रिपीट, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है आपकी स्पेंडिंग जो है वो उसी रेशो में ना बढ़े. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सैलरी इंक्रीज का एक हिस्सा सेविंग्स और एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स में जरूर जाना चाहिए. अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आगे भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में. जैसे अभी चलिए छोटा सा एग्जांपल देख के बताती हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी सैलरी 1000 इंक्रीज हुई तो कम से कम आप जो है वो 500 कतरी रियाल या तो इन्वेस्ट करें या फिर सेव करें. बजट बनाना भी कितना जरूरी है ये तो मैंने आपको बताया ही है. हर महीने अपने एक्सपेंसेस लिखना और चेक करना कि कौन सा खर्चा जरूरी था और कौन सा गैर जरूरी. अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई है, आपने अगर घर खरीदना है या आपने अगर रिटायरमेंट प्लान करना है या फिर इमरजेंसी फंड बचाना है, इन सारी चीजों को प्रायोरिटी दीजिए. आखिर में जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करना बुरी बात नहीं है. प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी स्पेंडिंग इनकम के साथ इतनी बढ़ जाए कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ भी ना बचे. स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस और डिसिप्लिन स्पेंडिंग के जरिए हम लाइफस्टाइल क्रीप से बच सकते हैं और अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अपने फाइनेंशियल स्टेटस और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं. याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ मच यू कीप. वेल, इसी प्यारी सी बात के साथ अब मैं आपसे इजाजत लूंगी. कल आपकी मुलाकात और मेरी जब मुलाकात इस सेगमेंट में होगी तो एक और नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से.

0: खास इवेंट लाइव एंटरटेनमेंट से लेकर कॉन्सर्ट तक, और फिर इस वीकेंड क्या कुछ होने वाला है, चाहे वो कल्चरल एग्जीबिशन के बारे में बात हो या फिर कतर के म्यूजियम की खूबसूरती को लेकर बात हो, एंड देन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए, फूड या फिर मॉल्स या फिर फैमिली इवेंट। तो फूड के मुताबिक कुछ नए रेस्टोरेंट क्या खुल रहे हैं, क्या ऐसे रेस्टोरेंट जो आपको कुछ खास प्रोवाइड करा रहे हैं, कहां पर डिस्काउंट चल रहा है, सारी जानकारी आपको इस शो कतर 2026 में मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही आपको कतर के फ्यूचर के बारे में भी जानकारी मिलती है। कतर का नेशनल विजन 2030 के मुताबिक जो भी सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स हैं, स्मार्ट सिटीज को लेकर जो बातें हैं, जो सस्टेनेबल यू नो समिट वगैरह हैं, उन सब चीजों के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। तो कतर के फ्यूचर और कतर के फ्यूचर को लेकर जो अनाउंसमेंट है उस पर, एंड देन चाहे वो एडुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो या फिर स्टार्टअप का इकोसिस्टम, सारी जानकारी आपको यहां एफएम 107 पे मिलती है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बगैर वक्त जाया किए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेजर अनाउंसमेंट और गेमिंग इवेंट के बारे में, जो कतर ने एक तरह से कतर कैलेंडर ने ऑफिशियली लॉन्च की है। ये कतर कैलेंडर ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ा गेमिंग टूर्नामेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है वर्चुअसिटी बैटल ग्राउंड कतर 2026। ये स्पेक्टेकुलर इवेंट सितंबर के सेकेंड वीक में पूरे जोर शोर से स्टार्ट होने वाला है। ये कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये एक मेजर रीजनल ई स्पोर्ट चैंपियनशिप है जिसमें पूरे $2,00,000 का मैसिव प्राइज पूल रखा गया है। तो अगर आपको गेमिंग का बहुत ज्यादा शौक है, अगर आप रात रात भर गेमिंग का शौक रखते हुए रात रात भर जाग कर गेम खेलते हैं, तो ये खास गेमिंग इवेंट आपके लिए, जिसमें रियाल भी नहीं $2,00,000 का मैसिव प्राइज पूल रखा गया है। ये प्राइज मनी टोटल 7 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड गेमिंग टाइटल्स के बीच डिवाइड होगी, जिसमें फोर्टनाइट, वोलरेंट और पबजी मोबाइल जैसे पॉपुलर गेम्स शामिल हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि इस वीक में हाई स्टेक्स ऑनलाइन और LAN यानी कि लैन क्वालिफायर्स होंगे, जो डायरेक्टली दोहा फेस्टिवल सिटी से ब्रॉडकास्ट भी किए जाएंगे। गेमिंग के अलावा मैरिटाइम अथॉरिटीज यानी कि कतर बोट शो 2026 ने भी ऐलान किया है कि ओल्ड दोहा पोर्ट पर चलने वाली इस तैयारी का जो मेन एम है वो है मल्टी मिलियन रियाल की सुपर यॉट को शोकेस करना। वहां पर साइट प्रिपरेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है ताकि लोग लग्जरी बोट्स का मजा उठा सके। तो अगर आप गेमिंग की दुनिया में नहीं है और आप बोट का शौक रखते हैं, तो कतर बोट शो 2026 आपके लिए, जहां पर सुपर यॉट्स आपको देखने को मिलेंगी, शोकेस की जाएंगी, और जबरदस्त माहौल कतर बोट शो में भी होने वाला है। और जो पिछले साल लोगों ने एंजॉयमेंट की कतर बोट शो में, वो उनको पता है कि भाई ये क्या चीज है। And now let's talk about live entertainments and concert as well, के concert और entertainment को लेकर हम सब कतरवासियों के लिए क्या कुछ है। दोहा में लाइव एंटरटेनमेंट का लेवल इस बार बिल्कुल अलग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सितंबर के सेकेंड वीक में काफी बड़े सुपरस्टार्स आ रहे हैं। म्यूजिक लवर्स के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्रैमी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट जॉन लेजेंड दोहा आ रहे हैं। क्या बात है, उनका एक डीपली सोलफुल इंडोर वोकल और पियानो परफॉर्मेंस स्केड्यूल किया गया है, जो कि 10 सितंबर 2026 को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसके बाद इसी महीने QNCC में ही ग्लोबल माइंड रीडर और इल्यूजनिस्ट सुहानी शाह लाइव का शो भी होने वाला है। साथ ही कैरनेटिक माइस्ट्रो सिड श्रीराम का एक डेडिकेटेड मल्टी आर्टिस्ट म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी सेटअप किया गया है। अगर आपको लेट नाइट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक वाइब पसंद है, तो अलवहदा स्ट्रीट पर एक नया लग्जरी क्लब खुल रहा है जिसका नाम है हाइट। ये क्लब 10 सितंबर 2026 को अपना प्रीमियर वीकेंड शोकेस डेब्यू करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक स्टार मॉन्ट रोग हेडलाइन सेट परफॉर्म करेंगे। सो बहुत कुछ कतर में हो रहा है, और ये सारी जानकारी आपको सिर्फ कतर 2026 में मिलेगी। तो हम एक छोटे से बहुत नन्हे मुन्ने ब्रेक की तरफ बढ़े, उससे पहले आपको बता दें वीकेंड अट्रैक्शन या कल्चरल एग्जीबिशन को लेकर कतर में क्या कुछ माहौल है इस हफ्ते के वीकेंड को लेकर। वीकेंड पर घूमने के लिए कतर के रेसिडेंट्स के पास काफी सारे अमेजिंग ऑप्शन हैं। लोग नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर की स्टनिंग आर्किटेक्चर डिजाइन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड टिकट के जरिए आपको वहां के मल्टी सेंसरी गैलरीज का एक्सेस मिलता है, जो कतर की इवोल्यूशन कहानी को दिखाती है कि कैसे ये देश एक छोटे से पर्ल डाइविंग ट्रेडिशन से उठकर आज एक बड़ा एनर्जी जायंट बन गया है। इसके अलावा आप एक क्यूरेटेड फुल डे म्यूजियम टूर भी ले सकते हैं, जो आपको म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट और इंटरैक्टिव 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम दोनों घुमाएगा। ये सारे स्पेसेस फुली एयर कंडीशन है और फैमिलीज टूरिस्ट के लिए ये सबसे परफेक्ट, मतलब कह सकते हैं सबसे झकास और परफेक्ट जगह अगर कोई है तो वो यही है गर्मियों के दिनों में, अगर आप कतर के बारे में जानना चाहते हैं और कतर में अगर आप नए हैं। इसके साथ कटारा कल्चरल विलेज में 8 सितंबर 2026 को प्रेस्टीजियस सहेल कटारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फेल्कन्स एग्जीबिशन 2026 वापस आ रहा है, जो कतर का सबसे खूबसूरत, जहां पर बहुत बड़े बड़े यू नो स्टोर लगाए जाते हैं, कैसे इनोवेटिव, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, चाहे वो यू नो आर्मरी को लेकर हो, ये सारी चीजें 4x4 कार से लेकर आपके पास हंटिंग को लेकर या फिर फैल्कन्स को लेकर सारे जो सामान है यहाँ पर दर्शाए दिखाए जाते हैं, एग्जिबिट किए जाते हैं। एंड दिस इज नन अदर देन सहेल कटारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फैल्कन्स एग्जिबिशन। ये शुरू हो रहा है तो इसके लिए भी आप तैयारी कर लीजिए। और ये वर्ल्ड क्लास एग्जिबिशन में 20 अलग देशों से 260 से ज्यादा हेरिटेज और हंटिंग ब्रांड्स आ रहे हैं, जहां लाइव डेमोंस्ट्रेशंस और फैल्कन ऑक्शंस होंगे। फिलहाल एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ब्रेक लेते हैं एंड देन हम जब वापस आएंगे तो फूड मॉल्स, फैमिली इवेंट्स और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कतर के। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: दोस्तों एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 पे, ये शो है कतर 2026। और अब जरा बात कर लेते हैं कतर में हो रहे कुछ अनोखी चीजों के बारे में, चाहे वो मॉल्स को लेकर हो, एक्टिवेशंस हो या फैमिली इवेंट्स हो। दोस्तों खाने पीने के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए इस हफ्ते दोहा में एक बहुत ही स्पेशल फूड फेस्टिवल चल रहा है, जिसका नाम है थाई रेस्टोरेंट वी 2026। अच्छा ये उन लोगों के लिए है जिनको यू नो नए खाने ट्राई करने, ये जो पालक पनीर वाले हैं, बटर चिकन वाले हैं, कढ़ाई चिकन वाले हैं, इसके अलावा इनको कुछ पसंद नहीं आता, वो उन लोगों के लिए नहीं, जो नए खाने पसंद करते हैं, जिनको एक्सप्लोर करना पसंद है कि अगर एक बार खराब निकल भी जाए इट्स ओके यार, खाने का एक्सपीरियंस खराब हुआ, नेक्स्ट टाइम हम अपना जो रेगुलर खाते हैं वो खा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है, भाई साहब अगर मेरा खाने का एक्सपीरियंस खराब हुआ तो ठीक नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए ये नहीं है, थाई रेस्टोरेंट वीक 2026 होने वाला है और रॉयल थाई एम्बेसी इसे ऑर्गेनाइज करा रही है, जो 3 सितंबर से 19 सितंबर 2026 तक चलेगा, तो यानी कि शुरू हो चुका है। इस फेस्टिवल के जरिए कतर के लोगों को ऑथेंटिक साउथ ईस्ट एशियन गैस्ट्रोनॉमी और एक्सक्लूसिव क्यूरेशंस चखने का मौका मिलेगा। और अगर मॉल्स और फैमिली एक्टिवेशंस की बात करें तो कतर के रिटेल स्पेसेस काफी इंटरैक्टिव एडुकेशनल और गेमिंग कैंपेन्स पर फोकस कर रहे हैं। दोहा फेस्टिवल सिटी में फेस्टिवल एकेडमी बैक टू स्कूल कैंपेन चल रहा है, जो 12 सितंबर 2026 तक चलेगा। यहां स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरैक्टिव लर्निंग हब बनाया गया है, जहां साइंस शोज, क्रिएटिव बिल्डिंग और इंस्टेंट गिफ्ट्स मिल रहे हैं। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए इसी मॉल के अंदर एंग्री बर्ड वर्ल्ड इंडोर थीम पार्क भी है, जहां मल्टी जनरेशनल राइड्स और डिजिटल गेम्स हैं, उसका भी बच्चे लुत्फ उठा सकते हैं। स्पोर्ट्स लवर्स के लिए ग्रैंड हमद स्टेडियम में होने वाला है जबरदस्त माहौल, बिटवीन अल अरबी दोहा स्पोर्ट्स क्लब और कतर एससी के बीच, यानी कतर स्पोर्ट्स क्लब के बीच ये एक्साइटिंग फुटबॉल मैच भी उसी शाम को होने वाला है। तो चाहे वो स्पोर्ट्स लवर हो, चाहे वो बच्चे लोग हैं, चाहे वो खाने के शौकीन हो, हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा। दोहा फेस्टिवल सिटी में बच्चों के लिए, खाने पीने के शौकीन के लिए थाई रेस्टोरेंट वीक में, और फिर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए अल अरबी दोहा स्पोर्ट्स क्लब, कतर स्पोर्ट्स क्लब साथ में आएंगे और ग्रैंड हमद स्टेडियम में मुकाबला करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कतर के नेशनल विजन 2030 से अलाइन होता हुआ सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों कतर नेशनल विजन 2030 के तहत देश ग्रीन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। इस सिलसिले में 5th रेट्रोफिट टेक और सस्टेनेबल बिल्डिंग कतर समिट दोहा में 22 सितंबर 2026 को होने जा रही है। इस समिट में गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स, डेवलपर्स और टेक प्रोवाइडर्स मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने पर बात करेंगे। देश का

टारगेट है, यानी कि कतर का टारगेट है कि 2030 तक कम से कम 35% फैक्ट्रीज को सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस पर ट्रांजिशन कर दिया जाए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने हाल ही में 3 नए सस्टेनेबल पब्लिक पार्क लॉन्च किए हैं, जिनमें मॉडर्न फिटनेस एरियाज और बड़े पेडेस्ट्रियन पाथ्स भी हैं। स्मार्ट सिटी के ऊपर बात करें तो कतर डेटा ड्रिवन अर्बन लिविंग पर बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो मुशरिफ डाउनटाउन की बात हो, चाहे वो लुसेल सिटी के बारे में बात हो। मुशरिफ डाउनटाउन दोहा में एक एआई पावर्ड ऑटोमेटेड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लगाया गया है, जो कि सेंट्रल कमांड हब के जरिए थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स को इंटीग्रेट करके रिसोर्स यूसेज को ऑप्टिमाइज करता है। और लुसेल सिटी भी अपना आईसीटी नेटवर्क एक्सपेंड कर रही है ताकि ट्रैफिक फ्लो, एनर्जी ग्रिड्स और वाटर कंजम्पशन को रियल टाइम डेटा से ट्रैक किया जा सके। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एडुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर कि कतर का क्या फोकस है एडुकेशन को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर और स्टार्टअप के इकोसिस्टम को लेकर। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन यानी कि MoEHE ने बैक टू स्कूल 2026-2027 कैंपेन शुरू किया है ताकि एक फ्यूचर रेडी लर्निंग सिस्टम बनाया जा सके। इसका एक मेन पार्ट फर्स्ट स्टेप प्रोग्राम है, जो ग्रेड वन के नए एनरोल्ड पब्लिक स्कूल के बच्चों के ट्रांजिशन को इजी बनाता है, साथ ही एडुकेशनल इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि एक्रेडिटेड प्राइवेट स्कूल्स और किंडरगार्टन्स में 3,500 से ज्यादा फ्री और डिस्काउंटेड सीट्स प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अनाउंस किया है कि उनकी 70% पब्लिक बस फ्लीट अब फुल्ली इलेक्ट्रिक हो चुकी है और उनका टारगेट इसे 2030 तक 100% करने का है। दोहा मेट्रो को इंडस्ट्रियल जोन तक बढ़ाने और हमद पोर्ट को अपग्रेड करने का काम भी लगातार चल रहा है। बिजनेस साइड पर अगर देखें तो दोहा में 21 से 24 सितंबर 2026 तक प्रेस्टीजियस ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप कांग्रेस यानी कि GEC 2026 होने वाला है। इसी के साथ कतर ने अपने फंड ऑफ फंड्स प्रोग्राम को बढ़ाकर $3 बिलियन कर दिया है और स्टार्टअप कतर के तहत फॉरेन टेक एंटिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए $5.5 मिलियन तक की फंडिंग और इंटरनेशनल फाउंडर्स को लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी वीजाज भी दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था कतर 2026, जहां पर हमने हर एक छोटी और बड़ी चीज को कवर किया ताकि आपके लिए, फूडी भाइयों के लिए और बच्चों के लिए, सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ कतर में मौजूद रहे। तो जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि इस हफ्ते आप कहां पर एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अगर हम मेजर अनाउंसमेंट और गेमिंग इवेंट्स के बारे में बात करें तो वर्चुअल सिटी बैटल ग्राउंड कतर 2026 हो रहा है, जिसमें प्राइज मनी रखी गई है $2 लाख का। ये मैसिव प्राइज पूल रखा गया है और इसमें अलग अलग तरह के जो गेम है वो खेले जाएंगे और ये प्राइज मनी टोटल 7 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड गेमिंग टाइटल्स के बीच डिवाइड होगा। उसके अलावा दोहा फेस्टिवल सिटी भी आपके लिए बहुत कुछ ला रहा है। एंड देन कतर बोट शो 2026 भी हो रहा है, जो कतर बोट शो के शौकीन है उनको इसका फॉलो अप जरूर लेना चाहिए। बाकी जानकारी आपको विजिट कतर की वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके अलावा जिनको म्यूजिक का शौक है उनको बता दें 10 सितंबर 2026 को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में जॉन लेजेंड आ रहे हैं। उनका एक डीपली सोलफुल इंडोर वोकल और पियानो परफॉर्मेंस स्केड्यूल्ड है 10 सितंबर QNCC। अगेन ज्यादा जानकारी के लिए आपको कहां जाना है, विजिट कतर की वेबसाइट पे। वीकेंड अट्रैक्शन की बात करें तो नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर बहुत कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है। फुल डे म्यूजियम टूर भी आप ले सकते हैं हमारे 3-2-1 कतर ओलंपिक और स्पोर्ट्स म्यूजियम में। उसके अलावा फैल्कन एग्जीबिशन एक बार फिर से वापस आ रहा है, विच इज सहेल कटारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फैल्कन एग्जीबिशन। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इवेंट है कतर का। अगर आप कतर में नए हैं तो इस जगह पे आपका जाना लाजमी, मतलब
मैंडेटरी है, जाना ही चाहिए। 8 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसके अलावा थाई रेस्टोरेंट वीक 2026 3 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा दोहा फेस्टिवल सिटी में। फेस्टिवल एकेडमी बैक टू स्कूल कैंपेन चल रहा है 12 सितंबर तक, जो कि लगातार चलेगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए अल अरबी दोहा स्पोर्ट्स क्लब और कतर स्पोर्ट्स क्लब के बीच होगा एक जबरदस्त मैच ग्रैंड हमद स्टेडियम में। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात।

0: होगी आपसे अगले हफ्ते इसी शो में, जिसका नाम होगा कतर 2026। और मजीद हम खूब सारे इवेंट्स और लाइव कॉन्सर्ट से लेकर कतर के फ्यूचर की हम यहीं पर बात करेंगे। दिल से देसी
1: कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी,
2: आप सुन रहे हैं एफएम 107,
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
3: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक नासियती बियदिक मादिन फी हुक्मुक अदलुन फी कदाउक। ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा हूँ, तेरी बांदी का बेटा हूँ। मेरी पेशानी तेरे काबू में है, मेरे मुतालिक तेरा हुक्म नाफिज होने वाला है, मेरे मुतालिक तेरा फैसला इंसाफ पर मबनी है। أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي। मैं तुझसे तेरे हर उस नाम के जरिया सवाल करता हूँ जो तूने खुद अपने रखे, उन्हें अपनी किताब में नाजिल किया, या वो नाम अपनी मखलूक में से किसी को सिखाए, या उन्हें आपने अपने पास इल्म

अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। यहां काबिले जिक्र बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ सच बोलने का हुक्म नहीं दिया बल्कि सच्चों के साथ रहने का हुक्म फरमाया। इससे मालूम होता है कि सिद्क का, सच्चाई का इंसानी ज़िंदगी में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत के बारे में फरमाया, क़ुरान करीम की ये आयत समाअत फरमाए, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुँचाओ, लिहाजा अमानतदारी बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का बुनियादी वस्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ही अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सादिकुल अमीन कहते थे, यानी सच्चे और अमानतदार। ये बहुत अहम नुक्ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत दी तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से इख्तिलाफ करने लगे, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी पर उंगली न उठा सके। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, और ये बहुत मशहूर वाक़िया है, बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है, हिरक्ल के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही देते हुए ये तस्लीम किया। जब हिरक्ल ने बहुत से सवालात किए, उसमें से ये भी सवाल था सच बोलने के ताल्लुक से, अमानतदारी के ताल्लुक से, तो उन्होंने गवाही देते हुए तस्लीम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लोगों से झूठ नहीं बोला, हालांकि अबू सुफियान अभी इस्लाम नहीं लाए थे। ये वाक़िया सही बुखारी मुस्लिम में है, जैसा कि जिक्र किया गया। यानी इस्लाम ने अपनी दावत का आगाज़ ही एक ऐसे वस्फ के ज़रिए किया जिसकी बुनियाद सिद्क और अमानत पर कायम थी। इसी तरीके से कुरान ने सिद्क को जन्नत का रास्ता करार दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क फइन्नस सिद्क यहदी इलल बिर व इन्नल बिर यहदी इलल जन्नत, सिद्क को लाजिम पकड़ो क्योंकि सिद्क नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ।

0: उसने बहुत तारीफ कर दिया, मतलब अच्छे काम की आदमी तारीफ करता है, तो वो खुशी किसी की देख के वो हमको भी मतलब आंख भर जाती, मतलब खुशी से मतलब मेरी
1: कि
0: चलो इसको मतलब इतनी इज्जत मिली, उसको इज्जत
1: जी। इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे शेख साहब से, जज़ाकुमुल्लाह।
0: हाँ
1: जी, दो सवाल था मेरा। आप प्रोग्राम आखिर तक सुने, इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह।
0: जी शुक्रिया।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामीन, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है और आखिरी कॉल हम अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: खैर इससे भाई जी, आपका नाम?
2: जी मोहम्मद जावेद।
1: जी
2: मोहम्मद जावेद।
1: जी जावेद भाई,
2: मौलाना साहब हमारा एक सवाल है, बहुत देर से बहुत दिनों से दिमाग में बात चल रहा है।
1: जी
2: अल्लाह का मेहरबानी माफ करे। एक मौत और जिंदगी अल्लाह ने बनाया है ना।
1: जी
2: तो अल्लाह ने जब से इंसान को पैदा किया तो उसका उलमा से सुनता है कि जिंदगी और मौत और उसका रिजल्ट उसका पानी अल्लाह ने सब लिख दिया।
1: जी
2: तो ये जब इंसान किसी के हाथ से मर जाता है, इंसान किसी को दूसरे को मरवाता है, कत्ल कर देता है, तो ये यहाँ पर इसकी जिंदगी लिखी हुई थी, खत्म हो गया है इसको, मतलब मेरा ध्यान में ऐसा ध्यान में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है।
1: अच्छा, यानी जब सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दी तो अगर कोई किसी के उससे यानी हाथ से मर जाता है कोई शख्स तो क्या?
2: जी जी जी,
1: ये उसकी तकदीर में लिखा हुआ
2: था, टाइम पूरा था, वो टाइम पे मर गया तो ऐसा उसका रिजल्ट खत्म हुआ था इस टाइम पर जब उसके हाथ से मर गया।
1: जी ये तकदीर का मसला है, यानी जो तकदीर हमारे ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने लिखी है, जैसा कि आपने कहा कि जब कोई शख्स पैदा होता है तो अल्लाह ताला मौत और ज़िंदगी, रिज़्क, पानी, सारी चीज़ें उसके लिए मुकद्दर फरमा देते हैं, तकदीर उसकी लिखी हुई है। तो ये तकदीर का मसला, इस पर हम इंशाल्लाह शेख साहब से मालूम करेंगे, ज़रूर करेंगे मालूम इंशाल्लाह।
2: जी जी,
1: ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अगर हमारी गुफ्तगू लंबी हो गई तो फिर अगले जुमा में इसका जवाब दिया जाएगा, वरना कोशिश यही रहेगी कि हम इसी में जवाब दे दें। ठीक है जावेद भाई,
2: ठीक है,
1: जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, सवालात का सिलसिला हम ख़त्म करते हैं और चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कलील है, सवालात हैं उनके जवाबात आप तक पहुंचाने ज़रूरी हैं। अगर शेख साहब इजाज़त दें तो फिर मैं सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू करता हूं।
3: जी ज़रूर।
1: शेख साहब, हमारे पास तकरीबन 8-9 सवालात हैं इस वक्त सामने।
3: जी
1: हम तरतीब से शुरू करते हैं और इंशाल्लाह जितने हमारे पास जो वक्त है उसमें हम इंशाल्लाह अगर सारे मुकम्मल हो गए तो हम मुकम्मल कर लेंगे, अच्छी बात है। अगर नहीं हुए तो जो सामीन हैं जिन्होंने सवालात मालूम किए हैं वो खफा ना हो, इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते ज़रूर उसके जवाबात देंगे। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो अब्दुल मन्नान भाई का आया है।
3: जी
1: अब्दुल मन्नान भाई के दो सवालात थे। एक तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि जैसे हम मस्जिद में गए, हमने नमाज़ अदा की, फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर ली जमात के साथ
3: जी।
1: फिर उसके बाद हम सुन्नत पढ़ने लगे और कोई शख्स आता है बाद में, उसकी फ़र्ज़ छूट गई होती है तो वो आता है हमें हाथ लगाकर अपनी फ़र्ज़ पढ़ लेता है हमारी इक्तिदा में, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? इसमें हमारे यहाँ तो बहुत होता है कतर में, दोहा में और मसाजिद में, तो दोनों जो मसलक हैं हनाफ के और उसके, दोनों को वजाहत से पेश कर दें। जज़ाकअल्लाह।
3: बहुत अच्छा, माशाल्लाह, ये सवाल बहुत अहम सवाल है और आम तौर से ये देखने को मिलता है। इसके ताल्लुक़ से इसमें कदर इख्तिलाफ़ और आइम्मा के नज़दीक इख्तलाफ है, लेकिन हर एक के पास अपने अपने दलाइल हैं।
1: बेशक
3: अहनाफ के नज़दीक तो मुतनफ़िल के पीछे फ़र्ज़ नमाज नहीं अदा की जाती है, लेकिन हमारे कतर का जो मसलक है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनके मसलक के मुताबिक नमाज हो जाती है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है, फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद जमात से, लेकिन सुन्नत पीछे पढ़ रहा था, किसी ने आकर के थपथपा करके उसके पीछे नियत बांध ली फ़र्ज़ की, तो वो अपनी नियत बांध ले, जो इमाम है जो सुन्नत पढ़ रहा है वो नॉर्मल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सुन्नत वो अदा करें। जो लोग उसके पीछे पढ़ रहे हैं उनकी नमाज भी इंशाल्लाह ادا ہو

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: कमजोर जिस्म लेकिन दिल में एक कशिश। फिर आया वो साल 1857, मई की गर्म दोपहर, अंग्रेज सिपाही आ पहुंचे दिल्ली के दरवाजों पर। बहादुर शाह जफर अब हिंदुस्तान के बादशाह बना दिए गए थे। गालिब ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। महीनों तक दिल्ली जलती रही। गालिब के दो भतीजे अब नहीं रहे, दोस्त या तो अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए या भाग गए। दिल ही तो है ना संग व खिश्त, दर्द से भराए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। अब गालिब के पास बस एक ही साथी था, उनका कलम। वो खत लिखते थे सैकड़ों खत उन दोस्तों को जो बच गए थे उन शहरों में जो अभी भी सांस ले रहे थे। भाई नवाब, वो लिखते हैं, कल बल्ली मारान से निकला वो मिठाई की दुकान याद है ना, जहां हम जलेबी खाते थे, वहां अब एक अंग्रेज की कोठी बन रही है। मेरे दोस्त, दूसरे खत में, तुम पूछते हो मैं क्यों नहीं लिखता, अब क्या लिखूं, जिस जुबान को मैं जानता था उसे सुनने वाले ही नहीं रहे, जिस दिल्ली के बारे में लिखूं वो दिल्ली ही नहीं रही। लेकिन फिर भी मिर्जा गालिब हर खत के आखिर में शायरी लिखना नहीं भूलते थे।
1: बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना।
2: साल 1869, फरवरी की एक सर्द शाम। गालिब अब बहुत कमजोर हो चुके हैं, बिस्तर से उठना मुश्किल है, आंखों की रोशनी कमजोर। पर आज कुछ खास है, आज उनके कमरे में 4-5 दोस्त जमा हैं। ये दिल्ली का शायद आखिरी मुशायरा है। कोई दिया नहीं जला, पर चांदनी छत के झरोके से आ रही है और उस धुंधली रोशनी में गालिब सुनाते हैं, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। सब खामोश, फिर कोई धीरे से कहता है, सुभान अल्लाह मिर्जा, सुभान अल्लाह। गालिब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जानते हो मैंने जिंदगी भर इश्क के बारे में लिखा, लेकिन आज समझ आया कि इश्क दरअसल क्या है। ये वो आग है जो दिल्ली के उजड़ने के बाद भी ना बुझी, जो मेरे बच्चों के गुजरने के बाद भी नहीं बुझी, जो अब मेरे मरने के बाद भी नहीं बुझेगी। 15 फरवरी 1869, गालिब का कलम आखिरी बार कागज से मिला। उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त, अब विदा का वक्त आ गया है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे शेर यहीं रहेंगे, दिल्ली की इन उजड़ी गलियों में, बनारस के उन घाटों पर, और हर उस दिल में जिसने कभी इश्क किया। याद रखना, मैंने तलवार नहीं उठाई, कलम उठाए, मैंने खून नहीं बहाया, स्याही बहाई, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी बगावत थी। उस रात गालिब सो गए और फिर कभी नहीं जागे। लेकिन कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। आज 150 साल बाद बल्ली मारान की उन गलियों में खड़े हों तो सुनाई देता है, हर किसी रिक्शे वाले के मोबाइल से, किसी छत से, किसी दुकान के रेडियो से गालिब के कलाम, उनकी गजलें, मानो गालिब की आवाज आज भी गूंज रही। गालिब ने दर्द, इश्क, हालात सब लिखे कागजों पर। सबसे गहरी बात को चंद अल्फाज में लिख देना मिर्जा गालिब का वो हुनर था जिसने आज भी उन्हें जिंदा रखा है। आखिर में वो कलाम जो गालिब की पूरी जिंदगी का निचोड़ है।
0: दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुंह में जबां रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमजा ओशवा वो अदा क्या है, शिकन जुल्फे अमरी क्यों है, निगाहे चश्म सुरमा सा क्या है, सब्ज़ गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है, हम कौन से वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है।
3: आप सुन रहे हैं महफिल-ए-शायरी सिर्फ FM 107 पर।

0: या कबीर?
1: सीम से शुरुआत की जाए, सीम करेंगे शुरुआत।
2: ठीक है, मैं ही शुरुआत कर लेती हूँ। तो बहुत ही फेमस शेर से मैं शुरुआत करना चाहूंगी मिर्जा गालिब के। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: तो कबीर, आपको ये से बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने खत्म किया है ये पे।
1: ये मुश्किल कर दिया आपने, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ याद आ रहा है, तो शुरू करते हैं। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता।
0: क्या बात।
1: तो जो मामला पहुंचा है वो महविश की तरफ है, और ये होता
0: होता आ, तो आ से है। आ को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आ को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक का।
2: बहुत खूब बहुत खूब।
1: क्या बात है। तो अभी जो है सीम की बारी है, और क्या है आखिरी
0: का?
2: थोड़ा सोच लेती हूँ का से। कुछ तो मजबूरी हालात ने कर दिया मजबूर, कुछ तो मजबूरी हालात ने कर दिया मजबूर, कुछ तेरे चाहने वालों ने समझ रखा है गुरूर।
0: ओए होए,
1: ये आपने जो फंसा दिया है आखिर में। चलिए कहाँ पहुँचा है मामला?
2: राह पर। तो आप राह से कोई शेर सुनाइए।
1: हाँ तो फिर राह से शुरू करते हैं।
0: इरशाद।
1: रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो मामला पहुंचा है ये पे पहुंचा है,
0: ये पे, ये एक दफा फिर। तो ये से एक बहुत ही मशहूर शेर है, मेरा ख्याल है हमने सबने ही तकरीबन कहीं ना कहीं अपनी गुफ्तगू में इसका इस्तेमाल किया है। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता।
2: बहुत
1: क्या बात है।
2: तो मुझे किस वर्ड से शुरू करना?
0: आ से।
2: आ से। आ थोड़ा सा टफ है मेरे लिए इस बार। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया है।
0: क्या बात है, खूब समझाया।
1: ये टफ बोल के जो है बोल जाती है।
0: हाँ।
1: समझाया है।
2: ये से बोलना है क्योंकि है जो है वो ये पे खत्म हो रहा है।
1: चलिए फिर आपको कुछ ऐसा सुना देते हैं इस पे जो बहुत खास है, और आपको सुन के मजा भी आएगा, आप सोचेंगे इसको दोबारा सुनना है मुझे।
0: सही।
1: तो ऐसा कुछ पढ़ देते
0: हैं।
1: याद उसकी बहुत खूबसूरत है, याद उसकी बहुत खूबसूरत है, वरना हम कहाँ इतने मजबूर होते।
0: ओए होए होए।
1: समझ रहे हैं आप गहराई?
0: सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। तो अब कहाँ से मेरा क्या है?
1: होते
0: होते। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ओए होए।
1: इसी शेर का इंतजार कर रहा था मैं, पर आपके हिस्से में आया है। आप ये लीजिए, आपकी बारी है सीम।
2: तो मुझे हे से बोलना
0: है? जी बिल्कुल, हे से।
2: ठीक है। हाल उसका तेरे चेहरे पे लिखा लगता है, हाल उसका तेरे चेहरे पे लिखा लगता है, वो चुपचाप खड़ा है तेरा क्या लगता है।
0: ओए होए होए।
1: बहुत
0: क्या बात है, क्या लगता है,
1: बहुत लोग रिलेट कर जाएंगे लोग।
2: तो अब आखिरी शेर कबीर की जुबानी, कबीर इरशाद फरमाइए।
1: क्लाइमेक्स मेरे हिस्से में भी आता है। चलिए तो एंड करना, तो कुछ बहुत ही खतरनाक एंड करना पड़ेगा, इससे लोगों को मजा भी आया और ये आई थी।
0: तो आज मिर्जा गालिब के नाम ये शाम थी, तो कुछ यादगार होना चाहिए।
1: बिल्कुल बेशक। है इख्तियार में तेरे तो मौजजा कर दे, है इख्तियार में तेरे तो मौजजा कर दे, वो शख्स मेरा नहीं है उसे मेरा कर दे। मतलब क्या था? इससे बढ़िया वो क्या?
0: जबरदस्त, मतलब ये तो एक दुआ भी हो गई, काश भी हो गया, दिल से निकल रहा था काफी।
2: कितनों ने रिलेट कर लिया होगा।
1: बहुत बहुत।
2: तो जिसने भी रिलेट किया है वो मैसेजेस जरूर भेजिएगा।
0: और मैसेजेस भेजने के लिए हमारा नंबर 666-22-107 है। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, अगला कौन सा शायर सुनना चाहते हैं, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सुनते रहिए FM 107 कतर, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
3: आज ही राबता करें
2: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
0: मैक्सिमम म्यूजिक मैक्सिमम फन
1: ऑन FM 107 दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 बजे से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम।

वेलकम वेलकम वेलकम, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता आपके साथ. एंड इस हफ्ते के टॉप 10 चार्टबस्टर शो में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है. तो कैसे हैं जनाब आप? आई एम वेरी सर्टेन कि आपका वीक बड़ा कमाल का गया होगा. और आज हमारे टॉप 10 जो हमारा शो एक लौता शो है जहां पर हिट हिट गाने आपकी राहों में आते हैं, ब्यूटीफुल काउंटडाउन और आपकी पसंद और धड़कनों को ये पर्टिकुलर शो समझता है क्योंकि हमने आपके व्हाट्सएप रिक्वेस्ट से लेकर वायरल रील से लेकर हर ट्रेंड को समझा और बहुत गौर से परखा. और उसके बाद आज के हमारे टॉप 10 काउंटडाउन की जो प्लेलिस्ट है वो हमने बनाई है. आज हम 2026 के उस म्यूजिक के दौर में है जहां हर एक सुर एक नई कहानी बयान करता है. चाहे आप ट्रैफिक में फंसे हो या घर पर सुकून से बैठे हो, कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज हमारे पास कुछ कमाल की न्यू एंट्रीज हैं और नंबर वन कुर्सी के लिए बहुत बड़ी जंग होने वाली है. यस, तो शुरू करते हैं हमारे टॉप 10 काउंटडाउन का सिलसिला. सबसे पहले आपको सुनाते हैं न्यू एंट्रीज.

0: Yes, तो कैसी लगी आपको ये न्यू एंट्रीज? पूरी पूरी सुनेंगे आज टॉप 10 पर, और किस नंबर पर ये गाने हैं ये भी आपको आगे पता चलेगा. बट अभी के लिए हम गाना नंबर 10 की तरफ मूव करने वाले हैं. सो गाना नंबर 10 मानू का है. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिंगर. और ये एक ऐसा सोलफुल पॉप ट्रैक है जो मोहब्बत और जज्बात को बड़ी खूबसूरती से समझाता है. सिंगर सॉन्ग राइटर मानू, जिन्हें हम रहमान अफसर के नाम से जानते हैं, उनका ये अंदाज बिल्कुल अलग है. मानू की खासियत ये है कि वो कमर्शियल म्यूजिक और अंडरग्राउंड एजी साउंड के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाकर रखते हैं, बिल्कुल एक सीजन्ड आर्टिस्ट की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, गाना नंबर 10 इंजॉय करते हैं, और आप कहीं ना जाएं, बने रहे हमारे साथ. वॉल्यूम सारे बढ़ा लो, क्योंकि हमारे FM 107 पर एक से बढ़कर एक हिट गाने आप इंजॉय करने वाले हैं आपके टॉप 10 काउंटडाउन शो पर. सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 10.

Yes, now welcome, welcome, welcome. Marhaba, marhaba. क्या कहने, कैसा लगा गाना नंबर 10 आपको? हाँ, I'm sure आपने जरूर enjoy किया हो.

सुन रहे हैं और इस हफ्ते में ये जो न्यू एंट्री थी ना मानू की वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है. चलिए आगे बढ़ते गाना नंबर 9 and 8 की तरफ. सो गाना नंबर 9 इज आयनम मी अमोर. यस, रितु रिबा एंड हंसिका पारिक का ग्रेट कॉम्बिनेशन है और इस गाने में ना एक बड़ी रोमांटिक सी वाइब है. आई शुड से जब इसे सुनते हो ना, सो एक रोमांटिक बैलेंस

पर रितो रीबा की बात करें सो ये फेमस हुए इंडियन आइडल शो से और उनकी जर्नी जब शुरू हुई तो ये पर्टिकुलर गाना ऐसा कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश को ट्रिब्यूट देते हुए जो कि उनका होम टाउन है उसे सोचकर इस गाने को बनाया गया है. वेल रितु रीबा एंड हंसिका पारिक कमाल के सिंगर्स हैं, उनकी आवाज बड़ी खूबसूरत लगी है और इस गाने को पर्टिकुलरली कंपोज किया है रितु रीबा ने और इसे अरेंज किया है टोंग्स किचू ने और लिखा है सहेल ने. तो इसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं. वी गोना एंजॉय दिस सॉन्ग और उसके बाद गाना नंबर 8 काफी नॉस्टैल्जिक शिफ्ट आपको देने वाला है क्योंकि ये गाना 90s का सुपर हिट गाना था जिसको रिक्रिएट किया गया है.

0: भाई देखो इस गाने की जो वाइब है ना, इट्स वेरी हाई बजटेड वाइब एंड मॉडर्न रीइमेजिंग है कि 90s का क्लासिक अब एक नए अंदाज में आपके सामने आ रहा है. फैक्ट ये है कि ये कोई रिमिक्स नहीं है, कुमार तुरानी ने इसे प्रोड्यूस किया है 35th एनिवर्सरी ट्रिब्यूट देने के लिए जो म्यूजिकल ब्रांड है टिप्स उसके एम्पायर के लिए. तो ये काफी कमाल की चीज है और खास बात ये है कि जब इस गाने को आप सुनते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है. इसे गाया है देव नेगी ने, कंपोज किया है नदीम श्रवण ने ओरिजिनली एंड लिरिक्स है रानी मलिक के एंड इसे एडिशनली कंपोज किया है चित्रांतन भट्ट ने और इसके एडिशनल लिरिक्स लिखे हैं साहिल फतेहपुरी ने. सो वी गोना एंजॉय द गाना नंबर 9 and 8. और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि हमारे FM 107 टॉप 10 काउंटडाउन शो पर कोई ऐसा ट्रेंडिंग सॉन्ग है जिसे लगता है कि आप वोट करना चाहेंगे, यू वांट कि वो हमारे शो का हिस्सा रहे, सो 666-22-107 पर आप हमें अपने नाम के साथ जरूर सजेस्ट करें. और अभी गाना नंबर 9 और 8 इंजॉय करें. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 9.

0: यस जनाब, मरहबा मरहबा, क्या हाल है। मतलब सच में ये FM 107 के हिट गाने सुनकर दिल बड़ा खुश होता है कि नहीं। सो टॉप 10 काउंटडाउन पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता, और अब आगे बढ़ने का टाइम फॉर द गाना नंबर 7 एंड गाना नंबर 6। सो गाना नंबर 7 आई शुड से कि काफी स्टेडी है अपनी जगह पर, एंड दिस इज द अर्बन किंग ऑफ पॉप का गाना, यानी कि हार्डी संधू का गाना स्टक ऑन यू।
1: कैसी सजा है आनी जू, तुझसे वफा है सुन ले तू, दिल दी सदा है स्टक ऑन यू, आई एम स्टक ऑन यू।
0: सच में एक इंटरनेशनल ग्रेड एफ्रो पॉप फ्यूजन लगता है ये गाना स्टक ऑन यू में, जहाँ पे हार्डी संधू को हम देखते हैं कि हाउ ही इज डिजायरिंग फॉर लव, और वो कहते हैं ना कि अपने जहन से वो उस प्यार को हटाना चाह

0: रहे हैं लेकिन वो हटा ही नहीं पा रहे. मतलब ये एक ब्लेसिंग है या एक पनिशमेंट है ये तो समझ नहीं आ रहा, बट ये समझ में आ रहा है कि जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसे भुलाना इतना आसान नहीं है. वेल, इस गाने को बेहद खूबसूरत अंदाज में हाडी संधू ने गाया है, इसे कंपोज किया है कुंवर मेहरा, रोहित पांडे, भरत और समत खान ने, और लिखा है कुंवर मेहता, रोहित पांडे, रोहित सिंह बाहू ने. तो ये कॉम्बिनेशन सारे आर्टिस्ट का इस गाने स्टक ऑन यू को और भी ज्यादा वाइब्रेंट बनाता है. और जैसे जैसे हम टॉप 10 काउंटडाउन की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हैं, सो गाना नंबर 6 की तरफ हम जाएंगे जो कि पिछले हफ्ते नंबर 7 पे था. थोड़ी तरक्की की इस गाने ने. द सॉन्ग इज कहो तो फ्रॉम द मूवी प्रेम कीटाणु. काफी मेलोडिक सॉन्ग है एंड प्रेम कीटाणु फिल्म का, जहां पर अरमान मलिक ने, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ओजी रोमांटिक रूट्स पर रिटर्न हुए हैं. स्पेशली जब अरमान के गाने सुनो तो हमें पता चलता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक बैले, है कि नहीं. और अरमान मलिक ने आफ्टर द सॉन्ग ये कमेंट किया कि कहो तो इज एन आउट एंड आउट बॉलीवुड रोमांटिक नंबर, और ये हमेशा उनको एक हैप्पी फीलिंग देता है. जब वो गा रहे थे तब भी उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था, और उनको ये लगा कि जब वो रोमांटिक गाने गाते हैं ना तो उनकी लाइफ एक लार्जर देन लाइफ फील होता है. सो दिस इज व्हाट ही रोट. एंड ये भी उन्होंने मेंशन किया कि अंकुर आर पाठक के साथ उनका पहला ये कोलैबोरेशन है, दैट ही इज अ ग्रेट ग्रेट कंपोजर. और बोलते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस ब्यूटीफुल गाने को म्यूजिकली ब्लेंड किया है, सच में दिल को छूने वाला है. सो यस, इस गाने को कंपोज किया अंकुर आर पाठक ने, लिखा है सचिन, उर्मितोष ने गाया है अरमान मलिक, और कव्वाली वाला जो पार्ट है उसे गाया है अल्तमाश फरीदी ने. So it's a beautiful track. Gaana number 7 and 6 aapki raahon mein aane wala hai. So enjoy it to the fullest and bane rahiye FM 107 par dil se desi.
1: FM 107 top 10.

जनाब कहें तो आगे बढ़े और भी हिटेड गाने आपके लिए प्ले करें. वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमित एंड आई एम वेरी सर्टेन टॉप 10 लिस्ट के हर एक गाने आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे. इनफैक्ट आप ये भी चूज कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा गाना है जो मेरी प्लेलिस्ट पर टॉप करेगा, है कि नहीं. वेल अभी हम गाना नंबर 5 और 4 की तरफ रुख करने वाले हैं. तो गाना नंबर 5 पर कौन सा वो गाना है जो हर किसी के दिल को छूते जा रहा है, और ये हमारे म्यूजिकल चार्ट्स पर पिछले हफ्ते भी था और अब आगे बढ़ते

Yes, बरसात लग दी है and I should tell you कि दर्शन रावल का it's like a tradition कि वो हर मॉनसून सीजन में क्योंकि इंडिया में मॉनसून बहुत ही बड़ी वाइब होता है तो हर मॉनसून सीजन में ये एक स्पेशल सॉन्ग निकालते ही निकालते हैं एंड दिस इज नंबर 12th यानी कि 12वां गाना है उनके मॉनसून स्पेशल ट्रैक्स का सो है ना कमाल की बात सो बरसात लग दी है बहुत ही खूबसूरत गाना है एंड यू नो इसकी खासियत जब हम इसका वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि वाह यार मतलब क्या कमाल का शूट है क्या ये चीज है लेकिन इनकी एंटायर प्रोडक्शन टीम ने पहले प्लानिंग की कि भाई देखो ये वीडियो ऐसा बनना चाहिए बट जैसे ही इस वीडियो को शूट करने की बात आई सडनली सबने प्लान चेंज कर दिया इस पर्टिकुलर वीडियो को 5 घंटे पहले शूट करने से ठीक है एंड देन वो कैफे का सीन और बाकी सारी चीजें एकदम से उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया और इसे शूट कर डाला कभी कभी कहते हैं ना कि आर्टिस्ट कुछ इसी तरह के थॉट्स के होते हैं कि यू नो पहले वो कुछ प्लान करते हैं और सडनली अगर उन्हें कुछ चीज क्लिक कर जाए तो सब कुछ

है कि जो म्यूजिक डायरेक्टर है ना मिथुन, इन्होंने वो जो ओरिजिनल सूफी रॉक एलिमेंट है फ्रॉम द मूवी कल्ट क्लासिक आई शुड से आवारापन, उसमें से खींच कर इस पर्टिकुलर सॉन्ग में डाल दिया है. और जैसे जैसे हम इस गाने को आगे सुनते हैं, धीरे धीरे ये गाना हमारे दिल में, हमारे कानों के जरिए ना घर करते जा रहा है. पर इस गाने को कंपोज किया, अरेंज किया है मिथुन ने डेफिनेटली, और लिखा है सैयद कादरी ने और गाया है सुबोध शर्मा ने. सुबोध द सॉन्ग्स गाना

0: दोस्तों, फायरवर्क्स या फायर क्रैकर्स को लाइसेंस के बगैर यूज करना या अपनी कस्टडी में रखना कानूनन मना है, और ये एक जुर्म है जो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ लॉ नंबर 7 ऑफ 2020 ऑन फायरवर्क्स के तहत पनिशेबल है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स फायरवर्क्स को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना हत्ता के जेल तक की सजा लग सकती है। आपकी अवेयरनेस और कानून की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बेहद अहम है। फायरवर्क्स जाहिरी तौर पर फन लगते हैं, लेकिन बिना कंट्रोल के वो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस लेना लाजमी है। वजारत दाखिला का कहना है कि कानून का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी,
3: FM 107 Top 10 Number 5।

हाँ जनाब, वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता एंड डेफिनेटली टॉप 10 पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. एंड आई कैन सी द मैसेजेस कि आप सबके जो सजेशंस आ रहे हैं कि अमिता देखो ये वाला गाना हिट है, ये वायरल सॉन्ग आपकी प्लेलिस्ट में होना चाहिए. बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम ये सारी चीजों को स्टडी करेंगे, आपके सारे सजेशंस को काउंट करेंगे एंड देन टॉप 10 की लिस्ट का हर एक गाना आपके सामने पेश किया जाएगा. फिलहाल आगे अब टॉप 10 काउंटडाउन में बढ़ने का वक्त आ चुका है. गाना नंबर 3 और 2 की तरफ हम बढ़ेंगे. गाना नंबर 3 इज द सॉन्ग जो कि पिछले हफ्ते नंबर 2 की पोजीशन पे था, यानी कि ये एक सीढ़ी नीचे आया है एंड द सॉन्ग

0: Well, it's a party banger song and इस गाने को globally charts पर 6 different languages में release किया गया है, जिसमें English, Hindi, Kannada, Telugu, Tamil and Malayalam भी है. Wow! Well, इस गाने को गाया, compose किया विशाल मिश्रा ने और लिखा है राज शेखर ने. सच में इस गाने को सुनो तो ऐसा लगता है कि volume high ही होना चाहिए, क्योंकि तभी वो feel, वो महसूस हो पाता है. उसके बाद this is the song जो एक-एक spot बढ़ते जा रहा है. पिछले हफ्ते number 3 की position पे था, हफ्ते नंबर 2 पर है एंड द सॉन्ग इज वाओ. बिल्कुल वो स्पिरिचुअल वाइब है इस गाने में. हाँ, 2007 की एंथम जो हमने सुनी थी आवारापन के ओरिजिनल में, एंड नाउ इट्स ये आवारापन. इसे कंपोज किया है अमाल मलिक ने, गाया है अरिजीत सिंह ने, लिखा है रश्मि विराग ने, एंड द सॉन्ग इज रियली अ सोलफुल सॉन्ग. मतलब बहुत सारे मोहब्बत के इमोशंस, वो फीलिंग्स, सब कुछ अपने साथ लेकर आता है. है कि नहीं? तो चलिए इस गाने को बखूबी इंजॉय करते हैं. गाना नंबर 3 और 2 की बारी, और उसके बाद गाना नंबर 1 इस हफ्ते का कौन सा हो सकता है? गाइस कम ऑन, आप गेस कर सकते हैं. आप हमें मैसेज करें 6622107 पर, 6622107, एंड गेस द फर्स्ट सॉन्ग. कौन सा गाना आज हमारे टॉप 10 के चार्ट्स को लीड करेगा? तब तक के लिए कहीं ना जाए, बने रहे एफएम 107 पर दिल से देसी.
1: एफएम 107 टॉप 10 नंबर 3.

मैं हूं आपकी एफ और अमीता और हमारा ये स्पेशल शो जो कि हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं टॉप 10। वेल आज टॉप 10 काउंटडाउन में कौन सा वो गाना है जो हर किसी की प्लेलिस्ट का लीडिंग एंथम बना हुआ है? Any guesses? हाँ, well, I could see हमारे लिसनर्स ने गेस किया और बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर गाने का नाम हमें लिख के दिया है और कुछ ने हमें लिख के दिया है इसी फिल्म का दूसरा गाना. ओके, सो व्हाट आर दोस सॉन्ग? सबसे पहला है माशू का एंड दूसरा है जब तलक. तो कौन सा गाना हो सकता है जो नंबर 1 पर होगा?

0: Oh yes, this is vibrant Gen Z party anthem. And I should say, इस गाने में वो कहते हैं ना कि कई सारी चीजों का मिश्रण है, कई सारे styles को mix किया गया है, जैसे कि modern Latin style, grooves, piano structures and operatic high notes. So yes, Mashuka is the song जो top 10 का number 1 गाना है. सच में काफी stunning है, काफी glossy इसके visuals हैं. An entire sequence, मतलब location भी कमाल की है. It's a Sicily, Italy, जहाँ पर कृति सैनन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है. Well, इस गाने में और भी एक्टर्स हैं, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ कृति सैनन पर टिकी हुई है. So yes, summer holiday vibe वाला ये गाना, जो कि गाना number 1 बन के आपकी राहों में आने वाला है. इसे कंपोज किया है प्रीतम ने, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और गाया है महमूद राघव चैतन्य रुआ के ने. So Mashuka as गाना number 1 थोड़ी देर में आप इंजॉय करेंगे. और अभी के लिए क्या करना है जनाब, आपको मुझे देनी होगी इजाजत, क्योंकि अब टॉप 10 का आखिरी पड़ाव आ चुका है और मेरा जाने का वक्त भी. अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस टॉप 10 चार्ट्स पर कौन से वो हिट गाने होंगे जो हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा बनेंगे, वो जानने के लिए आप हमें सुनना ना भूलें. और अभी फुल वॉल्यूम पर गानों को एंजॉय करें और जब भी आपको मौका मिले एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और अपनी आरजमीता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. तो क्या करना है, एंजॉय द सॉन्ग, अपना खूब सारा ख्याल रखें और जाते जाते ये कहना तो बनता है, हम हिराहि प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून टू एफएम 107, दिल से देसी.
1: एफएम 107 टॉप 10 नंबर 1.

0: भी प्रोफेशनली भी और फाइनेंशियली भी.
1: ओके.
0: ठीक है, क्योंकि मुझे बैक टू बैक मतलब कंपनी की हिस्ट्री में विद इन अ ईयर दो प्रमोशन किसी को नहीं मिले अभी तक एक्सपेक्ट्रेट में से.
1: अरे वाह,
0: मुझे बैक टू बैक दो प्रमोशन मिले विद इन विद इन 4 मंथ के गैप.
1: क्या बात है यार.
0: ठीक है, बेसिकली कहना चाहिए कि थैंक्स टू दिस वॉर सिचुएशन, उसमें हमें खुल के काम करने का मौका मिला. तो कितने लोगों ने पास होकर मुझे बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि मैं हूँ सेफ्टी से रिलेटेड, हूँ सेफ्टी प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल एज एंड सेफ्टी से मैं काम भी किया. मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि रमजानों के अंदर सहरी भी बाहर करी है तो अफ्तारी भी बाहर करी है, रोड पे खड़े हो गए लिटरली, ये सिचुएशन थी.
1: अच्छा. तो, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, क्योंकि अभी ये प्रमोशन वाला सीन में चल रहा है और आप एक बाप होने के नाते भी एक जिम्मेदारी आपके सर पर है, आप इतने लाइट रहते हैं लाइफ में, जो कि बड़ी अच्छी बात है. आई हैव सीन दैट. तो ये घर पे ऐसा होता है कि भाभी कहती है, हमारी बहन कहती है कि यार अब तो मतलब थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि हर किसी को सुनने को मिलता है अब भाई क्या है इतना थोड़ा तो सीरियस हो अपनी लाइफ में. क्या सीन रहता है घर पे?
0: आज ही हुई है एक बात, तो वो बेगम से मैं कुछ कह रहा था, बेगम का था कि भाई आप ये वाली ना लें जो हम गाड़ी अभी लिए, ये नहीं ले हम किसी छोटी में भी कर लेंगे, मैनेज ना हो जाएगा. तो वो मैं ऐसे कह रहा, मैंने कहा तुम्हें खुशी नहीं हुई तो मैं वो ना वो वाले मुझे वो एक्सप्रेशन जो मिलने चाहिए थे ना वो नहीं मिले. कह ले यार अल्लाह को मानो 11 साल हो गए शादी को, अभी भी अगर मैं एक्सप्लेनेशन दू ना कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ तो रहने दो. और आपने जो करना ना, आप नॉन सीरियस इंसान है, आप जो करना कर लेते हैं बस छोड़ दे. क्योंकि अभी बीच में भी वो पाकिस्तान गए हुए थे ये लोग, तो मैंने कुछ खर्चे वर्चे, मैंने कहा यार भाई अल्लाह को मानो यार, तुम तो हर दूसरे दिन कह रही हो यार ये लेना है वो लेना है, तो ये बैकफुट पे आ गई कि नहीं यार थोड़ा खर्चा ज्यादा हो रहा है कम कर लेती हूँ. मैंने अगले दिन ट्रांसफर मार दिए. फिर वो पाकिस्तान में आने के बाद कहती है कि एक बात सच से बताएं, ये जो है वो कोई पैसिव इनकम वगैरह या अपनी सैलरी कम तो नहीं बताई थी मुझे? पैसे मार रहे हो, दे रहे हो और सुना भी रहे हो और इधर बोल रही हो तो पैसे तो ये जो मार रही उससे ज्यादा दे रहा, मुझे क्या चक्कर है भाई? मैं कह रहा आम खाओ तुम गुटली और क्या कह रहा, नहीं भाई ये गुटली हजम नहीं हो रही ना मुझे, ये भुगतना मैंने मालूम.
1: अरे वाह क्या बात है, क्या बात है शिरा. तो ये चूंकि एक सीखने वाली बात भी, और हर किसी का जो घर का समय होता है बड़ा चेंज होता है, तो ये जो सैलरी की बात आती है तो ऑफकोर्स ये डिस्क्लोज कोई नहीं करता, बट द थिंग इज के घर पे शेयरिंग चलती है ना, कि मैं ये देख लेता हूँ तो वो देख लो, या फिर मैं पूरा देख लेता हूँ तो एंड में बीच में देख लेना. तो आपका क्या सिनेरियो रहता है, लाइक हाउ इज द डिविजन बिटवीन यू?
0: सर मैं आपको बताऊँ ना भाईजान, तो मैंने अपनी बेगम को सैलरी डिस्क्लोज की भी है.
1: अच्छा, वेरी गुड.
0: ठीक है, मेरी वाइफ को पता है मेरी सैलरी जितनी भी है. ठीक है, और दूसरी बात कि पहले पाकिस्तान में थी तो ये लेक्चरर थी, कैंकर लेक्चरर थी, तो हमारा बड़ा विदाउट लोड चलते थी कहानी ना. अब ये कि वो यहाँ पर आगे, यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रही है, कोई शेयरिंग वाला सेटअप है नहीं. मतलब शेयरिंग वाला सेटअप समझो कि ये घर ये देखती है और आउटडोर मैं देखता हूँ, तो वो
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: बड़ा बेहतरीन चल रहा
1: है शुक्र अल्लाह का. अल्हम्दुलिल्लाह. तो तला भाई, क्योंकि हमने पिछली बार मजाक में भी बहुत सारी बातें करी हैं इस बात को लेके, और एक मैरिज एडवाइस होती है, लोग कहते हैं कि यार मतलब शादी का हो जाएगा, शादी कर लो एक बार फिर देखना तुम्हारी कैसे आफत आएगी, ये सब बोलते हैं. आपका ये कुछ चेंज हुआ इस पे, आपको इस पे रोशनी डालना चाहेंगे, डू यू स्टिल बिलीव कि ऐसा हो जाता है कि आदमी बन जाता है, कैसा लड्डू है शादी का, आप ही लोगों को बता दें एक्सपीरियंस.
0: यार ये लोग नॉन सीरियस लोग बातें करते हैं यार, मेरे से बात नहीं करो ये वाली, तो मैं नॉन सीरियस आदमी नहीं हूं.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: मैं जय संजीदा का आदमी हूं. और यार देखो बात बताओ क्या भाई, एक तो अगर लाइकन हो जाओ सीरियस होकर बात करो ना, शादी ऐसी चीज है अगर आप अल्लाह ताला आपकी जोड़े बनाए और आपकी कंपैटिबिलिटी बन गई ना, अगर माइंड सेट आपकी केमिस्ट्री मैच हो गई ना, तो बाकी बेहतरीन जिंदगी आप शादी से पहले की जिंदगी भूल जाओगे, दोस्तों के गुजारी वाली जिंदगी नहीं भूलोगे, अदरवाइज नॉर्मल जिंदगी जो है ना वो भूल जाओगे दोस्तों के अलावा वाला. और अगर बेगम कभी तुम्हारी ऐसी मिली मुझे, अल्लाह ना करे तुम पप्पो वाली बेगम, तो बाबा जिंदगी अजीरन है, बंदा रोज खुद खुशी करे, रोज रोज नफस काटेगा अपनी नफस.
1: अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट. बड़े संजीदगी के साथ आपने बहुत मतलब मजाकिया तौर पे आपने संजीदगी बात की थी, ये बहुत बड़ी बात है. और तला भाई, क्योंकि आपने इस बारे में छेड़ी दिया है टॉपिक, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं यार शादी से पहले हम ये क्या करते, अब तो नहीं हो पाता है, तो कितने ऐसे कर्म हैं जो आपके खत्म हो चुके हैं बाहर निकलने से लेकर, बाहर तफरियां मारने से लेकर, क्या चेंज आया है आप में?
0: यार

0: वाली कहानी।
1: पर जो बेचारे लेट हो गए हैं 6 महीने के आगे उनकी बात चल चुकी है, उनका क्या करें, उनको क्या कहेंगे आप?
0: बस वो वेट करें अपने नाम के आगे लेट लगने का।
1: अच्छा ठीक है,
0: अब तो गुंजाइश निकल गई ना भाई।
1: ओके ओके ठीक है, ये भी सही।
0: तो सोचे बेहतरी की तो उम्मीद ना रखे ना, नहीं रखे बेहतरी की उम्मीद, क्योंकि जब उनका स्कोप था तो उन्होंने उसको अपने डार्क नाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब वो डार्क नाइट तो हयात किए ना भाई।
1: ये भी सही है, ये भी सही है। और तला भाई, क्योंकि हम इंडियंस और पाकिस्तानी हमारे ही रहता है कि हम कहीं ना कहीं बाहर जाके ही सेटल होने का सोचते रहते हैं। कई मरतबा ये होता है कि ख्याल आता है कि चलो यार, मेरे मुल्क में मेरी जगह है, बड़ी खास है, हमारी ज़मीनें हैं, कुछ भी है, आई वॉन्ट टू जस्ट गो बैक एंड लिव। आपको क्या कंडीशन पर आप पाकिस्तान वापस जाके रहना चाहेंगे, अपार्ट फ्रॉम द मनी फैक्टर? वो तो ऑब्वियसली होगा ही, पर और कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको रोकता है वापस जाके रहने के लिए?
0: यार हकीकत बोलो ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता वापस जाने का।
1: अच्छा,
0: और अल्लाह ना मुझे वापस जाना पड़े किसी भी लाइफ के स्टेज में।
1: ओके,
0: मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि बात ये है कि वो वालदा का बड़ी यंग एज में, 9th में था तब इंतकाल हो गया था, और वालिद का 2021 में इंतकाल हो गया, बच्चा एक भाई, वो ऑन एंड ऑफ मेरा जाना हो जाता है कभी तो, और या फिर उसका आना हो जाता है तो देख लेते मिल लेते हैं, तो ऐसे ना अट्रैक्शन नहीं रही है। और अब जो पाकिस्तान जाने का जो था ना, कि जैसे पहले मैं बैक टू बैक भागता फिरता था, हर 2 महीने बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ मैं, हर 2 वीकेंड्स तक मैं पाकिस्तान गया और होके आ गया। तो अब जो है ना, मेरा दिल नहीं चाहता पाकिस्तान जाने का, तो कोई मेरे पास कंडीशन नहीं है पाकिस्तान जाऊँ किसी भी सूरत में।
1: अच्छा, किसी भी सूरत में, इवन इफ यू आर पेड वेल इनफ, जब भी नहीं?
0: यार मैं ना देखो, मैं अपने दोस्तों घर पे बोलता हूँ, ससुराल में, अब हम हो गए फार्मी, हमें कराची वाले सही है, कराची और मुंबई सेम है भाई, ठीक है ना, लेकिन वो अब हम हो गए फार्मी, माइंडसेट जो है ना एक्सेप्ट नहीं करता ना वो वर्क एनवायरमेंट को, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है।
1: That is for sure. पर तला भाई, कोई ऐसा मुल्क है जो आपके जहन में रहता है कि यार कभी अगर मुझे मौका मिला मूव करने का, जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हुआ तो मैं यहाँ पे भग लूंगा, ऐसा कुछ है?
0: यार एम्स्टर्डम में आना है।
1: ये बॉय। अच्छा ठीक है। तो तला भाई, ये प्लान का एग्जीक्यूशन कब होने वाला है इसका, कि ये सपना ही बन के रह जाएगा?
0: यार ये प्लान हुआ है, वैसे एग्जीक्यूट हो चुका है, 3 दोस्तों का हो चुका है, टोटल हम 9 बंदे हैं, तो 3 बंदे हम जाके होके आ चुके हैं एम्स्टर्डम, कम्बाइन हॉस्टल में भी रहे हैं और रूम शेयर भी करे हैं हमने 3 के अलावा भी और थे, तो हम कर चुके हैं थोड़ा सा, हम फोन चक के आ चुके हैं, लेकिन अभी जो है ना धूप बाकी है दोस्तों के साथ।
1: अच्छा,
0: वो करना है इंशा।
1: ओके, अब तला भाई, एक इंटेलेक्चुअल सवाल है मेरे मन में आपके लिए, वो ये है कि मैं अभी एक रेडिट पे पोस्ट देख रहा था, उसमें ये था कि क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऐसा हो चुका है कि एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ, ठीक है, लोग तो अभी कैश का इस्तेमाल करना ही बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट ऑफ हो चुका है। यहाँ पर मैंने कतर में देखा है कि बहुत सारे जो हमारे कैब वाले भाई हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई मुझे यार कैश ही दे दो, अगर कैश हो तो आपके पास। आपका क्या ओपिनियन है कि इम्पोर्टेंट है कि यह सब कुछ डिजिटल हो जाना ही ठीक है, क्या इस पर क्या कहते हैं आप?
0: यार देखो, वही वाली बात है ना कबीर, ये देखो डिजिटलाइज तो अच्छी बात है, ठीक है ना, आप एक कैशलेस हो रहे हो, ठीक है पाकिस्तान, लेकिन भाई आप उसके बाद आप जो है डिजिटल चोरी, जो स्कैम्स है, जो डिजिटल क्राइम है, साइबर क्राइम है, उसमें बड़ा इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा, आप फिजिकल चोरी जो है ना वो पकड़ी जाती है फिजिकली, हम चूंकि हम बचपन से भुगतते आ रहे हैं, हमारे बड़े भी भुगतते आ रहे हैं फिजिकली रॉबरी और ये, मतलब कोई भी क्राइम है, कोई भी चीज है, लेकिन डिजिटली जो क्राइम हो रहा है वो तुम और मैं जो हम नए उसके लिए हमें पता ही नहीं है, पहले तो हमें अवेयर करो ना भाई, अगर आप हमें डिजिटलाइज कर रहे हो ना, हमें पहले अवेयरनेस दो, इन केस ऑफ दिस अगर आपका कोई स्कैम हो जाता है, कोई चीज हो जाता है, कोई वॉलेट खाली हो जाता है, आपको ये करना है, हमें पता ही नहीं होता। अभी 50 बंदे उठा के देखो तुम, 40 में तो उनका ये होगा कि हमारे हमें कॉल आई या मैसेज आया, कुछ भी आया, OTP दिया, हालांकि आप अवेयरनेस दे रहे हो, उसके बावजूद वो इनफ नहीं है कि आप अवेयरनेस पब्लिकली ग्लोबली दो इसको ना, तो लोगों में जो है ना, अच्छा और लालच बहुत है हमें,
1: डेफिनेटली
0: जो लालची जो लालची मेढक होता है ना हमारे पास, वो जो है ना वो बेचारा जो है ना अपना पूरा पूरा खाली करके बैठे ना, उसमें हमारी भुप्पो भी इंक्लूड है।
1: ये सारी जो बातें हैं जरा अभी होल्ड करके रखिएगा, बिकॉज वी नीड टू टेक अ ब्रेक।
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी।

0: ये हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
1: दोहा वाले कबीर के साथ।
2: एरा बहुत डिफरेंट है, तो इसमें एक और चीज आती है, वो है ये फ्रीबीज को लेकर। मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छड़ा, वो कतर यूनिवर्सिटी में है। उन्होंने बताया कि भाई आजकल जो है देखा जाता है कि फ्रीबीज नहीं मिलती। पहले होता था ना, ये एक आपने साबुन खरीदा, एक ब्रश फ्री आ गया, और ये खरीदा फलाना फ्री आ गया। आपने भी इसको डिक्लाइन होते हुए देखा है? क्योंकि ये मैं पर्सनली बहुत मिस करता हूँ ऐसी चीजें। आपको क्या लगता है इस बारे में?
3: पार्टी हमारे दौर में भी और अभी भी नथिंग इज फ्री, वही पता है। कुछ भी फ्री नहीं मिला हमें, तब भी फ्री नहीं मिला, हमें आज भी फ्री नहीं मिलेगा।
2: हाँ, पर कहीं
3: ना कहीं उसको पे कर रहे
2: हैं।
3: हमें जो खुश करने के लिए ना वो दिख दिया जाता था कि बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, या फिर आप जो है ना 20% एक्स्ट्रा, ठीक है ना, वो वाली चीज आ जाती थी। आप जो है ना, देखो यार, बात दीदी थी ना, जो जितना सोशलाइज हो गए और सोशलाइज हो गए, लोगों को अवेयरनेस मिल गई है, पब्लिक बड़ी अवेयर हो गई है, उसी एंग पे जो है ना अगर बात करो ना, तो लोगों अंदाजा हो गया भाई नथिंग इज फ्री ना हो गए। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मत के अंदर ना दे रहे हो, और कोई की तरह फ्री मिल रही है ना पार्टी आपको, तो दूर दूर तक रहो, उसके करीब नहीं जाओ, वो आपको सब लेके मरेगी, बता।
2: ओके, ठीक है। और यहाँ पे उस दिन मैं सुबह में आई थिंक बात भी कर रहा था इस बारे में, कतर में सर्वाइवल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत डिफरेंट है। कुछ लोग, दो तरीके के लोग मिलते हैं, एक कहते हैं कि भाई आप जितने ताल्लुकात बनाएंगे, इतने आपके वास्ते होंगे, उतना बेहतर है। और दूसरी जनता, कहीं ना कहीं मैं अग्री करता हूँ, लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स नाउ, कि अगर आप अपने तरीके से चीजें कर लेंगे ना, तो हो जाती है एंड ऑफ द डे, क्योंकि वास्तव में क्या होता है, बहुत ऑब्लिगेशन आ जाती है। आप किस तरफ आते हैं, आपका क्या सीन है इसमें?
3: देखो भाई, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं यहाँ पे दुनिया में ना, कतर में भी। तो देखो, हर किसी से आप ताल्लुक नहीं बना, ठीक है ना, सामने वाले की भी तो रजामंदी चाहिए ना, वो आपसे ताल्लुक बनाना चाह रहे नहीं चाह रहा, या आप चिपक चल रहे हो बिला वजह, सही है ना। और कतर में मैंने देखा है कि बंदा अपने काम से काम रख रहा है, मैंने बात से देखा, जो फारिग है ना, या जिसका काम कम है या जिसका काम नहीं है, वो आपके ताल्लुक की तरफ आएगा, ठीक है। तो लिमिटेड सोशलाइजेशन होनी चाहिए, सोशलाइजेशन हो लेकिन लिमिटेड हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, ठीक है ना। आप ऐसा भी नहीं कि आप करवट लेके उठे और आप फिर मैं तो दुनिया में खेला रह गया, अभी कौन है यहाँ पे, लास्ट मैन तो तरवाई वाली का किचन नहीं रहो। लेकिन इतना भी नहीं है कीड़ी पापा कान में चलता रहे, हॉर्न पे हॉर्न चल रहे कान में ना, वो वाली कंडीशन में रहो, न्यूट्रल एंड बैलेंस रहे। स्पेशली शादीशुदा लोग, भाई जाने नहीं देगी भाई रोज रोज।
2: अच्छा, ये भी सही है। एंड क्योंकि हम इंडियन पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी सीरियल्स इतने ज़्यादा मशहूर हैं इंडिया में, लोग मतलब भाई साहब इंतजार करते हैं। अब तो सब कुछ इंटरनेट पे आ चुका है। आपका कोई पसंदीदा शो, डू यू वॉच एनीथिंग एट ऑल, जो आपके पाकिस्तान में इतना बढ़िया प्रोड्यूस हो रहा है?
3: यार मैं ड्रामे नहीं देखता भाई, मैं ड्रामे नहीं देखता, तुर्किश ड्रामे एक तो देखे मैंने, अदरवाइज मैं ड्रामे नहीं देखता बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक हूँ मैं। हाँ, मूवी लवर हूँ, तुम्हें पता है मैं मूवी लवर हूँ, सीरीज वगैरह ये वो ओटीटी वगैरह पे, लेकिन मैं ड्रामे श्रामे नहीं देखता भाई।
2: अच्छा, तो हमारी बहन देखती है घर पे, वो भी नहीं देखती?
3: यार देख लेती है, बच्चों का मिल जाता तो कभी कभार देख लेती, वो भी ऐसा टीवी की इतनी ज्यादा शौकीन नहीं है, टीवी अगर चलता तो मैं मेरी वजह से चलता है, या बच्चे का बच्चे देख लेते हैं देख लेता, अदरवाइज तो बेगम जो है ना वो अगर देखती भी तो वो मोबाइल पे देखती है रात को ना, वो अगर वो थोड़ा।
2: और वैसे तरह भाई, आप अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ आपको लगे कि भाई कोई और प्रोफेशन भी ट्राई करना चाहिए, कोई है ऐसा प्रोफेशन जो आपको बड़ा कूल लगता है, आप कुछ करना चाहेंगे कुछ अलग?
3: यार मैंने जो है ना, मुझे जो है ना समझो कि वो एक फैक्ट्री का ना, फैक्ट्री का ना बनना था।
2: अच्छा,
3: मतलब मेरे एक था कि ना भाई ना बिजनेस, बिजनेसमैन का टाइप, लेकिन मैं मेरे खून में नहीं है बिजनेस ना, कि मैं कर तो दूं। हाँ मतलब वो हकीकत है कसम से, मतलब भाई एक रात को मोटिवेट होकर सोता हूँ ना यार, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, सुबह तक जो है ना वो मैं पता नहीं फरिश्ते क्या करते हैं, फॉर्मेट मार देते दिमाग, तो कुछ कुछ रहता ही नहीं, सुबह तक कोई रूटीन नहीं लगती, चल रही होती है, फिर रात सोते सोते यार कल तो मैंने सोचा था करा क्यों नहीं, अच्छा चलो कल करूँगा, फिर फरिश्ते आ जाते, तुझसे ना होगा तू ना कर पाएगा, तुम पे ना होगा वाली बात हो जाती है।
2: पर बिजनेस किस चीज का डालना चाहते हो, क्या बिजनेस करने का जहन में आता है, ये ख्याली पुलाव किस चीज का बनता है?
3: यार मैंने कोई ना कोई फैक्ट्री करनी है, मतलब कॉटन इंडस्ट्री हो गई, या फिर किसी ने की कोई स्पेयर पार्ट हो, कोई ऐसा आइटम जो यूनिक हो, मतलब है नहीं अभी, मतलब मैं अपना यार मैं अपना बिजनेस प्लान शेयर नहीं करूंगा तो फैक्ट्री के लिए, पागल हो गया क्या?
2: ओके, तो मैं ये बात बोलो। अच्छा, कमिंग ऑन दिस टॉपिक, तला भाई यहाँ पर मैं लिस्ट अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप बताइए कतर में आपके सबसे कौन सा बिजनेस सबसे

0: ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, आपको लगता है कि यार ये बिजनेस आसान भी है, लोग कर भी पा रहे हैं, आपके जहन में क्या है एज अ कॉमन मैन?
1: यार बिजनेस तो भाई मेरे कोई भी आसान नहीं है, जो स्टार्ट करो ना उससे पूछो कि वो
0: नहीं, यहाँ चूल्हों पे बैठ, यहाँ बढ़ता हुआ बिजनेस कौन सा दिखते हैं सबसे ज्यादा?
1: यार क्या वो कैफेटेरिया, कॉफी शॉप हो गई या कैफेटेरिया हो गया, वो बड़ा रनिंग है यार। मीन्स के आप थोड़े से एम्बियंस थोड़ा अच्छे एरिया में ले लो, एम्बियंस वाइज अच्छा कर लो, आप इतना ज्यादा एक्सपेंसिव ना करो, इतना ज्यादा लोकलाइज ना करो उसको ना, ठीक है। और दूसरा तुम्हें ये पता है सोशल मीडिया, आप इन्फ्लुएंसर के थ्रू जो है ना उसकी प्रमोशन कर सको, आप उसमें जो ना वो क्या कहते हैं कड़ी को भी इंग्लिश नाम दे के बेचोगे ना, वो भी बोलो वो माय गॉड व्हाट अ येलो सूप, तो वो वाली कहानी हो जाएगी,
0: व्हाट अ येलो सूप। पर आपको पता है मैंने एक लिस्ट देखी थी तला भाई, और उस लिस्ट में नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, इसमें एक बिजनेस था, वो था कार वॉश का। क्या आपको पता था इस बारे में? कार वॉश बहुत बढ़िया बिजनेस है कतर में, तो सोचो ये टॉप थ्री में भी है भाई, सबसे मतलब हाउ इजी इट कैन बी, तो ये टॉप थ्री में आता है। बट यू आर राइट, आजकल मुझे लगता है कि एक तो इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे जो मार्केटिंग की जनता है यहाँ पे वो बहुत बड़ी है, और जैसे आपने कहा कैफे खोल लेगा तो फिर तो धुआं हो जाएगा, ये कह रहे हैं ना?
1: तुम्हारे
0: कहीं ना कहीं बिरादरी भाई हैं, मीडिया की तरफ भी जाऊँ, कुछ कर दूं वहाँ पे, मैं भी उधम काट दूं
1: बनने का,
0: नहीं मतलब ठीक है कुछ कंटेंट करने का, कुछ करने का।
1: अबे भाई हमारे घर के जो तीन कॉन्टे मैंने बनाए उनको संभालने बड़ी बात, घर में तीन कॉल गैंग घूम रहे हैं ना, वो नहीं संभलने मुझसे जो पब्लिश हुए हैं।
0: अच्छा ओके। और मैंने सुना कि आपने बताया था कि आपके साहबजादे जो हैं काफी बढ़िया, मतलब परफॉर्मेंस है सब कुछ है, और आपको लगता है यार ये मुझसे तो नहीं मिला इसको, ये तो अम्मा से ही मिला है। तो आपका असर किस बच्चे पर है?
1: यार अभी क्यों रंग रंग दिख रहा है ना मुझे, वो समय छोटे वाले के दिख।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो जो वो फलता पुतला नहीं देख रहा किसी को ना, वो बर्बादी की तरफ जा रहा है, हर चीज तोड़ फोड़ कर रही है, तो मुझे हाँ ये लग रहा है मुझ पे ना, ये लग रहा है मेरे थोड़े हैं इसमें जरा थी, वरना बाकी जो दो है ना सोड़े ऑटो ट्यून पे आ जाए वो यार ये क्या चल रहा है भाई, ये तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इनका अजीब सी चल रहा है, ये तो मैंने तो ये डाउनलोड किया नहीं था, ये कौन सा डाउनलोड हो गया था, ये खराब मूवी डाउनलोड हो गई है,
0: फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में पेड वर्जन मिल गया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है।
1: अब वही ना भाई मेरे, मैंने तो टॉरेंट से किया था, ये पता नहीं कहाँ रखे हो गया। अच्छा बेगम कहती है इसको इतनी मेहनत करती है, और बच्चों को ऐसे कहते थे ये कर दिया तुमने, बच्चे कहते बाबा ऐसे ही बोलते हैं ना, बाबा ऐसे ही छोड़ दो बाबा को।
0: और एक एक एक सवाल मेरे से जुड़ा हुआ है कि आप क्या मानते हैं कि ससुराल जो है वो दूर होना चाहिए या करीब होना चाहिए, क्या आपके आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
1: ससुराल यार दूर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत दूर होने चाहिए ताकि अप्रोच में जैसे मेरा ना दूर नहीं है, वो बहुत दूर है। आप उससे 50% बच जाते हो, ठीक है ना, मतलब 50% तो कॉल पे आ जाती है, इतना वो कह दिया हाय अल्लाह, उसने वो कह दिया, उससे फोन वोन पे तो चलो अपडेट हो जाते, लेकिन फिजिकली जाके रूबरू नहीं होता
0: है। ऑफिस जो है घर से कितना किलोमीटर आपको लगता है कि ठीक रहता है? क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं, मैं इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा, दुबई में बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि ऑफिस जो है सेम बिल्डिंग में, वो क्या करते हैं एक पूरी बिल्डिंग ले लेते हैं, नीचे ऑफिस है ऊपर अपार्टमेंट में आपने उनको रहने के लिए डाल दिया, और लोग खुश भी हैं। बट आपके हिसाब से कितना दूर होना चाहिए ऑफिस, ज्यादा दूर पास क्या?
1: अबे क्या फायदा भाई ऐसे, तो मतलब दादी का कायम कुछ सीढ़ियों का दादी का कायम है, अपन को वो जब अपन माहौल कहीं और का होता है तो अपन उसको 35 मिनट को एक घंटा दो घंटा बना दे, ट्रैफिक बहुत था।
0: ओके और कतर में सबसे बेस्ट जगह आपको मोहल्ला कौन सा लगता है रहने के लिए, अभी अपना छोड़ के और पर्ल वगैरह छोड़ के कौन सा आप कहेंगे सबसे ये बेस्ट जगह है अभी अगर घर भर मिले तो?
1: यार मैं मंसूरा
0: थैंक यू
1: प्यारी
0: समझ गई पर वाई मंसूरा
1: यार वहाँ पे शीशा वाली बिल्डिंग है वो बड़ी पसंद है
0: पोस्ट ऑफिस है भाई वो मुझे पता है वो बाजू बनने का पता लगा मुझे ना बनने का पता लगा मैंने कहा अच्छा ओ ये पोस्ट ऑफिस है अच्छा तो बाद में क्लियर हुआ
1: अबे दूसरा के बंदे तुमने ही नहीं बताया शीशे वाली बिल्डिंग
0: जब मैंने बताया था ना शीशे वाली बिल्डिंग उस टाइम पे वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था ठीक है मुझे वो बनने के बाद पता लगा मैंने ओ ओके ये तो पोस्ट ऑफिस है ये भाई मैंने बताई नहीं है अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि फाइनली मेरी आंखों के सामने रिवील हो गया
1: मुझे तो भाई आपने जो बताया मुझे मैंने उसको पकड़ के रखा शीशा ले बैठी
0: वही याद रखो वो काफी है और तला भाई लास्ट के दो सवाल मेरे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर रह रहे आपके जितने पाकिस्तानी भाई बहन है उनके लिए क्या पैगाम है हमको बहुत सारे लोग नए भी आ रहे होंगे बेचारे तो क्या कहेंगे आप उनको
1: इस हवाले से
0: मतलब किसी भी हवाले से वो कतर में आ रहे हैं तो आपके एक पीस ऑफ एडवाइस क्या होगी बेचारे कुछ लोग बिल्कुल फ्रेश अभी आ रहे होंगे हो सकता है आपको सुनने के बाद ही हो सकता है कि अभी हम बात करें तो अभी कोई लैंड किया हो बेचारा गाड़ी में हो बेचारा हो अपने अकोमोडेशन पे क्या कहना चाहेंगे आप
1: भाई देखो पहली बात तो आ रहे हो तो जॉब पे आना अदरवाइज आने की जरूरत आसरे पे नहीं आना ये दुबई नहीं है या फिर ये वो नहीं है कि यहाँ पे जाना छक्का लग जाएगा ये वाली खानी नहीं है तब आसरे टोपी टोपी ड्राम में यहाँ पे जिनकी नौकरी लगी वो उनकी बंदी बड़ी खतरनाक हुई हुई है कि आज है कल नहीं है पता नहीं कुछ ठीक है ना जो फैक्ट है ठीक है ना कोई आसरा दे दे कोई ऐसा दे आसरों पर नहीं आना भाई अपने आप अपने से मोहब्बत है तो ये वाला गेम नहीं करना रिस्क अपनी जगह लेकिन भाई सोच समझ के रिस्क लेना रिस्क लेने में और खुदकुशी करने में जमीन आसमान का फर्क होता है तो थोड़ा सा सोच समझ के उतरा पैकेज बहुत देख पैकेज देख के आना भाई ठीक है ना लाइफ स्टाइल कतर का महंगा है लाइफ स्टाइल कतर में जो है ना ये नहीं है रूखी थूकी के मैं जी लूंगा गुजार लूंगा घर पे भेज दूंगा कद्दू कुछ नहीं होता मच्छी पकड़ता रहेगा कॉर्निश पे बैठ के भाई रोज मोची चावल खाएगा फिर बैठ के वो किसी दिन केकड़ा पड़ गया ना गले आपको पानी देने के लेने पड़ जाएंगे तो भाई पैकेज देखभाल गया ना तो बोलूंगा मैं आओ तो
0: बहुत कर
1: रही है मुझसे पूछते ना लोग के मैं कभी रियलिटी पे ये बात कर देता हूँ ना तो एक वो होता है ना खुद तो चलेगा हमें मना कर रहा है तो खुद तो चलेगा हमें मना कर रहा है आओ फिर आओ अगर हमारे क्या है आ जाओ
0: नहीं ये तो एकदम सच बात है ये कड़वा सच है ये हजम करना सबके बस की बात नहीं है बट दिस इज वेरी वेरी ट्रू भाई एकदम सही कहा आपने और तला भाई लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इतने साल से यहाँ पर हैं कभी ऐसा जहन में आया कि मैं अभी रिटायरमेंट का थोड़ा प्लान बन गया क्योंकि आपने सेविंग भी शुरू कर दी है तो कुछ ऐसा है कुछ सीन आया कि भाई साहब क्लाइमेक्स तो मैं ऐसे चाहता हूँ ऐसा कुछ है
1: जैसे
0: कुछ लोग कहते ना भाई मैं पहाड़ी पे चला जाऊंगा तो आपके साथ कुछ ऐसा है कि नहीं है
1: कहता हूँ खुदा की दहल लगा इस टाइम पे सवाल करता हूँ आखिर में मुझे पत्थर मारने दे जा रहा हूँ पीढ़ी के सामने
0: नहीं सोचा क्या
1: नहीं भाई अल्लाह ना करे अभी कहाँ सोच तो अपने खेलने कूदने के दिन चल रहे कायगा रिकायरमेंट अभी सेविंग शुरू अभी शुरू करी है सेविंग अभी 6-8 महीने सेविंग शुरू करेगी रिकायरमेंट पे ले गया
0: इस सवाल के बाद कम से कम थोड़ी तो नींद आपकी खराब की होगी मैंने बड़ा खुश हुआ इस बात को लेके
1: तो अपना ताल्लुक बड़ा बेहतरीन है भाई ये तुम कभी अपनी भाभी से मिलोगे तो तुम्हें बताएंगी वो ये आदमी बात करो 2 मिनट में गुड़
0: बट वेरी नाइस तला भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया भाई और बहुत मोहब्बत और ये जो दोस्ती है ये बड़ी कम होती है ऐसी मिलती है लाइक माइंडेड लोगों को मिलना बहुत जरूरी है तो उसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का कैसे लोग भी मिले मुझे उसके लिए बहुत बहुत प्यार आपको भी क्रेडिट गोज टू यू और बहुत बहुत शुक्रिया तला भाई कि आज आपने टाइम निकाला गाड़ी में बैठ के भाई ने बात करी रात में थैंक यू मेरे भाई
1: भाई मसले नहीं एनी टाइम भाई तेरी नौकरी में ही खाऊंगा टीचर
0: ठीक है ओके ठीक है तला भाई अपना ख्याल रखिए मेरे भाई और इंशाल्लाह फिर बात होती है और सबको सलाम और प्यार जज़ाकअल्लाह भाई क्योंकि आप बेहद जरूरी हैं। मां सलाम।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्म की जो बहुत ज्यादा यूज होती है. आपने शायद सुन रखी हो लाइफस्टाइल क्रीप. हाँ जी. सो लाइफस्टाइल क्रीप का मतलब है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे महंगा हो जाता है. पहले जो चीजें लग्जरी लगती थी बाद में वो नेसेसिटी बन जाती हैं. और शायद इसी सोच को इसी पैटर्न को कहा जाता है लाइफस्टाइल क्रीप. चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि ये है क्या और ये किस तरह से हमारी और आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे एक तरह का एडिशनल बर्डन है. देखिए मिसाल के तौर पे अगर किसी की सैलरी 5000 कतरियाल थी और फिर 8000 कतरियाल हो गई तो आइडियली उसे एक्स्ट्रा पैसे सेव करने चाहिए. लेकिन दोस्तों अक्सर नई सैलरी के साथ नया मोबाइल आ जाता है, ब्रांडेड कपड़े आ जाते हैं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स के चक्कर लगते हैं और कई बार लक्जरी वेकेशंस प्लान करना हम शुरू कर देते हैं. अब नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इनकम बढ़ने के बावजूद भी हम सेविंग्स नहीं कर पाते. ये है लाइफस्टाइल क्रीप का मसला. देखिए लाइफस्टाइल क्रीप बहुत ज्यादा डेंजरस है और मैं कहूंगी ये इसलिए है क्योंकि ये चुपके से धीरे धीरे हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को अफेक्ट करता है. हमें लगता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन असल में हम अपने फ्यूचर गोल्स को सेक्रिफाइस कर रहे होते हैं. देखिए आज का जो दौर है वहां पर दिखावा चलता है और शायद इसी दिखावे के चलते फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ता है. एक और सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. एक शख्स जिसका नाम अहमद है वो जॉब स्टार्ट करता है. उस बंदे के पास एक नॉर्मल फोन था, का सारा काम चलता था और घर का खाना खाता था, पैसे भी बच जाते थे. लेकिन कुछ सालों के बाद उसकी सैलरी बढ़ी या यूं कहें कि डबल हो गई. अब वो हर साल लेटेस्ट आईफोन

खरीदता है? रोज फूड जो है वो ऐप से ऑर्डर करता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो लोन्स लेता है या फिर क्रेडिट कार्ड्स का सहारा लेता है और इस तरह से उस पर और एडिशनल बर्डन बढ़ जाता है। इस मसले का सलूशन ये है कि जब भी इनकम बढ़े स्पेंडिंग उसी रेशो में ना बढ़ाएं। आई रिपीट, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है आपकी स्पेंडिंग जो है वो उसी रेशो में ना बढ़े। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सैलरी इंक्रीज का एक हिस्सा सेविंग्स और एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स में जरूर जाना चाहिए। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आगे भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जैसे अभी चलिए छोटा सा एग्जांपल देख के बताती हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी सैलरी 1000 इंक्रीज हुई तो कम अज कम आप जो है वो 500 कतरी रियाल या तो इन्वेस्ट करें या फिर सेव करें। बजट बनाना भी कितना जरूरी है ये तो मैंने आपको बताया ही है। हर महीने अपने एक्सपेंसेस लिखना और चेक करना कि कौन सा खर्चा जरूरी था और कौन सा गैर जरूरी। अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई है, आपने अगर घर खरीदना है या आपने अगर रिटायरमेंट प्लान करना है या फिर इमरजेंसी फंड बचाना है, इन सारी चीजों को प्रायोरिटी दीजिए। आखिर में जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करना बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी स्पेंडिंग इनकम के साथ इतनी बढ़ जाए कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ भी ना बचे। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस और डिसिप्लिन स्पेंडिंग के जरिए हम लाइफस्टाइल क्रीप से बच सकते हैं और अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अपने फाइनेंशियल स्टेटस और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ मच यू कीप। वेल, इसी प्यारी सी बात के साथ अब मैं आपसे इजाजत लूंगी। कल आपकी मुलाकात और मेरी जब मुलाकात इस सेगमेंट में होगी तो एक और नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। वेल, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए भाई, टेक की दुनिया ऐसी है कि मुझे भी इसके साथ साइड में दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन इसका अपना मजा है क्योंकि मैं आपको जो प्रोडक्टिविटी के टूल्स या फिर कोई काम की चीज या कोई ऐसी टाइम पास करने की कोई चीज बताता हूं तो मुझे खुद को भी बहुत फायदा होता है और अच्छा लगता है। सो आज भी टेक अपडेट में तीन बहुत जरूरी वेबसाइट्स और उसके बाद जरा खबरों की तरफ बढ़ेंगे। सो नंबर वन ऑन द लिस्ट, सबसे पहले आपको टाइप करना है आप वेबसाइट जहां टाइप करते हैं एड्रेस बार में studio.polotno.com। मैं आपको स्पेल आउट करके देता हूं, स्टूडियो studio.polotno.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट जो खुलेगी वो बिल्कुल कैनवा की तरह काम करती है। बेसिकली आप सब कुछ जो मर्जी आप जाएं आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, राइट फॉर फ्रॉम योर पोस्टर्स टू लोगोस टू प्रेजेंटेशन, कोई पोस्टर कुछ भी जो भी आप कैनवा पे करते हैं वो आप यहाँ पे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल वेबसाइट। और क्या कि इसका नाम ऐसा ना तो आसानी से मिलती भी नहीं है, जिनको मिल गई है उन्हें पता है और जिन्हें नहीं मिली है फैला दो इसको मार्केट में, लेकिन आपके बहुत काम आएगी। फिर लुकिंग फॉर समथिंग फ्री एंड जो कि सिमिलर हो कैनवा की तरह। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन, अगली है जी, इसका नाम है start.me। बहुत ही सिंपल नाम है इसका, पर इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कई सारे टूल्स आ जाएंगे और ये सारे के सारे टूल्स जो हैं कैटेगराइज्ड हैं, मतलब आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आपको टूल्स मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको यूजर नेम जनरेटर चाहिए, आपको रैंडम फेस जनरेटर चाहिए, आपको इमेज जनरेटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, यहाँ पे हजारों टूल्स आपके सामने होंगे एंड कैटेगरी वाइज जस्ट हैव टू चूज योर कैटेगरी एंड देन उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं एंड यू विल गेट एवरीथिंग। मैं बता रहा हूँ ये इतनी काम की वेबसाइट है कि एक बार ही आपने देख ली छुट्टी भाई सारी चीजों की, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं अगली वेबसाइट की तरफ, इसका नाम है थर्ड वेबसाइट का verses.com, verses.com, verses.com। जब आप इसे खोलेंगे तो जैसा नाम है verses.com, इसमें आप दुनिया में ऑलमोस्ट हर दो चीजों को प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। दो दोस्तों कंपेयर मत कीजिएगा, लेकिन आप चीजों को कंपेयर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। आप प्रोडक्ट्स को कैसे भी कंपेयर कर सकते हैं, कंट्री वाइज, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज। इट इज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। अगर आप कुछ लेने का सोच रहे हैं कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट टू डू इट एंड इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ईजी। आप फोन से लेकर एक माइक्रोवेव तक यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। आई नो कि हर किसी की पूरी तरह से काम की वेबसाइट शायद ना हो ये, लेकिन जिनके काम की है वो जानते हैं कि ये कितने काम आ सकती है। सो प्लीज यहाँ पर जरूर जरूर जाएं। ऑलराइट, नाउ टेक की खबर की तरफ बढ़ते हैं। सो देखिए, अपडेट मैं गेमर्स को देना चाहता हूँ। दरअसल क्या है, दो बहुत ही बड़े गेम्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, ओनिमुशा और डॉन वॉकर। अभी भी आप सोच रहे हैं कि ये जो इतने पहले रिलीज हुए हैं इनको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं एक बात कहूँगा, ओनिमुशा इज परफेक्ट। कैपकॉम ने फिर से करके दिखा दिया है और उसमें कोई भी डाउट नहीं है। हालांकि डॉन वॉकर आपके टेस्ट का शायद हो सकता है, शायद ना हो,

0: दोस्तों हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है।

0: जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और हर रोज नए जमाने के नए स्कैम में से एक ऐसे स्कैम के बारे में हम बात करते हैं जिससे आप अलर्ट रह सके, जिससे आपकी कंपनी बच सके। अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हैं, किसी स्टोर के ओनर हैं, किसी रेस्टोरेंट को चलाते हैं या फिर आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है तो लाजमी है कि आपके पास एम्प्लॉय भी होंगे। कई बार आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से ट्रेंड नहीं हुए होते हैं और उनके साथ धोखा हो जाता है। लेकिन उनके साथ जो धोखा होता है वो आपके स्टोर को, वो आपके बिजनेस को, वो आपके काम को हैम्पर करता है, वो आपके फिनांस को हैम्पर करता है। और इसीलिए स्कैमर्स ने एक नया तरीका निकाला है स्कैम करने का, विच इज कॉरपोरेट आइडेंटिटी थेफ्ट। ये स्कैम काम कैसे करता है, जरा इस पर नजर डालते हैं। कॉरपोरेट आइडेंटिटी थेफ्ट तब होता है जब क्रिमिनल्स किसी चलती फिरती रेप्यूटेड कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस और क्रेडिट हिस्ट्री चुरा लेते हैं ताकि वो मार्केट में बड़ा फ्रॉड कर सके। स्कैमर्स इंटरनेट पर या गवर्नमेंट पोर्टल्स पर जाकर किसी रियल कंपनी की सारी डिटेल्स निकालते हैं और ऑब्वियसली बात ये बड़ी लाजमी है कि आप सारी डिटेल्स इंटरनेट पर डालना चाहते भी हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हो तो उसे कैसे पता चल जाएगा अगर वो सर्च इंजन पे सर्च कर रहा है तो आप इंटरनेट पे ये सारी डिटेल्स डालते हैं और यहां से बहुत आसान हो जाता है मैक्सिमम डिटेल लेना आपके कंपनी की किसी भी फ्रॉडस्टर्स के द्वारा। स्कैमर्स इंटरनेट

पर या गवर्नमेंट पोर्टल्स से आसानी से ये सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं। इन डिटेल्स का इस्तेमाल करके वो किसी दूसरे बैंक में उस कंपनी के नाम पर एक फेक बिजनेस अकाउंट या फेक क्रेडिट कार्ड खोल देते हैं, क्योंकि असली कंपनी का मार्केट में अच्छा नाम है और उनका क्रेडिट स्कोर बढ़िया होता है। बैंक्स और सप्लायर्स उन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इसके बाद ये स्कैमर्स बड़े सप्लायर्स के पास जाते हैं और असली कंपनी का नाम यूज करके हजारों लाखों डॉलर्स या कतरी रियाल या रुपीस का स्कैम कर देते हैं या क्रेडिट में सामान ले लेते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। वो बिलिंग एड्रेस तो असली कंपनी का डालते हैं, लेकिन शिपिंग एड्रेस जहां सामान डिलीवर होना है वो किसी खुफिया वेयर हाउस का दे देते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। सप्लायर्स को लगता है कि उन्होंने एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड को सामान बेचा है। जब सामान डिलीवर हो जाता है, स्कैमर्स उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर गायब हो जाता है। हफ्तों बाद जब सप्लायर्स का पेमेंट का टाइम आता है तो वो असली कंपनी से कॉन्टेक्ट करेगा ऑब्वियसली। तब दोनों पार्टी हैरान हो जाती है, तब पता चलता है, क्योंकि ये स्कैम ऐसा स्कैम है थोड़ी लेट पता चलता है, इसलिए तब तक स्कैम आपके साथ हो चुका होता है। असली कंपनी का नाम खराब होता है और इससे उन पर लीगल केस भी चलता है फिर। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का एक तरीका है, एक नहीं कई तरीके हैं, उन तरीके पर जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका है रेगुलर क्रेडिट मॉनिटरिंग। अपनी कंपनी की क्रेडिट प्रोफाइल को हर महीने चेक करें, रिपोर्ट्स को मॉनिटर करते रहें, ताकि अगर कोई आपके नाम पर नया लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी करे तो आपको फौरन पता चल जाए। कई बार हम इतने ज्यादा काम में बिजी हो जाते हैं कि इन डिटेल्स पर फोकस ही नहीं करते। सिबिल स्कोर को चेक करना, रिपोर्ट्स को मॉनिटर करना, अपने बैंक अकाउंट में जाकर पता करना, अब तो आपके पास डिजिटल दुनिया है। जब स्कैमर्स इस डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरी है कॉर्पोरेट भी इस डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करे और रेगुलर इंटरवल पर चेक भी करते रहे। किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर किसी ने अप्लाई किया है तो आपको पता चलता रहेगा। उसके अलावा अलर्ट और ऑनलाइन ऑडिटिंग भी, गूगल अलर्ट और ऑनलाइन ऑडिटिंग हमेशा ऑन रखें। अपनी कंपनी के नाम पे गूगल अलर्ट सेट करें। अगर इंटरनेट पर आपके बिजनेस नेम से जुड़ी कोई भी नई एक्टिविटी या नया एड्रेस रजिस्टर्ड होता है तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेंडर और सप्लायर का वेरिफिकेशन। अगर आप एक सप्लायर हैं तो किसी भी नए कॉर्पोरेट ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले उनके रजिस्टर ऑफिस के ऑफलाइन लैंडलाइन नंबर पर कॉल करें। सिर्फ ईमेल पर आए ऑर्डर पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें। उसके अलावा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सीक्रेसी। अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, जीएसटी है, टैक्स है, दुनिया के अलग अलग टैक्स होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर ना करें। उसके अलावा एक आखिरी तरीका, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सीक्रेसी। जो चौथा तरीका है वो अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है, जो डिटेल्स है टैक्स की, बोर्ड रेजोल्यूशन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर ना करें। इन्हें सिर्फ वेरीफाइड पोर्टल्स और वेरीफाइड पार्टनर्स के साथ ही शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका फुटप्रिंट, आपकी कंपनी का फुटप्रिंट बढ़ता है इंटरनेट में, आपकी कंपनी बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है टारगेट करने के लिए और आपकी कंपनी से या आपकी कंपनी के साथ उनके एम्प्लॉयज के साथ स्कैम हो सकता है। तो दोस्तों, ये था कॉर्पोरेट थेफ्ट का एक नए जमाने का नया स्कैम। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन, आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही।
1: अस्सलाम वालेकुम कतर, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और वेलकम है आप सभी को एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। यहाँ भाई हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जेन की। शो का नाम भी नेक्स्ट जेन ही है कि नहीं अमिता?
2: एब्सोल्युटली, और मैं और सफा यानी कि हमारी आरजे सफा और मैं आपकी आरजे अमिता आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट जेन, विच इज वेरी अमेजिंग शो। और ये हमारा पहला एपिसोड है सफा, और इस हफ्ते हम आपको बता दें, इस हफ्ते क्या, हर हफ्ते ये जो हमारा शो है ना, इसमें आइडियाज होंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होंगी, फ्यूचर स्किल्स होंगे एंड क्रिएटिव इनोवेशंस की हम बात करेंगे हमारी यंग जनरेशन के लिए, जो कि ना दुनिया को कंटिन्यूसली शेप कर रही है, रीडिफाइन कर रही है, और इन्हें पर्टिकुलरली ये सारे टॉपिक्स एक्सेलरेट करेंगे।
1: और भाई अमिता, आज का टॉपिक थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ लाइंस ऑफ कोड, सर्वर्स या ड्राई डाटा मैट्रिक्स के तौर पर डिस्कस नहीं करेंगे, ना, आज हम टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं ह्यूमन इमोशंस, इमेजिनेशन, एस्थेटिक्स और क्रिएटिव आर्ट्स के साथ।
2: क्या बात है, मतलब ये तो बिल्कुल सही कह दिया आपने कि टुडे वी आर डाइविंग डीप इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो कहते हैं ना द फ्यूचर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। और जब हम क्रिएटिव आर्ट्स कहते हैं ना, तो इसका स्कोप सिर्फ कैनवस पर पेंट लगाने तक लिमिटेड नहीं होता। फाइन आर्ट्स, डिजिटल इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिजाइन, पोएट्री, क्रिएटिव राइटिंग, बाप रे लिस्ट इतनी लंबी है सफा, सॉन्ग राइटिंग, फिल्म स्कोर कॉम्पोजिशन, स्क्रीन प्ले राइटिंग, 3D एनिमेशन, फोटोग्राफी और मॉडर्न डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएशन, बाबा रे बाबा, ये सब इस अम्ब्रेला के नीचे आता है।
1: और भाई सबसे माइंड ब्लोइंग बात पता है क्या है? कि जनरेटिव AI इन सारे क्रिएटिव सेक्टर्स में एंटर हो चुका है। तो भाई टुडे अ 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, या मैं कहूंगी कि उससे भी छोटा, राइट हियर इन कतर कैन सिट डाउन एंड यूज AI टूल्स एंड विजुअलाइज मल्टीपल विजुअल कॉन्सेप्ट्स फॉर स्कूल प्रोजेक्ट्स इन विद इन सेकेंड्स। हम कहां घंटों लेते थे। अच्छा, एक यंग म्यूजिशियन सॉन्ग स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट उसका टेस्ट भी कर सकता है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। एक विजुअल स्टोरी टेलिंग स्टोरी बोर्ड ड्राफ्ट कर सकता है। मतलब इट्स ऑसम।
2: या, और ये ऑसम टेक्नोलॉजी पहले हैवी मैथमेटिकल

0: म्यूटेशंस, लॉजिकल लूप्स और डेटाबेसेस तक लिमिटेड समझी जाती थी, पर अब वो कहते हैं ना कि अब सीधा ह्यूमन इमेजिनेशन के लॉन में ना आकर बैठ गई है और अब अपनी लाइफ बिल्कुल ईजी कर रही है. और यही से एक इंटेंस ग्लोबल डिबेट शुरू हो जाती है. अगर एक कंप्यूटर सिस्टम एस्थेटिक आर्ट वर्क बना सकता है तो आर्टिस्ट असल में कौन है? अगर AI मेलोडी राइट कर सकती है तो कंपोजर किसे बोलेंगे? और क्या AI फ्यूचर में ह्यूमन आर्टिस्ट को रिप्लेस कर देगा या ये सिर्फ एक हाईटेक ब्रश बनकर रहेगा?
1: भाई देखो, इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो सिंपल येस और नो में देना बहुत इम्पॉसिबल सा काम है. अच्छा, पता है यूनेस्को और ग्लोबल रिसर्च बॉडीज भी इस पर डीपली डिबेट कर रही हैं. ये एक बहुत हॉट मुद्दा चल रहा है आजकल. बट लुक एट द नंबर्स ना. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 AI इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जेनरेटिव AI में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पता है कितनी हुई थी?
0: कितनी?
1: 33.9 बिलियन US डॉलर्स तक पहुंच गई थी, जो कि 2023 से 18.7% जंप था और 2022 के लेवल से 8.5 टाइम्स ज्यादा था भाई.
0: अरे बाबा. और 78% सर्वेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया कि वो एक्टिव बिजनेस फंक्शंस में AI टूल्स यूटिलाइज कर रही है. इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि कोई टेम्पररी पास थ्रू हाइप नहीं है. सीरियस कैपिटल, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और डीप इंडस्ट्री इंटीग्रेशन हो रही है.
1: तो भाई, अगर आप भी एक यंग क्रिएटर हैं, डिजाइनर हैं, स्टूडेंट हैं या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, तो भाई आज का एपिसोड आपके लिए ये बता दूं. अच्छा, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमें फीडबैक भी दे सकते हैं चाहे तो. करना ये है आपने कि हमें मैसेज करना है 666-222-107 पर, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर चाहें तो वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं. हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107. कतर, आपका AI के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? डू टेल अस.
0: एब्सोल्युटली. और जब आप हमें ये बताएंगे तो हम आपकी बातों को, आपके फीडबैक को कंसिडर करेंगे और आगे जब हम आपके लिए नए एपिसोड्स बनाएंगे तो उसमें काफ़ी हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा. सो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर 666-222-107, द लाइन्स आर ओपन. बेशक आप हमें मैसेज करें. और सफ़ा, मुझे बताओ कि जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो लोगों के दिल में सबसे पहला डर यही आता है कि क्या मशीन ह्यूमन ब्रेन की यूनिकनेस को छीन सकती है.
1: ये सोच मेरे दिमाग में दिन रात घूमती है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ भी आप बैठोगे ना, ये टॉपिक शुरू हो जाता है.
0: राइट.
1: देखिए, जब हम स्कूल में होते थे ना, हमें ये सिखाया जाता था कि कंप्यूटर्स लॉजिकल होते हैं और ह्यूमंस क्रिएटिव होते हैं. लेकिन अब ये बाउंड्री थोड़ी सी ब्लर होती जा रही है. देखो, मॉडर्न अगर हम बात करें ना, तो मॉडर्न जनरेटिव मॉडल्स टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस को प्रोसेस करके ऐसे विजुअल्स कंपोजिशंस क्रिएट करते हैं जो इंसान ने पहले कभी देखे ही नहीं होते या इतने रियलिस्टिक लगते हैं. भाई
0: ये बात सही कह रही हो, लेकिन इसमें एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है जो हमें समझाना पड़ेगा सफा सबको, कि मशीन डेटा के पैटर्न्स को ना एनालाइज करती है, जबकि इंसान लाइफ एक्सपीरियंस से इंस्पिरेशन लेता है. कि नहीं? एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग बनाता है तो उसके पीछे उसकी खुशी, उसका गम, उसका नॉस्टैल्जिया, उसके सारे इमोशंस और उसकी कल्चरल बैकग्राउंड होती है. लेकिन AI के पास एल्गोरिदम्स तो है बट इमोशनल हिस्ट्री नहीं है.
1: अरे भाई, बात बिल्कुल सही की है अमिता. आई अग्री विद यू. AI पैटर्न्स और स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मैथमेटिकल मैट्रिक्स पर कन्वर्ट करती है. इसका मतलब सिंपली ये है कि AI क्रिएटिव आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है. लेकिन क्या वो उस आउटपुट का मीनिंग भी समझती है? पता है इसका आंसर क्या है? नो. मीनिंग इंसान खुद क्रिएट करता है भाई.
0: राइट. और इसी मीनिंग मेकिंग प्रोसेस को ना आज हम हमारे शो नेक्स्ट जेन में इस ब्रांड न्यू एपिसोड में अनपैक करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, और हम देखेंगे कि ये जो जेनरेटिव टूल्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं, क्रिएटिव स्टार्टअप्स कैसे बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर की मेजर लिमिटेशंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी यंग जनरेशन को कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर मार्केट में रिप्लेस ना हो सके बल्कि लीड करे.
1: तो भाई साथियों, कहीं मत जाइएगा, मेहरबानी करके हमारे साथ जुड़े रहें. आपकी चाय का कप जरा संभाल के रखिए, चाय शाय पीते रहें, गाड़ी में ड्राइव भी एंजॉय करें अपनी, और हमारे साथ इस जर्नी पर चलें, इस जर्नी को एंजॉय करें.
0: और अब वक्त है हमारे ब्रांड न्यू सेगमेंट का, जो कि सबसे पहला सेगमेंट है हमारे शो का, एंड दैट्स व्हाट्स ट्रेंडिंग. सो व्हाट्स ट्रेंडिंग में समझते हैं कि AI क्रिएटिव प्रोसेस को फंडामेंटल लेवल पर कैसे ऑल्टर कर रही है ट्रेडिशनल

0: AI driven workflow का डिफरेंस क्या है?
1: अच्छा अमिता,
0: हाँ
1: पता है आपको, ट्रेडिशनल वर्कफ्लो में ना एग्जीक्यूशन का वेट बहुत हैवी होता था।
0: हाँ हाँ।
1: अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज करते हैं कि भाई एक पेंटर का मूड हो विजुअल सेटअप ड्रॉ करने का, ठीक है। ट्रेडिशनली उसके पास कैनवस होगा, ऑयल्स होंगे, ब्रशेस होंगे और मल्टीपल मिक्सिंग पैलेट्स होते होंगे ना उसके पास।
0: जी, जी।
1: अच्छा, उसे मैनुअल स्केच बनाना पड़ता था पहले जमाने में। लाइट एंड शेडो का फिजिकल अंडरस्टैंडिंग भी उसको जरूरी थी, कैनवस प्रेप भी होना जरूरी था,
0: राइट,
1: और स्ट्रोक बाय स्ट्रोक इमेज बिल्ड करनी होती थी। मतलब बहुत हैवी काम है भाई ये, हमें सुनने में इतना, मुझे बोलने में इतना मसला हो रहा है, तो ये होगा। इट वॉज अ टाइम इंटेंसिव फिजिकल एंड टेक्निकल एग्जीक्यूशन प्रोसेस।
0: एग्जैक्टली, और विजुअल डिजाइन में भी ना यही होता था। एक ग्राफिक डिजाइनर को एडोबी जो फोटोशॉप है या इलस्ट्रेटर पर घंटों बैठ करना, पेन टूल से क्लिपिंग पार्ट्स बनाने पड़ते थे, लेयर्स मैनेज करनी पड़ती थी और लाइटिंग मैनुअल एडजस्ट करनी होती थी। प्रोसेस स्लो था और हाई लेवल टेक्निकल मास्टरी डिमांड करता था।
1: अच्छा, और जनरेटिव एआई में ना प्राइमरी इंटरेक्शन टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू ऑडियो या टेक्स्ट टू वीडियो फॉर्मेट में शिफ्ट हो चुका है। भाई यूजर अपने मेंटल कॉन्सेप्ट को डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स या प्रॉम्प्ट्स में एक्सटर्नलाइज करते हैं और मशीन लेटेंट स्पेस में से फीचर्स सिंथेसाइज करके मल्टीपल विजुअल ऑप्शंस जनरेट करती है।
0: यानी अब प्राइमरी क्रिएटिव स्किल ये बन रही है कि आप अपने ख्याल को शब्दों में कितने एक्यूरेटली, विविडली और ब्यूटीफुली फ्रेम कर सकते हैं। सो प्रॉम्प्टिंग बिकम्स अ मिरर ऑफ योर वोकैबुलरी, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है एंड डिजाइन लिटरेसी है।
1: एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाइप करें कि क्या टाइप कर सकते हैं, हाँ, सस्टेनेबल फ्यूचरिस्टिक सिटी सेट इन दोहा कतर, ठीक है,
0: राइट,
1: और उसके साथ आप कुछ ये भी ऐड कर दें कि गोल्डन आर, डस्क लाइटिंग, सोलर पावर, ट्रेडिशनल विंड टावर आर्किटेक्चर, और ये भी ऐड कर दें कि अल्ट्रा डिटेल सिनेमैटिक स्टाइल, तो पता है क्या होगा? AI आपको मल्टीपल स्ट्रक्चरल जो है ना वो डायरेक्शंस सेकंड्स में शो कर देगी। कुछ कभी कभी होता है कि तो थोड़ा 30 सेकंड 20 सेकंड लगता है और आपको एक विजुअल शो कर दिया जाता है। प्राइमरी चैलेंज पहले ये था कि मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ उसे फिजिकली ड्रॉ कैसे करूँ। अब क्वेश्चन ये शिफ्ट हो गया है कि भाई मैं जो विजुअल कॉन्सेप्ट चाहता हूँ उसे AI मॉडल को एक्यूरेटली इंस्ट्रक्शन कैसे दूं?
0: Yes. So, सफा, ये जो लॉन्ग टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख देने से ऑटोमेटिकली मास्टरपीस बन जाता है, ये जो थॉट है ना, ये एब्सोल्युटली गलत है। सो ये एक बहुत कहते ना बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम बहुत लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट करेंगे सो हमें वही चीज मिलेगी जो हम चाहते हैं। देखो, क्रिएटिव AI आउटपुट एक सिंगल क्लिक मैजिक बटन बिल्कुल नहीं है। ये एक डायनेमिक कॉन्वर्सेशन की तरह होता है जिसमें कुछ पॉइंटर्स हैं जिसका आपको ख्याल रखना है, जैसे कि इनिशियल हाई लेवल प्रॉम्प्ट क्या होता है, रॉ आउटपुट एनालिसिस क्या होता है, क्रिटिकल जजमेंट एंड रिविजन, स्टाइल एडजस्टमेंट, फ्रेमिंग एंड लाइटिंग ट्वीक, इटरेटिव रिफाइनमेंट एंड जो फाइनल पॉलिश होता है, इन सब पॉइंटर्स का हमें ख्याल रखने की बहुत जरूरत है।
1: बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कहा अमिता। ये प्रोसेस एक क्रिएटिव डायलॉग है। आप AI को कहते हैं, कमांड देते हैं, ये डिजाइन अच्छा है लेकिन बैकग्राउंड को सिंपल करो, कलर्स को वार्म करो, फ्रंट कैरेक्टर के फेस एक्सप्रेशन सटल बनाओ। AI आपके इंस्ट्रक्शंस पर न्यू इटरेशन देती है और आप फाइनल सिलेक्शन खुद करते हैं, आपकी चॉइस होती है।
0: Yes, और यहाँ ह्यूमन क्रिएटर का ना प्राइमरी रोल सिलेक्शन और डायरेक्शन का बन जाता है, ठीक है। सो इमेजिन करें कि AI ने आपको 20 डिफरेंट इमेजेस जनरेट करके दे दी, 19 इमेजेस शायद एवरेज हो, लेकिन इमेज नंबर जो 7 है उसका जो मेन कॉम्पोजिशन है वो माइंड ब्लोइंग है। तो वो आई यानी कि वो आंखें, वो एस्थेटिक टेस्ट और वो आर्टिस्टिक जजमेंट, ये नंबर 7 वाला कॉम्पोजिशन वर्क जो हम सब सोच रहे हैं कि करेगा, ये वर्क करेगा, ये सिर्फ इंसान के पास है ये डिसीजन लेना।
1: अच्छा भाई, और ये शिफ्ट बिल्कुल मैच करता है, मैं मानती हूँ, उस हिस्टोरिक फेज से जब फोटोग्राफी इन्वेंट हुई थी। अच्छा देखिए, यूनेस्को ने ना अपने AI और कल्चर गाइडलाइंस में हाईलाइट किया है कि 19th सेंचुरी में जब कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट पेंटर्स ने शोर मचा दिया था। पता है क्यों? उनका ये कहना था कि भाई अब आर्टिस्ट की क्या ही जरूरत रह गई जब एक मेटल बॉक्स से बटन दबाकर पिक्चर बन जाती है तो।
0: Yes, लेकिन क्या फाइन आर्ट मर गया इस सवाल के बाद? मुझे नहीं लगता, एब्सोल्युटली नॉट। कैमरा ने पेंटर्स को रियलिटी कैप्चर करने के जो कहते हैं ना लेबरस वर्क

0: पास था उसे फ्री कर दिया. रिजल्ट क्या निकला, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं जैसे कि पिकासो है और मोनेट है, उन्होंने रियलिज्म से हटकर इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स स्टार्ट कर दिए. कैमरा डिस्ट्रॉयड रियलिज्म एज अ रिक्वायरमेंट, बट जो उसने एक्सपैंड किया वो था आर्टिस्टिक फ्रीडम इनफिनिटली.
1: अच्छा, AI भी ना एग्जैक्ट वही चेंज लेकर आ रहा है. फ्यूचर का आर्टिस्ट सिर्फ टेक्निकल ड्राफ्ट पर्सन नहीं है, वो एक क्रिएटिव डायरेक्टर, कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट, विजुअल स्टोरी टेलर या आर्ट क्यूरेटर होगा. देखो भाई, म्यूजिक में भी यही हो रहा है. म्यूजिशियंस बेसिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन जनरेट से इनिशियली स्ट्रक्चर आइडिया टेस्ट कर सकते हैं, पर साउंड में सोल और इमोशन इंजेक्ट करना ह्यूमन कंपोजर का ही काम होता है.
0: यस, सो एग्जैक्टली सफा. सो म्यूजिक इंडस्ट्री पर तो इसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी फील कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं. सो टुडे यंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इन कतर जिनके पास एक्सपेंसिव प्रोडक्शन स्टूडियोज या ऑर्केस्ट्रा टीम्स नहीं है, कैन यूज AI म्यूजिकल टूल्स टू प्रोटोटाइप बैकिंग ट्रैक्स, एक्सपेरिमेंट विद टेम्पो चेंजेस एंड टेस्ट करें डिफरेंट बेस लाइन्स बिफोर एंटरिंग एक फिजिकल रिकॉर्डिंग बूथ.
1: अरे भाई अमिता, दिस इज सो ट्रू. लेकिन भाई यहाँ ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना जरूरी है यहाँ पर. देखो, AI जनरेटेड टेक्निकल परफेक्शन और मीनिंगफुल आर्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है.
0: राइट.
1: एक विजुअल इमेज टेक्निकली फ्लॉलेस हो सकती है, मैं मानती हूँ कि मतलब आप कह लें कि लाइटनिंग परफेक्ट है, रेजोल्यूशन 8K है, ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर उसके पीछे कोई ह्यूमन इंटेंशन, कल्चरल बैक स्टोरी या रॉ इमोशन ही नहीं होगा तो बताओ मुझे कि ऑडियंस उससे कैसे कनेक्ट कर सकती है. भाई
0: पता है मिसिंग फैक्टर क्या है AI वर्क में? पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंस. बिल्कुल सही कह रहे हो. सो AI किसी रेनस्टॉर्म के बाद मिट्टी की खुशबू की मेमोरी से स्कोर राइट नहीं करता. AI सुख वाकिफ की पुरानी गलियों में से गुजरते वो जो बच्चों के छोटे छोटे मोमेंट्स थे, चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया जिसे हम कहते हैं, वो महसूस नहीं कर पाता, उसे फील ही नहीं कर सकता.
1: सही.
0: AI हार्ट ब्रेक का दर्द भी, जो हम कहते हैं ना हाय सीने में दर्द हो रहा है, दैट आल्सो इट कैन नॉट डू इट. बट AI न्यूमेरिकल जो कोरिलेशन है और स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स हैं उसे प्रोसेस करता है. ह्यूमन आर्ट इज रूटेड इन कॉन्शियसनेस, मोर्टैलिटी एंड लिव्ड रियलिटी.
1: अच्छा, दैट्स प्रोफाउंडली डीप पॉइंट. अभी तक बहुत बहुत डीप चली गई हैं. देखो भाई, ह्यूमन आर्ट हमारी वीकनेसेस, हमारी वल्नरेबिलिटी और लिव्ड ट्रूथ से पैदा होता है.
0: राइट.
1: मशीन नंबर्स की मल्टीपल डायमेंशनल स्पेस में कैलकुलेशंस रन कर सकती है, कर रही होती है वो.
0: राइट.
1: और इसी के साथ जुड़ता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO. अब भाई इनका लैंडमार्क कंसर्न पता है क्या है? IP rights, copyrights एंड ओरिजिनलिटी.
0: ओहो, कॉपीराइट इशू, इसको कैसे भूल सकते हैं. इस पर तो पूरे ग्लोब में ना न जाने कितनी बातें चल रही हैं, कितने केसेस हुए हैं, लीगल बैटल्स चल रही हैं. वेल, जनरेटिव AI मॉडल्स बिलियंस एंड यू नो बिलियंस ऑफ कॉपीराइटेड इमेजेस, बुक्स, होम आर्टिकल्स और म्यूजिक ट्रैक्स को ना स्क्रेप करते हैं, स्क्रेप कर करके वो ट्रेन हुए हैं. तो यंग क्रिएटर्स को पूछना होगा कि क्या ट्रेनिंग डेटा सेट एथिकल था, ओरिजिनल आर्टिस्ट को परमिशन, एट्रिब्यूशन या रॉयल्टी कॉम्पेंसेशन मिली, और AI जनरेटेड पीस पर कमर्शियल कॉपीराइट किसका बनता है.
1: अच्छा, ग्लोबल कॉपीराइट्स ऑफिसेस इंक्लूड्स द कौन से आप कह लें कि US कॉपीराइट ऑफिस एंड EU रेगुलेटरी बॉडीज क्लियरली कह रहे होते हैं ये कि भाई प्योरली AI जनरेटेड टेक्स्ट, विजुअल्स और ऑडियोज पर स्टैंडर्ड कॉपीराइट प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं हो सकती जब तक उसमें सब्सटेंशियल ह्यूमन क्रिएटिव इंटरवेंशन और ओरिजिनल एडिटोरियल कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशनल लेवल पर ना देखी जा सके. तो
0: हमारे यूथ के लिए इसका प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है, वो ये है कि शॉर्ट लेसन, टेक्नोलॉजी को एफिशिएंसी के लिए यूज करें पर अपनी वो कहते हैं ना ओरिजिनल थिंकिंग, पर्सनल स्टाइल और एडिटोरियल प्रूफ को प्रिजर्व रखें. मिसलीडिंग कंटेंट और जीरो एट्रिब्यूशन वर्कफ्लोस जो लॉन्ग रन में आपका मार्केट ट्रस्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसका ख्याल रखें.
1: अच्छा, और कतर के क्रिएटिव सीन में ना जहाँ कल्चरल हेरिटेज और मॉडर्न इनोवेशन का मैशअप हो रहा है, यंग क्रिएटर्स के पास जो है ना एक अमेजिंग एडवांटेज है. मैं मानती हूँ कि ये एक एडवांटेज ही है.
0: राइट.
1: उन्हें चाहिए कि वो एआई को रीजनल स्टोरीज, आप कह लें कि लोकल फोकलोर और फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चरल विजन को प्रोटोटाइप करने के लिए यूज करें. अच्छी चीज है भाई ये, ना कि माइंडलेस कॉपी पेस्टिंग के लिए. क्रिएटिव होना भाई, वो एआई है. बी क्रिएटिव.
0: या बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जब हम कंटेंट ओवरफ्लो की बात करते हैं ना, तो एक रिस्क नॉइज हाइपर सैचुरेशन का भी है. मतलब जब हर बंदा एक मिनट में 100 pages, इमेजिन 100 pages जनरेट कर सकता है, तो विजुअल कंटेंट की सप्लाई लिमिटलेस हो जाएगी. और इकोनॉमीज का बेसिक रूल है कि जब सप्लाई लिमिटलेस हो जाए तो वैल्यू ड्रॉप होने लगती है. सो वैल्यू फिर किस चीज की बढ़ेगी? मीनिंग, ओरिजिनलिटी एंड ऑथेंटिसिटी.
1: स्पॉट ऑन अमिता, स्पॉट ऑन. देखो भाई, क्वांटिटी इंक्रीज होने से क्वालिटी ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ जाती.
0: राइट.
1: नॉइज के समंदर में ऑडियंस उसे ही याद रखेगी जिसने उसके दिल को छुआ. ओ बाबू,
0: क्या बात है.
1: उन्हें सोचने पर मजबूर करें और उन्हें जेन्युइनली इंस्पायर करें ना. तो भाई, आपको याद दिलाते चलें कि आप सुन रहे हैं FM 107 कतर पर. शो का नाम है नेक्स्ट जेन. हम हैं आपके साथ यानी कि सफा और अमिता. और भाई, इस एपिसोड में हम उन तमाम लिसनर्स को वेलकम कर रहे हैं और उन्हें चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ ज्वाइन करें जो कि AI में इंटरेस्टेड हैं.
0: एब्सोल्युटली. और हमारी बातें आगे भी कंटिन्यू रहने वाली हैं, पर मैं आपसे कहूंगी कि हमारा जो नंबर है 666-22-107, 666-22-107, इस पर अपने नाम के साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस भी हमसे शेयर कर सकते हैं. हमें बता सकते हैं कि हाउ यू आर यूजिंग AI या AI की कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, ताकि हमें भी आपके फीडबैक्स मिले और हम अपने भी शो को आपके हिसाब से और बेहतर कर पाए. तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर. दिल से देसी.
2: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है. क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन. आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट. सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट. पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान. बनिए कल का चेहरा आज ही.
0: सो वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप. हमारे शो का नाम है नेक्स्ट जेन. मैं हूं अमिता आपके साथ और हमारी सफा, हम दोनों आपके लिए ये स्पेशल शो लेकर आए हैं. और अभी तक हमने इतनी मजे मजे की बातें की AI से रिलेटेड. अब टाइम है कि हम थोड़ी सी स्टार्टअप स्टोरीज की बात करें. तो सफा, अब हम AI को सिर्फ ट्रेडिशनल स्टूडियो आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि मॉडर्न एंटरप्रेन्योर, एजेंसी ओनर और यूथ बिजनेस सेटअप्स के एंगल से देखेंगे.
1: चलो भाई, ये तो अच्छी बात हो गई. देखो, अगर कतर में कोई यंग बंदा जो है वो ब्रांडिंग एजेंसी, वीडियो प्रोडक्शन हाउस, डिजिटल कंटेंट बुटीक या मार्केटिंग स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो भाई देखो, AI उनके लिए एक मैसिव गेम चेंजर बन सकता है. समझने की कोशिश करो. लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है.
0: मैं सफा लिटरली चाहूंगी कि आप सबको बताओ कि ये मिथ कौन सा है.
1: देखो, ये मिथ ये है कि AI स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स का अपना प्रोप्राइटरी न्यूरल नेटवर्क कोड क्रिएट करना पड़ेगा, या आपको सिलिकॉन वैली की तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेंचर कैपिटल फंडिंग चाहिए. देखो भाई, रियल एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन लाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग एग्जिस्टिंग AI टूल्स इफेक्टिवली.
0: ब्रिलियंट पॉइंट है सबा, कि कंसिडर अ स्मॉल डिजाइन एजेंसी जो कि हमारे दोहा में काम कर रही है विद लोकल SMEs और स्टार्टअप्स. सो ट्रेडिशनल ब्रांडिंग प्रोसेस में क्लाइंट के साथ डिस्कवरी सेशंस, इनिशियल विजुअल मूड बोर्डिंग, कलर थ्योरी टेस्टिंग और मल्टीपल कंसेप्चुअल ड्राफ्ट्स बनाने में इजीली 2-3 weeks निकल जाते थे.
1: एंड विद AI जनरेटेड क्रिएटिव वर्कफ्लोस, इनिशियल कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइपिंग एंड स्पार्शियल एक्सप्लोरेशन हैपनिंग इन 48 hours, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्लाइंट को फाइनल रॉ प्रोडक्ट AI का डंप कर दिया जाता है. इसका मतलब ये है कि रैपिड एक्सप्लोरेशन फेज फास्ट हो गया है, अलाउइंग द टीम टू स्पेंड 80% ऑफ देयर एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन एनर्जी रिफाइनिंग क्लाइंट कोर वैल्यूज, ना नैरेटिव डेप्थ, लोकल कल्चरल न्यूएंसेस एंड ब्रांड स्ट्रेटजीज.
0: यानी स्पीड इज एन ऑपरेशनल बेनिफिट बट प्रोडक्टिविटी डज नॉट इक्वल वैल्यू. बताएं जरा, यानी कि स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स के डेटा के मुताबिक जेनरेटिव एआई जो है वो अडॉप्शन ने क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में इटरेशन स्पीड 40-60% एक्सिलरेट की है. लेकिन अल्टीमेट मार्केट सक्सेस जो है ना वो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन प्योरली ह्यूमन क्वालिटी कंट्रोल और क्लाइंट रिलेशनशिप पर डिपेंड करती है.
1: तो भाई मतलब ये कि सपोज एक यंग एंटरप्रेन्योर एआई इमेज टूल यूज करके दिन में कह लें तकरीबन 500 जेनेरिक विजुअल एड्स बना लेता है, ठीक है. लेकिन अगर वो एड्स कतर की लोकल मार्केट साइकोलॉजी, कतरी डिजाइन सेंसिबिलिटीज या क्लाइंट के बिजनेस कन्वर्जन गोल्स को हिट नहीं करती तो भाई उन 500 इमेजेस की मार्केट वैल्यू बिल्कुल जीरो है. समझने की कोशिश करें, मास ऑटोमेशन क्रिएट्स चीप नॉइस, हाई ग्रेड क्रिएशन क्रिएट्स रियल एंटरप्राइज वैल्यू.
0: तो एक यंग क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर को मार्केट में एंटर होते वक्त कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने चाहिए सफा?
1: भाई सीधी सी बात है, उन्हें 4 कोर एंटरप्रेन्योर फिल्टर से गुजरना होगा. पहली चीज तो ये, मेरा टारगेट क्लाइंट किस स्पेसिफिक ऑप्शनल फ्रिक्शन या एस्थेटिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है. पहली चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज ये कि क्या मेरा प्रपोज्ड सॉल्यूशन एक जेनरिक फ्री एआई टूल से कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन 2-3 मिनट में खुद बना सकता है कि नहीं. अगर आंसर इज यस तो आपका बिजनेस मॉडल वीक है. तीसरी चीज ये कि भाई मेरा ह्यूमन लेयर जो है, जैसे कि आप कह लें कि लोकलाइज्ड स्टोरी टेलिंग, कल्चरल टेस्ट, डोमेन एक्सपर्टीज या स्ट्रेटेजिक गाइडेंस क्या है, आपने ये सॉर्ट आउट करना है. यूनिक नॉन लीनर कनेक्शंस बनाना, मशीन एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट को कंबाइन करती है, ह्यूमन क्रिएटिव लीप्स अनरिलेटेड फील्ड्स को मर्ज करके आइकॉनिक कॉन्सेप्ट्स पैदा होते हैं, ठीक है. देखो भाई, रिकॉग्निशन, सटल इमोशंस, कलर हार्मोनीज और नैरेटिव वेट. देखो क्वालिटी का बेंचमार्क सेट करना आपका काम है ना. और फिर आगे बढ़ें तो भाई स्टोरी टेलिंग एंड एम्पैथी के बारे में बात करें तो ह्यूमन हार्ट और साइकोलॉजी को समझना
0: जी.
1: व्हाई शुड एन ऑडियंस केयर अबाउट अ फिल्म, अ प्रोडक्ट और अ कॉज? देखो एम्पैथी मशीन कोड नहीं कर सकती, वो आपने क्रिएट करनी है. आगे बढ़े तो प्रॉम्प्ट आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन. अब इसमें आपने आइडियाज, विजन्स और लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को ह्यूमन टीम और एआई इंजन दोनों के सामने क्रिस्टल क्लियर आर्टिकुलेट करना है.
0: राइट.
1: लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडिकल अडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूस अनलर्निंग. देखो बात समझने की ये है कि अ मेंटल माइंडसेट वेयर यू अर्न अटैच्ड टू वन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टूल बट आर ईगर टू लर्न न्यू प्लेटफॉर्म्स एवरी ईयर.
0: राइट राइट, दैट्स वेरी ट्रू. एंड की शिफ्ट लाइन ये है, मतलब अक्सर लोग पूछते हैं सफा की शिफ्ट लाइन क्या है. सो मैं इस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वर्जन का नाम मास्टर हूँ, ये अक्सर लोग कहते हैं. कहने के बजाय स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि मैं किसी भी नए डिजिटल टूल को 48 आवर्स में मास्टर करके कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ. सो फोकस शिफ्ट फ्रॉम टूल डिपेंडेंसी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी.
1: हाँ भाई, और स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन सिस्टम में एआई का यूज कैसे होना चाहिए इस पर भी पेरेंट और स्टूडेंट अवेयरनेस जरूरी होती है.
0: राइट.
1: देखो यूज एआई एज अ थॉटफुल पार्टनर ना, नॉट एज अ एकेडमिक क्रच.
0: या वेरी ट्रू. वैसे मैं चाहूंगी सफा कि इफ यू कैन एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल चीज है.
1: अच्छा भाई, अगर एक स्टूडेंट हिस्ट्री या लेक्चर प्रोजेक्ट के लिए एआई को कहता है कि हम कह देते हैं ना कि भाई राइट अ होल 1000 word ऐसे ऑन कतर मैरीटाइम स्टोरी और उसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके हम सबमिट कर देते हैं.
0: राइट.
1: मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट ने ऐसे टूल यूज किए हैं. स्टूडेंट्स ने अपनी ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस को शट डाउन कर दिया भाई. उन्होंने क्रिटिकल राइटिंग, रिसर्च और सिंथेसिस की स्किल्स को खो दिया.
0: उफ, लेकिन स्मार्ट अप्रोच क्या है? स्टूडेंट ऐसे ना खुद आउटलाइन करें, फिर एआई से कहे कि देखो मैंने कतरी पर्ल डाइविंग एरा पर ये नैरेटिव ड्राफ्ट किया है. एक्ट एज अ क्रिटिकल हिस्ट्री प्रोफेसर. मेरे आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिकल गैप्स पॉइंट आउट करो, सोर्सेज वेरीफाई करने में हेल्प करो और ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स सजेस्ट करो.
1: And this is how you're using AI as an elite 24/7 personal tutor. देखो आपकी critical thinking sharpen हो रही है, research depth double हो रही है,
0: right.
1: और ऐसे completely आपका original intellectual output के साथ ही रहता है. That is how नेक्स्ट जनरेशन स्टूडेंट शुड एक्चुअली स्टडी, उसे एज अ टूल लेना, अपने ब्रेन को शट डाउन करने वाला मामला ना करें।
0: एंड ऑन दिस नोट मैं कहूंगी कि टू ऑल आर यंग लिसनर्स अक्रॉस कतर, चाहे आप क्लासरूम में बैठे हो, चाहे आप डिजिटल स्टूडियो में काम कर रहे हो, या आप ख्वाब देख रहे हो एक नए स्टार्टअप को शुरू करने की, देखो टेक्नोलॉजी

0: कितना कनेक्टिंग लगा. आपका सपोर्ट ही हमारे नेक्स्ट जेन की जान है साथियों.
1: एब्सोल्युटली. तो हमारे सारे लिसनर्स अब अगले एपिसोड में हमसे फिर मुलाकात करें. आपकी आरजे सफा और आरजे अमिता को दीजिए इजाजत.
0: टिल नेक्स्ट टाइम कीप इनोवेटिंग, कीप क्रिएटिंग, स्टे एथिकल एंड कीप ड्रीमिंग बिग. ओके, भागना नहीं है, कीप ड्रीमिंग बिग एंड यूज एआई एज अ टूल.
1: एब्सोल्युटली. और अभी बने रहे एफएम 107 पर दिल से देसी.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: क्रिकेट हो
4: and he's hooked that away. That's four runs.
3: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में.
5: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
3: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM.
5: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की. स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की.
6: आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और आवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं. हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम. पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए. ओनली ऑन FM 107.
7: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: वो कौन सी बातें हैं जो एक शख्स को अजीम बनाती हैं? वो कौन से काम हैं जो एक शख्स को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं? जानना चाहोगे? अपने मैदान अमल में कारनामे दिखाने वाले और अपने हौसलों से समुद्र का सीना चीरने वाले ऐसी ही अजीम शख्सियतों और जाबाजों की दास्तान लेकर आए हैं हम, इनकी जिंदगी और कारनामों पर रोशनी डालने। सुनिए स्टोरीज अनटोल्ड डेफ और अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, कैसे हैं आप सब? और आज हम एक नए शो की शुरुआत कर रहे हैं जो कि एक ऐसा शो होगा जहां पर दुनिया भर की उन हस्तियों के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने हमारी जिंदगी को, या यूं कहें पूरी दुनिया को, एक नया मुकाम दिया और हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि जिंदगी और बेहतर हो सकती है अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़े। ठीक है, तो फिर आज के शो की शुरुआत करते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनका जन्म पाकिस्तान मिंगोरा में हुआ। और ये जो शख्सियत थी, मतलब मैं क्या बताऊं इनके बारे में, सबसे पहली बेटी थी तीन बच्चों में, जियाउद्दीन और तोर पिकाई यूसुफजई की बेटी, जो कि बचपन से ही पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन थी, क्योंकि वो कहते हैं कि इनके जो फादर थे यानी कि जियाउद्दीन साहब, वो खुद ही टीचर थे और चाहते थे कि पाकिस्तान में रहने के बावजूद लड़का हो या लड़की, दोनों को ही समान अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, दोनों को इक्वली पढ़ाई करने का मौका मिलना चाहिए। यस, तो आपने गैस किया मैं आज किनकी बात करने वाली हूँ? आज मैं बात करने वाली हूँ मलाला यूसुफजई की। मलाला यूसुफजई बड़ी ही प्यारी सी शख्सियत है और इनके बारे में काफी हमने सुना, पढ़ा और इनके वीडियोस, इनके इंटरव्यूज देखे, और इनके इंटरव्यूज देखकर मेरे ख्याल से हर एक शख्स मोटिवेट होता है। तो शुरू से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ जियाउद्दीन तोर पिकाई यूसुफजई के घर। और जब ये छोटी सी थी ना, तब से अपने फादर की क्लासेस में ये ऐसे घूमने फिरने चली जाती थी जब बोल भी नहीं पाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो उनकी दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई नॉलेज के लिए और बढ़ती गई, और ये जो थर्स्ट, ये जो क्रेविंग थी, ये इतनी बढ़ी कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर एक लड़की के लिए वो खड़ी होंगी। तो बात कुछ ऐसी हुई कि जब ये 10 साल की थी तो कुछ असामाजिक तत्व, यूं कहें तो, पाकिस्तान में उनकी एंट्री हुई, जिसकी वजह से लड़कियों का स्कूल जाना रोक दिया गया, वहां पर टेलीविजन, म्यूजिक सुनने में, हर चीज में बैन लगा दिया गया। चलो यहाँ तक एंटरटेनमेंट की बात तो समझ में आती थी, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई, उनका एजुकेशन जो कि सबसे अहम था, उस पर जब रोक लगी तब मलाला को ये बात मंजूर नहीं हुई, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने भी उसे सपोर्ट किया। अब आगे बढ़े तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब इतना कुछ हो रहा है, लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लग रही है, तो ये 10 साल की बच्ची जो कि अब 11 साल की थी, उसने इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ खड़े होने का निश्चय किया।

ये डिसीजन जब मलाला ने लिया तब क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं कुछ ही देर में, पर अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

वेलकम वंस अगेन. बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर. और हम बात कर रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड में आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि नन्ही सी उम्र में ही ये डिसाइड कर चुकी थी कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए लड़कियां

बढ़ेंगी, हमेशा आगे बढ़ेंगी, हर फील्ड में आगे बढ़ेंगी, और उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने आप को एजुकेट कर सकें, एजुकेशन के हक में रह सकें, वो ये हक उन्हें दिलाना चाहती थी। सो मलाला यूसुफजई की अगर हम बात करें, तो मैंने बताया आपको कि किस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों ने स्वाट वैली पर कब्जा कर लिया, और जब ये स्थिति हुई तो डेफिनेटली सारी लड़कियों का पढ़ना लिखना बंद हो गया। मलाला को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, और फिर आगे चलते चलते उन्होंने गुल मकाई के नाम से एक पेन नेम ये लिया और इस नाम से ब्लॉगिंग शुरू कर दी, और ब्लॉगिंग की उस टाइम के बड़े ही फेमस मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर पूरी दुनिया उसकी बात सुन सकती थी। आई एम अफ्रेड, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी पूरी ब्लॉगिंग में स्टोरी लिखी जो कि उस टाइम स्वाट वैली में हो रही थी। इस पूरे ब्लॉग में मलाला ने लिखा कि उन्हें इस तरह के ख्वाब आते हैं, इस तरह के नाइटमेयर्स आते हैं जहां पर उसका पूरा घर उड़ा दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, और वो और उसकी फैमिली को फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने घर से निकल जाए, और कहीं भी वो जाए उसे सुकून नहीं मिल रहा है। वो बहुत परेशान है क्योंकि वो अपना स्कूल नहीं अटेंड कर पा रही है, वो बहुत परेशान है कि जो बेसिक नीड्स हैं लड़कियों की वो भी उसे हासिल नहीं कर पा रही है। अब ये जो पर्टिकुलर ब्लॉग था धीरे धीरे धीरे दुनिया भर में पढ़ा जाने लगा। ऐसे में मलाला यहाँ नहीं रुकी, गुल मकई के नाम से तो उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर ही दी थी, और साथ ही साथ अपने फादर के साथ मिलकर लड़कियों के एजुकेशन के लिए उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिए थे सारी पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए। अब 2011 में यूसुफजई का नाम नॉमिनेट हुआ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसे ये इनाम नहीं मिल पाया। लेकिन उसी साल पाकिस्तान नेशनल यूथ पीस प्राइज ये अवार्ड मलाला यूसुफजई को मिला, और फिर ये नाम यानी कि मलाला यूसुफजई हर एक घर का नाम बन गई, हर एक घर की बेटी बन गई कि हर कोई, हर एक फैमिली लड़कियों की एजुकेशन के बारे में सोचने लग गया, और सोचने लग गया कि ये जो हक है उनका, उनको मिलना ही चाहिए। और ऐसे में मलाला अब असामाजिक तत्वों के टारगेट पर आ गई। 2012 अक्टूबर 9 ये वो तारीख है जिस तारीख को कोई नहीं भूल पाता दुनिया भर में, क्योंकि ये तारीख ने कुछ ऐसा बदला कि पाकिस्तान में हर एक लड़की के लिए पढ़ाई वो हक कोई उनसे छीन नहीं सका। आइए बताती हूँ। So, 15 साल की मलाला यूसुफजई अपने स्कूल से अपनी स्कूल बस में रिटर्न हो रही थी, अपने घर की तरफ जा रही थी, और तभी ये असामाजिक तत्व, जिनको पता चल चुका था कि ये जो पेन नेम है गुल मकई, ये लड़की कौन है, उन्होंने इसकी बस रुकवा कर, इसकी बस में चढ़ कर इसे गोली मार दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ होता है, अगर उसकी ब्लेसिंग किसी के साथ है तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी किसी का भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। और ऐसे ही मलाला यूसुफजई के साथ हुआ कि जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, तुरंत पाकिस्तानी मिलिट्री हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया, उसके बाद सीधा उन्हें इंटेंसिव केयर इंग्लैंड में ले जाया गया। वहाँ पर मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा उनको दिया गया, 10 दिन तक उनका ट्रीटमेंट चला, और यूसुफजई की जब आँख खुली तब उसे पता चला कि उसे मेजर ब्रेन डैमेज हुआ, जिसकी वजह से उसका लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ा पैरालाइज्ड हो गया। अब ऐसे में मलाला यूसुफजई तब भी हार मानने को तैयार नहीं थी, कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसका इरादा पक्का और नेक था कि लड़कियों को उनका हक, उनकी पढ़ाई पर किसी का रोक नहीं होना चाहिए। रिपीटेटिव सर्जरीज हुई, रिहैबिलिटेशन हुआ, उसके बाद कई महीनों के मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद मलाला यूसुफजई अपनी फैमिली से आराम से मिल सकी, और फिर उन्होंने इंग्लैंड में ही रहना डिसाइड किया। वेल, मलाला यूसुफजई क्योंकि थोड़ी सी मेडिकली चैलेंज्ड हो गई थी तो तुरंत स्कूल तो नहीं अटेंड कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब तक वो स्कूल नहीं पहुंच पाती, इसका मतलब ये नहीं कि जो लड़कियां स्कूल जा ही नहीं सकती उनके लिए वो फाइट नहीं करेगी। पर उसने हर उस लड़की के लिए फाइट किया जिसे स्कूल जाने का मौका नहीं मिल रहा था। जब मलाला 16 ईयर्स की हुई तब उन्हें यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क में मौका मिला जाकर पब्लिक स्पीकिंग करने का, और उसी साल आई एम मलाला उनके नाम की ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई, और फिर उन्हें सखरोव प्राइज से भी नवाजा गया फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर हर एक्टिविज्म। तो इस पर तो जोरदार तालियां और बड़ा

सा सलूट मलाला यूसुफजई के नाम बनता है। इसी के साथ मलाला की लेगेसी में क्या खास है, हाँ जी वो कौन सी लेगेसी है जो उन्होंने दी, जिसे लेकर आज भी हर लड़की काफी इंस्पायर्ड हो रही है, चलिए बात करेंगे कुछ ही देर में। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर दिल से देसी।

0: यहाँ हर आंख अजय राठौर के लिए नम है और इन सब में एक आक्रोश दिखाई पड़ रहा है।
1: मैं नहीं हटूंगी, ये अजय के लिए है।
2: आप चलिए आंटी, यहाँ गड़बड़ हो सकती है।
1: सुनिए तो

0: आप सुन रहे हैं FM 107. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज हम स्टोरीज अनटोल्ड में बात कर रहे हैं मलाला यूसुफजई के बारे में. तो अब तक हमने जाना कि कैसे मलाला की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ हो जाए लड़कियों के हक के लिए वो जरूर लड़ेंगी और ये सिलसिला चलते चला गया. वैसे अब वो पाकिस्तान से इंग्लैंड पहुंच चुकी थी. सो इन 2014 यूसुफजई और उनके फादर ने मिलकर डिसाइड किया कि वो एक मलाला फंड एस्टैब्लिश करेंगे जो कि सपोर्ट करेगा, एडवोकेट करेगा विमेन और गर्ल्स के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई करेगा और कोशिश करेगा कि जो भी लड़की आउट ऑफ स्कूल है उन्हें वो स्कूल भेज सके.
1: I have promised myself that I will fight for the rights of children because I cannot forget the days when every morning I would see poor girls going to other people's houses and suffer from child labor. And I considered it my duty to fight for their rights. I wanted to see them in school uniforms, holding books and pens in their hands. I wanted to see their future bright. If you don't educate children, it means it becomes a generation lost. So if you want to protect the next generation, you have to think about their education.
0: और इसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत मलाला ने सीरियन रेफ्यूजी से मुलाकात की, उन लड़कियों से केन्या में भी मुलाकात की, फिर नाइजीरिया भी गई और वहां जाकर लड़कियों को, औरतों को उन्होंने मोटिवेट किया जहां पर भी कुछ असामाजिक तत्व थे जो कि लड़कियों को उठवा लेते थे अगर वो स्कूल जाना चाह रही थी. मतलब ये डिसीजन था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देना है, बढ़ने नहीं देना है. वैसे उनकी ये फाइट सिर्फ पाकिस्तान से शुरू नहीं हुई, पूरी दुनिया भर में जिस जिस देश में जब भी कोई समस्या उभर कर आई जहां पर लड़कियों को पढ़ाई के लिए रोका जा रहा है वहां पर मलाला फंड हमेशा आगे बढ़कर उनकी मदद करते रहा. और इसी इनक्रेडिबल वर्क के लिए मलाला को दिसंबर 2014 में नोबेल पीस प्राइज से अवार्ड किया गया और ये उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी, यानी कि एट द एज ऑफ 17 ये सबसे पहली, सबसे यंगेस्ट पर्सन बनी जिन्हें नोबेल लॉरेट मिला. सो यस, ये हर किसी के लिए गर्व की बात है कि एक लड़की जिसने 10 साल की उम्र से लड़कियों के हक के लिए लड़ना शुरू किया आज 17 साल की उम्र में आते आते उसे दुनिया भर में लोगों ने पसंद किया, उसकी बात को सुनी और नोबेल पीस प्राइज की वो हकदार बनी.
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. टुडे इज द डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी. आई एम हम्बल्ड दैट द नोबेल कमेटी हैज सेलेक्टेड मी फॉर दिस प्रेशियस अवार्ड. आई एम प्राउड, वेल इन फैक्ट आई एम वेरी प्राउड टू बी द फर्स्ट पश्तून, द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड.
0: अच्छा, मजे की बात तो ये है कि कई बार लोग जब इस तरह के अवार्ड मिल जाते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि आगे काम शायद अब नहीं करना है या काम सारा हो चुका है, लेकिन मलाला ने लड़कियों के लिए काम करना, उनके हक को दिलाना नहीं छोड़ा. मलाला फंड आज भी एडवोकेट करता है क्वालिटी एजुकेशन के लिए दुनिया भर की लड़कियों के लिए और अलग अलग तरह के फंडिंग एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स भी इंटरनेशनली चलाता है. और अब अगर हम बात करें मलाला की, तो उसने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स इनमें पढ़ाई करी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड में और ग्रेजुएट हुई 2020 में. वैसे लॉकडाउन तब तक आ चुका था, लेकिन कुछ भी कहे, इनकी ये जो पहल थी अपने आप से और लड़कियों के लिए फाइट करने के लिए कि चाहे कुछ हो जाए हक मिलना चाहिए, उनका हक कोई ना छीन पाए, वो चलते चला गया और अभी भी चल रहा है क्योंकि मलाला फंड और हमारी मलाला यूसुफजई का कहना है कि आज भी 130 मिलियन से भी ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो कि स्कूल नहीं जा पा रही हैं. तो ये लड़ाई अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, थोड़ा और फाइट करना बाकी है और एजुकेशन और इक्वालिटी अभी लड़कियों को दिलाना बाकी है.
1: I am those 66 million girls who are deprived of education. I'm not a lone voice. I am many. And our voices are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen. They can change the world.
0: So ye thi Malala Yousafzai ki incredible story, jo ki aaj maine Stories Untold.

पर आपसे शेयर की एंड आई एम श्योर कि आपको जरूर पसंद आई होगी. और अगर पसंद आई है तो आप भी अपने फीडबैक्स, आप भी अपने सजेशंस, आप भी अपने व्यूज हमसे जरूर शेयर करें 666-22107 पर, 666-22107 पर, या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स FM 107 पर आप जुड़ सकते हैं और अपनी आरजे अमिता को भी वहीं ढूंढ सकते हैं. आपके मैसेजेस का मुझे इंतजार रहेगा. और अभी मुझे दीजिए इजाजत, आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में. तो सुनते रहिए स्टोरीज अनटोल्ड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन। इट्स अ गोल शो, जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन।
1: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज। अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा। डोंट मिस इट, इट्स अ गोल शो।

0: सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार ना कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: की वो जा रहा है पूरी शबम गुजार तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बाहर.
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

जान सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जेन जी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 RJ फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामीन, आज की दुआ है एक अजीम दुआ जो रासिखीन फिल इल्म, यानी इल्म में मजबूत और गहराई रखने वाले अहल ईमान की जबान जारी रहती थी। तो ये दुआ अल्लाह ने हमें अपने रसूल के जरिए पहुंचाई है ताकि हम भी इसका एहतमाम करें और हमें भी हिदायत याफ्ता साबित कदम रासिखीन फिल इल्म में शामिल कर ले। दुआ है, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। यानी वो गहराई के इल्म रखने वाले इस तरह दुआ करते थे कि हिदायत मिलने के बाद कहीं ऐसा ना हो

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। आप सुन रहे हैं FM 107 और आज के इस स्पोर्ट्स सेगमेंट स्पोर्ट्स हाइलाइट में एक ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम उनके बारे में मैं बात करूंगा। उनका नाम 1980s में काफ़ी लोगों ने उनको फॉलो किया, सुना है, देखा है एंड ट्रैक एंड फील्ड का वो सुनहरा सितारा जिन्होंने 80 और 90 की दिहाई में स्टेडियम को जश्न का मैदान बना देता था, कार्ल लुईस। मैं आपको बताता हूं कि व्हाई कार्ल लुईस वाज सच अ मार्वेलस एथलीट। ही वाज अ लेजेंड। ही वाज अ पायनियर इन अमेरिकन एथलेटिक्स में। दुनिया के एथलेटिक्स के बारे में बात करूं, ओलंपिक रेसेस की, वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में बात करूं, कार्ल लुईस वाज जेन्युइनली वाज अ जेंटलमैन लेजेंड। लेकिन दोस्तों, कार्ल लुईस की कहानी सिर्फ उन मेडल्स तक महदूद नहीं जो उन्होंने ओलंपिक पोडियम पर हासिल किए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द मेडल्स दैट एथलीट्स हैव वन, क्योंकि मैं हमें समझता हूँ, मैं ये जैसे कि आप मेडल्स जीतते हैं तो लोग जानते हैं, लेकिन मेडल्स के पीछे कहानी क्या है, मेडल्स के पीछे मेहनत, हाउ मच वॉज दैट हार्ड वर्क, ये हम बताते हैं, आई मीन बहुत कम लोगों को बता पाते हैं। कम लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, क्या क्या मेडल्स, क्या सेंचुरीज, क्या विकेट्स, लेकिन वो जो मेहनत है उसके पीछे जो स्ट्रगल रहा, वो स्ट्रगलिंग स्टोरी नोबडी वांट्स टू लिसन, लेकिन ये सुनना भी जरूरी है, बिकॉज दैट गिव्स अस द मोटिवेशन, दैट गिव्स अस द एनकरेजमेंट फॉर द न्यू जनरेशन। और छोटे बच्चों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, उन पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन तरह के स्पोर्ट्स आज को अगर आप लोग जो पढ़ते हैं और उनको देखते हैं, उनके परफॉर्मेंस पर अगर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि हाँ, हाउ मच स्ट्रगल, हार्डवर्क उनके पेरेंट्स ने किया। उनकी असल खासियत ये थी कि वो प्रेशर के वक्त भी अपने आप को कंट्रोल में रखना जानते थे। दैट वॉज कार्ल लुईस। 1984 से 1996 तक का ओलंपिक सफर देखें तो कार्ल लुईस ने हर ओलंपिक गेम्स में कम अज कम एक गोल्ड मेडल जीता। ये कंसिस्टेंसी की बात है और ये कंसिस्टेंसी अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों। अटलांटा 1996 ओलंपिक्स में जब वो 35 साल के थे तब भी उन्होंने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। थोड़ा सोचिए, एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट में जहां मिलीसेकंड्स और सेंटीमीटर्स फैसला करते हैं, वहां एक एथलीट का इतने अरसे तक दुनिया के टॉप लेवल पर रहना कितना मुश्किल होता होगा, जरा तसव्वुर करें आप इस चीज को, समझ में आ जाएगा। कार्ल लुईस 1996 यानी 1996 में जब कार्ल लुईस ने लॉन्ग जंप का फाइनल जीता तो वो ओलंपिक हिस्ट्री में सिर्फ एक और मेडल ऐड नहीं कर रहे थे, वो अपने करियर के एक ऐसे चैप्टर को मुकम्मल कर रहे थे जहां उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में

ने इसी इवेंट का गोल्ड मेडल जीता, इसी इवेंट का। 1984 का लॉस एंजलिस, 1988 का सोल, 1992 बार्सिलोना और 1996 अटलांटा। चार ओलंपिक्स, चार गोल्ड मेडल्स, एक ही इवेंट। और ये अचीवमेंट एथलेटिक्स की तारीख के सबसे मुश्किल रिकॉर्ड्स में से एक समझी जाती है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। और अगर आप कार्ल लुइस को सिर्फ एक स्प्रिंटर समझते हैं तो जरा रुक जाइए, उनका लॉन्ग जंप करियर भी उतना ही जबरदस्त था। 1991 में टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान उन्होंने 8.91 मीटर का जंप रिकॉर्ड किया था, लेकिन हवा के रफ्तार परमिसिबल लिमिट से ज्यादा होने की वजह ये जंप ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन सका। और इसी कॉम्पिटिशन में माइक पावल ने 8.95 मीटर का जंप लगाकर बॉब बीमन का 23 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। लिव्स ने भी सी फाइनल में 8.87 मीटर जंप किया था। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, लिव्स ने उस दिन 8.80 मीटर से ज्यादा के चार जंप्स किए, यानी एक ही कंपटीशन में उनकी कंसिस्टेंसी भी लाजवाब थी और उनका लेवल भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कार्ल लुइस की पर्सनालिटी का एक और पहलू था उनका यकीन, वो अपनी एबिलिटी पर भरोसा करते थे और बड़े मोमेंट्स में प्रेशर को अपने फेवर में इस्तेमाल करते थे। इसीलिए जब एथलेटिक्स की दुनिया में स्पीड, पावर और एलिगेंस की बात होती है, कार्ल लुइस का नाम लाजमी तौर पर सामने आता है। उन्होंने एक पूरी जनरेशन को यह सिखाया कि चैंपियन होना सिर्फ जीतने का नाम नहीं, चैंपियन वो होता है जो सालों तक अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखे, हार के बाद वापस आए और जब दुनिया उसे देख रही हो तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का हौसला रखे। कार्ल लुइस ने ट्रैक पर मेडल जीते, रिकॉर्ड्स बनाए और हिस्ट्री लिखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एथलेटिक्स को एक नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। इसीलिए कार्ल लुइस सिर्फ एक ओलंपिक चैंपियन नहीं बल्कि एथलेटिक्स की तारीख का एक ऐसा नाम है जो जनरेशंस तक याद रखा जाएगा। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आएगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।

और ये लोग जब इकट्ठे अल्लाह के सामने बेनकाब होंगे तो उस वक्त उनमें से जो दुनिया में कमजोर थे वो उन लोगों से जो बड़े बने हुए थे कहेंगे, दुनिया में हम तुम्हारे ताबे थे, अब क्या तुम अल्लाह के आजाब से हमको बचाने के लिए भी कुछ कर सकते हो? वो जवाब देंगे, अगर अल्लाह ने हमें नजात की कोई राह दिखाई होती तो हम जरूर तुम्हें दिखा देते, अब तो यकसां है खा हम जजा व फजा करें या सब्र, बहरहाल हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, हकीकत यह है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे, और मैंने जितने वादे किए उनमें से कोई भी पूरा ना किया, मेरा तुम पर कोई जोर तो था नहीं, मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने रास्ते की तरफ तुमको दावत दी और तुमने मेरी दावत पर लब्बैक कहा, अब मुझे मुलामत न करो, अपने आप ही को मुलामत करो, यहां न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी, इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में शरीक बना रखा था मैं उससे बरी व जिम्मा हूं, ऐसे जालिमों के लिए तो दर्दनाक सजा यकीनी है। बखिलाफ इसके जो लोग दुनिया में ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां वो अपने रब के इज़्ज़त से हमेशा रहेंगे और वहां उनका इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से होगा। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलिमे तैयबा को किस चीज से मिसाल दी है? उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी जात का दरख्त जिसकी जड़ जमीन में गहरी जमी हुई है और शाखें आसमान तक पहुंची हुई हैं, हर आन वो अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक लें। और कलिमे खबीसा की मिसाल एक बदजात दरख्त की सी है जो जमीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं है। ईमान लाने वालों को

कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो। मुजरमीन के दिलों में तो हम इस जिक्र को इसी तरह सलाख की मानिंद गुजारते हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाया करते। कदीम से इस कमाश के लोगों का यही तरीका चला आ रहा है। अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल देते और वो दिन दहाड़े उसमें चढ़ने भी लगते, तब भी वो यही कहते कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है।

हमने इंसान को सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से बनाया और उससे पहले जिनों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। फिर याद करो उस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूं, जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के कि उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। रब ने पूछा, ऐ इबलीस तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ न दिया? उसने कहा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं उस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। रब ने फरमाया, अच्छा तू निकल जा यहां से क्योंकि तू मर्दूद है और अब रोजे जजा तक तुझ पर लानत है। उसने अर्ज किया, मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज तक के लिए मोहलत दे जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। वो बोला, मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं जमीन में इनके लिए दिल फरेबियां पैदा करके इन सब को बहका दूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिस कर लिया हो। फरमाया, ये रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुंचता है, बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हैं उन पर तेरा बस न चलेगा, तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों ही पर चलेगा जो तेरी पैरवी करें और उन सब के लिए जहन्नुम की वाइद है।